0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब में अजीम रिश्ता माँ बाप का है। अगर आप 70 साल तक खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहे तब भी आप आंसू के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो आपकी बदसलूकी की वजह से आपके माँ बाप की आंख से गिरा था। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनकी दुआएं दीजिए, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएंगे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आरज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर, शो है ये पर्ल्स ऑफ कुरान और मैं हूं आपके साथ आपकी आरज महविश खान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अभी शो का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलें पल्स ऑफ कुरान का आगाज करते हैं। आज इस शो में जो आयत मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये है सूरह अल तहरीम की आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस पर सख्त दिल और मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं।

0: FM 107 Time Check. Time Check.
1: अस्सलाम वालेकुम, जागते रहो। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे 6:01 एंड एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। मतलब मैं शुरुआत में आज बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो कहानी के पीछे तैयारी हुई है ना, तो मुझे शायद एक साल में ऐसी किसी कहानी ने इतनी मेहनत नहीं कराई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कहानी बेचनी है, लो मेरा सामान खरीदो, नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। इस कहानी ने मुझसे किताबें सुनवा ली, इस कहानी ने मुझे न्यूज़पेपर पढ़वा लिए, इसने ना जाने क्या क्या पढ़वा दिया। तो आज याद है आपको पिछले हफ्ते में कह रहा था कि कम से कम एक कहानी आएगी जो 40 मिनट की होगी। मे बी दिस इज़ द वन। और वीकेंड की तो अलग है, वो बाद में आएगी, पर आज मुझे लग रहा है हलचल होगी, तो उसके लिए तैयार रहिए, बिकॉज दैट इज़ वन सरप्राइज जो मुझे लगता है मुझे बहुत ही अच्छे से आज आपको बताना है। दूसरी चीज़, गुड मॉर्निंग, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आजीरफ साहब, आप अपनी अपनी गाड़ी लेके आ जाओ। और हमारे दोहरे व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पर मैसेज डाल दूँ, मैसेज डालने का जी आपको करना है 6662107 नंबर है 6662107। और एक मैसेज मेरे पास सुबह सुबह आया है, मैं इसका रिप्लाई बाद में करूँगा इंशाल्लाह, अभी मॉर्निंग अधिकार के बाद मिलते हैं 10 मिनट 30 सेकंड और मैं दुहा वाला कबीर आपके साथ। दुहाओं से ज़रा शुरुआत की जाए, स्टे ट्यून्ड।
2: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला,

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك.

0: नॉर्मल होना चाहिए है, इसमें भी दिक्कत है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपके यहाँ भी होंगे जो बहुत देसी हैं, पर लोग जो हैं पता नहीं उनके समझ नहीं आया या वो खाते नहीं है, आई डोंट नो। जैसे आम से रोटी खाना है ना, लोगों को नहीं पता है इसका बहुत मज़ा है भाई, ट्राई करके देखें आप, आपको यकीन ही नहीं होगा ये आप, अरे ये तो नई डिस्कवरी हुई है, एक नया टेस्ट अनलॉक हो जाएगा आपके यहाँ। एक कॉल आ रही है, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व
0: बरकातुहू। जय भी भाई, गुड मॉर्निंग।
1: आप सुनाइए, माशाल्लाह बड़ी प्यारी शुरुआत, बड़ा खूबसूरत टॉपिक एज यूजुअल, हमेशा की तरह दिल छू जाने वाली आवाज,
0: बड़ी आवाज, बहुत बहुत प्यारा आपको। तो जय भाई, क्या कोई कॉम्बिनेशन है आपकी तरफ भी?
1: अच्छा, कॉम्बिनेशन तो ये जो आपने गिनवा दी है ना, इससे ज्यादा तो क्या होंगे, लेकिन ये जो रोटी और आम आपने कहा है, ये मैंने पाकिस्तान में खुद तो कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन लोग पराठे के साथ आम खाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। आपने नहीं ट्राई किया?
1: एक नहीं नहीं नहीं एक रोटी है, मतलब रोटी होती है, मतलब रोटी कहने से रोटी सादा हो सकती है, पराठा समथिंग एल्स, वो कुछ और है।
0: फिर भी मतलब ट्राई नहीं किया आपने कभी कुछ खुद चल के, चलो मैं थोड़ा?
1: मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, मैं तो देख के हैरान हो रहा था, ट्राई नहीं किया मैंने।
0: अरे रे रे रे रे रे, रे ये तो दिक्कत है जेबी भाई, आज इस बार तो मतलब ट्राई करना चाहिए आपको मेरे ख्याल में, ये एक निवाला तो ट्राई करना चाहिए इस बार, क्या कहते हैं आप?
1: अच्छा अच्छा यार, मैं खाने में भी अभी देखना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, बूफे लगा होगा, लेकिन खाने में जरा रिजर्व हूँ मैं।
0: ये जो आपने मेरा खून जलाया ना बीच में बोल के बूफे लगा होगा, ये वो होता ना कि 5 नंबर के सवाल में और बच्चे ने 10 नंबर का आंसर लिख दिया है, ये बिल्कुल वैसा था।
1: बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है
0: ना।
1: गुड़ वाले चावल भी, गुड़ वाले चावल भी, ये भी गुड़ वाले चावल भी लोग बड़े शौक से खाते हैं।
0: हाँ, खाते हैं।
1: और मैं जब रिसेंटली पाकिस्तान गया था तो मैंने पहली दफा जिंदगी में देखा, मैं एक फैमिली की तरफ गया, उन्होंने हमें डिनर में इन्वाइट किया।
0: अच्छा।
1: और करेले और चिकन तो मुझे पता ही बनती है, ओके, लेकिन करेले चिकन के अंदर आलू जो उन्होंने ऐड किए थे वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैंने देखे।
0: चिकन के अंदर
1: चिकन और करेले और उसमें आलू डाल दिए,
0: माशाल्लाह। देखिए सुनने में ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा है। ये कुछ ट्राई कर। अच्छा, आपने हलीम बिरयानी का कॉम्बिनेशन कभी सुना है?
1: नहीं मैंने नहीं सुना। हलीम मतलब इंडिविजुअल, अकेली बस सुना है कि लोग नान के साथ खाते हैं, चम्मच के साथ, लेमन वगैरह मिर्चें, बिरयानी के साथ नहीं, मैंने कभी
0: नहीं सुना ना। अरे ये बॉर्डर खुला हुआ है जेबी भाई, फिर आपको जरा दिल्ली में खिलाऊं मैं हलीम बिरयानी, दीवाने हो जाएंगे आप। ठीक है,
1: दाल चावल के साथ आपने दही का फरमान जारी किया, बिल्कुल ऐसा है, मैं खुद बड़े शौक से चावल दाल और दही लेके खाता हूँ, और ये तो मतलब इसका अपना एक टेस्ट है ना।
0: ये दुनिया नहीं समझ पाएगी जेबी भाई, ये जो हमारे जो तरीके हैं तौर तरीके, दुनिया को समझाना पड़ेगा, बट वेरी गुड। आप अपने बूफे में जाइए, खा के आइए, आपको क्या पड़ी दाल चावल की, आप बूफे खाइए।
1: दूसरा एक और बात कल मैं सुन रहा था विमलेश साहब की, विमलेश भाई को पहले तो बहुत और तमाम दोस्तों को भी मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: विमलेश भाई अगर मुझे ड्यूटी दें तो मैं रोज 4:30 बजे इनको कॉल करके कहूँ यार अपना टिफिन लेके जाना।
0: हाँ भाई विमलेश भाई, अगर आप सुन रहे हैं अपनी शानदार बड़ी गाड़ी में, क्योंकि अभी विमलेश भाई थोड़े से फैंसी हो गए हैं अभी, वो कहते हैं पीनट बटर ले जाता हूँ मैं, पीनट बटर तो।
1: लेकिन हाँ। लेकिन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि जिस तरह विमलेश भाई को मैं बड़े करीब से जानता हूँ, ही इज अ वेरी एक्सीलेंट
0: आर्टिस्ट, ही वेरी जेन्युइन पर्सन एंड अ वेरी ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट, और स्टैंड अप भी बहुत अच्छा करते हैं, इज वेरी वेरी नाइस।
1: जी बाकी इंशाल्लाह आम और पराठे
0: नहीं, आप इस बार जेबी भाई, मैं जैसी आम का सीजन अभी एकदम उरूज पे होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कॉल करके कि खाया कि नहीं खाया।
1: खाऊंगा, मेरी मतलब कोशिश तो है, लेकिन हाँ। मुझे एक चटाई की तलाश में, ऑरेंज
0: वाली चटाई चाहिए आपको, मैं बेचना शुरू करता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया मैन्युफैक्चरिंग आइडिया। ये आपको मिलेगा मंसूरा में, आइएगा बेचता हूँ मैं आपको, ठीक है?
1: इंशाल्लाह।
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जेबी भाई, तो अल्लाह हाफिज। जेबी भाई की बात जो है, देसी कॉम्बिनेशन जो है जो लोगों को नहीं पता, दुनिया को पता है, मैं कह रहा हूँ, और आए हैं मेरे पास मैसेज, हलीम के साथ घी के क्या कैसे पराठे, पराठे भी जबरदस्त लगते हैं, हलीम के साथ घी के पराठे, अच्छा ये तो ट्राई करने वाली चीज़ है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंगो राइस एंड दाल, आए मैंगो राइस इन दाल, ए, ए मैं आता हूँ इस तरफ, आई बड़ा कमाल कॉम्बिनेशन लगा, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम।
2: कैसे भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप कैसे?
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई।
0: जी भाई बताइए।
2: भाई मेरा नाम जिशान है।
0: जी जिशान भाई,
2: आजमगढ़ यूपी से।
0: अरे आजमगढ़ वाले हूँ, अच्छी बात है, चलो नॉर्थ वाले आते दिल खुश हो जाता है। जी भाई जिशान भाई, क्या कहना चाहते हो, कौन सा कॉम्बिनेशन बताओगे यार? वैसे तो हम हमारा और आपका सेम ही है ऑलमोस्ट, फिर भी।
2: भाई मैं अपने नाना की बात बताना चाहता हूँ।
0: जी भाई,
2: वो खाते थे साथ में केला खाने के साथ।
0: केले खाने के साथ केला खाते थे?
2: मिक्स करके।
0: अरे भाई
2: बहुत ज्यादा शौकीन थे।
0: अरे पर ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है, मतलब खाना कुछ भी हो रिगार्डलेस ऑफ इट है।
2: हाँ वो दाल चावल हो कुछ भी हो, अगर केला है तो साथ में वो छील के प्लेट में डाल के मिक्स करके वो निवाले के साथ खा लेते थे।
0: अरे भाई, अरे अरे अरे तो ये खानदान में किसी और ने अपनाया नहीं, ट्राई भी नहीं किया?
2: नहीं, नहीं कोई नहीं, वो मीठे को बहुत ज्यादा शौकीन थे, एक एक लोटा चाय पीते थे सुबह मेरे नाना मालूम, उसमें फिर रात की जो रोटी नहीं रहती थी
0: वो
2: टुकड़ा टुकड़ा करके प्याले में डाल के ऊपर से चाय डाल के पूरा खाते थे, नाश्ता करके फिर जाते थे खेतों में काम करने।
0: क्या बात है भाई, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त।
2: अभी तो नाना है नहीं, ले वो आप बात छेड़े तो टॉपिक छेड़े तो नाना की याद आ गई, मौला शेयर कर लो।
0: वेरी नाइस, तो आपने कुछ अपनाया मतलब कुछ ऐसा कुछ आपने भी तो ट्राई किया होगा? नहीं कुछ नहीं?
2: नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं खा पाता है
0: भाई, आम रोटी ट्राई करी
2: खाने के साथ कोई कम्युनिकेशन खा ही नहीं पाता, मेरे को खट्टा नहीं पसंद है खाने के साथ, खाना का टेस्ट चाहिए
0: यार। भाई ये आजमगढ़ से निकलने के बाद अब बदल नहीं गए, मुझे याद है बचपन में तो आप ऐसे नहीं थे पर निशान भाई कोई आम रोटी ट्राई नहीं किया मतलब? ये तो
2: नाना आम रोटी मिठाई है वो भी प्लेट में डाल के खा लेते थे, बहुत कुछ हर चीज थे, खाना भी उनको चाहिए कोई चीज दे दो खाना चाहिए, खाने के साथ तो मीठा दे दो कुछ, साथ में सब खा जाते थे, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी कभी सुगर में कुछ भी नहीं हुई भाई।
0: अरे माशाल्लाह यार, ये देखो ये जो है ना सिखा गए लोग, आप फॉलो कीजिए, नखरे देखिए आपके, खट्टा नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, खाओ भाई लेकिन रिशांत भाई मुझे अच्छा लगा कि आपको नाना याद आए, और अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई रिशांत भाई कॉल करने के लिए,
2: थैंक यू भाई,
0: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और इनके बाद जो है कुछ मैसेज जल्दी से पढ़ दूं, बिलाल भाई वालेकुम अस्सलाम, शेब भाई ने मैसेज किया वॉइस नोट, अभी शेब भाई आपको वॉइस नोट सुनता हूं। मैसेज है कबीर भाई, मैं भी खाता हूँ हलीम विद पुलाव, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। क्या हलीम विद पुलाव चलता है पाकिस्तान में? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। एक वॉइस नोट और है आमिर भाई का भी सुनता हूँ, मैं खाया हूँ हलीम बिरयानी, वेरी नाइस, अच्छा रिव्यू दीजिएगा कमाल भाई। एक मैसेज है शाहिद भाई का, वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग, देन मैसेज है आम रोटी और दूध केला रोटी शुगर, एक सेकंड सोच रहे थे मुझे इमेजिन करने दो, आम रोटी फाइन ये चलेगा, इसके बाद दूध और केला, हाँ ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये दिस इज़ नॉट बैड, वेरी गुड, ये तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। बिलाल भाई वालेकुम अस्सलाम, देन आए रोटी, एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम, रोटी आम लाल मिर्च डाल के खाते हैं हम, अम्मी बना के देती थी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन बताया उमर शहजाद साहब, ये जो लाल मिर्ची का कॉम्बिनेशन है ना आम के साथ, आहा, आहा, आहा, एक जरा मैं खोल ले लूँ बस आम खा के। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
0: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी जनाब मैं एकदम भला चंगा सी, बताओ जी क्या हाल है?
3: चंगा जी चंगा, चंगा
0: बताओ क्या कहना चाह रहे हो?
3: कॉम्बिनेशन खाने के तो बहुत है, ऐसे ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि किसको कंपैरिशन किया जाए,
0: नहीं कंपैरिशन करने नहीं, ये बताओ आपने क्या ट्राई किया जो आप चाहते हैं दुनिया को ट्राई करना चाहिए?
3: हमेशा ऑलवेजली हमारे यहाँ बॉम्बे में ना जब बारिश होती है ना घर में खुश होती है तो सिर्फ खिचड़ी और अचार और पापड़ और ये, उसके साथ मछली फ्राई होगी साथ।
0: ये तो नॉर्मल है, ये तो कोई मतलब ऐसा, ये मुंबई वाले ना बात बात में फ्लैग जरूर करते हैं, मुंबई वाले हमारे ना वाई होता वाई, सुनो ऐसा है बहुत नॉर्मल है ये, ठीक है और कुछ बताओ है?
3: और दूसरा चाहिए बारिश में और भी जो है ना जो ये करते हैं कॉम्बिनेशन जिधर लाने के बाद तो जो जवारी की रोटी होती है ना, जवारी की उसके साथ ये सिलबट्टे पे पीसी हुई पुदीने कोतमीर और इसकी हरी मिर्च की चटनी बात,
0: वाह वाह वाह,
3: ये पेट पेट भर के बंदा खा लेता है हाँ। और एकदम के पास चाय और बारिश रिमझिम हो रही है हाँ। और चाय
0: सीन बना दिया डायरेक्टर साहब आपने, सीन बना दिया। मैं कहीं सुभाष घाई से बात तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं पर हाँ सुभाष घाई डायरेक्टर है ना आपके यहाँ। अभी तो बारिश सीजन, आप बारिश सीजन में इंडिया क्यों नहीं जाते, मतलब मुंबई तो जाना चाहिए फिर आपको।
3: अरे बिल्कुल, बारिश मुंबई में 8-8 दिन 10-10 दिन लगती है ना, रेलवे ट्रैक ब्लॉक।
0: तो आप क्यों नहीं छुट्टी पे क्यों नहीं जाते मुंबई फिर?
3: अरे ये मेरे वेकेशन ही नहीं बन पाता है छुट्टी अपना, उसमें बारिश जब सफा हो जाती है, मैदान सफा साफ हो जाता है, तो उसके बाद मेरा वेकेशन
0: का। अरे यार शहजादा भाई कुछ करो यार, जुगाड़ लगाओ।
3: मुंबई की बारिश मिस करने में मैं पता नहीं क्यों मेरे साथ
0: होता है। वेरी सैड, वेरी सैड। नहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कॉम्बिनेशन हो सकता है बारिश में लोग ट्राई करें, मुंबई वालों को याद आ जाए कुछ ना कुछ। आई रियली होप
3: इंशाल्लाह मेरा भी नंबर आएगा,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी दुआ है सलीम भाई को बारिश में मुंबई मिले। थैंक यू सो मच मेरे भाई कॉल करने के लिए शहजादा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। तो शहजादा भाई के बाद उस्मान भाई का मैसेज है, भाई ज़्यादा हो गया, उनको बीच में आलू ऐड कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कराची में भी हलीम बिरयानी मिलती है? मिलती है उस्मान भाई, ये मुझे नहीं पता था, आज मेरे को आपने आगे खोल दी। ये कराची वालों को आज मैं ढूंढता हूँ, हमारे ऑफिस में बहुत सारे कराची वाले, सबसे बात की जाएगी आज। एक मैसेज है, घी रोटी एंड पुदीने की चटनी, ओफ ओफ। घी शक्कर रोटी भिंडी दही रोटी, ये तो हमारी तरफ वाले लग रहे हैं, कौन है ये? हुसैन भाई थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, देसी घी को थोड़ा वार्म करके गुड़ मिक्स करके रोटी के साथ, आज मुझे लग रहा है नाश्ता हैवी कराएंगे। मोहम्मद भाई क्या कर रहे हो ये? एक मैसेज है, सलाम, माई मॉन्ग मेक्स मैंगो करी, जैसे पकौड़ा कड़ी होती है वैसे, शी मेक आम की कड़ी विद मिर्ची का तड़का, इट टेस्ट्स सो यमी। मैं सुन के मेरी आंखों में ऐसे दिल से आ गए, ये क्या बता दिया आपने, ये तो इस तरह जी ने मैसेज किया है, माशाल्लाह ये तो ट्राई करने वाली चीज़ है, वेरी नाइस। रेसिपी हो तो भेजिएगा। एक मैसेज है, बनाना रोटी और शुगर हॉलिक्स रोटी, अच्छा ओके, ओहो बनाना रोटी इकबाल भाई मैंने ट्राई नहीं करी, ऑल्दो मैंने सुना है। एक मैसेज आया है, प्याज विद विनेगर एंड रोटी, अच्छा जी प्याज विद विनेगर रोटी, हाँ ये तो ट्राई किया होगा। एक मैसेज, नमकीन राइस के ऊपर चीनी डाल के खाता हूँ, नमकीन राइस के ऊपर चीनी डाल के खाता हूँ। नमकीन राइस से आपको क्या मतलब है? मतलब सलीम भाई मेरे को थोड़ा सा इलेबोरेट करो, तहरी भी डाल के तो नहीं खा रहे हो? सिद्धरा बहन लिखती है, कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी को समझ नहीं आता, दाल चावल और आम का मुरब्बा। क्या दाल चावल और आम का मुरब्बा और गोश्त के सालन या कोरमे के साथ मुरब्बा? बहन मुझे याद है आपने मुझे बताया था, मुझे इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड लेट मी, मैं आँखें बंद करके ज़रा सोचने दो। दाल चावल के साथ आम का मुरब्बा, ये सिर्फ गुजरात की तरफ ही, और जगह भी खाया जा रहा है, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत लीथल कॉम्बिनेशन नहीं है? एक मैसेज है, सलाम, भिंडी साग चावल, ये तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, ये तो बड़ा ही आम है। एक और मैसेज है, गाड़ी लगा दी है शमाल रोड पे साइड पे, आके ले जाएं बट कुछ खाने को ले गए यहीं, जुलुम जुलुम। क्या शदीद भूख लग गई, देखो अच्छी बात है ना, शो सुन के कुछ तो असर होना चाहिए। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, पराठे के साथ चीनी और चाट मसाला बहुत ही मज़े का होता है, ज़रूर ट्राई करना। माजिद भाई आप जो बता रहे हैं ये सुन के मुझे अच्छा सा लग रहा है, क्या बोला पराठे के साथ, लिखो भाई लिखो, पराठे के साथ चीनी चाट मसाला, ये ट्राई नहीं किया यार। एक मैसेज है, बनाना पीनट बटर रोटी रोल विथ हनी, बनाना पीनट बटर रोल, ये बहुत हैवी नहीं है? बनाना फिर पीनट बटर रोटी रोल विद हनी, पर लग रहा है कि बहुत सॉलिड ब्रेकफास्ट है ये, ऐसा ही है क्या इसरार भाई? एक मैसेज है, कबीर भाई, माय मॉम ऑलवेज, पहले तो वालेकुम अस्सलाम, ये जो मैसेज किया है मुझे के एम खान साहब ने, लिखते हैं, कबीर भाई माय मॉम ऑलवेज मॉर्निंग शी विल गिव अस प्योर घी विद शुगर विद परोठा एंड बेंगलोर नल्ली बिरयानी सम टाइम इन द मॉर्निंग। ये नल्ली बिरयानी मैंने दिल्ली में बहुत रिसेंटली ट्राई करी थी, आई वो शॉक्ड कि यार ये बड़ा वर्किंग चीज़ है ये। एक ज़रा कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम,
4: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: नदीम भाई कैसी है मेरा भाई?
4: अल्हम्दुलिल्लाह कबीर भाई कैसे।
0: ये नदीम भाई क्या ये जो आप सुन रहे हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन चल रहे हैं?
4: हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा हूँ नहीं।
0: फिर भी कोई ये कुछ देसी चीज ट्राई करिए, बिल्कुल ये आम रोटी तो ट्राई की होगी नहीं?
4: हाँ हाँ आम रोटी तो ट्राई की है। मैं है ना बहुत मतलब पहले के टाइम पे पार्ले जी पानी के साथ खा रहा था।
0: अरे वो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो तो बहुत बढ़िया चीज है,
4: जबरदस्त टेस्ट आता है पार्ले जी का पानी के
0: साथ। अरे क्या बात है, कहाँ ले गए आप, बहुत सालों पीछे ले गए आप, समय का पहिया ही घुमा दिया आपने। पर आपने और कुछ नहीं किया?
4: हाँ मेरे अब्बा है ना, तो हम लोग कभी दाल बनती थी ना दाल, तो दाल को नेक्स्ट डे है ना वो रोटी के साथ ना मसाला वसाला डाल के पूरा चिकोली बोलते हैं उसको, चिकोली बना ले।
0: चिकोली? अच्छा चिकोली। हाँ, ओके, ये मैंने पहली मरतबा सुना।
4: वो दाल दाल के साथ विनेगर विनेगर डाल के रोटी वोटी चूर के उसको मिक्स करके। मेरे अब्बा एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी करते थे, जैसे अभी कल का जैसे कुछ सालन है चावल बना दिए, वो सालन उसमें डाल के उसको मिक्स करके क्या टेस्ट आता है
0: भाई। मैंने भाई अभी चिकोली टाइप किया इंटरनेट पे, क्या बढ़िया फोटो लग रही है यार चिकोली। हाँ, तो बहुत बढ़िया चीज़ है,
4: मतलब एकदम टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है चिकोली का।
0: तो ये बेसिकली इसमें रोटी चूर दिए दाल में, ऐसा सीन है क्या?
4: हाँ हाँ, और ऊपर से वो बघार वगार करके ना उसमें फिर वो विनेगर थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए डाल के ऐसे पूरा उसको है ना नरम कर देते थे रोटी को, उसमें पूरा मिला के पकाते थे अच्छे से।
0: अरे यार ये
4: बहुत
0: तो
4: जबरदस्त बनती है,
0: ये मुझे लग रहा है वीकेंड पर ट्राई करने वाली चीज लग रही है मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह
4: बहुत अच्छी है। मेरे को आज तक मैं ज्यादातर खाया हो तो मेरे अब्बा के हाथ की खाया हो, मेरे को और कहीं पर अच्छी नहीं लगी खाने में, लेकिन बहुत अच्छी बनाते थे।
0: बेहतरीन बेहतरीन। पर कुछ नया ट्राई करने का मूड है?
4: नया कतर आके ट्राई किया था एक जमाने में जब लाइसेंस नहीं था भाई, अपन अचार और खबूज भी खाए।
0: पर एक बात बताओ, दिल्ली जाके कभी हलीम बिरयानी खाने का मन हो तो बताइएगा, मैं तो आपको जगह बताऊंगा, खाइए आप हलीम बिरयानी।
4: जरूर जब दिल्ली आएंगे इंशाल्लाह तो वो भी ट्राई करेंगे।
0: चूंकि आपने इससे पहले सुना था,
4: ये टाइम मुंबई गया था तो बन्नो पुलाव ट्राई किया था।
0: क्या ट्राई किया था?
4: बन्नो पुलाव।
0: ये बन्नो पुलाव क्या होता है भाई?
4: ये नया आइटम है मुंबई में।
0: हाँ
4: मुंबई वालों को शायद बताओ, जो नली होती है ना नली,
0: हाँ
4: वो पुलाव बनाते उसके ऊपर इतनी बड़ी नली ला के रख देते हैं,
0: उसे बन्नू पुलाव कहते हैं।
4: हाँ बन्नू पुलाव
0: यार, मान जाओ मुंबई वाला। क्या हो रहा है? हाँ फिर
4: अरे हर चीज में क्या क्या मिला के बना रहे, पता नहीं है कौन से फ्यूजन आ गए उधर पे।
0: हाँ हाँ ठीक है।
4: मेरे को तो इतना मतलब वो एक था थ्रेड चिकन
0: तो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया थ्रेड चिकन।
4: हाँ तो मैंने भी खाया थ्रेड चिकन मेरे को अच्छा लगा, लेकिन बन्नो पुलाव बहुत हेवी था यार, वो नली नली ला के रख दिया था पुलाव।
0: ये बन्नो पुलाव में आचस की फोटो भी दिख गई मुझे। हाँ ओके ओके। हाँ। बड़ा ही हेवी लग रहा है भाई,
4: बहुत हेवी था पुलाव।
0: अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई, मुंबई वाले भी जागेंगे, बहुत सारे मैसेज आने वाले। थैंक यू सो मच नदीम भाई, बहुत प्यार भाई को। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। तो नदीम भाई ने बहुत कुछ बताया है। नदीम भाई का एक और मैसेज है मेरे पास, क्या लिखा है, अमूल सॉल्टी बटर शुगर रोटी आज ही ट्राई किया जाएगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, सलवा रोड पे साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक टू स्लो, दुआओं में याद रखिए, आमीन, जजाकल्ला खैर इंशाल्लाह। आपका भाई निज़ामुद्दीन। सारा आपने इंशाल्लाह जजाकल्ला सब कुछ एक साथ लिख दिया, पर अल्लाह खैर करे अगर कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है। निज़ाम भाई प्लीज़ ड्राइव स्लो, सलवा रोड बता रहे हैं, इन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: एकदम भला चंगा कमाल भाई, आप सुनाएं।
5: लोग पेट कम करने के चक्कर में लगे या पेट बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए?
0: मैंने हार मान ली, मैंने 3 दिन डाइटिंग करी, मैं मूड नहीं हो रहा। फिर पता है मेरे सामने एक वीडियो आया, इसमें कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, सब दिमाग से होता है। वो हालांकि कुछ भी बोला था पर मैंने मान लिया। तो ऐसा ही
5: है,
0: बिल्कुल सही। तो मैं अपने दिमाग से मैं 70 किलो का हूँ और वैसे मैं 82 का हो गया हूँ, तो 12 किलो का फर्क है दिल और दिमाग। अब बताइए कमाल भाई, आपका क्या सीन है, क्या कुछ देसी ट्राई किया है कॉम्बिनेशन जो लोगों को बताना चाहिए?
5: हाँ हलीम बिरयानी तो मैं खाया हूँ।
0: खाइए आपने?
5: और आम के चटका, और आम जो है मीठे आम के साथ में जो है चटनी के।
0: पर एक बात बताइए, आप क्योंकि मुंबई से हैं तो आपने हलीम बिरयानी पहला इंट्रोडक्शन आपका बड़ा शॉकिंग हुआ होगा ना, क्योंकि लोग मुंबई वालों को पता नहीं है हलीम बिरयानी दिल्ली में कैसी होती है।
5: हाँ बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन जैसा मालूम तो ड्राइवर आदमी है ना, हमने तो ऐसी चीज भी हर जगह जाके ट्राई किया है जो एक बार मैं गुजरात गया था भाई, वहाँ की कहानी बता रहा हूँ।
0: हाँ।
5: लोग दाल से रोटी खा रहे हैं और वहाँ की रोटी जवारी की रोटी थी,
0: जवारी रोटी हाँ।
5: पसंद ही नहीं आ रही।
0: हाँ, हाँ।
5: बोला क्या करने का, उससे घी डाले थे, सब्जी वब्जी भी थी लेकिन नहीं अच्छी लग रही थी। लेकिन देखा एक आदमी वहाँ बैठ के जो है ना,
0: हाँ।
5: रोटी को चूर करके उसके ऊपर दाल डाल के उसके बाद घी डाल के जो खाया है,
0: हाँ।
5: तो वैसा मैंने भी ट्राई किया, तो उस टाइम टेस्ट मिला।
0: हाँ,
5: तो हर जगह का टेस्ट अलग अलग है। अब आप खाओगे आपको नहीं मिलेगा जवारी की रोटी के साथ में, लेकिन जब आप उस तरीके से खाओगे तो आपको मिलेगा।
0: वो तरीका ना उस शहर में जाके ही खाने में मजा आता है, दिक्कत ये है।
5: ओके। मुंबई में मिलती है हलीम बिरयानी।
0: हाँ, अच्छा मुंबई मिलती है हलीम बिरयानी?
5: हाँ मिलती है भाई, मैं मुंबई में ही खाया हूँ।
0: अच्छा आई, अच्छा मुंबई में कहाँ, ये मुझे जगह बताइए मुंबई वाले।
5: बहुत स्टेशन के पास पहले थी, अभी तो नहीं बता सकता, अभी तो 13-14 साल हो गया।
0: क्योंकि मैंने जितने मुंबई वाले से बात करी हलीम बिरयानी, कह रहे ये ऐसे कौन खाता है, मैं ऐसा ऐसा क्या मतलब हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके।
5: दूसरी बात है कि हम लोग इधर ज्यादातर पाव, अभी कैसा है पाया बन गया पाव के साथ, उसके बाद हलीम बन गई पाव के साथ।
0: ये आप लोग जो पाव के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं मुंबई वालों, ये क्या है यार, कभी वो
5: हलीम और पाया जो है ना, आप कड़क पाव से खाइए, भ्रून पाव से, जो टेस्ट मिलता है भाई वो आपको रोटी और नान में नहीं मिलेगा।
0: अच्छा ये भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल में भ्रून पाव नहीं मिलता है ना, यहाँ मिलता है क्या?
5: नहीं भ्रून पाव नहीं मिलता यहाँ पे।
0: हाँ ओके।
5: लेकिन यहाँ पे जो है मुंबई वाला पाव मिलता है,
0: वो मिलता है। हाँ ठीक है, ये मैं ट्राई करूंगा, नोट कर रहा हूँ आज। मैं लिटरली नोट करने बैठा हूँ क्या क्या ट्राई किया जा सकता है। पर आज आप कहानी जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आज की बहुत बड़ी कहानी है, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज की।
5: मैं आपके साथ हूँ
0: भाई। डन डन मेरा भाई, बहुत प्यार कमाल भाई, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अभी एक दो तीन और मैसेज में जल्दी से पढ़ देता हूँ। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं पापड़ को पानी में डिप करके खाता हूँ। पापड़ को पानी में डुबाया जा रहा है श्रेय भाई, ये कॉम्बिनेशन मैंने नहीं, मुझे बिस्किट का पता था। एक मैसेज है, बॉइल्ड राइस लाल लोबिया विद मिल्क मिक्सचर, कश्मीरी डिश। एक सेकेंड, वेट अ मिनट, ये मोहसिन अली भाई ने मैसेज किया, लेकिन बॉइल्ड राइस मैंने कहाँ सुना है, बॉइल्ड राइस लाल लोबिया विद मिल्क मिक्सचर, ये मैंने कहाँ तो सुना है, इसको कुछ कहते भी हैं क्या? क्योंकि मुझे ये मुझे पता नहीं था ये कश्मीरी डिश है। ऑल आई नो इज कि कुछ तो है कि नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। एक मैसेज है, बन्नो पाकिस्तान की सिटी है। पाकिस्तान के बात चलते हैं बन्नो पुलाव। ओ वही मैं कहूँ, ये बन्नो पुलाव कहाँ से, बन्नो नाम कहाँ से आया, ये जो आसिम भाई आपने किया, थैंक यू सो मच। हैदराबाद में क्या चल रहा है भाई, वी कॉल इट चकोलियाँ। अच्छा आपके यहाँ भी है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, बन्नो पुलाव पाकिस्तान की मेड है। ओके ये नहीं पता था मुझे, थैंक यू सो मच। मैं तो भाई मैं दिल्ली का हूँ, मुझे बन्नो वन्नो सिर्फ हमारी दो गली छोड़ के रहती हो तो पता नहीं। ये नसीम बंगज भाई ने मैसेज किया था। एक और मैसेज आया, मीठे और नमकीन चावल मिक्स करके कभी खाए हैं? मीठे और नमकीन, हाँ खाए ना खाए ना। जर्दा और बिरयानी कह रहे हैं क्या, मिक्स करके खाने की बात कर रहे हैं हम? क्योंकि जर्दा और बिरयानी मिक्स करके मेहर भाई खाया है मैंने, बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ भी कोई देसी कॉम्बिनेशन होते होंगे? देखो आज की जनरेशन को नहीं पता है, अगर आप आज बोलेंगे जो यहाँ पे बचपन से रह रहा है कि आम को रोटी के साथ खाया जाता है, तो बोले इन वॉट आर यू सेइंग। तो मैसेज आया सिद्धरा वंगे लिखने, चिकोली बस्सी रोटी के और मजे। ये चिकोली बस्सी रोटी क्या है, ये आप लोग ना मेरी जनरल नॉलेज को इस कदर बढ़ा रहे हैं, मैं एक्सपेरिमेंट करते करते साइंटिस्ट ना बन जाऊं, साइंटिस्ट ना बन जा। एक मैसेज आया, हाय कबीर, हम तो बचपन में खाने में चाय क्या, हम तो बचपन में खाने में चाय डालकर खाते थे। पठान भाई मजाक कर रहे हो ना कह दो प्लीज, चाय कैसे, इलेबोरेट इलेबोरेट। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, टॉपिक क्या है? अरे क्या भाई साहब, नल्ली बिरयानी की बात कर रहे हैं कतर में, प्लीज आस्क हिम। तबस्सुम बहन, वालेकुम अस्सलाम, दूसरी बात नहीं मिलती दिल तोड़ के बुरा तो लग रहा है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं। एक दिन अच्छा बासी, मैं कहूँ बस्सी रोटी क्या है सॉरी सॉरी सिद्धरा बहन, सॉरी आई नो आपका मन कर रहा होगा कि मैं इसको झाड़ू लेके भगाऊं बासी रोटी तो बहुत बढ़िया है, उसके साथ तो दुनिया जहां के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम,
0: कैसे हैं मेरे भाई?
6: और
0: बस भाई
6: दुआ में
0: जी भाई, क्या कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन नहीं, वो क्या है बात चल रही है कि कुछ देसी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं ना खानों के जो पता नहीं है लोगों को, तो अपने अपने जगह के लोग कॉम्बिनेशन बता रहे हैं या घरों में कभी कुछ अलग से खाया जाता हो, तो आपको कुछ ऐसा पता है तो बताइए
6: क्या है। वो पहले तो ज्वारी की रोटी है, कौन सा खाना है, बाजरे की रोटी है,
0: ये तो कॉम्बिनेशन है ना, ये तो नॉर्मल है। देखो बाजरे की रोटी सबने खाई है, ज्वारी की रोटी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है ऐसे आम और रोटी खा रहे हैं लोग अभी मुरब्बा
6: खोल रहे हैं। अपना मामू जो मेरा मामू है ना, हाँ, मेरा मामू झूठ नहीं बोलता, मैं मेरा मामू क्या करता था मालूम है, खाना सफेद खाने में जो खोआ रहता है ना, मीठा वाला खोआ मिला के खाता था,
0: खोया मिला के खा रहे खाने में,
6: खोआ मिला के खाता था, सलाखानी खोआ मिला के खाता था।
0: ये क्या बात हुई। अच्छा,
6: उसका नाम ही चरक दिए, उसका नाम ही चरक दिए खोआ भाई, इधर आओ,
0: खोआ डाल के खाया जा रहा है भाई, ये क्या चक्कर है,
6: खोआ डाल के खाता था वो, क्या कभी कभी चाय में है ना वो मुरी आती, मुरी डाल के खाता था।
0: साइंटिस्ट थे क्या वो, मतलब
6: ड्राइवर है,
0: अरे भाई लेकिन जी टैलेंट तो साइंटिस्ट वाला ही है भाई, ये तो मैं मुरा
6: नहीं
0: अच्छा,
6: उनकी आदत से जो भी खाएंगे साथ में है ना मीठा रहना जरूरी है, खाना खाओ या रोटी खाओ या कुछ भी खाओ तो मीठा रहना जरूरी है, और रोटी के साथ में घी और शक्कर और शहद ये मिला के उसको रोटी को लगा के अच्छे से राउंड रोल करके खा लेता।
0: ये मुझे लगता है कि जितने मीठे के शौकीन हैं उनके एक्सपेरिमेंट का मयार जो है वो बहुत ऊपर है, समझ में आ रहा है।
6: इतना खाता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसकी उम्र है ना तकरीबन अभी तकरीबन 62 है उसकी उम्र,
0: 62 है, अच्छा अल्लाह ताला ने सेहत
6: तंदुरुस्ती दे, 62 है, शुगर नहीं उसको अल्हम्दुलिल्लाह, मीठा अभी भी आज भी वही रोटी है उसका।
0: क्या बात है, कुछ लोग भाई कुछ लोग का सीन बड़ा बढ़िया, उन्हें कुछ होता नहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, पर बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ,
6: हर चीज का शौकीन है, मैं ही बता रहा था आपको सलवार रोड पे है ना जो इधर हमारे दाना दाना हाइपर मार्केट है ना उधर, अच्छा। मेन रोड पे एक साथ पूरा 7 गाड़ी या 8 गाड़ी पूरा खत्म हो गया गाड़ी,
0: अरे अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ़ अल्लाह माफ़,
6: कोई सामने का चले गया, कोई साइड में मार दिया किसी का,
0: नहीं नहीं भाई
6: जाम हो गया एकदम से, अल्लाह खैर करना, मैं तो बोलता हूँ
0: मैं
6: भी ड्राइवर हूँ,
0: नहीं नहीं
6: गाड़ी के ऊपर घमंड आ गई, गाड़ी के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, अभी बहुत आराम आराम से चलाना चाहिए, आजकल का ड्राइविंग इतना ये हो गया, आम हो गया है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल,
6: लेने के लिए फीचे लेने के लिए आया तो हो गया, मैं ड्राइवर बन गया,
0: नहीं बस ख्याल रखिए, ख्याल रखिए, आप भी ख्याल रखिए, जितने लोग सुन रहे ड्राइव सेफली, पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई अपडेट देने के लिए,
6: और
0: बस भाई बस भाई अभी कहानी की तरफ बढ़ेंगे कुछ देर में,
6: चलाओ खाने के चर्चे चलाओ इंशाल्लाह,
0: चल रहे हैं भाई,
6: बाकी है भाई 50 मिनट है, थोड़ा बात कर लिया करो भाई हमसे भी थोड़ा,
0: क्या अच्छा क्या बात करोगे,
6: क्या
0: देखो क्या है कि पब्लिक पीछे से भी कॉल कर रही है, समझ रहे हैं आप, तो
6: कबीर भाई इंशाल्लाह, चलो कोई बात नहीं कबीर भाई, इंशाल्लाह दुआ में ख्याल रखते,
0: बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम। और इनके बाद जो है माजिद भाई ने मैसेज किया है, माजिद भाई कह रहे हैं ये बन्नो पुलाव पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट बन्नो से है, ये पाकिस्तान में फेमस डिश है, आपको बन्नो पुलाव इधर कतर में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, ये ट्राई करने वाली चीज़ मुझे लग रही है, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, क्या बताया इन्होंने, एक सेकेंड मेरा गला भी गया, हाँ ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, बन पाओ विद अमूल बटर, ये मुझे हर मुंबई वाले ने बताया, हर एक मुंबई वाले ने, बट नेवर रियली ट्राइड। नसीम साहब वालेकुम अस्सलाम, आए ना किधर किधर आए ना, एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, सुबह सुबह क्या याद दिला दिया आपने भाई, भेजा रोटी रोटी क्या है, कौन सी रोटी, बेसन रोटी, चाय रोटी, आम रोटी भाई, दाल चावल और सीमा कीमा, सीमा कीमा, घर हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ये तो एंथुजियास्टिक लोग निकल के सामने आ रहे हैं भाई, और चिली मैंगो एंड राइस, बनाना एंड रोटी, मैंने बनाना रोटी कभी ट्राई नहीं किया, जो मुझे ट्राई करना है मैं ज़रूर करूँगा, चिली मैंगो मैंने ट्राई किया, चिली मैंगो राइस के साथ ये थोड़ा अच्छा लगेगा, सोचने में आ रहा है अच्छा लगेगा। अच्छा एक मैसेज है गुलरेज भाई का, कह रहे हैं कबीर भाई सलाम अलैकुम, क्या टॉपिक चला है सुबह, आम के साथ रोटी तो बहुत फेमस है, इनफैक्ट मेरी अम्मी तो दाल भरी रोटी और दशहरी या चौसा आम तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट रोज ही बनता था व्हेन आई वाज इन इंडिया. कतर में भी रोटी से आम खाता हूँ तो मेरी बेटी बोलती क्या चल रहा है अबू अबू व्हाट इज दिस. हलीम बिरयानी तो हमारे यहाँ फेमस है. इनफैक्ट मेरे घर पे जब फैमिली गेट टुगेदर होते हैं तो हलीम बिरयानी इज़ वन ऑफ द डिश. और बाजरे की रोटी एंड गुड़ विद देसी घी. गोलरेज भाई जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बात कही आपने. एक कॉल ले लेते हैं जल्दी से. अस्सलाम वालेकुम.
7: वालेकुम सलाम
0: जी मेरे भाई, आपका नाम?
7: सुहेब बात कर रहा हूँ मैं, वखरा बुकेर से.
0: जी

0: भाईजान बताइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, खाने की बात करके तो आपने मुंबई की याद दिला दी। मुंबई में हमारा पहला ब्रेकफास्ट जो बहुत मतलब स्कूल कॉलेज के जमाने से होता था, तो बुरुन पाव के साथ में मस्का और चाय।
0: ये मैं बताऊं, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, मैं इतना मुंबई चला गया ना, वहां जाके बुरुन पाव किसे याद नहीं लाया। यहां के सारे मुंबई वाले कहते हैं अरे बुरुन पाव खाओ तुम्हें पता जाएगा।
1: हां बुरुन पाव मिलता नहीं है लेकिन वो मतलब दरअसल ये है कि वो हमारे नसों में मतलब खा खा के हम लोग बड़े हो गए स्कूल के दौरान के अंदर में। तो मतलब
0: ट्राई करना पड़ा,
1: अम्मी क्या है तो बुरुन पाव, मतलब उसके आगे आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं होता था, बस ये है ये खाना है और निकलना है घर से बाहर निकलो।
0: हाँ अच्छा, क्योंकि ये मैंने सुना बुरुन पाव हर किसी के साथ चल जाता है, कुछ भी लगा खा लो उसके साथ।
1: हाँ, और बुरुन पाव के साथ में अगर दूसरा एक डेडली कॉम्बिनेशन है तो एक दिन पुराना दाल गोश आप बुरुन पाव के साथ खा के देखो।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
1: बस दाल गोश एक दिन पुराना होना चाहिए, दूसरे दिन सवेरे नाश्ते में गर्म कर लो और बुरुन पाव के साथ खा के देख लो।
0: क्या वाह, ये दाल गोश के साथ है कुछ प्रॉब्लम, ये एक दिन बाद क्यों अच्छा लगता है
1: यार? पता नहीं, वो गोश अगर आप मतलब जो उतर जाता है दाल के साथ में तो वो माशाल्लाह कुछ अलग ही लग जाता है।
0: हाँ नहीं, मैंने बुरुन पाव अभी तक ट्राई नहीं किया, मैं पिछले एक साल डेढ़ साल से सुन रहा हूँ मैं, पर इस बार मैं ये पक्का ट्राई करूंगा क्योंकि अभी इतनी हाइप बना दिया अब लोगों ने ना कि बुरुन पाव ट्राई करना ही पड़ेगा। पर क्या आपने ट्राई किया?
1: तो मिल जाता है
0: मस्का पाव, तो मिलता है मस्का पाव,
1: आई हैव हर्ड मस्का पाव तो बहुत आसानी से मिल जाता है, मतलब वो निबंध मस्के का जो ही है, लेकिन बुरुन पाव यहाँ पे नहीं मिलता।
0: और आपने हलीम बिरयानी कॉम्बिनेशन ट्राई किया? नहीं
1: नहीं भाईजान, हलीम बिरयानी ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है मेरे लिए।
0: नहीं मतलब दोनों को साथ में नहीं ट्राई किया?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं,
0: ये आपको ट्राई करना चाहिए, आपने इसकी हाइप बनाई, मैं हलीम बिरयानी की बनाऊंगा।
1: दूसरी एक जो मुंबई की डिश है जो बहुत फेमस थी हम लोग को तब लगती थी कि एक डेली कॉम्बिनेशन था शेजवान तंदूरी का।
0: शेजवान तंदूरी है? अच्छा क्या है ये?
1: तो चिकन तंदूरी जो स्पाइसी अपनी जो बनती है उसके बाद में उसको शेजवान सॉस के अंदर में सॉटे करके सर्व किया जाता था। और वो कभी कभी कप्सा राइस के साथ में सर्व किया जाता था। ओए होए होए, जो बढ़िया मजा आता था तभी।
0: ये तो यहाँ पे मैंने खाया है, यहाँ पे भी है शायद ही, राइट?
1: हाँ यहाँ पे शायद से मतार कदीम में भाईजान्स रेस्टोरेंट के अंदर में वो सर्व
0: करते हैं।
1: ये प्रैक्टिकली हमने तब जब कॉलेज टाइम में हम जब मुंबई में रहते थे तब हमने वहाँ पे खाए हुए डिशेज है।
0: अच्छा तो ये वहां से आई है, वही मैं सोचो, मैंने कहा ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने यहीं आके ट्राई किया था ये। हाँ
1: तो
0: ओके,
1: कुछ कुछ जो चाइनीज डिशेस है वो तो अब मुंबई के सिर्फ मुंबई में, जैसे आप ट्रिपल शेजवान राइस है, ये मुंबई के बाहर निकलो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा।
0: अच्छा ओके, क्योंकि हमारे तो थोड़ा अलग है, चाउमीन के समोसे मिलते हैं दिल्ली में।
1: हाँ चाउमीन ये पड़ना मुंबई के अंदर में नहीं है, तो फिर मुंबई में आपको दूसरी दो तरह की ये मिल जाएगी, एक चॉप सुई अमेरिकन चॉप सुई मिल जाएगी और एक चाइनीज चॉप सुई मिल जाएगी। अमेरिकन चॉप सुई थोड़ी मीठी वाली, चाइनीज चॉप सुई थोड़ी तीखी वाली मिल जाएगी। तो मुंबई का चाइनीज भी थोड़ा अलग ही बनाया हुआ है।
0: ये अभी मुंबई मुझे अलग तरीके से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इतना सब कुछ पता लग गया है मुझे। नहीं डेफिनेटली, पर आप
1: मुंबई में तो एक बहुत ही अच्छा नाश्ता आपको मिलेगा गुलशन के अंदर में जाके, आप जो कबाब खाओगे छोटे वाले कबाब जो मतलब
0: शामी कबाब, मतलब
1: नहीं ये तो मतलब जैसे आपने जो चपली कबाब होते थे वैसे रहते थे, लेकिन ये छोटे गोले के अंदर में मिलते थे। और तब ये मिलते थे हम लोग को 10 रुपए के अंदर में, 3 या 4 कबाब मिलते थे, उसके साथ में एक छोटा सा पाव आता, छोटे 2 पाव के टुकड़े आते थे। सो माशाल्लाह वो इसके चटनी के साथ में बहुत मजा आता था खाने में।
0: आज आप जो है आज भारी नाश्ता करवा के ही मानेंगे, बस समझ
1: में है। मतलब यहाँ पे दोहा के नाश्तों के अंदर में मतलब वो मुंबई वाली याद नहीं आ जाती और वो सब खाने के अंदर में, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छे नाश्ते हैं अलग से। हाँ। लेकिन तरीका बदल गया है यहाँ पे, वहाँ पे कहीं पे भी कभी भी खड़े रह के कुछ भी खा लो पेट खराब नहीं होता था, अब चले जाते हैं कहीं पे पानी पी लो तो जो बाथरूम ढूंढना पड़ता है।
0: डेलिकेट हो गया इंसान, डेलिकेट हो गया
1: हमारा पेट, जो अंदर का पेट है हमारा वो मतलब इतना डेलिकेट हो गया है कि हम लोग अभी मतलब इंडिया में कहीं पे जाके खड़े होके खाने की हिम्मत नहीं कर पाते।
0: करेक्ट, अभी पहले पहले राइट हैंड साइड में नाली बह रही है और प्लेट में नहारी चल रही है, तो वो ये चलता था पहले, अब नहीं चलता।
1: कॉलेज के जमानों के अंदर में जितना मतलब जिसके हाथ ज्यादा गंदे उसका खाना ज्यादा टेस्टी, ये वाला पंडा चलता था।
0: ये तो अरे भाई साहब, बस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत प्यार। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो ज़ुबैर भाई ने बताया ना, कुछ मैसेज पढ़ दूँ। अल्ताफ भाई कह रहे हैं वो कौन बंदा है जो पानी को पापड़ में डुबा के खा रहा है, ये पापड़ के साथ अत्याचार है। एक है हमारे भाई शुब भाई ने मैसेज किया था कुछ देर पहले, एक मैसेज है भाई पाकिस्तान में शादी में मेहंदी वाली रात को हलीम और राइस मस्ट डिश है, अगर किसी ने बनाई तो भाई वो लड़ने वाली बात है। ऐसा क्या, मुझे ये नहीं पता था। कह रहे हलीम बिरयानी जामा मस्जिद के सामने, मेरा भाई बडला उसी खाओ आप। भाई आम रोटी हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपने चाय में नमकीन डाल के पियो, मस्त लगता है भाई। अरे आप तो हमारी तरफ वाले हैं। कह रहे भाई गोश्त का शोरबा जो

होता है उसमें तंदूरी रोटी डाल दो फिर नींबू का रस। आप हमारी तरफ वाले पार्टी फैसल भाई, समझ पा रहा हूँ मैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं पराठे पर अचार का मसाला प्लस चीनी रोल करके खाता हूँ। आतिफ भाई, इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया ऑन पेपर, ये ट्राई कर सकता हूँ मैं। अच्छा, नाजिश ने लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, बारे में क्या मोल, क्या चल रहा है। एक मैसेज, कभी भाई टॉपिक सुनकर भूख लगी है जोरों की, आप मेरा सोचिए, मैं तो भाग भी नहीं सकता हूँ। तला भाई फरमल खोल लिखते हैं, भाई बस एक दिन पुराने बॉइल्ड राइस विद मिल्क एंड शुगर। एक चीज़ जो यहाँ मिस करता हूँ वीकेंड पर, अक्सर दोस्तों के साथ पाकिस्तान में सुबह सुबह नाश्ते में मगज नहारी, ओ हो मज़ा आ जाता था। फराद भाई ने भी मैसेज किया था, फराद भाई का मैसेज मुझसे छूट गया था, एक करके पढ़ता हूँ। तो मैसेज किया था फराज भाई ने, लिखा था बचपन में जैगरी, हो जैगरी गुड़ बोल लो, जैगरी विद देसी घी एंड पराठा वॉज अ यूजुअल ब्रेकफास्ट। ओके भाई, किसी दिन दाल चावल और बूंदी ट्राई करना, मैं तो सुभाष भाई खाता हूँ ये सब। एक मैसेज तब उससे मैं लिखती हूँ, इफ़ यू आर शॉक्ड अबाउट आम रोटी यू हैव टू नो दिस, माई ब्रदर लाइक्स चावल विद आम। चावल विद आम कैसे, ये तो अच्छा। एक मैसेज, भाई मुंबई ले गए बुरुन पाव रगड़ा, अरे अरे अरे मुंबई वालू, वालेकुम अस्सलाम। नाजिमैन वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अरे फरद भाई का मैसेज किधर चला गया यार, फरद भाई ने मैसेज किया था मुझे, फरद भाई किधर गए, किधर गए, ये रहे फरद भाई, क्या कह रहे हैं भाई, सिर्फ क्या है निहारी राइस खाओ, मैं तो खाता हूँ, ये भी कोई नहीं खाता, लेकिन हम खाते हैं भाई, पुराना घर के नज़र से देखो, मैं तो खाता हूँ भाई, सिर्फ खाना बोला, अगर कोई बेचारा नाश्ते के बगैर घर से निकला होगा तो भूख लग रही होगी, आज तो कोई ना सुने तो बेहतर है। वैसे हमारी तरफ का नाश्ता बकरे के पाए विद नान, हलवा पूरी विद वाइट चना, ये अचार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस बीच, मेरे पाकिस्तानी भाई कुछ ऐसे हैं जिनका नाश्ता माशाल्लाह बहुत हैवी होता है, सल्यूट देम, इतना हैवी तो मेरी बर्दाश्त के बाहर है, पर आप जैसे खा लेते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। एक मैसेज आया है, आमरस और पूरी, ये तो हमारे यहाँ भी चलता है, गुजराती है ये चीज़ आई नो, बट इट्स वेरी वेरी टेस्टी। एक होती है क्या, चाइनीज़ भेल, हाँ बहन चाइनीज़ भेल मैंने ट्राई करी, ये थोड़ा सा आसान है मेरे लिए। मैसेज है, फ्रीज़र में लगी पीली दाल नाश्ते में गर्म पराठे के साथ, फुल स्टॉप। अंत कर दिया भाई, अंत कर दिया अपने, अंत पाया एंड हलीम, ये दोनों एक साथ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, सलवा रोड, अच्छा हाँ वो अभी मुझे पता लगा फयाज भाई। एक मैसेज है, सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं पुलाव नमकीन के ऊपर चीनी डाल के खाओ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अगर मज़ा नहीं आया, आपका नंबर है मेरे पास नोमी भाई, ये जो नमकीन चावलों पे आप चीनी डालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एक मैसेज है, नाश्ता क्या, वेदर भी बहुत गर्म हो गया है एज़ यूजुअल, ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक, ये बहरीन से मैसेज आया नाजिश बहन का। आ लेती है, नाश्ता करके भी निकला होगा तो आपकी टॉपिक की वजह से भूख एक्स्ट्रा लगेगी। मैं देखिए, बाकियों को पता नहीं, मेरा सोचिए। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज है, ट्राई क्या है, बसरी समडे, इट्स अ सिंधी डिश। जुनैद भाई, ये मैंने देखी है कहीं, ये जो सिंधी कढ़ी भी अच्छी चीज़ है, ये सिंधी वाली चीज़, सिंधी खाना एक दो चीज़ें बहुत ही शानदार है। मुंबई माई बन मस्काटी, ये क्या बात है भाई, मैं ऐसा ना खाने पर ले जाऊँगा मेरा भाई, लो मैं दिल भेज रहा हूँ इस बात पर आपको। एक मैसेज है, दम पुख्त एंड काबुली राइस ट्राई दिस, ये पठानी डिश है, आई थिंक लास्ट वीक ट्राई किया था, अच्छा था। ये कॉम्बिनेशन मुझे हमारे पठान भाई बहुत सारे लोग जो हैं ऑफर कर चुके हैं, एक बार मैंने शायद खाया भी था, इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, दम पुख्त और ये काबुली राइस जो हमने बोला, ये है इसमें बात है, बट बड़ा हैवी मामला है, ये बड़ा हैवी मामला है इमरान भाई। एंड एक मैसेज है, कबीर भाई सुबह सुबह क्या है, हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्या हो जाए, ताहिरी हो जाए। खान भाई क्या लिखा, अस्सलाम वालेकुम, गोश शोरबा वाला जो डिश है मेरे हरियाणवी दोस्तों ने सिखाया था 2003 में, वो हरियाणा में बहुत चलता है भाई मामला, हरियाणा में तो मैं बताऊँ, आप अगर वहाँ रह लिए, ऐसे
तंदुरुस्त घोड़े की तरह भागोगे इसकी हद नहीं कि समाली पीपल एवरी टाइम ईट बनाना विद राइस. ये इनफैक्ट जो कॉम्बिनेशन है हमारे केरला में भी, हमारे मलयाली भाई भी जो हैं उनके भी कॉम्बिनेशन बड़े कमाल के हैं. वैसे एक मैसेज आया है, क्या मैसेज है? मैंने कभी हलीम बिरयानी नहीं खाई, आपके मुंह से पहली मर्तबा सुन रहा हूँ. अरे कैसे कि ओहो, कहाँ से आप? इंडिया से हैं? अगर आप इंडिया से हैं तो मैं आपको दिल्ली बता सकता हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैंने सुना है पाकिस्तान में भी हलीम बिरयानी है. तो दोनों तरीके, आप किधर भी आ सकते हैं. क्या हो गया तला भाई? मुझे लग रहा है आज नाश्ता करके नहीं निकले. तो वही कह रहा था कुछ वेयर्ड, दुनिया के लिए वेयर्ड है पर हमारे यहाँ कुछ देसी कॉम्बिनेशन जो ट्राई करने चाहिए लोगों को, स्टार्टिंग विद आम रोटी. प्लीज़, जो लोगों ने देसी होके आम रोटी नहीं खाई है, मैं आपको भाई साहब सजेस्ट करूँगा, थोड़ा सा अपने अंदर देसी पना लाइए, ट्राई करिए, बच्चों को भी ट्राई करवाइए, है ना? कब तक चले गए? व्हाट आर यू ईटिंग? स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107. Time check.
1: साथ दो और मेरा भी साथ दो प्लीज. मच नीडेड, मच नीडेड. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं दुहा वाला कबीर. ये मैसेज मैं एक दो पढ़ दूँ जल्दी से. मैं कह रहा था कुछ देसी कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो लोगों को पता नहीं है भाई. आजकल की मार्केट में जो लोग ज़्यादा फैंसी हो गए ना उन्हें बताओ ना आम रोटी का. आम रोटी, माई गॉड, हाउ डू यू ईट सच अ थिंग? हाउ? अरे भाई खा के देखो. मैं तो नॉर्मल चीज़ बोलता हूँ, हलीम बिरयानी. लोग कहते हैं हलीम बिरयानी. दिल्ली पीपल ईट एनी थिंग. अरे दिल्ली पीपल, दिल्ली है वो, जाली नहीं है. तुझे तो सर लिखते हैं कबीर भाई गुड मॉर्निंग. खाने की बात पेट से नहीं दिल से जुड़ी होती है मेरा भाई. लिखते हैं वंडरफुल टॉपिक फॉर द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, चिली चिकन विद कर्ड राइस. चिली चिकन, वेरी गुड आइडिया. ट्राई, हम तो घर पे मैगी डोसा खाते हैं. अरे अरे बहुत सॉलिड आइडिया बताया है सुदीप. तो सर थैंक यू, ये बहुत अच्छी बात कही आपने. लिखते हैं क्रिस्पी उत्तपम के साथ मटन या बीफ भुना जबरदस्त लगता है. आज तो ऑफिस में काम करना मुश्किल होगा. हो रहा है ऑलरेडी, बहुत मुश्किल हो रहा है. जलेबी दूध में डाल, जलेबी दूध में डालने से मुझे याद आया, मुझे पसंद है. आप भी कभी मैं तो ट्राई कर चुका हूँ, बिल्कुल ट्राई कर चुका हूँ. वोल्फाम भाई आप मेरे कहने पे जलेबी और दही ट्राई करें, खट्टी दही, ठीक है, मौज आ जाएगी आपको. एक मैसेज है कबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम. कबीर, कभी मिल्क में देसी घी डाल के पिया? बिल्कुल, हरियाणते हैं भाई हम, ये सब तो ट्राई कर चुके हैं. कॉल आ रही है तला भाई. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. भाई जान क्या हाल है आपकी?
1: बस तला भाई एकदम बढ़िया, चौकस चल रहा भाई.
2: क्या खास
1: तो आप क्या तला भाई वहाँ पे है क्या? अभी मैंने सुना कि पाकिस्तान में हलीम बिरयानी कॉम्बिनेशन है, उस तरफ है आपने ट्राई किया?
2: हाँ है भाई, है अल्हम्दुलिल्लाह, है बेहतरीन वाला.
1: तो आपका क्या कॉम्बिनेशन है, आपने क्या इन सब चीजों में जो मेंशन हुआ है क्या कुछ ट्राई किया है? और यू वांट टू ट्राई समथिंग?
2: भाई मैं सीधा आदमी हूँ, ये क्या तुम मुझसे अतरंगी चीजें पूछ रहे हो?
1: अतरंगी नहीं, ये तो देसी होने की पहचान ही है. पता है लोग क्या बोलेंगे? हाँ शेम शेम, तो खाया करो ये सब, ये बहुत जरूरी है.
2: लॉक लॉक क्या बोले, लॉक क्या मैं बोल रहा,
1: लॉक तो बोले
2: खाता हूँ.
1: क्या
2: लॉक कुछ भी बोल

0: ليه ما
1: الموضوع بقى بقوله بقوله
0: ليه بقوله بقوله
1: नहीं नहीं तुम मुझे बता, तुमने क्या
0: मेरे
1: सोच के
0: मेरी
1: रखी, क्या
0: अदालत
1: सोच के
0: में,
1: तुम नाम रखे?
0: मेरी अदालत में आपको इजाजत है, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं दुला भाई। आए
1: और
0: बोलिए।
1: वो एक है खीर के साथ रोटी,
0: क्या रे, वो तो भाई सॉलिड कॉम्बिनेशन है, पूरी भी ट्राई करनी चाहिए लोगों खीर के साथ। ओए होए होए होए होए,
1: हाँ
0: हा हा हा हा
1: अच्छा, और वो रात की बची हुई तंदूरी रोटी सुबह तल के फ्राई करो उसको तवे पे,
0: हाँ,
1: और केला केले के साथ खाओ।
0: ये है, ये चीज जो है ना, ये पिछले एक हफ्ते से खटक रही है। ये सवाल पूछने की जो वजह है उसके पीछे बहुत सॉलिड वजह है, क्योंकि किसी ने मुझे ये बोला था और लोग बड़े चाव से खाते हैं इस चीज को, पर ये मैंने
1: हाँ
0: ट्राई
1: भाई
0: नहीं किया।
1: बेहतरीन
0: अच्छा,
1: भाई,
0: तो
1: मोजा आ जाएगा
0: ये
1: मोजा।
0: कॉम्बिनेशन तंदूरी रोटी के साथ है या नॉर्मल रोटी के साथ भी चलेगा जो रखी हुई है, थोड़े कड़क
1: नहीं
0: होनी
1: नहीं
0: चाहिए।
1: तंदूर रोटी के साथ खाओ ना, तनीवी रोटी के साथ ना, रात की बची हुई हो
0: हाँ
1: सुबह तल के खाओ, जो मजा उसमें आएगा ना वो
0: हाँ
1: फ्रेश रोटी में नहीं आएगा।
0: ये कुछ टाइम है इसको खाने का या फिर कभी भी खा सकते?
1: हाँ 3 टाइम ले लो दिन में, अबे
0: नहीं
1: गाली
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: साहब, बेस्ट बेस्ट
1: बन
0: टाइम बताइए,
1: जाते
0: सूरज उगने के तुरंत बाद खाना है कि पहले खाना है?
1: बस सोने के बाद खा लेना, उठने से पहले खा लेना,
0: अच्छा
1: ये
0: ऐसा,
1: बेस्ट टाइम
0: समझ गया, सुबह का टाइम है, सीधा बोलो ना, सुबह का
1: है।
0: टाइम।
1: अरे तो सवाल देख भाई, तू अपना यार कसम से
0: अंग्रेजी
1: बैठी
0: में
1: है।
0: कहते हैं रनिंग अराउंड द बुशेस।
1: एक तो भाभी ने लड़ लड़ के आ जाता हमारा मत्था खाने के लिए, और दूसरा क्या बोलू मैं बस।
0: नहीं पर ये कॉम्बिनेशंस आपने जो बताया, मैं आम की रोटी, जो आम की चटनी बताई आपने, दैट दैट साउंड्स रियली
1: हाँ
0: नाइस, ये मेरे दिमाग में एक रिंग बज रही है।
1: जब भी खाओ ना तो दो अगर करना, एक भाई के लिए अपने लिए।
0: हो गया भाई, ये इसी पे सड़ी गर्मी में बैठ के
1: अबे गरीब
0: खाएंगे।
1: आदमी बिरयानी नहीं खिला रहा, कम से कम यही खिला दे, उबले हुए चावल।
0: मतलब आज दावत है, क्या है दावत में? उबले हुए चावल हैं जैसे तुम्हें पसंद है तला।
1: उबले हुए आम की चटनी अपने घर से लेकर आना, उबले हुए चावल मैं अरेंज कर दूंगा।
0: रास्ते में आम तोड़ते हुए आना, कोई भी झाड़ देखे हिलाते
1: हाँ
0: रहा
1: तो
0: उसको।
1: भाई क्या गरीब है यार तू, बात बहुत गरीब है यार
0: मैं गरीब हूँ, वो मीम देखा ना, मैं
1: बहुत।
0: गरीब हूँ, शुद्ध गरीब,
1: बहुत
0: शुद्ध।
1: गरीब है यार,
0: बहुत
1: क्या
0: बहुत ज्यादा,
1: क्या
0: बहुत ज्यादा,
1: तरीका है यार।
0: बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूँ। वो तो कपड़े अलहमदुल्ला अच्छे पहन रहा हूँ मैं, नहीं
1: किसने बोला, किसने बोली ये बात भाई?
0: देखिए ये तो मैं इसलिए मिलता नहीं हूँ, मुझे मिलने के लिए थोड़ी अपॉइंटमेंट लगती
1: जी
0: है।
1: कैमरे तू, तेरी भी आवाज आ रही है लोगों को भाई जान, आपकी सिर्फ
0: हाँ
1: आवाज है, आवाज दुनिया
0: आवाज
1: ने देखा नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं दिखी लोगों को।
0: देखिए, आवाज से तो क्या है, मैं तो पिज्जा भी ऐसे ही डिलीवर करता हूँ।
1: आवाज से तो भाई तू लुसेल खरीद के बेच भी दिया तूने अभी
0: वो अगर
1: तक।
0: मैं बता रहा हूँ, आवाज का इम्पैक्ट फर्क पड़ता है तला भाई। मैं जब पिज्जा विज्जा ऑर्डर करता हूँ ना, हाँ सामने वाला कहता है सर अभी 30 मिनट नहीं, अभी पहले आपका पिज्जा आएगा, बाकी बाद में।
1: भाई याद है आपको इसी आवाज के चक्कर में आपकी लाइन कटी थी।
0: देखिए ये दुख दर्द की बात सुबह नहीं करते हैं, सिर्फ मरहम की बात
1: मैं
0: किया
1: सोच रहा
0: करो।
1: हूँ आज आज वो गलती दोबारा रिपीट करवा दीजिए।
0: अस्सलाम वालेकुम। चलिए भाई
1: नहीं,
0: अस्सलाम
1: जुम्मे को करूंगा, जुम्मे को
0: वालेकुम।
1: करूंगा, जुम्मे को, जुम्मे
0: ठीक है
1: छुट्टी
0: ठीक है, जुम्मे
1: वाले
0: को
1: दिन,
0: वैसे आपका
1: छुट्टी वाले
0: कॉम्बिनेशन।
1: दिन भाइयों इसको कॉल कर लेना, इसकी लाइक कटने वाली जुम्मे को।
0: डन डन है, इंशाल्लाह कर लेना
1: और
0: कॉल।
1: जुम्मे को मैं
0: हाँ
1: आपको ब्लॉक कर लूंगा।
0: जब आपको क्या लगता है एक ही सिम लेके घूम रहा हूँ क्या मैं? आई एम नॉट वन सिम गाय।
1: ओ बेबी माय गॉड,
0: हाँ
1: एक
0: आई
1: गो,
0: एम,
1: एक बाबू की, एक शोभा की,
0: हाँ ये वन सिम गाय नहीं हूँ मैं, ठीक है।
1: ओ माय गॉड
0: समझ लो, टेली ये कम्युनिकेशन वाले से पूछ लेना, बहुत तेज आदमी हूँ मैं
1: यार, आज
0: तला।
1: तो इतना बुरा लग रहा ना कबीर भाई, इतना बुरा लग रहा आज की,
0: भूख लग रही है
1: बहुत
0: ना,
1: भूख लग गई भाई।
0: भूख लग रही है। आई
1: वाह,
0: नो आई नो आई
1: और
0: नो,
1: क्या करूं मैं, क्या
0: नहीं
1: करूं, प्यार जो करता हूं वरना बता दे।
0: नहीं मैं मुझे खुद भूख लग गई है टॉपिक छेड़ के, पर आज बढ़िया नाश्ता किया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है चला भाई। ओके भाई,
1: चलो
0: बहुत बहुत
1: भाई,
0: शुक्रिया,
1: अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कुछ मैसेजेस नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं पढ़ देता हूँ एक एक करके। अब साथ ही ले रहे हो कबीर भाई, थैंक यू सो मच। ए बुसरी, ये जो बताया ना आपने, इट्स सिंपल रोटी स्टफ्ड विद जैगरी पाउडर एंड ब्लैक पेपर एंड, ये ट्राई करने वाली चीज़ है। जुनेद भाई थैंक यू सो मच मेरा भाई। इनके बाद मैं पाकिस्तान से हूँ भाई, कतर के इंडियन डिश आई लाइक द मोस्ट साउथ इंडियन, बनाना लीफ के ऊपर वाइट राइस एंड मटन करी में बहुत सारी चटनी, उफ कमाल भाई, तबाही है तबाही वो चीज़। तब उसमें मैं लिखती हूँ, आई स्किप डिनर लास्ट नाइट विद ग्रेट मोटिवेशन टू स्टार्ट डाइटिंग, अर्ली मॉर्निंग आई एम हियरिंग ऑल दीज फेबुलस डिशेज। बहन आपको स्किप नहीं करना चाहिए था, डाइटिंग हमारे शो को सुन के अक्सर ख़राब हो जाती है। एक मैसेज, जो लोग बिरयानी और जर्दा इकट्ठा खाते हैं उफ कौन लोग हैं, मैं अपने लोग मेरे अपने लोग खाते हैं, हाय हाय।

0: देखिए फरीहा जी, बहन मैं आपको बताऊं, मैं भी उनमें से एक हूं। जरदा बिरयानी साथ में खाना अच्छा लगता है। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, घींगे दानिश भाई पाकिस्तान से मैसेज कर रहे हैं। एक मैसेज, अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत होना है, उनकी जाने के बाद क्या दिखा है। अरे पठान डिश याद आया, सोहबत के नाम से डिश है, वालदा बनाती थी, गोश्त के शोरबे वाला सालन, बिल्कुल पतला, उसमें पतली चपाती, उफ उफ उफ, तबाही तबाही तला भाई फ्रॉम अलखोर। वैसे आम रोटी तो सही है भाई, किसी दिन आमरस और चपाती खाना। ये सुभाष भाई, मैंने वो पूरी के साथ आमरस ज़रूर खाया, बहुत बढ़िया लगता है। एक वैसे अस्सलाम वालेकुम, मिल्क में देसी की तो डाल के पिया है। याहिया भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मलाई भरा परांठा कुक्ड इन असली घी स्लोली लाइक इट गेट्स अ बिट क्रंची, नाउ ईट इट विद आम की चटनी और एनी चटनी और अचार, साइडेड विद हॉट करक टी, दिल गार्डन गार्डन। जिस हिसाब से आपने मास्टर शेफ की तरह बताया है, इन्होंने नॉर्मल चीज़ को याया भाई ने इतनी खतरनाक अंग्रेजी में इतना डिलीशियस करके बताया है, ऐसा लग रहा है मास्टर शेफ की रेसिपी बताई है। मलाई पराठा कुक्ड इन असली देसी घी, इट्स लाइक ए बिट क्रंची, नाउ ईट इट विद आम की चटनी और एनी अदर चटनी, साइडेड विद सम हॉट करक। अपने आप मुझे लगा क्या भारी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, लाहौर की स्ट्रीट फूड चिकर चने क्या, जो कि ठंडे ही सेल होते हैं, खाए जाते हैं। वकार भाई, ये मैं देखूंगा, मैं अभी बहुत सारे वीडियोस में सेव कर रहा हूँ जो जो घर पे ट्राई करने वाली चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह नली निहारी, वो भी नाश्ते से पहले। नाश्ते से पहले मतलब ये नाश्ता नहीं है मुशीर भाई। अतीकुर रहमान साहब फ्रॉम चकवाल पाकिस्तान लिखते हैं, हम तो बचपन में रोटी के ऊपर रेड चिली डाल के खाते थे, एंड बेसन के आटे में अनियन और ग्रीन चिली एंड रेड चिली डाल के रोटी पका कर खाते हैं। बहुत आगे चली गई है दुनिया माशाल्लाह। ये मैसेज है, मिस माय मॉम मेड माश दाल। माश दाल तो मैंने सुना, बहुत बढ़िया है, विदेशी की बॉइल्ड एग विद रोटी। आज दिक्कत कर ली मैंने, ये सवाल क्यों पूछ लिया सईद भाई, क्यों पूछ लिया मैंने ये सवाल, कौन सी घड़ी में कहना है करेक्टिव। एक्चुअली इट्स नॉट बन्नू, अच्छा बन्नू, थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा बन्नू है क्योंकि लोग वही स्पेलिंग लिख रहे थे, बन्नू, सॉरी हाँ, जितने पाकिस्तानी भाई मेरे और मुंबई वाले भाई जिन्होंने बन्नू की बात करी थी, वकास भाई थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। तो इसे बन्नू कहते हैं, बन्नू, शुड ट्राई, ओके आई विल ट्राई नाउ। फराज भाई कह रहे हैं सेम ही है, तंदूरी रोटी लॉन्गेस्ट डे फ्रिज से निकाल कर गीला करके ऑल फ्राई करके खाओ, ठीक है फराज भाई। आई ईट मैगी विद रोटी एज वेल। अरे मेरा भाई शिव भाई, हाई फाइव भाई को। भाई दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है मैं, लेकिन सही है, बिरयानी ज़रदा कॉम्बो इज़ माई फेवरेट, ट्राई करें कभी। मैं वही शिव भाई ट्राई किया मैं। अरसलान भट्ट भाई लिख रहे हैं, सर करेला कीमा बना हो ज़्यादा प्याज के साथ, साथ में फ्रेश तंदूरी रोटी, नमकीन लस्सी। आज आप जो है अरसलान भाई दिक्कत करवा के मन घी वो वाला सीन हो रहा है। एक अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई।
0: फवाद भाई डाइटिंग तो नहीं कर रहे आप बाय एनी चांस?
1: मैं यही फोन करने के लिए कॉल किया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, यही फोन करने के लिए कॉल किया।
1: कि आपको बिल्कुल लिहाज नहीं है उन लोगों का जो डाइट पे है।
0: आज सबका चीट
1: थोड़ा सा बंदा आंखें झुका के बंदा कोई और बात कर लेता है कि कौन सा खाना आपको नहीं पसंद।
0: आज सबका चीट डे है, आज सबका
1: चीट। नहीं सर, हमारा चीट डे नहीं है, मैं 4 हफ्ते से डाइट पे हूँ।
0: क्यों मेरी मेरी जात पे एहसान करो, मुझे कीमा खिलाओ।
1: मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा।
0: नहीं खाएंगे आप? अच्छा, इतना सुनने के बाद
1: ना, ना।
0: इतनी हिम्मत?
1: बहुत पक्का हो गया हूँ मैं अभी कुछ अच्छे से।
0: ओहो, अगर हमारे आज के शो को सुन के भी कोई दावत से उठ गए थे, अब आज का शो सुन के भी अगर आप इतने स्ट्रांग हैं तो भाई तालियां, स्ट्रांग, बहुत बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह। तो
1: लेकिन मैं आप बताता हूँ, देखिए अगर कोई अंग्रेज से बात कर रहे हो ना आप गोरे से,
0: हाँ,
1: तो वो बोलेगा अ फ्रेश टी विद एग बेनेडिक्ट अ सॉस ऑन द साइड दैट विल बी गुड। और हम जैसे देसी से बात करें, यार हलवा पूरी हो या डोसा मसाला हो, साथ में कड़क चाय हो या लस्सी हो पेड़े वाली, ये सुबह का हो।
0: तो आपका अच्छा डाइटिंग चल रही है आपकी, तो डाइटिंग में कुछ कॉम्बिनेशन, आर यू ट्राइंग टू मेक इट यू नो थोड़ा फ्लेवरिश, थोड़ा सा क्या कुछ ऐड करके खा रहे हैं?
1: सर, मैं खाता सब हूं, लेकिन अब वो 1/4 कर दिया है।
0: ओके
1: पोर्शन
0: ओके, तो वन फोर्थ में जो वन है वो आज हमारे कहने पे कुछ ट्राई कर ले। क्या वैसे
1: अभी बेटे को अंडा पराठा लेके दिया है लेकिन अपना नहीं लिया है।
0: अच्छा तो अभी क्या आपको
1: एक उसका होता है दो मेरे होती है, सॉरी।
0: तो अभी क्या ट्राई करने वाले हैं आप? अभी क्या ट्राई करने, अभी इन सारी डिशेस में आपने सुना कुछ?
1: हम गरम पानी के साथ शिया सीड किस्म गोल नींबू निचोड़ के पियेंगे ऑफिस में बैठ के।
0: हाय हाय हाय, चलो अच्छी
1: बात। दोपहर को एक दही खाएंगे,
0: हाँ हाँ,
1: शाम को थोड़ा सा अमरूद या फ्रूट खा लेंगे और रात को क्वार्टर चपाती खा लेंगे बस।
0: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे रे, फवाद भाई फैन पेज बनाऊंगा मैं आपका सोशल मीडिया पे। ओ या ट्रांसफॉर्मेशन साइडेड विद सम चिया सीड्स एंड नेबर।
1: आपके लिए एक कमेंट था मेरे एक दोस्त का ऑफिस में।
0: जी
1: वो कह रहा था कि इनसे कहो सुबह सुबह लड़ाने वाली बातें क्यों करते हैं, कभी बर्तन धुलाने वाली बातें करते हैं, कभी मोहल्ले वालों की बातें करते हैं। कहते सुबह सुबह लड़ाने वाली क्यों करते हैं? मैंने कहा सुबह लड़ाता नहीं है भाई, वो सुबह सुबह मूड बनाता है,
0: मूड बनाते भाई तो
1: आप खुशी खुशी जाए। हाँ। और फिर सोचते रहे सारा दिन मेरे लड़ना किससे है।
0: ये एक्चुअली भाई हम मूड मैकेनिक है, हम नहीं कराते झगड़े। सीरियस बात तो हम छूते ही नहीं भाई, दूर ही रहवा करें हम तो उनसे। और फवाद भाई बढ़िया एकदम अपना जो है नींबू
1: भी
0: बढ़िया
1: सा। दिल्ली वाले हैं, लड़ने में तो हम भी शेर हैं, हम भी पंजाब वाले हैं।
0: अरे तो मैं कौन सा लठ लेके आ रहा हूँ, वो कह रहा मैं बाहर निकलो फवाद भाई, अभी अभी फवाद भाई बाहर निकलो।
1: लेकिन कतर का मजेदार ये होती है कि आपको हर मुल्क की हर अच्छी डिश मिल जाती है इस मुल्क में।
0: हाँ ये तो है, ये तो है। वो वही है कि थोड़ा फ्लेवर के लिए जाना पड़ता है उस मुल्क वापस।
1: आपको अपना फ्लेवर बनाना पड़ेगा। अगर आप फूड खाने वाले हैं तो आपको जरूर फीका भी थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, उनके हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी भी ट्राई करना पड़ेगा, तो हर चीज को ट्राई करना पड़ेगा।
0: फवाद भाई यार देखो ये नींबू अभी आप डाल के कुछ खाने वाले हैं जो भी है, फिर आपकी मुंह से बातें अच्छी नहीं लग रही मुझे।
1: सर आप लोगों को टाइम दे, बहुत शुक्रिया।
0: गाड़ी में शीशा बंद करके रोना नहीं, ठीक है? मैं साथ दूं तुम्हारे।
1: सर मैं इसलिए हंस रहा हूँ।
0: ये हो रहा, मुझे हंसी क्यों आ रही है आंसुओं के साथ?
1: इसलिए मैं हंस रहा हूँ।
0: कोशिश करो फवाद मैं तुम्हारे साथ हूँ।
1: सर बहुत शुक्रिया, आपका फोन बंद करके चैनल भी बंद कर
0: दूंगा। अरे फवाद भाई थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फवाद भाई तो हो सकता है सुबह आए। नदीमा कह रहे मैं तो ऑलरेडी नाश्ता लेने निकल गया हूँ। कह रहे इतने डेडली खाने कॉम्बिनेशन सुनकर बस पेट फुल हो गया नाजिया बहन का। इस नंबर पे कॉल रिसीव करता है कोई नहीं, सेंड कीजिए। क्या सेंड कीजिए? मैं कर दूंगा कॉल। अदिल भाई गुड मॉर्निंग, गुलाठी राइस ये बढ़िया लग रहे हैं, गुलाठी या गुलाठी? एक मैसेज है, चनों में पाया शोरबा डाल के। भाई अभी फवाद भाई गाड़ी में रो देंगे अकेले अकेले। कबीर सिंह, अम्मी के हाथ का चीनी वाला पराठा और चाय, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तौसीफ भाई स्कूल के टाइम पे हैं। कबीर भाई आज ये टॉपिक तो सरवर भाई का है, लेकिन ये टॉपिक आपने ले लिया, आज सरवर भाई क्या सोचेंगे मेरे टॉपिक कभी ने ले लिया। अरे तो बस वही है, सरवर भाई को आपने कल लोगों ने छेड़ा नहीं छेड़ा जो मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट माँ के हाथ की रोटी और चाय। देखो इमोशनल एंगल मत लाओ इसमें, वरना मैं भी इमोशनल हो जाऊँगा फिर मामला बिगड़ जाएगा। सलमान भाई कह रहे हैं क्या है रोज सुना तो बस भाई मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। बंटी एयरलाइन का मेन्यू क्या है? बंटी एयरलाइन का मेन्यू आज बहुत ही डेडली कहानी है भाई, मज़ा आ जाएगा। वह कतर में भी मॉर्निंग में घर से आई हुई लाल वाली चटनी, घर से आई हुई लाल वाली चटनी समझ रहे हैं, जुगाड़ करके बैठे हुए हैं, हमें बता रहे हैं खून जला रहे हैं हमारा। और मुमताज़ भाई कह रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे क्या देसी घी, ओके मुमताज़ भाई बहुत शुक्रिया। या फवाद भाई बिना खाए जिंदा कैसे हैं? फवाद भाई से मिले नहीं हैं आप, मोहम्मद भाई आप बोलेंगे ठीक है। कबीर भाई कच्चे आम की चटनी जिसमें शुगर एंड सॉल्ट डालो और ट्रायंगल वाले पराठे। अरे भाई साहब ये अपने टाइप की ट्रायंगल वाले पराठे क्या याद दिलाया। इरफान भाई लिखते हैं इनफैक्ट बहुत दावत करो मेरी, मगर ज़्यादा तारीफ ना करना, मेरे लिए उस बिरयानी काफ़ी है, बिरयानी ही काफ़ी है, मैं बस पंजाब भी हूँ और सर डाइट से कोई लेना देना नहीं है। इरफान भाई ने मैसेज किया शामी कबाब और जर्दा। ताहिर भाई कह रहे हैं शामी कबाब और जर्दा घी भूरा भूरा राइस लेयर ऑफ देसी घी एंड ग्राइंडेड शुगर ऑन टॉप एज पर माई दादा जान दैट वॉज फेमस डिश इन वेडिंग्स इन इंडिया आई हैव हर्ड ऑफ इट I've slightly read also about it. I think कोई show में देखा था मैंने. एक मैं समझ लाया था. Just crack the egg, no engineering. करे जो hot water plus chia seeds plus lemon पीने की रात को okay 1/4 रोटी खाने की बात कर रहे थे. लगता है हार्डी से लॉरेल होने का प्लान है. हार्डी से लॉरेल होने का नहीं प्लान है. उनका नून से अलिफ होने का प्लान है. एक वैसे अभी जा रहा हूँ रूम में दोस्त ने पाए बनाए ब्रेकफास्ट के लिए. ये उमर भाई ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी. ऐसे भी जा सकते थे आप. कोई जरूरत नहीं थी. अच्छा तो मुमताज भाई ने घी नहीं दही लिखा था. थैंक यू सो मच करेक्शन के लिए. एक मैसेज है तनवीर भाई का. तनवीर भाई शुक्रिया. देन ठंडे मौसम में गाँव में बाजरे की रोटी और हरा धनिया मिर्ची की चटनी घी लगा खाओ. आकिब भाई फ्रॉम मुंबई. गलत बात है. ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए सुबह को. केरला वालों की डिश क्या है लच्छा पराठा क्रश्ड करके कैरी के साथ. फैसल भाई ये मैंने ट्राई किया. यू मिस द फर्स्ट मैसेज. एक सेकंड. एग डोसा सिंपल इनको. अच्छा एग डोसा मैंने ट्राई नहीं किया है. दिस इज गोइंग टू बी ऑन ट्रायल दिस वीकेंड. भाई पराठा और आलू बुखारी की चटनी. हाई ये मैंने क्यों नहीं खाई कभी. मैंने नहीं खाई उमर भाई. कभी कभी दाल चावल के ऊपर आलू गोश्त डाल के सलाद डाल के खाएं बहुत मज़ा आता है. आप हमारी तरफ के लग रहे हैं. बिल्कुल सही है. तो ये कुछ मैसेजेस थे. और कुछ लोगों ने इतना फैंसी तरीके से बताया ना. वो आपने देखा वो समोसे को बताने का तरीका क्या होता है लोगों का. वो फैंसी तरीके से अ गोल्डन हैंड फोल्डेड पेस्ट्री पार्सल विद अ डेलिकेटली क्रिस्प एक्सटीरियर एनकेसिंग अ फ्रेग्रेंट मेडली ऑफ स्पाइस पोटैटोज एंड आरोमेटिक हर्ब्स. भाई वो पराठा वो समोसा है. वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं बात करते. बहरहाल मैं ये कह रहा था भूख लग गई है. और दूसरी बात कहानी. अरे आप बोलेंगे क्या कर दिया आपने. डिजाइनर

देखो जी, आज मैं सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी का जिन्होंने सुबह से पार्टिसिपेट किया है. मैं सही बता रहा हूँ, मुझे अपने शो में, स्पेशली अपने शो में, मुझे सच में ऐसा लगता है कि सारे के सारे एक मोहल्ले में बैठे, लाइट चली गई है और सबने कुर्सियाँ लगा ली हैं गली के अंदर और बात चल रही है. थैंक यू फॉर दिस फीलिंग, क्योंकि ये बहुत बढ़िया फीलिंग आती है शो में, मज़ा आ जाता है. तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरा आपकी तरफ है एंड थैंक यू के साथ है. सो थैंक यू सो मच. ये मैं सोचिएगा अचानक से इसको क्या हो गया, नहीं मैं बता देना चाहता हूँ, बनता है भाई, आप लोगों की वजह से सब कुछ चल रहा है मामला मेरा, तो आपको तो कॉम्प्लीमेंट देना ही पड़ेगा. बड़ा आई ट्रूली मीन इट, सो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए. अब ज़रा मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज का किस्सा भी कैसा है, बिकॉज मैं मेरे ख्याल में 2-3 दिन हो गए बात कर रहा था मैं कि एक कहानी आएगी, लंबी कहानी होगी, है ना. तो वो अलग कहानी है, लेकिन ये वाली भी शायद शायद उतनी ही बड़ी कहानी हो जाए. इत्तफाकन ये स्टोरी मिली थी कल मुझे, जो आज मैं आपको सुनाऊंगा. मैं क्यों रोक के कहानी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, उसकी वजह ये कि इस कहानी ने मुझे एक तो बहुत मतलब हिला के रख दिया, बहुत पढ़ाई करवाई है इस कहानी ने, न्यूज़पेपर से लेकर किताब, भाई किताब का ऑडियो सुना है मैंने, समझ रहे हैं आप, ऑडियो बुक तक सुनवा दिया इस कहानी ने मुझे. एंड इट हैज़ बीन लाइक अ रिसर्च असाइनमेंट फॉर मी. तो इतनी रिसर्च करने के बाद मुझे लगता है साल डेढ़ साल में किसी कहानी ने मुझे इतने रिसर्च करने में मजबूर किया, तो आज वो कहानी है. बिकॉज इसको एक साथ पीस इन करना बहुत मुश्किल था, बट हियर वी आर. एंड आज की कहानी बिल्कुल बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इन केस यू विल लिसन टू मी लाइव, बहुत अच्छा है. लाइव नहीं सुन पाएंगे तो ठीक है बाद में, पर कोशिश कीजिएगा लाइव सुने, क्योंकि वो फील जो है इस कहानी को सुनने का लाइव ही आएगा. एक गाना है बस आपके और कहानी के बीच में, मैं ज़्यादा इंतज़ार आपको कराऊंगा नहीं, जस्ट वन सॉन्ग बिटवीन यू एंड द स्टोरी. बट मीनवाइल अगर आप मुझे लाइव सुनने वाले तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा. आज तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऑडियंस में कौन कौन है. नवीद भाई वालेकुम सलाम. नवीद भाई कह रहे हैं कि आज बहुत गर्मी, भाई गर्मी कल कौन सी नहीं थी मेरी जान, कल भी तो थी. कि लोग जो अच्छा खाते पीते पेट का सवाल है, आज तो मुझे लग रहा है कि भाई प्याज का परांठे वाली दावत कहाँ, प्याज का परांठा मिली ना, क्या करें बताइए, कह रहे हैं लसूर क्या, लसूरा अचार, ये क्या है, हाय ये मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन ये दिखने में कुछ यूनिक सा लग रहा है, वाह वाह वाह इरफान भाई, ये मुझे बताइएगा इफ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट. जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. तो या तैयार हैं आप, वैसे आज मस्त बाहर के नाश्ते के साथ कहानी, बाहर है नदीम भाई फील आ जाएगी फिर तो आपको. वालेकुम अस्सलाम प्रिंस भाई, आई होप यू रेडी. ओके, सो जितने भी लोग तैयार हैं कहानी लाइव सुनने के लिए, यू विल हैव अ ट्रीट, लिटरली बता रहा हूँ. तो गाड़ियाँ आपने पार्क कर ली हैं, कहीं भी लगा रखी हैं, आई होप कि आप इत्मीनान से सुन पाएंगे. नहीं सुन पाएंगे तो मेरा लॉस है, क्योंकि आप नहीं सुन पाएंगे, बट अगर सुन पाएँ तो प्लीज़ आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करोगे, वरना कोई ना कोई गाड़ी बोल रहा है अरे इट्स नैन है, डोंट वरी, एक गाने के बाद. ठीक है, इस गाने के बाद कह रहे हैं कबीर भाई क्या लीडी जो आने के बाद में बाहर है ना, पंचायत होनी चाहिए शो में, पंचायत और हम सब जिस तरह से बात करते हैं मजा आ जाता है. इसके बावड़ा ईसा लागा भाई, डांडा निवड़ी वाला और एक्सवीर ग्रेवाल.

डांडा नोड़ी वाला और एक्सवीर ग्रेवाल। और भाई क्या के ढंग से बढ़िया भाई। ऐसा है आज की कहानी ना धुएंधार है, मौसम बदल देंगे। देखो कुछ लोगों को लगेगा ये कहानी बहुत जनरल भी लग सकती है, हो सकता है मैं ओवर सेल भी कर रहा हूँ, यू नेवर नो, हो सकता है मैं ओवर सेल कर रहा हूँ, बट क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी तो हो सकता है कि आपको भी अच्छी लगे। लेट्स बिगिन, क्योंकि मैं आप और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाए। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है। इट्स अ रियल स्टोरी एंड ओ माय गॉड व्हाट अ स्टोरी इट इज, एटलीस्ट पर्सनली जो मेरे व्यूज हैं। अब आपके ऊपर है तो मैं एग्जाम दे देता हूँ, शुरू करता हूँ। मैं हूँ दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है और कहानी के लिए स्पेशली आए हैं, सबसे पहले आपको बहुत मोहब्बत। तो आज का जो किस्सा है उसे शुरू करने के लिए ना मुझे कई साल पीछे जाना पड़ेगा, एंड आई डोंट माइंड बिकॉज ये किस्सा है ही ऐसा। तो आज के किस्से के लिए आपको ले चलता हूं 1875 में, द ईयर 1875, 1 जुलाई की तारीख, शिकागो इलिनॉय। इस दिन शिकागो इलिनॉय में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था जोसेफ। जोसेफ जो था उसके माँ बाप जर्मन इमिग्रेंट्स थे, जर्मनी से आए थे, और उसके फादर की जो दुकान थी, जो काम था, वो ग्रोसरी की दुकान थी। अब 1880s के सेंसस के हिसाब से उन्हें सैलून कीपर कहा करते थे, नॉट एग्जैक्टली अ ग्रोसरी स्टोर जो आज कहते हैं, उस टाइम पे इट वाज लाइक ही वाज अ सैलून कीपर। और शिकागो इलिनॉय की एक और खास बात है जो इस कहानी के लिए मेजर है कि 1870s और 1880s में ये बहुत ही वाइल्ड जगह थी, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। 1871 में, 1871 में आग लगी थी बहुत खतरनाक शिकागो में, जिसको नाम भी दिया गया है द ग्रेट शिकागो फायर। पढ़िएगा इसके बारे में, पूरा डाउन टाउन तबाह बर्बाद हो गया था। और जोसेफ 1975 में पैदा हुआ था, उसने लिटरली वापस से शिकागो को बनते हुए अपनी नजरों के सामने देखा, और उसने ये भी देखा कि पैसा हर जगह है, दिमाग वाले बिजनेसमैन हर जगह नजर आ रहे हैं, और उसे ये भी नजर आ रहा था कि जो क्रिमिनल्स हैं वो भी पैसे बना रहे हैं, इनफैक्ट डबल बना रहे हैं। जोसेफ यही सब देख के बड़ा हो रहा था। एक तरफ वो देखता था कि उसके जो फादर हैं वो ग्रोसरी स्टोर में हैं, उनकी मदद भी करता था वो, और फिर कई मरतबा ना चुपके से बहाने करके वो चला जाता था रेस कोर्स में, घोड़ों की रेस में। पर उसे घोड़ों की रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, उसे इंटरेस्ट था घोड़ों की रेस पर होने वाली बेटिंग पे, क्योंकि इसमें उसे पोटेंशियल नजर आ रहा था, बिग स्कोर, इजी कमाई और जल्दी से बदलने वाला फॉर्च्यून। और यह चीज थी जिसने उसके अटेंशन को ग्रैब कर लिया। जोसेफ कोई आम बच्चा नहीं था, जोसेफ बहुत बहुत स्मार्ट थे, रियली रियली रियली स्मार्ट। मैथ्स में अच्छा था, लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा था, बात करने में बहुत अच्छा था बचपन से। टीचर्स इनफैक्ट जोसेफ के बारे में उसके माँ बाप को यही कहते थे कि आपका बच्चा बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, मतलब बहुत ही, मैं जोर देके बोल रहा हूं, आई रियली मीन इट। उसकी डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, मगर जोसेफ के साथ एक मसला था, जोसेफ को स्कूल बहुत बोरिंग लगने लगा था। समझ रहे हैं द आयरनी ऑफ इट, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है लेकिन स्कूल उसको बोरिंग लगने लगा था। वो अपने माँ बाप को एक तरफ देखता था कि मेरे माँ बाप इतने ईमानदार लोग हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम कर देते हैं, और फिर जाके बेचारे कुछ कमाई घर पे आती है और जैसे तैसे घर चल रहा है, और दूसरी तरफ शिकागो के अमीर लोग एक बूंद पसीना भी उनका बहता नहीं है, और वो हर रोज अमीर होते चले जा रहे हैं। और जोसेफ ने फिर एक रास्ता चुनने का फैसला किया। जब 17 साल का जोसेफ हुआ तो 17 साल की उम्र में उसने हाई स्कूल से ड्रॉप आउट करने का फैसला किया। माँ बाप ऑब्वियसली खुश नहीं थे, बहुत मेहनत कश लोग थे और वो चाहते थे कि उनका लड़का जो है एटलीस्ट फैमिली के हालात बदले, कुछ करे। जब स्कूल ड्रॉप आउट की बात आई तो माँ बाप ने बहुत गुस्सा किया, पर जोसेफ ने बोला देखिए मेरे पास एक जॉब है, मैं ऐसी ड्रॉप आउट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब है, मेरा यकीन कीजिए। एंड जब
ये कहा जोसेफ ने तो माँ बाप ने, हाँ छोड़ो क्या कर सकते हैं, जब तक हम करेंगे बेटा तब तक हम करेंगे। और जोसेफ ने भी जो कहा वो बात सच थी, उसको नौकरी मिल गई थी। उस वक्त बहुत सारी नौकरियां निकलती थी और उन्हें एक स्मार्ट लड़का जो ठीक ठाक दिखता हो और बात करने में स्मार्ट हो वैसा बंदा चाहिए था। तो एक जॉब जो उसकी लगी वो थी डेट कलेक्टर की। डेट कलेक्टर वो लोग, जैसे आपने लोन वोन उठाया, आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आपके पास एक कॉल आती है ना, पैसे कब दे रहे हो, है ना, उधार इकट्ठा करने के लिए फला फला कंपनीज के लिए। तो एक लोन शार्किंग फर्म के लिए शिकागो में ही डेट कलेक्टर का काम मिला था 17 साल की उम्र में जोसेफ को। एक साल उसने वहां पे लग के काम किया, मजा नहीं आ रहा था उसको। काम उसका बड़ा सिंपल था, डेट कलेक्टर का काम क्या होता है बताओ, डेट कलेक्टर वो कॉल करता था लोगों को, उनसे पैसे निकलवाता था और कभी कभी अग्रेसिव थोड़ा पर्सुएसिव हो जाता था जब जरूरत पड़ती थी। पर उसने नोटिस किया, उसने एक और चीज नोटिस करी कि उसके जो साथ वाले लोग हैं, उसके साथ काम करते हैं, सेम लाइन में हैं, डेट कलेक्ट करते हैं, कैशियर्स हैं, बुक कीपर्स हैं, वो जब भी उधारी वापस ले रहे होते हैं उनमें से एक कट, एक अमाउंट अपने पास रख लेते हैं। यानी ये लोग रिकॉर्ड से खेल रहे हैं और अपने सारे ट्रैक्स कवर कर रहे हैं। जोसेफ ने फैसला ये किया, जस्ट इमेजिन, एक 18 साल का लड़का इनके बीच गया और इनसे बोला मैं बॉस को बता दूंगा। सब डर गए, अरे भाई ऐसा मत करियो, हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। बोला मारने वारने की बात मत करो, मैं बॉस को बता दूंगा पर मुझे कट चाहिए, मुझे भी कमाई करनी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुंह एकदम बंद रखूंगा। और ये बात जोसेफ ने बड़ी स्मार्टली कैसे प्ले करी बताता हूं। जोसेफ ने ये बात इन सब चालबाज लोगों से जो करप्शन कर रहे थे, इन सबसे अलग अलग जाके बात करी और इस तरीके से बात करी कि इन सब लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं करी, समझ रहे, द जीनियस ऑफ इट। हुआ क्या कि ये सब के सब अग्री कर चुके थे कि ठीक है दे दूंगा, एंड सब के सब कलीग्स इसके, इसको जो भी कमाई कर रहे थे उसका कट दे रहे थे। और सैलरी से कहीं ज्यादा अमाउंट बनाने लगा था जोसेफ। और ये क्राइम का उसका पहला सबक था, जैसे पहला चैप्टर। वो एक बात बहुत अच्छे से समझ गया था, वो समझ गया था कि लोग अपने राज दफन करने के लिए पैसे देते हैं, बस इंसान को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि वो राज निकलवाना जानता हो। एक तरीके से वो अपने कोवर्कर्स को ही ब्लैकमेल कर रहा था। इट वॉज इन फन, उसे मजा आना बंद हो गया था आफ्टर अ वाइल। एंड जोसेफ को लगा था कि आई जस्ट वॉन्ट मोर, ये क्या है ये। और उसने फैसला किया कि ऐसे तो बहुत सारे और भी लोग होंगे, और वो निकल गया, वो निकल गया शिकागो के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। और वहां पे उसे अलग अलग तरह के लोग मिले। अमूमन एक आम आदमी इस दुनिया में जाएगा तो डर जाएगा, यानी कि सोबत में आ जाएगा। पर जब जोसेफ इनकी दुनिया में गया तो जोसेफ विक्टिम नहीं, जोसेफ तलाश में निकला था। उसने वहां पे कॉन मैन ढूंढे जो धोखाधड़ी करते हैं, गैम्बलर्स ढूंढे, चोर ढूंढे। जोसेफ इनसे सीख रहा था, पढ़ रहा था इन्हें बहुत क्लोजली। इसी दौरान उसकी एक बंदे से मुलाकात हुई, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये किस्सा बड़ा कमाल का है। उसकी मुलाकात हुई एक शख्स से जिसका नाम था डॉक मेरीवेदर, ठीक है। डॉक मेरीवेदर एक बड़ा ही कॉमन कॉन आर्टिस्ट वैसा टाइप का था। ये बंदा क्या करता है, जो हम बसों में देखते हैं ना इंडिया में, आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान में लोगों ने देखा होगा, ये वैसे ही किस्म का कॉन आर्टिस्ट था। ये क्या करता था, ये टाउन के बीच में चला जाता था, चौराहे पर खड़ा हो जाता था, इसके हाथ में एक बॉटल होती थी और बॉटल को ऊपर करके अपने एक हाथ से, और बोलता था सबको चौराहे पे, आ जाओ एक दवाई लेके आया हूं, मिरेकल चमत्कारी दवाई है, चमत्कारी दवाई, आ जाओ ले जाओ। और पूरे लोग जब इकट्ठे होते थे तो उनको लेक्चर देता था, लंबा चौड़ा लेक्चर कि ये दवा आपके टेप वॉर्म्स, आपके हाजमे के लिए बहुत बढ़िया है, शानदार है। और लोग 1800s का जमाना, इमेजिन, लोग बॉटल्स पे बॉटल, दर्जनों बॉटल खरीद लेते थे। और बॉटल में क्या होता था, बारिश का पानी और जरा सा एल्कोहल मिला हुआ, दैट इज इट। मेरीवेदर ने एक चीज सीख ली थी, लोग यकीन करना चाहते हैं, बस उन्हें एक बढ़िया कहानी, एक बढ़िया पिच दो और वो बिछ जाएंगे, सब लुटा देंगे।
और डॉग मेरीवेदर ने जोसेफ को अपना असिस्टेंट बना लिया था। अब जोसेफ का काम बड़ा सिंपल था, जोसेफ का काम होता था कि पब्लिक में जाकर बताना कि दवाई ने उस पर बहुत बेहतरीन असर किया, वो पहले बहुत परेशान था, अब दवाई ने उसकी जिंदगी बदल दी, इतना जबरदस्त असर किसी दवाई ने आज तक नहीं किया, और लोग जोसेफ की बातों में आ जाते थे। जोसेफ वॉज वेरी वेरी वेल स्पोकन और फिर इकट्ठा हो जाते थे, तो दवाई बेचने में ये पूरे ऑपरेशन में और आसानी होती थी। जोसेफ ने भी सीख लिया था कि लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे उनका भरोसा जीता जाए, कैसे लोगों के बीच में अर्जेंसी और इमरजेंसी पैदा की जाए, और कैसे सामने वाले को यकीन दिलाया जाए कि उसे जो मिल रहा है वो दुनिया की सबसे बढ़िया चीज है। जोसेफ डॉग मेरीवेदर के साथ कुछ वक्त तक रहा और ये फेक मेडिसिन, नकली दवाई, विच इज नथिंग बट रेन वाटर एंड अल्कोहल, ये $1 पर बॉटल बेची जाती थी और वो $1 से खुश नहीं था। जोसेफ को चाहिए थे हजारों चाहिए थे, और उसने अपना ही एक स्टाइल डेवलप किया। आगे एक ट्रिक वो सीख रहा था, ट्रिक जो सीखी उसने लोगों को देख के सीखी और समझ गया। बड़ी सिंपल ट्रिक थी, एकदम रिस्पेक्टफुल दिखो, दिखना जरूरी है, और एक्ट ऐसे करो कि जहां पे खड़े हो वहां तुम बिलोंग करते हो, और कॉन्फिडेंटली बात करो। अगर तुमने मान लिया है कि तुम एक कामयाब आदमी हो तो दुनिया भी मानेगी कि तुम हो, और यह बात जोसेफ बहुत अच्छे से समझ गया था। जानता था कि उसके बाद जो भी बोला जाएगा वो हक की बात लगेगी। पर जब अर्ली 1900s आए तो जोसेफ ने अपनी बहुत बहुत इज्जत बना ली थी इन क्रिमिनल्स के बीच में इन शिकागो। वो बहुत स्मार्ट था, बहुत स्मूथली बात करता था, जुबान ऐसी कैंची की तरह चलती थी कि वो अपने लफ्जों की धार से कहीं से भी निकल सकता था और किसी भी महफिल में जाके बैठ सकता था, और इसी वजह से, या यूं कहें लोगों की वजह से, उसे एक नाम मिला, एक निकनेम मिला 1903 में, 1903 में। जोसेफ दरअसल एक आदमी के लिए काम करता था जिसका नाम था फ्रैंक होगन, और ये दोनों टोपी बनाते थे और टोपी बना के आधा आधा बांट लेते थे। एक दिन एक और क्रिमिनल था जिसका नाम था बेथ हाउस जॉन कॉफलिंग, उसने दोनों को काम करते हुए साथ में देखा और वो हंसने लगता था। बोला, यार तुम दोनों एक पॉपुलर कॉमिक्स की तरह हो, होगन एलीज एंड द येलो किड, और फ्रैंक होगन का नाम तो होगन तो था ही, तो दूसरा कौन हुआ? जोसेफ बन गया द येलो किड। जोसेफ को इस नाम से बहुत चिड़न होती थी क्योंकि इस नाम के पीछे लोगों ने ना जाने क्या क्या कहानियां बना दी थी कि एक बंदा है उसे येलो किड कहते हैं, वो येलो बूट्स पहनता है, येलो वेस्ट पहनता है, येलो टोपी लगाता है, मगर ये सब झूठ था, मजाक था, और वो किसी को कैसे बताए कि उसको जो नाम मिला है वो एक कॉमिक बुक से मिला है, उसे थोड़ी शर्म आती थी। पर उसे ये भी समझ में आ गया था कि नाम मिलना शोहरत दिलाएगा, और शोहरत मिलेगी तो काम और बढ़िया हो सकता है। अंडरवर्ल्ड के लोग अब उसे जानते थे इसी नाम से, वो अच्छे से जानते थे कि जोसेफ कौन है, और वो जोसेफ के साथ काम करना चाहते थे क्योंकि वो कामयाब था। इसके बाद जो भी कुछ हुआ वो बड़ा कमाल का है, प्लीज इस कहानी को छोड़ के मत जाइएगा। ये बंदा फिर जब चालू हुआ है, इसने अपने आप को तैयार किया, और तैयार भी ऐसा किया कि पूरी की पूरी अंडरवर्ल्ड को हिला के रख दिया। एक बार ये अपने आप को पूरी तरह से चदा चदा के सूट बूट सब पहन के गया एक जगह पे, एक अमीर आदमी के पास, और वहां जाके उसने बातचीत शुरू करी। वो हमेशा ढूंढता था यह बंदा बैंकर हो, अमीर हो या बिजनेसमैन हो, और उनके पास जाके बोलना शुरू किया कि एक सिस्टम है सर, रेस जो होने वाली घोड़े की ना, उसका रिजल्ट कुछ वक्त के लिए ट्रांसमिट होने से पहले आप मुझे बता दीजिए, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा। और वेस्टर्न यूनियन टेलीग्राफ ऑपरेटर उस टाइम पे होते थे जिनके पास घोड़ों की रेसेस की अंदर की खबर होती थी, तो उनकी तरह वो बन के जाता था, जिसका मतलब ये था कि उन्हें पता चल जाएगा कौन जीता इससे पहले कि बुक मेकर जीत के अनाउंसमेंट कर दे।
तो बैटिंग कर सकते हैं और हर बार जीतेंगे ही जीतेंगे। तो अमीर आदमी राजी हो जाते थे, राजी होते थे तो उन्हें बोलता था कि कितना लगाना चाहते हैं आप, कितना लगाऊं मैं। जोसेफ उन्हें एक नकली बैटिंग पार्लर की तरफ ले जाता था और यह पार्लर बड़ा शानदार था। इसके अंदर जाने के बाद नजर आता था सारे एसोसिएट्स बैठे हुए हैं और सबने मिलकर ही प्लान बनाया था। एकदम असली लगता था, फोन रिंग कर रहे हैं, लोग पर्चियां काट रहे हैं, पर्चियों पे लिख रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है बैटिंग ही चल रही है। पर ये सारे के सारे चोर थे। उस कमरे में सिर्फ एक आदमी बेवकूफ होता था और वो था वो अमीर आदमी जो खुद चल के आया है। अब नाउ लिसन टू द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये लोग मिलके अमीर आदमी को 2-3 मरतबा जिता देते थे जानबूझकर ताकि वो खुश हो जाए और उसे लगता था आई एम सो स्मार्ट, उसे फिर बड़ी बैट लगवाते थे। अभी जो अमीर आदमी होता था वो सामने रख देता था जोश जोश में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और उसी टाइम पड़ जाती थी रेड पड़ जाती थी। कॉन्ट्रैक्ट वेस्टर्न यूनियन के लोग पकड़े जाते थे, टेलीग्राम में काम करने वाले लोग पकड़े जाते थे, मगर हर तरह से ये आदमी पैसा हार जाता था। कमाल की बात जानते हैं ना, जीनियस पार्ट में क्यों इंप्रेस्ड हूं चीज से, कमाल की बात यह है कि अमीर आदमी पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद चीट कर रहा था बुक मेकर को। उसे यकीन होता था कि उसने तो खुद ही क्राइम कर दिया है और वो हार मान लेता था, कुछ बोलता ही नहीं था। ये पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन किया था येलो किड उर्फ जोसेफ ने। विक्टिम को लगना चाहिए कि वो खुद एक क्रिमिनल है जिसे लूटा गया है, वो खुद गिल्ट में जी रहा है, इसलिए वो चुप रहेगा और सिस्टम का इस्तेमाल करने से डरेगा। कभी ये सेम सिस्टम हॉर्स रेसिंग में अप्लाई करता था जोसेफ और कभी सेम सिस्टम बॉक्सिंग मैचेस के दौरान और कई दफा स्टॉक में भी, पर स्ट्रक्चर बेसिकली सेम ही रहता था। क्या अमीर आदमी को कन्विंस करना है, इसके हाथ जो है अंदर की खबर दे देनी है इसको कि भाई आपको अंदर की खबर मिलेगी, फिर उसे 1-2 मरतबा जिता दो और फिर बड़ी बैट करवा दो और फिर लुटवा दो। जोसेफ उर्फ येलो किड ने एक और सिस्टम बनाया था। नाउ दिस वन वाज अ क्रेजी सिस्टम। सिस्टम बनाया था ऑयल फील्ड से जुड़ा हुआ। वो एक जियोलॉजिस्ट बनता था, उसने स्कूल में मैप बनाने सीखे थे, ड्रॉप आउट होने के बावजूद वो जानता था कि मैप्स कैसे बनते हैं, फिर उसने पढ़ा भी था कि जियोलॉजिस्ट कैसे बात करते हैं, और फिर जियोलॉजिस्ट बनता था, एक ऑयल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनता था और फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के यहाँ जाता था। उन्हें बताता था सर टेक्सास और ओक्लाहोमा में एक ऑयल फील्ड के बारे में पता लगा है मुझे, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, ये जियोलॉजिकल रिपोर्ट है और यहाँ पे काफ़ी तेल निकलने वाला है, तो आप देख लीजिए इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एन इन्वेस्टर। और उनके सामने एक नकली जियोलॉजिकल सर्वे रख देता था, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते थे। इतना ही नहीं, वो उन्हें ऑयल फील्ड दिखाने ले जाता था, हवा में बात नहीं चल रही है, वो ऑयल फील्ड दिखाने ले जाता था, मगर वो एक बंजर जमीन के सिवा कुछ नहीं होती थी, वो जगह वाज जस्ट नथिंग। और कई मरतबा जब उसे जेन्युइनली दिखाना होता था तो थोड़ा बहुत रेंट लेके जमीन के टुकड़े भी ले लेता था। इन्वेस्टर्स देखते ही इंप्रेस हो जाते थे एंड 10,000, 50,000 और भी ज्यादा डॉलर्स इन्वेस्ट करने लगते थे। जोसेफ उर्फ येलो किड पर इन चेक्स को डिपॉजिट करता, इन कैश कराता और जैसे ही कैश मिलता वो गायब हो जाता। जब तक इन्वेस्टर्स को समझ आता तब के कोई ऑयल फील्ड नहीं है, कंपनी है ही नहीं, तब तक देर हो चुकी होती। जोसेफ किसी और जगह किसी और नाम से किसी और सिस्टम को चला रहा होता। जोसेफ उर्फ येलो किड सिर्फ यहां नहीं रुका, उसने रियल स्टेट में भी अपने कदम रखे। वो सूट बूट पहनता और बताता था खुद को कि मैं एक डायरेक्टर हूं ऑफ अ डेवलपमेंट कंपनी और प्लॉट्स बेचता हूं। वो लोगों से रिकरिंग फीस लेता था और सारी फीस अप फ्रंट और फिर गायब। और उसने टाइम पे एक बड़ा मजेदार किस्सा है, उसने एक टाइम एक ऐसी मशीन बनाई जो डॉलर्स को कॉपी करती है, फोटोकॉपी करना सेम चीज। वो इस मशीन को लेके अमीरों के पास जाता था और बोलता था आई एम अ केमिस्ट, आई एम बेसिकली वर्किंग ऑन अ मशीन, और वहां पे जाके वो जानबूझ के करेंसी दिखाता था, डुप्लीकेट करता था। देयर वाज अ ट्रिक कि पीछे के सेक्शन से एक असली नोट और नकली नोट, सामने वाले को जो उसने नोट दिया है कॉपी करने के लिए वही नोट उसे पकड़ा देता था वापस, और फिर एक और नोट
जब वो अपना नोट खुद अपने हाथों में देख रहा है, पीछे से एक और नोट आगे करता था, बोलता देखिए सर कॉपी कर दिया ना, नंबर भी चेंज, और डुप्लीकेट करने का बताता था। सेम नोट जो सामने वाले ने डुप्लीकेट करने के लिए दिया है, वही नोट मशीन से निकाल के वापस उसी के हाथ में दे देता, देखा सर डुप्लीकेट। और इस डेमो के बाद इन्वेस्टर्स ना सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स देते थे, बल्कि मशीन खरीदने की बातें भी करते थे और खुद खरीदते थे मशीन। और येलो किड वहां से फिर भाग जाता था, सिर्फ भागता नहीं था जोसेफ, सिर्फ भागता नहीं था, वो पुलिस वालों को बताता था सर एक बंदा है वो नकली करेंसी छाप रहा है, पकड़ लो उसको। अमीर आदमी हिल जाते थे, पूरे के पूरे एविडेंस मिटाने में लगते थे कि किसी को पता ना लगे। और इतने में तो जोसेफ वॉज लॉन्ग गॉन। और मजे की बात यह कि जोसेफ लोगों को एक और चीज बेचता था। दिस वन इज क्रेजी। वो लोगों को बोलने वाला कुत्ता बेचता था, सही सुन रहे हैं आप, अ स्पीकिंग डॉग। वो एक कुत्ता खरीदता, उसे ट्रेन करता था और एक क्यू देता था, मतलब वो कुछ बोलेगा तो कुत्ता भौंकेगा, वो ये कुछ बोलेगा तो कुत्ता भौंकेगा। और वो फिर अमीर अमीर औरतों से मिलता था पार्क में जाके और उन्हें बताता था कि दिस डॉग कैन स्पीक, और वो कहती थी शो मी। और उसके बाद वो जो बोलता था कुत्ता क्योंकि सीख चुका है तो उस ट्रेंड कुत्ते को उसी टाइम भौंकना आ जाता था, वो उस टाइम में भौंक देता था और उन्हें लगता था वाओ दिस डॉग अंडरस्टैंड्स वेरी नाइस, कितने देने बस। उसके बाद ये ले जाती थी वो कुत्ता खरीद के, ये तो बोल सकता है, लोग दीवाने हो जाते थे। और घर जाकर वो कुत्ता एकदम चुप, क्योंकि उसे क्यू देने वाला मालिक तो अब उसके पास है नहीं। सिग्नल कौन देगा, ट्रेन किसने किया जब वही नहीं है, तो कुत्ता फिर एकदम शांत। बेसिकली येलो किड उर्फ जोसेफ ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करता था, उसे समझ आ गया था कि लोग ध्यान से सुनिएगा, लोग मानना चाहते हैं कि वो बाकियों से ज्यादा स्मार्ट हैं और इसलिए वो शॉर्टकट मारेंगे और यकीन करेंगे कि बिना कुछ दिए उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है। और ये यकीन अगर आपने करवा दिया सामने वाले को तो वो सब कुछ लुटा देगा। येलो किड उर्फ जोसेफ ने अकेले ही काम किया, अकेले काम नहीं किया, हमेशा अपने साथ लोगों को रखा, हमेशा। उसने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा, उसने डॉक मेरीवेदर से सीखा बेसिक कैसे स्कैम करते हैं, बिली वॉल एक शख्स था उनसे मिला, उनसे सीखा कि पार्लर्स कैसे चलवाते हैं और बेटिंग पार्लर उनसे चलवाया। फिर एक बंदा था फैट्स लेविन, उससे सीखा कि और ये अमीर लोग किस तरह से बटरिंग वर्ड्स यूज करते हैं। तो बस इनमें और लोग भी होते थे, और लोग जैसे कि जिनको अंदर का आदमी बनना आता था, अंदर की खबरें पता होती थी। इसमें अमीर आदमी को ढूंढने वाले लोग होते थे, इसमें एक्टर्स होते थे जो अलग अलग रोल करते थे, ये सारे के सारे काम करते थे, लेकिन मास्टरमाइंड सिर्फ एक था, जोसेफ वेल द येलो किड। एवरी डिटेल वो प्लान करता था, ऐसे नहीं, वो कहता था डिटेलिंग जरूरी है, उसमें अकल लगाना जरूरी है। उसका मानना था पहले जिसे लूटना है उसे एक सब्जेक्ट की तरह समझो, फिर उसे क्या चाहिए, उसकी क्या खामियां हैं, क्या कमी उसे महसूस होती है, फिर आगे के सिनेरियोस पैदा करते चले जाओ धीरे धीरे। उसे ये लगना चाहिए सामने वाले को कि वो कंट्रोल में है। आप हैरान होने वाले हैं, सबसे फेमस टारगेट जोसेफ के थे एंड्रयू मेलन्स ब्रदर। इन केस यू डोंट नो, एंड्रयू मेलन उस टाइम पे अमेरिका का सबसे अमीर आदमी में से एक हुआ करता था, इफ नॉट द रिचेस्ट। वो एक बैंकर था, इंडस्ट्रियलिस्ट था और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी था। उसका एक भाई भी था, वो भी इक्वली अमीर था, दौलतमंद था, लेकिन बस दौलत के साथ केयरफुल नहीं था, और जोसेफ को उसके बारे में पता लग गया था। जोसेफ ने अपना भेस एक बार फिर से बदला और बन गया एक माइनिंग एक्सपर्ट। वो माइनिंग एक्सपर्ट बनके एंड्रयू के भाई से मिला और उसे बताया एक सिल्वर माइन के बारे में, There is a silver mine in Colorado, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। उसके सामने अगेन जियोलॉजिकल फैक्ट्स रिपोर्ट्स, जो भी नकली रिपोर्ट तैयार कर सकता था जोसेफ वो रखी, नकली माइनिंग रिकॉर्ड्स। और एंड्रयू के भाई ने इन्वेस्ट किए 500,000
डॉलर्स, हाफ अ मिलियन. उसके बाद जोसेफ और येलो किड वहां से गायब. अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए 1900s में $500,000 आज के कितने हो गए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं. जोसेफ जो था वो एक बात समझ गया था कि कपड़े कितने मैटर करते हैं, इंसान की साइकोलॉजी उसे कितना अंधा कर देती है. जोसेफ कस्टम सूट्स पहनता था, एकदम बढ़िया चमचमाते जूते पहनता था और वो एक इज्जतदार बिजनेसमैन दिखना चाहता था और वो दिखता भी था, या फिर एक वेल्दी एरिस्टोक्रेट. वो किसी भी फैंसी जगह जाता था, बैंक में या कोई भी फैंसी रेस्टोरेंट, तो वहां सामने वाले को लगता था भाई ये बंदा तो यहीं होना चाहिए, ही बिलोंग्स हियर. और उसने सीख लिया था कॉन्फिडेंस की ताकत बहुत कमाल की होती है. अगर तुम्हें यकीन है कि तुम जिस जगह खड़े हो उस जगह तुम बिलोंग करते हो तो तुम करते हो और लोगों को तुम्हारी सुननी पड़ेगी. जोसेफ ने ये अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे काम किया था. एक दफा बैंक का वॉल्ट खुला हुआ था और वहां पे लोग काम कर रहे थे. जोसेफ सूटेड बूटेड पूरी तरह से तैयार और खुद चलता हुआ. नॉर्मली बैंक के एम्प्लॉयज देख रहे हैं कि एक बंदा जिसे वो जानते भी नहीं हो बैंक के वॉल्ट की तरफ जा रहा है और वहां से उसने गोल्ड बिस्किट उठाया, एक बहुत ही फैंसी वेलवेट पैक उठाया, उसके अंदर वो गोल्ड बार रखा और वहां से सबकी नजरों के सामने चलता हुआ गया. और सबको क्या लग रहा था, अथॉरिटी होगी, चेक करने के लिए आए होंगे. ही हैड दैट करिश्मा, दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. उसका मेन टारगेट वो लोग होते थे जिन जो लालची हैं. जोसेफ वेल ने फेमसली एक बात कही थी कि मेरा हर विक्टिम, मेरा हर शिकार वही है जिसके दिल काले हैं, जिनके भी दिल काले हो मेरे शिकार हैं. मैं कभी ईमानदारों को नहीं लूटता. उसने चीटर्स को चीट करा जो सिस्टम से खेलना चाहते थे और फिर उनसे खेला. वो उनके साथ उनका शिकार करता था जो जल्दी बढ़ना चाहते हैं, जल्दी कमाना चाहते हैं बिना मेहनत के. उसके टारगेट्स थे वो जिन्हें लगता था कि वो स्मार्ट हैं बाकियों से, क्योंकि इफ यू आर चीटिंग तो आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, आपको तो चीट किया गया है ना. और ये रेसिपी, इस रेसिपी को समझ गया था जोसेफ. उसके विक्टिम्स को लगता था कि वो खुद एक क्रिमिनल है तो सब लुटा देते थे और बाद में एक्सेप्ट भी कर लेते थे कि हाँ जी मेरी गलती है और चुपचाप बैठे रहते थे. लेकिन कई मर्तबा क्लोज कॉल्स भी हुई, कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि जोसेफ फंसा भी, गैंग वालों ने, खुद के लोगों ने उसे फंसा दिया. पुलिस ने उसे पकड़ा भी, ही वॉज अरेस्टेड, 3 साल जेल में भी रहा, मगर उसे पता था इट इज नथिंग नथिंग. बाहर आते ही वॉज अगेन इन हिज गेम. पर इतने साल ये करने के बाद अभी डॉलर्स की बात नहीं रह गई थी, अब उसे मजा आने लगा था. वो बताना चाहता था कि उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो तुम. येलो किड उर्फ जोसेफ 1900 से लेकर 1930 तक, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, डेटाबेस नहीं थे, इंस्टेंट बातचीत नहीं थी, पुलिस वालों के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था, इस टाइम शिकागो में, न्यूयॉर्क में कोई किसी को ढूंढ नहीं सकता था, उस टाइम पे बोलबाला था येलो किड का. कोई तरीका नहीं था चेक करने के बाद में, इसलिए नहीं. 1940s में जब आए जोसेफ वेल द येलो किड, बूढ़े हो चुके थे थोड़े, सब बदल रहा था, कम्युनिकेशन तेज हो गया था, पुलिस तेज हो गई थी और अब जोसेफ जो थे, कुल मिला के बीच में सब मिला के 6 साल की सजा काट चुके थे. टोटल अमाउंट $8 million उस टाइम का वो लूट चुके थे. एंड उन्होंने बहुत ही चिल मोड में कहा कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं. अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिएगा. 1948 में जोसेफ वेल उर्फ येलो किड 73 साल के थे, 73 years old. ही डिड समथिंग रियली रियली डिफरेंट, बहुत स्मार्ट मूव. जोसेफ वेल ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें उन्होंने सब कुछ कबूल लिया. जस्ट इमेजिन, इतना करने के बाद खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसमें सब कुछ कबूल लिया. उसमें हर स्कीम और हर विक्टिम का नाम था. बुक का नाम येलो किड वेल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अमेरिकाज मास्टर स्विंडलर.
उसमें उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दी है, कुछ पन्नों में ये भी कहा है कि मैंने कभी ईमानदार को नहीं लूटा, सिर्फ काले दिल वालों को लूटा जिनके दिल में मैल था। उन्होंने लिखा इन लोगों के लिए कि उन्हें चाहिए था कि कुछ ना देकर सब पा लेना, और मैंने उनसे सब ले लिया उन्हें बिना कुछ दिए। दिस इज अ वेरी फेमस कोटेशन इन हिज बुक। ये बुक पब्लिश हुई, नाउ लिसन टू दिस, बुक पब्लिश हुई और सेंसेशन बन गई। एक कॉन मैन, एक बहुत बहुत शातिर कॉन मैन, सब कुछ कबूल रहा था, सब कुछ, मगर उसके विक्टिम्स आगे नहीं आए गवाही देने के लिए, क्योंकि विक्टिम्स आधे तो गुजर चुके थे और बाकी शर्मिंदा थे, आगे आ नहीं सकते थे, क्योंकि उनका ईगो उन्हें इजाजत नहीं दे रहा था कि अरे मुझे कैसे लूट सकता है कोई। तो कोई आगे ही नहीं आया और कुछ भी नहीं हुआ। जोसेफ ने 73 साल की उम्र में यह किताब लिखकर भी डॉलर्स कमा लिए, भर के कमाई की, और अपना ही कन्फेशन, दुनिया में पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा कि किसी ने अपना खुद का कन्फेशन बेच के कमाई करी है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एयर आया 1956, जब वो 81 साल के हो चुके थे, अब वो लिटरली बूढ़े हो चुके थे, 81 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने टेस्टिफाई किया सेनेट्स के सामने, बहुत सारे अथॉरिटीज, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने गवर्नमेंट को मास्टर क्लास दी कि एक कौन मैन, एक शातिर आदमी किस तरह से काम करता है, और बिना किसी फिल्टर के वो बात करते थे। जितने लोग सामने बैठे थे, बाय द वे बड़े बड़े महकमों से थे, सब के सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई बहुत ही कमाल का जादूगर आ गया हो, कोई जादू कर रहा हो। एक बहुत मशहूर राइटर थे सॉल बेलो, उन्होंने इंटरव्यू लिया जोसेफ वेल का, और उन्होंने लिखा जोसेफ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी। उन्होंने बोला उनको डिस्क्राइब करते हुए कि बे इंतहा चार्मिंग है वो आदमी, हद से ज्यादा इंटेलिजेंट है और शर्म बिल्कुल नहीं है। जोसेफ वेल को किसी बात का कभी मलाल नहीं था, उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सबसे स्मार्ट हैं, एंड नोबडी कुड क्वेश्चन, और वो खुला घूम भी रहे थे। जोसेफ वेल द येलो किड ने दुनिया को अलविदा कहा 26 फरवरी 1976, 26th February 1976।

जो सिर्फ का सिंपल रूल था, सामने वाले को अगर लगा कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है तो वो गया। आज हमें लगता है ना कि हम काफी स्मार्ट हैं, है ना, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी आ गई जी, क्या क्या नहीं आ गया, फिर भी स्कैम होते हैं ना, फिर भी फ्रॉड होते हैं ना, तरीके बदले हैं, पर हमारी साइकोलॉजी आज भी वहीं की वहीं है। हमें लगता है कि हमसे तेज कोई है ही नहीं। जोसेफ द येलो किड 100 साल जिए और पीसफुली इस दुनिया से चले गए। ही मेड मिलियंस बाय द वे, बेस्ट सेलिंग बुक उस टाइम की उन्होंने लिखी, एंड अपने दिमाग में वो जीत चुके थे। उनसे पूछा गया कि क्या आपको कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है, तो उन्होंने बोला नहीं, कोई पछतावा नहीं है, मैंने एग्जैक्टली जैसे चाहा था वैसे ही जिया हूं मैं। ही आउट स्मार्टेड दोज हु थॉट दे वर स्मार्ट। जोसेफ के विक्टिम्स की डेथ जोसेफ के मुकाबले बहुत गिल्ट में और बहुत बुरी हुई, लेकिन जोसेफ ने उनकी प्राइड को भी दफन किया उनके साथ, एंड ही नेवर फेल्ट शेम। विक्टम्स चाहते थे जल्दी पैसा बनाना, शॉर्टकट लेना, और जोसेफ वेल उर्फ येलो किड चाहते थे कि वो बस ट्राई करें, और हारेंगे तो ब्लेम भी जोसेफ पे नहीं आएगा। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जोसेफ वेल उर्फ द येलो किड। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैंने पूरी कोशिश करी है सब कुछ कवर करूं। आई एक्चुअली रेड द बुक, नॉट रेड द बुक, मतलब ऑडियो सुना मैंने। कमाल की किताब है। तो आपको ये कैसी लगी स्टोरी, आई डोंट नो, मैंने पूरे दिल से सुनाई है आपको, और बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है इस पर, तो प्लीज़ उस पढ़ाई मेहनत एफर्ट की नंबर दे देना, और कुछ नहीं। 666-22-107 666-22-107 आपके मैसेज के इंतजार में। आज तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107
2: Time check. Time check. अस्सलाम वालेकुम, दुआ वाला कबीर FM 107 पे। मॉरल हर कहानी में मॉरल नहीं होता है, हर कहानी दिस इज अ रियल स्टोरी। मैं आपको फिक्शनल कहानी नहीं सुना रहा, फिक्शनल सुना रहा होता तो फिर बात कहता मैं। एक बार की बात है, एक हाथी और चींटी फिर दोनों दोस्त हो गए। दीज आर नॉट मॉरल स्टोरीज, दीज आर रियल स्टोरीज। और मॉरल चाहिए तो इसमें है मॉरल, है मॉरल, ढूंढ के देखिए। बाकी जिन्होंने आज कहानी सुनी है तो बताइएगा कि कैसी लगी। आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू, क्योंकि लिटरली आज मुझे ऐसे फील आ रही है मैं एग्जाम दे के बाहर आया हूँ मैं। तो काफ़ी सारे मैसेज हैं, बहुत सारे मैसेज हैं। थैंक यू सो मच, इट रियली रियली थैंक यू सो मच। इतने प्यार से आपने मोहब्बत से भर भर के मैसेज किए, आई विल रीड ऑल ऑफ देम। पर पहले किधर गया यार, गाना था इधर लगा हुआ था भाई, देख नहीं रहे। हाँ ओके, इस गाने के बाद मिलते हैं सीधा, ठीक है। 8:10 बाय द क्लॉक, मधु हवाला कभी। मॉरल में ढूंढ भाई, मॉरल वाली कहानी इधर नहीं मिलती भाई, मोटिवेशन देने नहीं बैठे बन गया। गुड मॉर्निंग।

0: हाँ, तो विशाल मिश्रा बाय द वे इनको प्लीज सुनिएगा, अच्छा अच्छा आदमी है। अरिजीत सिंह ने तो रिटायरमेंट ले ली है, तो वो तो फिर भी रहेंगे, मगर विशाल मिश्रा इज अनदर आइकॉन। एनीवे, तो आज की स्टोरी के बाद कई सारे मैसेजेस हैं। स्टार्टिंग में सत्या भाई ने अभी क्योंकि मैसेज किया मुझे, फिर मैं कॉल भी लूंगा। सत्या भाई ने बोला कि भाई ऐसा आदमी, भाई क्या क्या क्या आदमी था भाई, और थैंक यू सो मच। उन्होंने बोला है कि बड़ा अच्छा लगा मुझे, सच में ऐसा लगा, पिक्चर देख रहा हूँ और आपने बता भी दी कि कौन सी पिक्चर इस पर बनी है, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर किसी को मॉरल चाहिए, क्योंकि पता नहीं लोगों क्यों मॉरल क्यों मिले हर कहानी से, मॉरल यही है भाई, अपने आप को सबसे स्मार्ट नहीं समझने का कभी नहीं, वरना जोसेफ आ जाएगा आज का यही है, ज़्यादा स्मार्ट समझोगे जोसेफ आ जाएगा, साफ सीधी बात। तो ज़रा मैं कॉल लगा रहा हूँ, किधर गए ए, अभी भाई ने मुझे बोला था, अरे नंबर किधर गया भाई, मुझसे नंबर ही खो गया है। अमन भाई का नंबर, अमन भाई आपका नंबर ही खो गया भाई मुझसे, आई एम सॉरी नहीं मुझे मिल गया है, एक सेकंड बस मिलाने जा रहा हूँ। हाँ तो ये इनका नंबर, तो ओवर स्मार्ट नहीं बनने का, इन केस यू रियली वांट अ मोरल ऑफ द स्टोरी। और अमन भाई को मैंने कॉल कर दिया, अमन भाई कितने आप, ओके हेलो अमन भाई, गए शायद बिजी हो गए, अमन भाई बिजी हो गए हैं, वो कॉल नहीं उठाने वाले मुझे लग रहा है। बाकी मैं दूसरे मैसेज जल्दी से पढ़ देता हूँ। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी सुन भाई अच्छी थी, ये बंदा में इतना कैसे कॉन्फिडेंस था कि सभी जगह पार हो गया, कुछ लोगों में होता है ये टैलेंट सिमिलर टू दिस। अच्छा कॉल आ गई, अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ जी वेलकम, सलाम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: मैं जी वधिया, बताओ।
1: जी ठीक हूँ
0: जी अमन भाई।
1: अच्छा आप कॉल कर रहे थे, मैं अभी बैठा ही था, अभी क्या तो आपकी कॉल आ रही है,
0: क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी बहुत बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी, अभी मैं टेंशन में पड़ गया कौन सी नंबर वन स्टोरी बनाऊं ये
0: भाई इस कहानी ने पढ़ाई मुझसे ज्यादा करा भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी, तो ढूंढ ढूंढ के मुझे इसके बाहर बहुत पीसेस इकट्ठा करने पड़े, तो पजल हो गई थी, बट थैंकफुली
1: जी चलिए सब सारा कुछ बढ़िया था, उसने जो भी किया, लेकिन जो मशीन बेचने वाली बात थी, मैं सोचता था कि कोई अपने एचआर मैनेजर को भी दे दे।
0: ना उसने सारी जो मशीनें बेची वो इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़पति थे, जो एक्चुअली में नोट छाप के करप्शन करना चाहते थे, तो उसने उन्हीं को नोट बेच के उन्हीं को लूट लिया, तो वो किया इस बंदे ने। तो ये
1: एक ट्विस्ट और था जो बोलने वाला कुत्ता बेचा उसने,
0: हाँ।
1: वो भी ट्विस्ट था।
0: इमेजिन कि 1900s में कौन सोच रहा था, ये कौन सोच रहा था कि ऐसा भी किया जा सकता है, ये अलग
1: बहुत एडवांस्ड
0: बहुत एडवांस्ड था यार, भी
1: कितना एडवांस था आदमी वो,
0: हाँ। और पूरे 100 साल जाए वो, 100 साल
1: अच्छा जी, तो ऐसे लोगों की उम्र भी लंबी। चलो मैं शुरू करता हूँ फिर धीरे धीरे
0: शुरू करता। इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, मैं वो बताना चाहता था पर वो कहानी बहुत लंबी हो जाती।
1: अच्छा जी,
0: हाँ उनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, मतलब ये
1: इनकी बायोग्राफी कहाँ से मिल सकती है हमें पूरी?
0: आप जोसेफ वेल की पूरी किताब है, पूरी ऑटोबायोग्राफी है, ऑनलाइन आप सुन भी सकते हैं जाके, पूरी एक ऑडियो बुक है इसकी, इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो द येलो किड जोसेफ, जब आप टाइप करेंगे जोसेफ वेल नाम है इनका, तो पूरी इनकी पूरी किताब खुद की लिखी हुई।
1: जी एक और पॉइंट मैंने लिखा था, मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था, मैं भूल गया, 3-4 पॉइंट मैंने भेजे थे आपको, एक तो ये डॉग वाला हो गया, एक मशीन वाला हो गया, एक और था,
0: क्या एक और कौन सा था?
1: नहीं तीन चार पॉइंट थे जो मेन, मैंने तभी वॉइस मैसेज भेजना शुरू कर दिया था आपको मैंने स्टार्टिंग में।
0: अच्छा अच्छा ओके ओके,
1: जो अजीब मतलब जहाँ पे ट्विस्ट शुरू होने लगे थे, यानी बाकी तो सब नॉर्मल चल रहा था, ठीक है, वहाँ पे जाता था वो कैसीनो वाला, हाँ जो ग्रुप बनाता था,
0: हाँ बेटिंग वाला, हाँ हाँ
1: वो बैटिंग, देखिए पूरी टीम बना के बैठा हुआ, वो
0: पूरी टीम बना देता है
1: और वो लोग सब लोग साथ दे रहे थे उसके गैंग वाले, हाँ सब। तीन साल जो जेल में गया तो वो बोला ये तो कुछ भी नहीं है,
0: हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब उसे वो ये मान के चल रहा था, उन्होंने किताब में मेंशन किया कि मुझे एक मरतबा तो जेल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सो वो उनके माइंड में पहले से था कि ये होगा, एंड ही वाज रेडी फॉर इट। तो अजीब किस्म का आदमी दवाई,
1: ये 3 पॉइंट मैंने नोटिस किए थे, एक डॉग वाला, जो बोलने वाला, एक मशीन वाला, और ये 3 साल जेल वाला
0: हाँ, तो
1: जो उसने अपना मोटिव हासिल करना था वो करके भी रहा, लेकिन उससे उसको नहीं जाना चाहिए था, तभी वो फुल चैंपियन, बड़ा चैंपियन हो जाता, लेकिन गया तो ठीक है, वो बोला कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम,
0: वो उसे पता था कि ये पार्ट है, ये तो एक मरतबा तो होगा, when he started doing it, so इसलिए कहानी और खास हो जाती है।
1: जी बहुत बढ़िया थी कहानी, बड़ा मजा आया सुन के, ये मतलब लंबी स्टोरी थी, अच्छी थी, लेकिन दिमाग जो है ना एकदम रीसेट हो जाता है सुबह सुबह।
0: थैंक यू सो मच अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत भाई,
1: जी कबीर भाई टेक केयर,
0: ओके थैंक यू थैंक यू। अरे एक सेकेंड कट गई कॉल। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे थे भाई? कुछ कह रहे थे?
1: मैंने कहा सुबह सुबह फिर नई स्टोरी के इंतजार में।
0: मैं कल देखो क्या आती कहानी, क्योंकि आज
1: कल का क्या है कल?
0: आई डू नॉट नो भाई, ढूंढूंगा जाके अभी मैं, कुछ ना कुछ से मिल ही जाएगा। ओके मेरा भाई,
1: ठीक है कबीर भाई, ओके
0: टेक केयर, टेक केयर। तो अभी क्या है कबीर भाई, आपको क्या आपको लूटने के लिए कौन सा रूप धारण करना पड़ेगा? भाई मैं तो मानता ही नहीं मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो मुझे नहीं लूट पाओगे। तो जो भी शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में मत करो, जोसेफ आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं। एक मैसेज है कबीर भाई, सेम सीन हमारे कानपुर में भी हुआ, जिसमें कि कपल ने अमीर लोगों को एक मशीन बेची थी, जिसमें बोला गया कि मशीन यूज करके वो यंग हो जाएंगे। अरे ये क्या चक्कर? अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम भाई,
0: कैसे हैं आप भाई साहब? आप साहब क्या?
2: हम तो बहुत बढ़िया है भाई, आपने जो स्टोरी सुनाई मजा आ गया यार।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये
2: मैं तो काफी सारी चीजें नोटिस की हैं इसमें माशाल्लाह, बंदा अपने नाम की तरह ही
0: है ना। कुछ अलग ही खोपड़ी थी, अलग ही खोपड़ी थी। बाकी कौन
2: नाम पे गौर किया है?
0: क्या क्या क्या गौर करना था नाम पे?
2: जोसेफ वेल, ही इज अ वेल।
0: ये मैं सोचता हूँ कि कितने कौन आर्टिस्ट होते हैं, पकड़े जाते हैं, लाइफ बदलती नहीं बदलती। ये आदमी 100 साल सुकून से गया एकदम दुनिया से, अलग ही था ये। तो इसलिए इसकी कहानी बहुत ज्यादा वो लगी कि बतानी पड़ेगी।
2: पहले 100,000 बेवकूफों के पीछे एक होशियार आदमी होता था, आजकल एक बेवकूफ के पीछे 100,000 होशियार आदमी है।
0: क्या बात कही यार, क्या बात कही आपने, परफेक्टली परफेक्टली। ये बात सच है। और जो इसकी ना जो ह्यूमन साइकोलॉजी की इसने जो बात बोली ना, कि जितने लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं ना, वही सबसे पहले फ्रॉड का शिकार होते हैं। यही है, उल्टा है।
2: हाँ यही तो है ना, हमारे पास भी बहुत सारे, किसी को बुरा नहीं कह रहा, बस मतलब जो मॉरल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई स्टोरी को बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेट करो, आपको मॉरल मिल जाएगा। सिंपल सी चीज है, अगर आपने जिंदगी में कोई भी काम करना है, वैसे तो बुरा ना ही करो तो बेहतर है, चाहे जो भी काम करो परफेक्टली करो,
0: दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मतलब आप इससे, आप वो कह रहे हैं वो तो चोरी करता था, अरे वो उसके आसपास तो देखो क्या कर रहा था, वो कॉन्फिडेंस सीखने वाली चीज है, होता नहीं है भाई लोगों में, अच्छे अच्छे लोगों में नहीं होता। वो बंदा 1900s में पूरी दुनिया को ऐसे ऐसे करके चला गया, तो वो कॉन्फिडेंस ही तो है ना, कुछ अच्छी चीजें भी सीखी जा सकती है ना उससे, तो डेफिनेटली।
2: उसकी लाइफ से कई सारी मूवीज बनी है, एक ही नहीं है, एक तो जो आपने बताई वो तो पूरी कम्प्लीटली है, लेकिन कुछ मूवीज ने थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े से ट्रिक्स लिए हैं।
0: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स,
2: जैसे समथिंग बॉन्डी एंड बबली एंड समथिंग, बहुत सारी मूवीज हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से, जिनको जो वाला
0: जो अच्छा लगा मिर्च मसाला डाल के पेश कर दिया। नहीं तो इसलिए नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई।
2: अरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वैसे मैंने इंडिया के एक बंदे का नाम सुना था, हर्षद मेहता एंड समवन।
0: आपने ओए लकी लकी हुए देखी? आपने ओए लकी लकी हुए देखी?
2: हाँ ऑब्वियसली देखी है।
0: हाँ, तो हमारे दिल्ली, हमारे दिल्ली का है भाई, बंटी चोर।
2: अच्छा
0: हाँ उसका, आप अगर, मैंने कहानी सुना चुका हूँ उसकी साल भर पहले, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी भी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि वो बहुत दफ़ा पकड़ा गया एंड थिंग्स वेंट रॉन्ग, बट या उसके बारे में पढ़ेगा आप, अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग, वेरी मसाले।
2: बहुत बढ़िया, मैंने इस बारे में मेरे एक दोस्त से डिस्कस किया था, ऐसे बैठे हुए थे हम लोग मजलिस में, तो बात चल रही थी, वो लोग की लकी हुए, तो मैंने बोला भैया मैंने ये वाली मूवी देखी है, इट इज डैम गुड। तो होते हैं ना कुछ लोग अपनी बढ़ाई करने वाले, अरे तुमने अब देखी है? मैंने तो ये मूवी 3-4 बार देख ली। बहुत बढ़िया भैया, मुझे तो एक ही बार में समझ में आ गई थी।
0: जोसेफ आ जाएगा, इतना स्मार्ट नहीं बनते हैं।
2: इसलिए बोल रहा है, मुझे एक ही बार में समझ में आ गई थी। आपको 3-4 बार लगे होंगे समझने के लिए।
0: नहीं बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर है, बहुत एंटरटेनिंग है,
2: काफी सारी मूवीज है, और सच में इसमें मॉरल तो है कि आप मतलब हर इंसान को कुछ ऐसे कौन आर्टिस्ट हैं जिनके, जहाँ से लोग अक्सर फंस जाते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
2: अक्सर फंस जाते हैं।
0: अरे तो अब तो ये इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, जो एक्चुअली में फैसिलिटी होनी चाहिए उसको उन्होंने अपना एरिया ऑफ वो बना दिया है कि ये तो मेरे हथियार है, वैसा वाला सिस्टम हो गया।
2: विदाउट एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली उसकी अपनी एजुकेशन और जो भी उसका फैमिली बैकग्राउंड रहा,
0: हाँ।
2: उस हिसाब से बंदे ने तो अपने काम में यानी महारत हासिल कर रखी है।
0: ऑफ कोर्स हाँ, मतलब थी यस
2: पर ऐसे लगा कि बद्दुआओं में 100 साल जी गया
0: क्या बात है, आज पंच पे पंच लाइन मार रहे प्रिंस भाई, बहुत बढ़िया मौका मिले तो जरूर।
2: हमारा तो कोई दोस्त है कबीर नाम का,
0: ये आपकी मोहब्बत है प्रिंस भाई, ऐसी
2: कुछ नहीं है, सीख ही लेते हैं कुछ ना कुछ।
0: पर मैं सजेस्ट करूंगा येलो किड, अगर आपको कभी मौका मिले गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो उसकी ऑटोबायोग्राफी जो है ऑडियो में अवेलेबल है, लिंक चाहिए तो मुझे बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा कभी,
2: लिंक जरूर सेंड करना।
0: डन
2: भाई, मैं जरूर पढ़ूंगा।
0: डन
2: एक अजीब सी आदत है चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की।
0: डन ये अच्छी आदत
2: तो
0: है,
2: ये तो काम ही है
0: ठीक है मैं भेजता हूँ।
2: थैंक यू भाई आपके वक्त का,
0: बहुत बहुत
2: और एवरी लिसनर्स वेरी वेरी वेरी वेरी गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत मोहब्बत प्रिंस भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और प्रिंस भाई का जो मैसेज कह रहे हैं यूज करके जाएंगे लोगों को, एक सेकंड। हाँ, यूसुफ भाई क्या कह रहे थे, यूसुफ भाई कह रहे थे सिमिलर टू दिस आपने स्टोरी सुनाई थी, लेकिन ये येलो मैन येलो किड तो सबसे आगे निकला, या ये सबसे आगे है एक्चुअली मैन, यूजली नरेशन इज ऑसम। और लिखा है वो नटवर लाल भी सिमिलर ही था ना। एनीवेज इतने अच्छे कमेंट्स, खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मेहनत रंग लाई अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। बाकी क्या है, जोसेफ नाम का आदमी चोर होता है क्या, नाम से क्या, नाम में कुछ नहीं रखा, मैं जब भी कहता हूँ ये मत कहो नाम में कुछ रखा है नाम में कुछ नहीं रखा बाबा, दुनिया बहुत आएगी चीज़ें। फरत भाई कह रहे हैं आज तो उतनी चीज़ खाने का पता लग गया था, सोच के रह गया कबीर भाई लंच में क्या खाना है, मैं खुद कन्फ्यूज्ड हूँ सच बताओ तो। भाई जबरदस्त स्टोरी है, जब तक लोग अपने आप को होशियार समझेंगे जोसेफ जैसे लोग उनको लूटते रहेंगे, आपका अंदाज़े भाई यहाँ कुछ सलाम, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई। मैं कहा नेक्स्ट स्टोरी कोई फेमस कुक या डिश पर सुना दें, सर्च करना कैसी कहानी सुननी है आपको आदिल भाई। फिर क्या है, चलो हम भी स्टोरी सेंड करें, आई नीड द स्टोरी, कॉल मी, ओके लेट मी कॉल यू, पर मैं पहले मैसेजेस पढ़ दूं। कबीर भाई आपको लूटने का हमें भी तरीका बताएं। अरे मेरे को भी टारगेट कर रही क्या बात होती है, वैसे भाई ऐसा एक बंदे को जानता हूँ वो ऐसा ही स्कैम करते घूमता है लोगों को, आप

0: जानते हैं आजाद भाई व्हाट एक मैसेज है कमाल की स्टोरी भाई मजा आ गया थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह आपकी मोहब्बत सलमान भाई एंड देन लॉन्ग स्टोरी इट्स एन एफर्ट टू रिमेंबर सल्यूट टू यू जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया हुसनुद्दीन एक मैसेज है मज़ा आ गया थैंक यू जी मज़ा आना चाहिए बस मज़े ही तो पैसे हैं कबीर भाई सुपर स्टोरी जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया दिस इज़ बाय के एम खान देन हमेशा की तरह चल गया कुछ लोग गलत चीज़ करके भी इतने स्मार्ट होते हैं लोग उनको पसंद करते हैं उनकी स्टोरीज लेजेंड बन जाती हैं जोसेफ इज़ वन ऑफ देम इतनी बड़ी स्टोरी इतने कम टाइम में प्रिपेयर करना हेड्स ऑफ टू यू थैंक यू सो मच भाई कल पूरे दिन पढ़ाई करी भाई कल नींद की ऐसी ऐसी हो गई थी मेरी समीर भाई लिखते हैं हमेशा की तरह सुपर स्टोरी फेक डॉलर वाला पार्ट सुन के किसी मूवी का सीन याद आ गया जिसमें वो गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन यूज़ करके फेक करेंसी बनाता है कौन सी मूवी है भाई ये फराज भाई कह रहे हैं हमको सिखा रिया है फिर लूट लेता है जोसेफ भी लाइक हमको सिखा रिया है अभी बताता हूँ ये अच्छा था फराज भाई ये मीम मटेरियल है तो बस हमें लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी कबीर भाई थैंक यू सो मच फैसल भाई लिखा है नंबर है 10/10 थैंक यू सो मच अहमद भाई लिख रहे हैं सिस्टम एक ऐसा सिस्टम अपन भी बनाना भाई नहीं बन पाया भाई क्या बोलते भाई 6-7 महीना हो गया किस चीज़ को भाई अब तो मिल गया हो इनाम तो लोगों को मिल गया पर भाई रमेश यादव भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस न्यूज़ में आया था उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे था कितना भी वो फेक ऑडिटर बन के हॉस्पिटल में चला जाता था गवर्नमेंट ये पता नहीं लोग अजीज भाई अभी भी चल रहा है मामला भाई कौन सी मूवी है भेजो मूवी का नाम है द स्टिंग पुरानी मूवी है पता नहीं आप लोग देखेंगे नहीं देखेंगे कमाल भाई आपको भेजता हूँ द स्टिंग नाम है 1973 में रिलीज़ हुई थी मैं खुद को स्मार्ट फील कर रहा हूँ मत करो जोसेफ आ जाएगा और क्या लिखा है इन्होंने रिसेंटली में आया था क्या बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही अच्छा इंसान था जोसेफ के तो अबू जान थे बड़े ही शरीफ किस्म के थे मैं एक ज़रा इन्होंने भी मुझे बोला है तो मैं कॉल कर ही लेता हूँ एक सेकंड आसिफ भाई मैं कॉल आ गई रुको अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम भाई वो भाई साहब पूछ रहे थे ना गन्ने के जूस से जो पैसा बना रहे थे हाँ। का नाम बताया मैंने बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर
0: अच्छा ये नाम है क्या ओ अच्छा ये नाम है आपको बड़े सीन्स याद रहते हैं कमाल भाई यार कमाल का टैलेंट है वेरी गुड वेरी गुड अच्छा कंजम्पशन है तो क्या क्या लगा आज की ऑडियो पिक्चर सुनने के बाद
1: ऑडियो पिक्चर भाई आप खोजी है कहा ना कि आपने ऐसी स्टोरी खोज के निकाल के हम लोग को सुना देते हैं जो मार्केट में आती नहीं है मतलब जो है उस टाइम पे 1800
0: बहुत ही जबरदस्त और खुद ही से कंपटीशन हो जाता है ना एक कहानी अगर अच्छी चली जाए तो लगता है अरे बाप रे अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा
1: बोल रहे भाई कि आपको लूटने का तरीका आपको लोग स्मार्ट समझ रहे हैं इसलिए कोशिश कर रहे
0: अरे मैं समझो भाई मैं स्मार्ट खुद को समझ ही नहीं रहा हूँ कहानी खत्म मेरे को मत लूटो नहीं पर मुझे लगता है कि जो जो जो उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी में बोला कि लोग अगर खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं तो फिर वो जाल में फंस जाते हैं ये बात एकदम सच है आज भी यही हो रहा
1: है वो तो बात सच है देखिए जाल में फंसने का मालूम है जो हमेशा जो है ना एक चीज सोचते रहता है कि मैं कैसे करोड़पति बनूं अचानक में मतलब बिना मेहनत के बिना मेहनत के सोचता है कि अरे बहुत ज्यादा पैसा बना लूं वही फंसता है तो बाकी दूसरे जो है भाई मेहनत के ऊपर करते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा जमा करके वो बहुत मतलब लग बाई चांस कभी हो गया गलती हो गई फंस गए वो अलग चीज है
0: हाँ तो सीधे रास्ते चलो सीधे रास्ते चलो वरना येलो किट आ जाएगा पर बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई एंड आपको अब ये मूवी देखिएगा द स्टिंग जो इस कहानी बनी आई एम प्रीटी श्योर आपको अच्छी लगेगी अच्छी कहानी है अच्छी मूवी
1: है ठीक
0: है मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई
1: देखते हैं
0: अपना कभी सिलेक्शन बताइएगा मुझे भी क्या देख रहे हैं आप कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग अपने टाइप का जॉनरा तो मैं भी देख डालूंगा भाई शेयर करते रहा करें जब कुछ देखें तो आप
1: भाई जो चालू किए कुछ अच्छी लगी है किसी ने बताया कि ये ठीक है तो पहले उसका रिव्यू देखते हैं कैसे है क्या
0: चलो मैं आपको एक मूवी बताऊंगा ठीक है मैसेज करता हूं मैं आप वो देखना मजा आ जाएगा आपको
1: ठीक है भाई
0: ओके भाई ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ और ये पूछ रहे हैं कि क्या नाम था द स्टिंग नाम है भाई उस मूवी का द स्टिंग जो आज की स्टोरी पे कहानी बनी है जुल्कर नैन साहब गुड मॉर्निंग एंड देन आयाज बलूच साहब वालेकुम अस्सलाम।

0: एंड देन एक वॉइस नोट, ए वॉइस नोट. अब जरा मैं कॉल कर लूँ भाई को, नहीं तो अभी जो है सही नंबर मिला रहा हूँ. एक तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है, स्कैटर्ड ब्रेन है मेरा, स्कैटर्ड ब्रेन. क्या है, गन्ने की मशीन के पैसा बंद. अच्छा वो है बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, बाप नंबरी. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम मेरा भाई, क्या हाल चाल?
0: बस बढ़िया भाई, कैसे हैं आप?
1: बस भाई जी रहे तुम्हारे राज में और कुछ नहीं
0: अरे वाह वाह
1: भाई,
0: वाह.
1: तुम यकीन नहीं मानेंगे भाई, जोसफ भाई को ना देख के मतलब सुन के एक चीज तो मतलब दिमाग में आ गई, मतलब लूटने का तरीका तो दिमाग में आ गया पब्लिक को, कैसा लूटा जाता है मतलब। मैं तो भाई कोशिश करूंगा, बाकी अब कोई लूटे
0: दिल
1: तो अच्छी
0: लूटो,
1: बात नहीं था।
0: दिल दिल लूटो, दिल
1: नहीं
0: लूटो
1: भाई
0: दिल.
1: दिल क्या, दिल लूट के क्या फायदा भाई, फिर 100 साल तक जीने का मौका नहीं मिलेगा ना भाई जोसफ भाई के
0: भाई लेकिन उस
1: दिल।
0: टाइम पे खेल गया वो, उसने सिस्टम जो उसके हक में चलाया, क्योंकि कुछ था नहीं. अब तो खैर
1: नहीं मेरे को
0: मामला
1: तो
0: अलग.
1: एक चीज अच्छी लगी भाई उसके अंदर, जो जो मतलब जाके पार्क में आके कुत्तों लोग को मतलब सेल करता है
0: हाँ
1: उन लोगों को, वो भी मतलब सेल भी किसको करता है, मतलब औरतों को ही सेल करता है ना
0: हाँ उस टाइम तो उसे पता था कि यही जो है मेरा टारगेट टारगेट है.
1: मतलब उस बंदे ने मतलब जो दिमाग लगाया ना भाई, मैं तो बोलूँ नंबर वन आदमी था वो, बाकी बेचारा 100 साल तक जिया
0: बेचारा. और
1: बेचारा ही
0: क्या.
1: बोलूंगा भाई उसको, वो बंदा बेचारा ही था वो, मतलब पब्लिक को जीना सिखा के चले गया भाई, ऐसा जियो भाई ऐसा जियो।
0: वो बता के चले गया कि इतना ओवर स्मार्ट मत बनो वरना आ जाऊंगा मैं.
1: वही ना भाई, अक्षय कुमार बन गया, गब्बर आ जाएगा गब्बर
0: वरना गब्बर आ जाएगा. अरे
1: आ
0: यार मैं
1: जाएगा।
0: मिस करके, मुझे गाना चलाना चाहिए था फौरन.
1: हाँ तो भाई अभी इसके बाद चला दो क्या है फिर,
0: हाँ ये बनता है, क्योंकि मैं सोच रहा था. अच्छा
1: गब्बर
0: अच्छा
1: आ
0: है तेरा.
1: जाएगा। बाकी
0: हाँ
1: इसके ऐसे एक मूवी मैंने, इसके मतलब जो तुम बताए दस्तीन, उसके ऐसी मैंने 3 से 4 मूवी देखा भाई उसमें हॉलीवुड में, मेरे
0: हाँ
1: को सबसे ज्यादा हॉलीवुड में ना ये सब मूवी पसंद है भाई।
0: हाँ तो वही कैच मी इफ यू कैन ये है, और बहुत सारी हैं, बट ये प्रोमिनेंट जो
1: भाई
0: असली
1: बहुत
0: स्टोरी
1: मूवी है,
0: बनी हुई.
1: बहुत हॉलीवुड में ना भाई बहुत, मतलब इंसान का दिमाग ना ऐसा डाइवर्ट कर डालता है ना कि भाई ये मूवी देखा इंसान वो सोचने लग जाता है यार कैसा किया उसने, क्या सीन था
0: हाँ
1: उसके अंदर भाई,
0: नहीं
1: बहुत जबरदस्त।
0: इस पे जो
1: बाकी
0: बनी है वो
1: मैं
0: देखना
1: बोलता
0: अच्छी
1: हूँ,
0: लगेगी.
1: मैं सोचता हूँ भाई हिंदी मतलब मूवी जो बनती है जैसा हॉलीवुड के बराबरी नहीं कर सकते भाई लोग, मतलब ये सब सीन में।
0: भाई अपनी ऑडियंस थोड़ी मिर्च मसाला चाहती है ना, वो अपनी ऑडियंस इस वक्त
1: हाँ
0: रेडी हो
1: बाकी
0: जाएगी ना, है अपनी तरफ भी, लेकिन वो ऑडियंस थोड़ी तैयार नहीं है, समझ रहे हो, इन चीजों के लिए, उन मूवीज के लिए.
1: अभी देखो अपने ऊपर सैफ अली खान ने वो 2 मूवी एक मतलब एक मूवी पहले बनाया, फिर उसके बाद में फिर वापिस से दूसरी मूवी बनाया,
0: हाँ
1: और उसमें दूसरी मूवी में मिर्च मसाला किधर लगाया, अबू धाबी पहुंच के मतलब वहां पर जाकर, ये क्या सीन है वो
0: करेक्ट. तो वही है ना कि अपनी ऑडियंस थोड़ा मिर्च मसाला वाली ऑडियंस है
1: मिर्च
0: मेजरली
1: मसाला।
0: मेजरली. तो क्या है कि अब वो सेक्शन जब तक बदलेगा नहीं, और वो बदलेगा नहीं भाई, अपने को चाहिए मिर्च मसाला, तो इसलिए वो
1: भाई
0: चल नहीं
1: नाइस
0: पाते.
1: नाइस स्टोरी भाई,
0: थैंक यू सो
1: कुछ
0: मच
1: भी
0: भाई,
1: बोलो बहुत एक नंबर स्टोरी थी भाई।
0: बहुत
1: और मैं तो
0: प्यारा.
1: सोचा भाई एक बंदा तुम्हारे को बोला कबीर भाई को लूटने का तरीका, मैं तो बोलता हूँ कबीर भाई को लूटने का एक ही तरीका है,
0: क्या भाई,
1: जाल बिछाओ मोहब्बत से दिल से और लूट लो।
0: अरे अरे आज तो बुरन पाव खा के मानोगे
1: सही
0: भाई. नहीं भाई
1: है भाई, ये
0: हाँ
1: तरीका है कि नहीं भाई तुमको लूटने का, मतलब
0: बिल्कुल भाई,
1: ऐसा तो
0: बिल्कुल
1: क्या लूटेंगे भाई को।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका है. और आज बहुत सारे मैसेजेस भी आए तो मैं बड़ा खुश हूँ, ऐसा लगा कि एग्जाम दिया और पास हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह.
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई पास हो गए तुम, टेंशन
0: थैंक यू सो मच
1: मत
0: आसिफ
1: लो
0: भाई, बहुत प्यार भाई को, और ऐसे में
1: भाई,
0: खुश रहिए
1: तुमको
0: मेरा
1: भी
0: भाई.
1: बहुत प्यार।
0: थैंक यू सो मच भाई,
1: ला फिर भाई
0: अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह
1: आज
0: हाफिज़.
1: भाई भाई, एक सवाल एक सवाल
0: बोलो
1: एक
0: बोलो
1: सवाल
0: बोलो
1: एक
0: बोलो.
1: सवाल,
0: हाँ बोलो ना.
1: आज मैं सुना तुम 8 से 10 तक मतलब क्या भाई सीन,
0: 8 से 10 तक मैंने बोला कि कुछ
1: हाँ
0: ऐसा,
1: मतलब हाँ, तुमने वो बोला भाई ऐसा कुछ बोला, मैं सुना, मैं एकदम क्लियर सुना
0: मैं नींद में भूल
1: 8 से 10
0: जाऊंगा भाई.
1: तक।
0: ऐसा कुछ
1: नहीं
0: नहीं
1: भाई तुम कुछ तो
0: है.
1: बोले भाई, मतलब 8 से 10 तक मैं बोला भाई आज बहुत 1 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे
0: ना
1: क्या
0: ना
1: भाई
0: ना ना ना ना
1: किसी
0: ऐसा कुछ नहीं है, ये
1: मतलब
0: वहम मत पालो. बिल्ली पालो ठीक
1: तंग हो गया भाई, इसका मतलब ये कि भाई बोले 1 घंटा काहे के लिए
0: नहीं, 9 बजे मस्त सलाम.
1: तरस तरस तरस, एक नंबर भाई एक
0: थैंक यू
1: नंबर,
0: सो मच
1: फुल
0: भाई.
1: पब्लिक एकदम फुल आवाज एकदम तुम्हारे से ना, एकदम फुल हैप्पी हैप्पी तुमसे। हाँ
0: बहुत प्यार भाई, जब भी भाई को वर्चुअल.
1: भाई
0: थैंक यू
1: तुमको
0: भाई,
1: भी बहुत प्यार,
0: बहुत प्यार भाई.
1: अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़. और आसिफ भाई का एक मैसेज है, पंजाबी बहुत अच्छे से बोलते हैं पर कम बोलते हैं भाई, क्योंकि शो पूरा नहीं कर सकता ना मैं, दिक्कत हो जाएगी, वरना मैं पूरा शो हरियाणवी में कर दूँ एक दिन. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, आप बताइए कैसे?
2: बढ़िया अल्लाह का एहसान। और
0: बस भाई शानदार एकदम. शौक है
2: आज आपका एक घंटा उठी है क्या?
0: नहीं नहीं भाई, ये कहां से खबर निकली है? मैंने हो सकता है नींद में बोल दिया हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है।
2: नहीं नहीं मैंने तो सुना नहीं भाई बोल रहे, इसके लिए मैंने क्या मालूम कभी भाई नहीं, मैं बोला 9 बजे तो न्यूज का टाइम होता है ना।
0: नहीं नहीं नहीं भाई, मैं न्यूज के बीच में नहीं आऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई।
2: न्यूज का तो फिक्स है, न्यूज का मैं ये कबीर भाई 2003 से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा।
2: जब ये शो आपका चलता था लगभग 5 से 10 के बीच में रात शाम को।
0: अच्छा, वो
2: तीन या वो इतना ही टाइम चलता था वो 2003 में।
0: जी जी जी।
2: उसके बाद मैं इधर 2003 से ना, तो लगभग मुझे याद है जहाँ तक 5 बजे चालू होता था, कुछ 8-10 बजे खत्म हो जाता है।
0: हाँ, मुझे
2: आपका रेडियो पे कुछ आता ही नहीं था।
0: यही सुना मैंने भी, क्योंकि मुझे भी बाद में पता लगा कि कितना
2: लेकिन उसमें एक हाँ न्यूज आता था, एक वो न्यूज फिक्स था न्यूज का टाइम। अपने सैफुर रहमान साहब और ये थे।
0: यस यस यस।
2: और
0: बस भाई
2: आप हाँ जी
0: कहानी सुना रहे थे सबको, सुना चुके और रिस्पांस भी आ गया। आपने कुछ सुनी? मेरे ख्याल में नहीं सुन पाया आपका।
2: नहीं मैं आपको मैसेज किया है।
0: अच्छा,
2: आपने मुझे भेजनी है।
0: मैं भेज दूंगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, अभी भेज दूंगा मैं कुछ देर में। ठीक है,
2: मैं फुर्सत में सुनूंगा फिर एकदम इत्मीनान से।
0: डन डन डन डन, मैं भेजता हूँ फिर आपको इत्मीनान।
2: ओके कबीर भाई,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो इनके बाद एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, आई होप यू आर डूइंग, आई बहुत लंबा मैसेज, एक सेकेंड, अरे वाह वाह वाह, ओके ये इत्मीनान से पढ़ा जाएगा। आई होप यू आर डूइंग वेल, टू सिंपली से यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट, इट डजंट ट्रूली डू जस्टिस टू योर इनक्रेडिबल डेडिकेशन। आई हैव बीन थॉरली एंजॉइंग योर शो, इट्स बीन अ मॉर्निंग स्टेपल फॉर मी, द कंटेंट इज सो एंगेजिंग दैट आई फाइंड नो रीजन टू स्विच चैनल्स, ऑनेस्टली इट्स सो कैची दैट आई फील आई कांट अफोर्ड टू मिस इवन अ सिंगल मिनट, कीप अप द ब्रिलियंट वर्क। मैं आज कर दिया आपने इमोशनल, हो गया काम। नंदन भाई दिस इज सच अ स्वीट जेस्चर मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और आगे उन्होंने लिखा है, आई हैव कपल ऑफ हम्बल रिक्वेस्ट टू मेक, प्लीज वुड यू प्लीज कंसिडर होस्टिंग दिस मॉर्निंग शो परमानेंटली। अरे अदनान भाई, अदनान भाई, ये रिक्वेस्ट मेरे हाथ में नहीं है। पहली ही बात आपने बोल दी कि वुड यू प्लीज कंसिडर होस्टिंग द मॉर्निंग शो परमानेंटली, इट वुड बी वंडरफुल टू हैव यू एज अ रेगुलर फिक्स्चर ऑफ आर मॉर्निंग्स। अदनान भाई ये थोड़ा सा मामला कहड़ा, आगे क्या लिखा है, कैन यू प्लीज सेंड टू स्टोरी एंड आई जस्ट कांट अफोर्ड टू मिस योर हार्ड वर्क। डेफिनेटली ये कहने वाली बात ही नहीं है दान भाई, कैसी बात कर दी। पर आपने जो ऊपर लिख दिया है ना, आई एम नॉट जस्ट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, मैं जो अच्छे मैसेजेस होते हैं अपने पास में बहुत अच्छे से स्क्रैप बुक में की तरह मैं अपने पास रखता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज मैसेजेस, दिस इज सो सो काइंड ऑफ यू मेरे भाई। दान भाई थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे ब्रो। मैं आपको भेज रहा हूँ 7-8 दिल, लेकिन समझ लीजिए इससे कहीं कहीं ज़्यादा मैं खुश हूँ इस मैसेज पढ़ के। और बात रही कंसिडरिंग होस्टिंग द मॉर्निंग शो परमानेंटली, ये थोड़ा सा ये हॉरर क्वेश्चन है। वैसे भाई ये सब लोग आपको लूटने क्यों बोल रहे हैं पता नहीं क्यों। मन हो गया सबका। लेकिन 7 से 10 इज एन आइडियल टाइम फॉर द शो, अपेरेंटली यस, बट ऐसा है नहीं। फैसल मिर्ज़ा भाई आपका वॉइस नोट अभी सुनता हूँ मैं। एक मैसेज भाई, ये बहुत पुराने आदमी हैं, ये भी 2003 वाले ना, बहुत पुराने थे। बहुत माशाल्लाह बहुत अरे सुने, नॉट फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल क्या ये आसिफ भाई कल मेमिश मैडम को दुखड़ा सुना रहे थे, उससे पहले सर्वर भाई के साथ आपके बारे में बात, मेरे बारे में बात कर रहे थे, और बाद में फजील के साथ आपके साथ मेरे बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में बात मत करो, शो में बस सब सुनता हूँ मैं। एक मैसेज, हाँ भाई वही मूवी है। अच्छा ओके, फिर क्या है, स्टोरी का सवाल है, स्टोरी का सवाल है। भाई तुम्हारी याद में क्या लाइन है लिख, क्या जुल्कर नैन साहब आ गए। ओके तो मैं अभी गाना चाहता हूँ, बट मैन इतना ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट तो मैंने सोचा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: अरे जग गए लाडली, क्या बात है, आँख खुल गई माशाल्लाह।
3: भाई यार कसम से भाई, मैं तो जो है ना कल भी इतने फोन ट्राई किए मगर तुम बिजी थे, कभी भाग गए कभी
0: लगा दो इल्जाम लगा दो, आँख खुलते के साथ इल्जाम, मतलब आदमी को 2 रुपए की मतलब शर्म नहीं आ रही है बताइए।
3: भाई भाई कसम से निकला हुआ, मैं सवेरे निकला हुआ 7:30 बजे से निकला हुआ।
0: भाई तुमको चाहिए इंटेलेक्चुअल कॉलर्स, सब ठीक हो जाएगा। मुझे
3: नहीं यार अभी जो है ना आज सुबह जरा थोड़ा काम वाम में निकला हुआ हूँ, गाड़ी की सर्विस करानी है ना, तो सामान वगैरह लेने।
0: अरे घर से बाहर निकले आज? जीतो चमत्कार दो कैसे मतलब किसी ने आपकी गुड़िया बना के वो पिन तो नहीं मार दी बाहर कैसे
3: गाड़ी
0: के जो है ना मैसेज पास ही आ रहा था अच्छा ठीक है वेरी गुड
3: नहीं तो भाई इतनी देर में तब तक तो जो है ना नाश्ता वाश्ता करके खाली का सो गए
0: वही तो मैं तभी हैरान हूँ मैं तो कैसे लगे आज की कहानी वानी सुनी नहीं सुन पाए
3: कहा अभी तो बस मैं अभी गाड़ी में सामान लेके बैठा ट्यूनिंग के तो भाई थे मतलब यार फोन लगा ले हाजिर लगा दे पहले
0: अच्छा फिर ठीक है तो प्रेजेंट लगा दिया आपके रजिस्टर में आप ही तो दोबारा सो जाएंगे आप कोई फायदा तो है
3: ना ना यार आज नहीं आज नहीं
0: आज नहीं
3: जो है ना दोपहर के बाद में सो जाएगा
0: ठीक है डन है मेरा भाई
3: भेज देना भाई भाई साहब कल भी नहीं भेजी आपने स्टोरी
0: अरे एक मैसेज ड्रॉप कर दो ना वो एक साथ लिस्ट में चला जाता है ना उसलिए मिस हो जाता है वो और कोई मसला नहीं भेज दूंगा एक मैसेज डाल दो हाई लिख दो बस ओके
3: ओके
0: ठीक है मेरा
3: ओके ठीक है अल्लाह हाफिज़
0: अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ तो जैस भाई की बात मैं जल्दी से बता दूं कि क्या क्या जो स्टोरीज हैं स्टोरीज नहीं बार बार स्टोरीज नहीं जो खबरें हैं तो सबसे पहले जो खबर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन की तरफ से उन्होंने लॉन्च किया है 18th साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन एग्जीबिशन 2026 विच इज़ इन पार्टनरशिप विद द कतर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और थीम है इसकी प्रॉमिसिंग रिसर्चेस फॉर कतर ये इवेंट जो है ये 14 मई तक रहेगा आज क्या तारीख 12 हुई है 13 हुई है आज हाँ ठीक है ओके तो अभी है टाइम है थोड़ा सा टाइम तो है आज 13 तारीख है तो कल तक ये रहेगा और कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में है इसका मकसद ये है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पूरी कंट्री से इसका हिस्सा बने और शोकेस करें साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए इफ़ देर इज़ सम फाइंडिंग इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक बहुत ज़रूरी मैसेज उन्होंने हाईलाइट किया है कतर पोस्ट के ट्रैकिंग इंक्वायरी सर्विसेज को जो कि अब अवेलेबल है मित्राश मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत बड़ा स्टेप है ये बहुत बड़ा स्टेप है सो कतर पोस्ट की जो ट्रैकिंग इंक्वायरी सर्विस है अब वो मित्राश मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी जिसके ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कतर आईडी आपने रिन्यू कराई है आ रही है कतर आईडी आ रही है ना गाड़ी कागजात हैं कुछ है कुछ भी है कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो कतर पोस्ट से अगर आ रहे हैं तो यू कैन ट्रैक देम एंड मिनिस्ट्री ने ये जो सर्विस इनेबल करी है ये एक किस्म का फॉलोअप है बिकॉज इसके बारे में जब बात चल रही थी तो पोस्टल सर्विसेज और इनको कंबाइन करने की बहुत टाइम से बात थी अब क्योंकि डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज को इन्हांस किया जा रहा है तो उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है आप कैसे जाना है बहुत सिंपल है आप इंक्वायरी सर्विसेज में जाइए मेन इंटरफेस से उसके बाद फिर पोस्टल ट्रैकिंग नंबर पर जाइए एंटर कीजिए और स्पेसिफाई कर दीजिए जो मेल डिस्पैच पॉइंट है फिर सिंपल है इट्स दैट सिंपल इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है कि जो 29 सेंटर्स हैं हेल्थ सेंटर्स हैं वो रिन्यू कर रहे हैं अपना JSAS ऑपरेशन सर्टिफिकेशन सस्टेनेबल ऑपरेशंस के लिए अंडर द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम जिसको डेवलप किया है गल्फ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज द गॉड यानी शॉर्ट टर्म में GORD इसके अलावा कतर एयरवेज जो है वो एक्सपेंड करने जा रहे हैं अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट्स में एंड फ्लाइट्स जो हैं वो वापस शुरू होने वाली हैं हेलसिंकी फिनलैंड और टोक्यो हानेडा जापान ये 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगी एंड कतर एयरवेज ने एक स्टेटमेंट भी जारी करी जिसमें उन्होंने बताया है कि जो फ्लाइट्स हेलसिंकी की तरफ जाएंगी वो हर मंडे डिपार्ट करेंगी हर मंडे वेंसडे फ्राइडे संडे और फ्लाइट का जो स्केड्यूल है वो भी दे रखा है इनके आप देखना चाहें तो स्केड्यूल उनकी वेबसाइट पर मौजूद है एक तारीख से जो फ्लाइट है एडिशनल फ्लाइट्स वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तक भी जाएंगी तो ये शेड्यूल आप आराम से देख लीजिएगा क्योंकि रेडियो पर याद करना मुश्किल हो सकता है बट यू कैन चेक इट ऑन योर ओन इसके अलावा कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि आज नहीं इनफैक्ट कल से ये जो सितारे के बारे में डिस्कस हुआ था कल सर्वर भाई बहुत खुल के बता रहे थे पहला सितारा ऑफ अल्थुराया स्टार्स तो ये शुरू हो चुका है तो अभी मौसम जो मेन बदलना शुरू है वो होगा ह्यूमिडिटी का लेवल अचानक से बढ़ेगा अचानक से तो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड फिर ये मत कहिएगा किसी ने मेरा ख्याल रखा ही नहीं बताया ही नहीं मैं दुहा वाला कबीर आपके साथ कहीं भी ट्रैफिक ट्रूफिक लग रहा हो तो

आज ही मॉर्निंग सलमान भाई के गाने को रिमेक किया गया है, ओ ओ जाने जाना। मेरे तो जी आपने गुड मॉर्निंग कर दी, इतने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मैसेजेस आए आज, तो मतलब ऐसा लग रहा मेरा बर्थडे बर्थडे है आज तो थैंक यू सो मच। 8:50 भी हो चुके हैं, जिसका साफ साफ इशारा है कि कबीर साहब चलिए चाय पीजिए। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, बट बिफोर आई लीव सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar FM 107 Qatar एंड 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन। कल फिर से मुलाकात होगी, कल कुछ नया लाते हैं, कुछ कहानी ढूंढने भी लग जाऊंगा अभी। आई फील लाइक ए साइंटिस्ट दीज डेज, तो कुछ ना कुछ तो ढूंढ के निकालेंगे, माइनिंग शुरू करते हैं अभी कहानी की। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको कहानी मिल जाएगी जिन्होंने शायद नहीं सुनी। बट आई विल सी यू, और बाकी चीज़ भी सुनता हूँ मैं। हाँ, इधर की उधर अगर बात करोगे तो सब करोगे, अच्छी बात है गॉसिप रहनी चाहिए FM 107 पे, यही तो खास बात है हमारे सारे शोज़ की। बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद RJ सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।

अभी समूह अमीर ने कल लुसेल पैलेस के अपने दफ्तर में जम्हूरियत तुर्किया के वजीर खारजा से मुलाकात की। साहिब समूह अमीर ने आज मुतहदा अरब इमारात के सदर को इक्तदार संभालने की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वजीर आजम वजीर खारजा ने कल वजारत औकाफ इस्लामी उमूर की 2025 से 2030 की नई हिकमत अमली का इफ्तिताह किया। रियासत कतर ने ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर से मुंसलिक एक मुसल्लह गिरोह की जानिब से बुबियान जजीरे में दरअंदाजी और बरादर मुल्क कुवैत के खिलाफ दुश्मनाना कार्रवाइयों की कोशिश की सख्त मुजम्मत की है। और रियासत कतर ने यमन के इलाकाई पानियों से मिस्री मल्लाहों को ले जाने वाले तेल बरदार बहरी जहाज के अगवा और उसे सोमालिया के इलाकाई पानियों की जानिब खसूसन पॉन्ट लैंड के करीब मुंतकिल किए जाने की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब समात की जो मुफसल नशरिया।

0: शोबों में 22,581 ट्रांजेक्शन के नतीजों में 9 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 38 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 6 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में, कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने अगले महीने शुरू होने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई 34 मेंबर स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कतर टूर्नामेंट से पहले 2 फ्रेंडली मैचेस खेलेगा। टीम 28 मई को आयरलैंड के सामना करेगी, जबकि 6 जून को लॉस एंजलिस में अल सल्वाडोर के मुकाबले में उतरेगी। नाहिद राणा ने शानदार फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में पहले टेस्ट मैच में 104 रन से फतेह दिलाई। आईपीएल टी20 क्रिकेट में गुजरात ने मंगल को हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दिया। आज बेंगलोर का सामना कोलकाता से होगा। कतर स्टार्स लीग ने कतर फुटबॉल एसोसिएशन के ताउन से 2026-2027 फुटबॉल सीजन से टॉप क्लब्स के लिए एक वर्कशॉप मुनाकिद की। वर्कशॉप में QSL और QSL2 कॉम्पिटिशंस के नए मरहले पर तबादला ख्याल किया गया है। इटालियन ओपन टेनिस में यानिक सिनर ने राउंड ऑफ 16 में अपने हमवतन एंड्रिया पेलेरिग्रिनो को 6-2 6-3 सेट से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और पेरिस सेंट जर्मन के फॉरवर्ड उस्माने डेम्बेले को लगातार दूसरे साल लीग वन का बेहतरीन प्लेयर करार दिया गया। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
2: न्यूज हेडलाइंस विद सरवर मिर्जा।
0: साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कल लुसेल पैलेस के अपने दफ्तर में जमहूरी तुर्की के वजीर खारजा हक्कान फिदान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक तावन पर मबनी ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के और मजबूत बनाने के तरीकों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कल वज़ारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर की 2025 से 2030 की नई हिकमत अमली का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को ममलकत सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला अल सऊद की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। टेलीफोनिक बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने कतर और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। रियासत कतर ने ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉप्स IRGC से मुंसलिक एक मुसल्लह ग्रुप की जानिब से बोबियान जजीरे में दरंदाजी और ब्रदर मुल्क कुवैत के खिलाफ दुश्मनाना कार्रवाई की कोशिश की सख्त मुसम्मत की है। और रियासत कतर और जमहूरिया तुर्की ने खत्ते में फौजी कार्रवाइयों के दोबारा आगाज़ के ख़तरे से ख़बरदार करते हुए कहा है कि ऐसी किसी भी पेशरफ्त के आलमी सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब होंगे। सामीन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया से युसरा महमूद और न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन, इस्माइल खान और सरवर मिर्ज़ा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।
2: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: Now follow us on Facebook and Instagram at FM 107 Qatar. Dil se Desi.
1: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से RJ सर्वर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
2: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समुंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक नहीं सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
3: कस के जूता, कस के बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ द स्टूडेंट्स गाइड एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 Qatar. दिल से देसी
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: आज हम बात कर रहे हैं रूटीन हेल्थ चेकअप्स की और मैं आपसे एक सिंपल सी बात शेयर करना चाहती हूँ. हेल्थ चेकअप्स का मतलब प्रॉब्लम ढूंढना नहीं होता, हेल्थ चेकअप्स का मतलब होता है पीस ऑफ माइंड. सोचिए जब आप फ्लाइट में बैठे हो और पायलट कहता है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कितना रिलैक्स फील करते हैं ना आप. बस वही वाली जो फीलिंग है वो हेल्थ चेकअप्स हमें देती है. अक्सर लोग बोलते हैं मुझे कुछ दर्द नहीं है, कुछ अनयूजुअल फील नहीं हो रहा है, पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि बॉडी हमेशा पेन के थ्रू बात नहीं करती, कभी वो सिर्फ नंबर्स के थ्रू बात करती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल. ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में सिर्फ रिपोर्ट में ही दिखते हैं और उसके बाद डे टू डे लाइफ में दिखना स्टार्ट होते हैं. रूटीन चेकअप्स का फायदा ये होता है कि आप सरप्राइजेस से बच जाते हो. आप सडनली ओ नो इस स्टेज तक पहुंच गए ये नौबत नहीं आने देते हो. और सबसे अच्छी बात, जब चीज टाइम पर पकड़ में आ जाती है तो सॉल्यूशंस भी बड़े सिंपल होते हैं. थोड़ा सा बस अपने खान पीन में चेंज कर लो, मूवमेंट्स कर लो, रूटीन एडजस्टमेंट कर लो, कोई पैनिक नहीं, कोई हैवी ट्रीटमेंट नहीं और सब कुछ अलाइन हो जाता है. और ये सब फिजिकल हेल्थ तक के लिमिटेड नहीं है. आजकल के चेकअप्स में डॉक्टर स्लीप, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल्स के बारे में भी आपसे पूछते हैं. मतलब आप अपनी बॉडी के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो. ये आइडिया भी गलत है कि चेकअप सिर्फ एल्डर्स के लिए होते हैं. आज की फास्ट लाइफ में जहाँ पे लेट नाइट्स हो रही है, स्क्रीन टाइमिंग इतना बढ़ चुका है, इररेगुलर मील्स हो रहे हैं, यंग बॉडीज भी काफी ओवरलोड हो रही है, तो हम जैसे लोगों को भी, आपको और मुझे भी रूटीन चेकअप्स कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का सेल्फ चेक इन होता है. जैसे आप किसी क्लोज फ्रेंड से पूछते हो ना सब ठीक चल रहा है, बस वही सवाल आपको अपनी बॉडी से पूछना है और जब आंसर हाँ आता है तो दिल हल्का हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हेल्थ को लेके अननेसेसरी टेंशन कम होती है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैलेंडर देखे तो एक छोटा सा स्लॉट अपनी हेल्थ के नाम भी रखिए, क्योंकि रूटीन हेल्थ चेकअप्स फेयर का साइन नहीं, केयर का साइन होता है. और जब आप केयर करते हो ना तो बॉडी भी आपका साथ देती है, एनर्जी के साथ, क्लैरिटी के साथ और एक प्यारा सा सुकून के साथ. इसलिए याद रखिए, रूटीन हेल्थ चेकअप्स मतलब अपनी बॉडी को ये कहना आई गॉट यू एंड योर हेल्थ मैटर.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे इंडियन के मारूफ बल्लेबाज रोहित शर्मा के बारे में। नाम ही काफी है मॉडर्न जनरेशन के लिए। रोहित शर्मा इज अ लेजेंड, इज अ स्टार, जिनके बारे में यू नो एवरीथिंग इज ऑन स्टैट्स। एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट के लिए, जो अपनी एलिगेंट बैटिंग और काम लीडरशिप के लिए जाना जाता है। उनका निकनेम हिटमैन पड़ा और ये नाम उन्होंने अपनी एक्सप्लोसिव इनिंग्स से जस्टिफाई भी किया है। रोहित ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट यानी ओडीआई में खास तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी वैल्यू प्रूव किया है। ये और बात है कि टेस्ट क्रिकेट में अब वो नहीं खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट टीम से वो बेसिकली रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी कई ऐसे इनिंग्स है जिसका लोग मिसाल देते हैं कि देखिए इस तरह की बैटिंग होनी चाहिए इन टेस्ट क्रिकेट। वन ऑफ द वेरी फ्यू मॉडर्न क्रिकेटर्स जिन्होंने हर फॉर्मेट T20, टेस्ट और ODI में बहुत बाखूबी, मैं अगर कहूँ यहाँ पर, उन्होंने एडजस्ट किया है और हर तरह के स्टाइल, हर तरह के शॉट्स उनकी बैटिंग में हमने देखा है, जस्ट लाइक विराट कोहली। और अगर स्टैट्स की बात करें तो टेस्ट फॉर्मेट में रोहित शर्मा ने 67 मैचेस खेलकर 4301 रन्स बनाए हैं, जिसमें 12 सेंचुरीज 18 फिफ्टीज शामिल है दोस्तों। ओडीआई क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड लाजवाब है, 282 मैचेस में 11577 रन्स और उनका हाईएस्ट स्कोर 264 है, 264, जो कि ओडीआई क्रिकेट की तारीख का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। इसके अलावा उन्होंने 33 सेंचुरीज और 61 हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं, एंड दैट मेक्स हिम अ टिपिकल ओडीआई बैट्समैन। T20 इंटरनेशनल में भी रोहित सक्सेसफुल रहे और T20 इंटरनेशनल में अगर स्टैट्स की बात करूं तो 159 मैचेस खेलकर 4231 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 5 सेंचुरीज भी शामिल हैं। दोस्तों उनके बैटिंग का स्टाइल एफर्टलेस लगता है, लेकिन टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन उनको बाकी प्लेयर्स से अलग बनाता है। कैप्टन के तौर पर भी उन्होंने इंडिया को कई इंपॉर्टेंट सीरीज और टूर्नामेंट्स में लीड किया है। तो रोहित शर्मा सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि मॉडर्न एरा के कंप्लीट मैच विनर है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: आपको ईमेल आता है, डियर कस्टमर आपका KYC एक्सपायर हो रहा है, लिंक पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। KYC यानी नो योर कस्टमर। तो कई दफा आपकी डिटेल्स कुछ बची रह जाती हैं, जिसके चक्कर में कई सारे इदारे आपको KYC के लिए ईमेल करते हैं। मेनली ये बैंक या फिर सिम नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से आता है, लेकिन ये लिंक्स फेक होती हैं, बट आपको बिल्कुल भी फेक नहीं लगेंगी। ये रियल वेबसाइट्स की इतनी ज्यादा रेप्लिका होती हैं कि आप खुली आंखों से समझ नहीं पाएंगे, आपको काफी डिटेल में देखना पड़ता है। जैसे कि .qa की जगह qv हो सकता है। तो ऐसे स्कैम्स में क्या होता है, लिंक फेक होती है, आप डिटेल्स डाल और अकाउंट कंट्रोल स्कैमर के पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए बैंक लिंक्स पे क्लिक मत करो। KYC सिर्फ ऑफिशियल ऐप ब्रांच से जाके कीजिए। SMS में स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर है, जो भी आपको SMS आया है या जो भी आपको ईमेल आया है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक या उनकी राइटिंग में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल सकता है, तो समझ लो ये स्कैम का हिंट है। लेकिन आजकल स्कैमर भी समझदार हो गए, बिकॉज दे आर ऑल्सो यूजिंग AI चैटबॉट्स। तो दोस्तों KYC अपडेट करो, पर दिमाग अपडेट रख के, ऑफिशियल एप्स का इस्तेमाल करके या फिर बैंक की ब्रांचेस में विजिट करके।
2: सतर्क रहें, सावधान रहें। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

हैं। तो चलें ये घूमते घूमते चंद अल्फाज हम ऐसे सीख लेते हैं अरबी में मॉल के हवाले से या खरीदारी के हवाले से। अच्छा खरीदारी को अरबी में तसव्वुक कहते हैं। ओके मतजर यानी दुकान, दुकान को मतजर कहेंगे। यहाँ तक दुकान अरबी में दुकान का लफ्ज भी यूज करते हैं। शॉपिंग मॉल के लिए हमने कहा भाई मॉल का लफ्ज यूज कर लो। और ऑफर्स के लिए अरबी का लफ्ज है उरूद। आपको जगह जगह में ऐसे अरबी में लिखा हुआ आप देखेंगे आईन रा वाव बाद यानी उरूद। तो समझिए कि यहाँ पर ऑफर्स का मसला है। तो वहाँ आपने जो है ना जरूर कुछ छानबीन करना कि भाई ऑफर्स क्या चल रहा है। हमारे यहाँ के लोग तो सारे ऑफर्स की जो है ना उनके कलेक्शन होते हैं, तो उसे सिलेक्शन करके फिर वो ऑफर्स के ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। हाँ जी तखफीदात इसी तरह डिस्काउंट्स को कहते हैं। तखफीदात डिस्काउंट्स को कहते हैं। तो उरूद यानी ऑफर्स, तखफीदात यानी डिस्काउंट्स। तखफीदात डिस्काउंट्स के लिए तंजीलात भी कहते हैं, तंजीलात तखफीदात। आपने वो एक खास वीडियो काफी वायरल हुआ था, वो बंदा कह रहा होता तखफीदात तंजीलात। इस तरह जो है ना कई सारे अल्फाज एक के बाद दूसरे यानी ओवरऑल वो कुछ अपने जो है ना डिस्काउंट्स और ऑफर्स के हवाले से कुछ ऐलान कर रहा था और काफ़ी यानी शोहरत हासिल की उस बंदे ने। तो अब मजीद आगे बढ़ते हैं सामिन कराम। मॉल के अंदर हम आ गए। आपको बताया कि मशहूर ब्रांड्स जो होते हैं ना वो काफ़ी अक्सर व बेशतर यानी ऐसा होता है कि वो काफ़ी दूर दूर होता है मॉल के अंदरूनी हिस्से में आखिर में। यानी ये क्यों? ताकि आप वहाँ पहुँचने से पहले कई दुकानें दूसरे भी देख लें। और यहाँ मज़ीद आपको यानी आपको ये भी बता दूँ इस स्ट्रेटजी में कि यहाँ मॉल वगैरह में खाने की जगह होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कहीं ऊपर है, कहीं कोने में, कहीं दूर है। क्यों? ताकि आप जो है ना चलें, देखें, ख़रीदें, फिर जो है ना इस तरह वहाँ बैठ कर खा भी लें। तो इस तरह आप बच्चों के लिए भी आपको एक जगह दिखेगी, बच्चों का खेल। खेल को अरबी में क्या कहते हैं बताइए? अलाब। बच्चों के खेल को अलाब कहते हैं। वैसे रियाबा वो स्पोर्ट्स है, वो अमूमी तौर पर स्पोर्ट्स के लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अलाब ये खिलौने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों के जो खिलौने होते हैं तो गेम्स वगैरह उसके लिए अलाब अरबी में यूज़ करते हैं। इस तरह सामने के नाम मॉल में बच्चों के खेल आपने गेम्स वगैरह है। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्यों? चूँकि अगर बच्चे खुश हों तो वालदैन और भी ज़्यादा वक्त स्पेंड करेंगे ना, तो और भी कुछ ख़रीदारी होगी। तो बात है, मसला है पैसों का। तो इस तरह जो है ना ख़रीदारी को अरबी में कहते हैं तसव्वुक। अब तसव्वुक अगर ऑनलाइन शॉपिंग हो तो उसे कहते हैं ऑनलाइन तसव्वुक। ऑनलाइन है तसव्वुक आबर अल इंटरनेट। या कैश हो तो उसको काश भी कहते हैं, या अरबी में इसको खास अरबी में नकद, नकदन। उर्दू में भी नकद का लफ्ज़ दरअसल यूज़ करते हैं, लेकिन उर्दू में नकद का मतलब कुछ अलग है। आप जब तंकीद और नकद करते हैं, नकद तंकीद से है यानी किसी मौजू पर नुकता चीनी करना वगैरह, निकात बयान करना, और इस तरह जो है ना डिस्कस वगैरह, इसको हम वो कह सकते हैं नकद और तंकीद कह सकते हैं। अरबी में ये नकद इस माने में भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ नकदन यानी कैश के लिए भी यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ ख़ास जुमले आप लोगों को बताता हूँ जो हम वैसे दुकान में या फिर शॉपिंग मॉल में बकसरत इस्तेमाल करते हैं। देखिए कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, अना तसव्वुक, क्या यहाँ डिस्काउंट है, हल होना तखफीबात तंजीलात, ठीक है, ये दुकान कहाँ है, ऐन दुकान, ऐन मतजर, ऐन मॉल, हाँ मुझे ये पसंद है, यअजिबनी हादा, ये मुझे ये पसंद है, ये वाला जुमला तो आपको ख़ास इसकी ज़रूरत पेश आती है, यअजिबनी हादा, वल्ला हलो, बहुत अच्छा है यानी। तो इस तरह जो है यअजिबनी हादा, इस लफ्ज को, इस जुमले को ज़रूर याद कर लें क्योंकि इसकी काफ़ी ज़रूरत पेश आती है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ तो आप कहेंगे अज़हब इला सूक, सूक यानी बाजार, बाया यानी सेलर दुकानदार।

बेचने वाला, जैसे कि आप कहते हैं कि अलबाया लतीफ, मैं दुकानदार तो बहुत अच्छा है। इसी तरह यानी जबून कहते हैं गाहक को, कस्टमर को जबून कहते हैं, ओके। और सैर कहते हैं कीमत, कम सैर, या सब ये काफ़ी ज़रूरी लफ्ज़ है। यानी अगर कोई अरबी जो बेचने वाला है तो आप उसे क्या कहेंगे, दुकानदार को आप कहेंगे कम सैर हादशे, ये कम सैर, कम सैर, कम यानी कितना, इसकी कितनी कीमत है, कीमत कितनी है। अब अगर आप कहना चाहते हो उसने कुछ ऐसी कीमत बताई, तो आप बताना चाहते हैं कि महंगा है, तो आप क्या कहेंगे, गाली, गाली महंगा, हादा गाली, ये बहुत महंगा है। तो इसी से गालिया कहते हैं, कभी ये माँ के लफ्ज के साथ जोड़कर कहते हैं, उम्मी अलगालिया, मेरी प्यारी माँ, तो माँ तो माँ ही है, उसकी कीमत यानी उसकी महंगाई या वो बेनज़ीर है, इस चीज़ को बयान करने के लिए। और रखीस कहते हैं इसके बिलमुकाबल सस्ता, आधा रखीस, ये सस्ता है, तो गाली महंगा और रखीस सस्ता। डिस्काउंट के लिए हमने पहले भी कहा तखफीद, यानी अगर आप ये पूछना चाहते हैं क्या क्या कोई डिस्काउंट है, पहले आपने ये तो पूछ लिया कि कम सर कितनी कीमत है, फिर आपने ये पूछना है कि क्या डिस्काउंट कुछ है, हल्यू जो तखफीद, क्या कोई डिस्काउंट है। तो इस तरह शॉपिंग मॉल की ख़रीदारी आपकी जारी रहेगी। मज़ीद आप जो है ना, अगर बिकम हादा ये लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये कितने का है, यानी कीमत कितनी है, इस ये पूछने के बजाय आप ये शॉर्ट अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि बिकम हादा, ये कितने का है, बिकम हादल कमीज, ये शर्ट कितने की है, हल यूजद तखफीद, क्या कोई डिस्काउंट है। इसी तरह अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप कीमत कम कर सकते हैं, هل يمكن ان تخفض السعر، يا फिर आप इस तरह कहें कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत महंगा है, هذا كثير علي، هذا كثير علي، والله غالي، बहुत महंगा है, غالي كثير। इस तरह भी आप कह सकते हैं। अगर कोई दुकानदार आपको कह रहा हो कि क्या आप खरीदेंगे, और आप दिल दिल में खरीदने का इरादा नहीं है, या फिर आप सिर्फ ये ऐसे देख रहे हैं, यूं ही देख रहे हैं, अगर पसंद आया तो खरीदेंगे, तो आप इस सिलसिले में अरबी में क्या कहेंगे। आप इस तरह कह सकते हैं खलीनी अशूफ, मुझे जरा देखने दीजिए, इज़ अजबनी अश्तरी, यानी अगर मुझे पसंद आया तो मैं खरीद लूंगा। एक और, जब आप कपड़ों की खरीदारी के हवाले से बात होती है, तो वहाँ साइज की बात जरूर बनती है, क्या आपने पूछना है कि क्या वो साइज है, क्या मुख्तलिफ साइज आपके पास दस्तियाब है या नहीं। तो साइज के लिए अरबी में क्या लफ्ज़ हैं, जो टेलर वगैरह के हवाले से काम करते हैं तो उन्हें तो ज़रूर पता है कि साइज़ के लिए अरबी का क्या लफ्ज़ है। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन के मजाल में इस शोबे में काम करते हैं वो भी बता सकेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर लफ्ज़ है मगाज़ कहते हैं अरबी में। असल में इसको जो तहरीरी ज़बान होती है उसमें इसको इस तरह लिखते हैं, मीम कौफ अलिफ सीन मकास, लेकिन जब हम इसे अपने आम लहजे में यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसके तलफ़ को थोड़ा कॉफ को गा बना देते हैं, मगाज कहते हैं। तो क्या आपके पास डिफरेंट साइज़ दस्तियाब हैं, हल लदैक मकासात मुख्तलिफा फी मकास अकबर, यानी इस तरह भी कह सकते हैं, क्या कोई बड़ा साइज़ है, हादा ला युनासिबनी, कि अरे ये तो मुझे सूट नहीं कर रहा, या मुश मबूत, यानी ये फिट नहीं हो रहा मुझ पर, फी मकास अकबर, क्या तो और भी बड़ा है, बड़ा साइज है। या फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि टाइट हो गया, अल्लाह वाजिद दयक, दयक यानी टाइट। या अगर कहना चाहते हैं कि बहुत लूज है, तो आप कहेंगे कि अल्लाह वासे, वासे जिद्दन, वासे, वो इधर असल वासे का लफ्ज़ उर्दू में ये जाना पहचाना लफ्ज़ है, चूँकि ये वसत से है, वासे जिद्दन, बहुत लूज, और बहुत टाइट के लिए दयक जिद्दन, इस तरह कह सकते हैं। अगर आपके पास पैसे बजट है, यानी आपने पैसे कुछ लाए हैं और उसी बजट पर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं, और दुकानदार जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही कह रहा है, और आपने कहना कि भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आपने अगर देने मुझे दे दो उन पर मैं निकलता हूँ। तो आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे अरबी में, बस عندي هذا المبلغ, बस عندي هذا المبلغ,

0: लास्ट प्राइस है या सबसे कम प्राइस है, तो बात तो यह है कि दरअसल बाजार में कोई आखिरी कीमत नहीं होती। तो अब कस्टमर कहता है हाँ जी 30 पर राजी हो जाओ, 30 कर दें और मैं अभी ले लेता हूँ। सलासीन आला तूल बाखुद, या फिर आप कह सकते हैं फौरन, फौरन या आला तूल। तो ये फौरन यानी साथ साथ है, तो इसके लिए आला तूल भी यूज करते हैं बोलचाल की जबान में। अब दुकानदार कहते हैं खलास यल्ला मिशेना, यानी ठीक है हमने मान लिया बस चलते हैं, यानी इत्तफाक कर लिया, इत्तफकना, खलास इत्तफकना। तो सामने कराम अरब जो माहौल है इसमें आपको दुआएं मोहब्बत और एहतराम इस तरह के काफ़ी जुमले मिलते हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपने साथ साथ या बातों बात में शुक्रन, अल्लाह यरज़क़क, अल्लाह यसल्लिमक, इस तरह के जो है ना दुआया जो जुमले हैं ये कसरत लोग यूज़ करते हैं। अगर आप भी यूज़ करेंगे तो इस तरह आप दूसरों के दिल भी जीत सकते हैं। और ये महज दिल जीतना नहीं बल्कि ये तो एक अपनी जो है ना अखलाकी पहलुओं को उजागर करना है, और फिर एक दूसरे के लिए सलाम पीस वगैरह मांगने की जो बात होती है ना, इससे एक पॉजिटिव वाइब हम दूसरों पर इम्पैक्ट रखते हैं, असर छोड़ते हैं। इसी वजह से कहा गया है हमारे इस्लाम में कि आपस में एक दूसरे को सलाम दो, इससे क्या होता है मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत की फिजा कायम होता है। तो इसी के साथ सामने कराम यानी आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि भाई ख़रीदारी की जो दुनिया या शॉपिंग मॉल की जो दुनिया है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी स्ट्रेटजीज होती हैं, फिर स्ट्रेटजी पॉलिसी से लेकर फिर हमने बताया कि भाई मज्जर दुकान में आप दाखिल होते हैं किस तरह के सवाल आपने करने पड़ते हैं, फिर बार्गेनिंग कैसे शुरू होती है भी बताई, और फिर आपने फिर अपने जो है ना आपको भी चीज़ जो आप ख़रीदनी है तो कौन किस बात पर जो है ना आप उनसे इत्तफाक करेंगे, फिर चीज़ें लेकर निकलेंगे और इससे सलाम दुआ के साथ अपनी बातों का जो है ना इख्तिताम करेंगे। तो ये तमाम बातें हमने कही आज के इस हलके में। तो अगली बार जब आप बाज़ार जाएं तो कोशिश करें कम से कम ये तीन लफ्ज़ यूज़ करें, जैसे कि काफ़ी सारे अल्फाज हमने कहे लेकिन शायद आपको कुछ भी याद नहीं है लेकिन आखिर में एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ, बिकम हादा यानी कितने में दोगे, बिकम हादा, और एक हलियो जो तकफील क्या कोई डिस्काउंट है, या फिर आप इस तरह एक बार्गेनिंग के हवाले से एक लफ्ज़ जो मशहूर लफ्ज़ है हादा गाली, ये बहुत ज़्यादा महंगा है हादा गाली कसीर बहुत ज़्यादा है। तो हाँ जी जबान सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है लोगों से बात करना, या अपने आप में भी जब आप बात कर रहे हैं तो अरबी में कुछ ऐसा कुछ ना कुछ अल्फाज आप यूज़ करते रहें, इंशाल्लाह जो है ना वो फिर आप बाद में दूसरों जो नेटिव स्पीकर से उनके साथ भी बात करने का हौसला आपको मिलेगा। हाँ जी आज के इस शॉपिंग एपिसोड यहीं ख़त्म होती है, अगले किस्त में इंशाल्लाह एक नया मौजू और नए जुमले और नए प्रैक्टिकल अरबी जो है ना टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और साथ तलहा को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है आइंदा हल्के में, मासलामा।
1: अरे मौसी जी कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107 दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: 107 पर वेक अप वेक अप
1: आर यू रेडी फ्राइडे शाम 8 बजे लेकर आ रहे हैं आरजे फजील वो शो जिसका इंतजार होता है सबको टॉप 10 काउंटडाउन सबसे जबरदस्त गाने लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें

0: marketing@qmc.qa.
1: FM 107, Time Check.
2: हला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. स्टूडियो की घड़ी में 11:02.
1: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस. आफ्टरनून एक्सप्रेस.
1: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 से दोपहर के 1 तक
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. Right guys, salam adab, a very very good early Wednesday morning. क्या हाल चाल है? उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे. सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं और पीछे कौन बोल रहा है हमारी?
2: ये हमारा बंपर जो है वो बोल रहा है अभी तक आपके इंतजार में. और बिल्कुल हम दोनों आ चुके हैं.
1: हाँ जी, और पूरे 2 आपके साथ यहाँ पर हम स्पेंड करने वाले हैं. बहुत सारी बातें करेंगे और सबसे पहले तो हर वक्त हम लोग जो है ना वो रो रहे होते हैं एक चीज के लिए. बताइए किस चीज के लिए?
2: किस चीज के लिए नाजिया जी,
1: आप बताइए क्या हो सकती है?
2: भाई इनसे मुलाकात, सब लिसनर से बातचीत
1: तो खुश होते हैं. एक चीज के लिए जो रो रहे हैं वो है गर्मी.
2: ओ,
1: जिसमें आज जितने लोग जब भी जहां भी मिलते हैं तो जो स्टेट मतलब जिस सेंटेंस से उनकी कन्वर्सेशन का आगाज होता है वो होता है कि गर्मी, अरे कितनी गर्मी पड़ने लगी, अरे कितनी. ये आज मैं सुबह से कुछ नहीं तो मैं 10 लोगों से मिली और 10 ने स्टार्ट ही करी अपनी कन्वर्सेशन इसी से. तो मुझे लगा चलो मैं भी यहीं से शुरुआत कर ही देती हूँ ना चाह के. बट हाँ, कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जो आती है, हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाती है कि भाई इसके बाद ये होगा और उसके बाद वो होगा. तो एक चीज जो बहुत अच्छे से हमें और आपको समझ में आती है वो ये कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चीजें काफी टेम्परेरी हैं. तो बस जो चीज जैसी है उसमें खुश रहिए, उसे एंजॉय कीजिए भरपूर तरीके से. पता नहीं कल सर्वे मिर्जा यहाँ हो या ना हो, मैं अपना क्यों कहूँ,
2: आपका तो कह देती हूँ. ये बात तो सही है आपकी बिल्कुल. बस ये जानिए सबसे पहले कि भाई हम दोनों आपके लिए आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और बाकी भी मामला अच्छे चल रहे होंगे. गर्मी के हवाले से तो बातचीत होती ही रहेगी. फिलहाल आप अपना हाल अहवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और नंबर तो आपको हमारा पता ही है 4434377. अब से थोड़ी सी देर में
1: सर मिर्जा आपका नंबर तो मुझे पता ही है.
2: हाँ नहीं बिल्कुल,
1: फर्स्ट के भी आप ऊपर है, 0 पे चल रहे हैं.
2: मैंने कहा शायद कुछ तारीफ करेंगी. तो भाई 666-22-107 हमारा नंबर है जुड़ने के लिए. 666-22-107 इस पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, हाल अहवाल बता सकते हैं, हमारी खैरियत पूछ सकते हैं, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या खासम खास है आज आपके साथ, क्या हो रहा है, कहाँ है और क्या खास चल रहा है जिंदगी पे. वहीं अब से थोड़ी सी देर में हम मुद्दा भी छोड़ेंगे और उसके हवाले से भी बातचीत होगी.
1: हाँ.
2: तो नाजिया जी क्या कहते हैं?
1: सर मिर्जा आप हमेशा कहते हैं कि एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ जो रह जाते हैं एंड यू कंप्लेन इट अ लॉट कि मैसेजेस पूरे नहीं होते. तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको पूरी लिबर्टी देती हूँ कि यू कैन स्टार्ट द शो विद द मैसेजेस. प्लीज गो अहेड, आप पहले मैसेजेस ले लीजिए.
2: आपने क्या शेर सुनाया नाजिया जी?
1: कंप्लेन करते हैं कि मैसेजेस छूट जाते हैं, मैसेज छूट, ऐसा लगता है जैसे इनकी आधी प्रॉपर्टी निकल गई पीछे से, इतने ये दुखी हो रहे
2: होते.
1: जैसे मैं कॉल्स के लिए दुखी होती हूँ, आप मैसेजेस के लिए बहुत
2: परेशान. भाई दोनों कहीं ना कहीं सभी का ख्याल रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ये बातें सुन के सबको ये तो समझ में आ ही गया होगा. और बिल्कुल आप लोगों के मैसेजेस भी शेयर करेंगे. सबसे पहले हम मौसम का हाल अहवाल जान लेते हैं क्योंकि उसी से हमने शुरुआत करी है. तो भैया बताया जा रहा है नाजिया जी, डस्ट स्टॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग विंड एंड राइज इन टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है. क्योंकि क्यों हो रहा है ऐसा? अल-शार्तेन स्टार जो है वो राइज हो गया, उसका नुजूल हो गया है. शार्तेन अगर मैं सही कह रहा हूँ, मैं अगर इसको पहले देखता न्यूज़ को तो पहले सारा से पूछ लेता कि शायद इसको ऐसे ही कहते हैं नहीं, मगर हाँ फिलहाल आसपास ही है. अगर अरबी में सही नहीं बोल पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा इंग्लिश में उसको ऐसे ही कहते हैं शार्तेन. ओके, तो ये जो है अब इस वक्त आ गया है, बल्कि कल से 12 से ये आसमान पे अब दिखने लगा है और जो कि कहते हैं कि 13 तक रहता है या दिखता है. और इसके रहते क्या होता है साहब? इसके रहते यही होता है जो बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ती है, गुबार उठते हैं. भाई जनरल अरब पॉपुलेशन और फार्मर्स की अगर हम बात करें तो वो इसको कहते हैं तुरियात अल कैस या सुरियात अल कैस या सुरायात अल कैस, अगर मैं कहीं आसपास, खैर हम इसको करेक्ट भी कर लेंगे. तो कहते हैं साहब ड्यूरिंग दिस पीरियड QMD कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया है कि नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं जो हैं वो चलेंगी और

0: भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, वेट मत कीजिए कि जब मुझे प्यास लगेगी मैं तभी जाके
1: पीऊंगा। वेट करने से प्यास का क्या मतलब?
0: आपका वेट तो बहुत ज्यादा वैसे ही है, उससे तो वैसे भी प्यास का कोई
1: इसका ये रिलेशन क्या है? वेट मत कीजिए,
0: वेट का मतलब ये कि कुछ लोग वेट ये करते हैं कि जब मुझे प्यास लगेगी मैं पानी पीऊंगा। प्यास लगने का इंतजार मत,
1: वजन तोलने के हवाले से कह रही मुझे ऐसा लगा।
0: प्लीज ब्रिंग समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट योर ब्रेन।
1: 39 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है इस वक्त, हमारे फिलहाल 6 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही है, इसका मतलब नहीं चल रही है, बिल्कुल ना के बराबर चल रही है। ह्यूमिडिटी जो है 17% पे है, जो थोड़ा अभी आराम रहने वाला है और आगे जाके ह्यूमिडिटी भी बढ़ने वाली है। बस इंशाल्लाह खैर हो सबके
0: साथ, खैर मतलब ख्याल रखिए। और एक चीज और मैं कहूंगी कि आप लोग कोशिश ये करें कि धूप में कम से कम निकलें, शेड में रहें, कॉटन कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए जो कि कहा ही जाता है जो पानी जो आपका पसीना है उसे अब्सॉर्ब करता है, और फिर जितने फ्रूट्स हैं सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, चाहे तरबूज है, चाहे खीरा है, चाहे खरबूजा है, या फिर नींबू पानी है, नारियल पानी है, जूसेस, ये सारे ड्रिंक्स आप अपनी डाइट में
1: यकीन जानिए आपने कह दिया है
0: तो सरवर मिर्ज़ा जहर का इस्तेमाल करें।
1: मैं इस बात पे जरूर अमल करूंगा, मसला ये है मैं जरूर करूंगा। अब इन चीजों को लाके भी तो दीजिए, जब आप कह रही हैं कि इसका ऐसे इस्तेमाल कीजिए,
0: मतलब
1: वो खाइए, वो पहनिए, यूं करिए, भाई कहना आसान होता है।
0: आप एक काम करिए, मुझे क्या
1: गाना चला दीजिए,
0: नहीं शर्म करिए।
1: ऑलराइट देन, तो चलिए भाई प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज, और छाप तिलक आपके साथ।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम पॉडकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, वेलोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
0: यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस। तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
2: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
0: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: क्लॉक हम आ चुके हैं और अब आ जाते हैं आज के अपने मुद्दे की तरफ, मतलब सरवर मिर्जा की तरफ। मुद्दा तो आप हैं ही, अब
1: क्या शेर सुनाया आपने नाजिया जी, और क्या ही बात कर दी आपने। और मुद्दा बिल्कुल आ जाते हैं, और आज बड़ी ही प्यारी बात है आपके लिए, वो ये कि नींद से मुतालिक आज हम बात करने वाले हैं। और कुछ इस तरीके से कि आप क्या ऐसे शख्स हैं जो कहीं भी सो जाते हैं, या सोने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब एक तो जैसे मैं हूँ, जितनी ज्यादा आवाज हो उतनी ही प्यारी और सुहानी नींद आती है मुझे नाजिया जी, बल्कि अच्छा। अगर आवाज ना हो तो मैं सो ही नहीं सकता, सो ही नहीं सकता।
0: मिर्ज़ा बेग, मैं ड्रमर्स का इंतजाम करते थे।
1: नहीं, यकीन जानिए, मतलब होते हैं बहुत सारे लोग होंगे मेरे ख्याल में, कुछ लोग होते हैं म्यूजिक सुनते सो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं
0: मुझे ना कंप्लीट साइलेंस चाहिए,
1: कंप्लीट साइलेंस चाहिए, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस।
0: नहीं सो सकती
1: सेहत के लिए, बहुत गलत।
0: लोग अगर बोल रहे हैं या आपकी तरह उछल कूद कर रहे हैं इधर से उधर, मुझे नींद नहीं आती।
1: यकीन जानिए, यकीन जानिए, ट्रेन से अच्छी नींद मुझे कहीं नहीं आई। घचड़ पचड़ थपड़ थपड़ झटड़ भटड़, मतलब इतनी सुहानी नींद यार ट्रेन की आवाज। और यहाँ तक कि यकीन जानिए, मैं और
0: आप तो रिक्शे में
1: थोड़ी बहुत बीमारियां, और मेरी और कबीर की सेम भी है ना, तो हम और वो जिक्र कर रहे थे। यहाँ तक कि मैं यूजुअली ऐसा करता हूँ कि मैं जाता हूँ जो हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं आजकल, उस पे मैं जाता हूँ, मैं बारिश की आवाज लगाऊंगा, ट्रेन की आवाज लगाऊंगा, आप समझे नहीं, इस तरीके की मुख्तलिफ आवाजें,
0: जानवरों की आपको पसंद है
1: वो तो साथ में ही होते हैं हर वक्त, तो फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली।
0: आप अपनी बात तो सही कर रहे हैं।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: हेलो हेलो जी, कौन है? हाँ हेलो, आवाज आ रही है?
2: हाँ आ रही है, आपको आ रही मेरी आवाज?
1: हेलो,
2: आवाज मेरी आप?
1: जी जी, आवाज आ रही है?
2: हाँ जी आ रही है।
1: हेलो
2: जी,
1: जी आवाज आ रही है?
2: आ रही
1: है। अच्छा हाँ, अब आ रही है। कौन है हमारे साथ?
2: आपके साथ सरताज खान 1974।
0: अच्छा, इतना
1: 1974 मॉडल है सरताज खान साहब
0: अच्छा,
1: का ये।
0: ओके।
1: इससे पहले 1973 मॉडल जो है वो टूटे और बने, मगर फायदा नहीं हुआ। मगर जब 1974 मॉडल बना तो
0: तब जाके बात
1: सरताज साहब हमारे, इतना
0: क्या
1: प्यारा
0: बात है।
2: मैं 1974 में यहाँ आया था, इसलिए मैंने उसको अपना सिग्नेचर रख लिया। अरे 1974
1: नाजिया, आप को शायद याद ना हो, मैं और तमाम सुनने वालों को बता दूं कि सरताज भाई की उम्र क्या है, आप बातचीत करके बता ही नहीं सकते, यकीन जानिए।
2: आखिर में मैं
1: हाँ हाँ सरताज भाई, बिल्कुल एंड में बताइएगा, मैं मुझे क्योंकि पता ही है, मैंने आपसे बात करी है। और यार क्या मतलब, वाह वाह वाह वाह भाई, कमाल है, कमाल।
0: नहीं, अब आप कह रहे हैं तो सोच रही हूँ मैं, और 74 में तो ये आए थे,
1: सोचिए
0: सोचिए,
1: जब आए थे तो 74 के थे। अब दुगले गले
0: तब तो वाकई अपने आप में
1: सरताज भाई,
0: एहतराम तो है ही।
1: तो सरताज भाई, नींद के हवाले से बातचीत हो रही है कि क्या कह रही है नींद आजकल, मान रही है आपकी, नहीं मान रही?
0: सुकून में आपको नींद आती है या फिर शोर शराबे में भी आप सो जाते हैं, कैसे आपको रखते हैं?
1: सरताज भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही है, कनेक्टेड नहीं है सही से, क्या ब्लूटूथ से या हेडसेट से बात कर रहे हैं?
2: बिल्कुल कोई भी नहीं।
1: हाँ, आवाज सही नहीं आ रही, माजरत के साथ। भारत
0: उतनी क्लियर नहीं है,
2: बंद कर देता हूँ।
1: नहीं नहीं, नहीं बंद मत करिएगा, टूट टूट के आ रही है। भारत बोलिए तो जरा, अपनी जगह थोड़ी सी बदली।
2: जी मैं ये कह रहा हूँ कि
1: सही है,
2: नींद मिल बहुत है, और किए में सर रखा नहीं और मैं गया ख्वाबों में।
1: अच्छा
2: जी, ऐसी नींद है।
1: अच्छा,
2: और पहले जब मैं यहाँ आने से पहले 70s में, अब उस जमाने में तांगे चलते थे। मैं सियालकोट से है, पाकिस्तान सियालकोट।
0: अच्छा, पाकिस्तान सियालकोट से है, नाइस।
2: तो तांगे में लड़के जब शहर जाते थे ना, कोई 2 मील का फासला हुआ तो मैं इसमें सो जाता था।
1: वाह, आहा हा हा हा, क्या कहने,
2: हिलता भी है और हवा भी लग रही है।
1: हाँ, ऐसे जैसे कोई गोद में सुला रहा हो।
0: वाह,
2: और बाकी ट्रेन और बस की तो उससे सुपर बात होगी, वो तो सोना ही सोना है इसमें।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है सरताज भाई, तो टांगों में चलते हुए और सोते हुए सरताज।

0: भाई सरताज भाई, अब आप अपनी उम्र बताइए। 1974 में जब आप कतर आए थे तो कितने साल के थे पहले तो ये बताइए।
1: मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1950। मैं जब यहाँ आया था तो 24 का था, अब मैं माशाल्लाह 76 का हूँ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये है जिंदा दिली देखिए, और इतनी प्यारी बातचीत करते हैं, एकदम ऐसे लगता ही नहीं कोई 34-35 साल से ज्यादा का शख्स बात कर रहा
2: है।
0: क्या कहने है भाई, मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ यार सरताज भाई यार।
2: अमल में भी लाए
1: बस, अल्लाह ताला का करम है, आप लोगों की दुआएं।
0: अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे, खुशहाल रखे,
2: आमीन सुम्मा आमीन।
0: इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहें, बातें करते रहें और तफरी करते रहें।
1: ऐड कर दूं, मेरे वालिदैन जो 1950 में शाहजहांपुर से माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान। बताते मैं 6 महीने का था जब।
0: क्या बात,
2: चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आगे भी आप प्लीज हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हाँ,
1: एक एडवांटेज लेना चाहता हूँ, दो शेर सुनाना चाहता हूँ।
0: इरशाद इरशाद
2: प्लीज
1: सरदार शाहजहांपुरी उनका नाम मुक्ता बस, वो शेर, हर लम्हा आह आह किए जा रहा हूँ मैं, और बेरब्त जिंदगी है जिए जा रहा हूँ मैं, पर सरदार जिंदगी भी कोई जिंदगी है, ये मर मर के जी रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, बट मुझे लगता है इसके बिल्कुल बरक्स है, और आप बहुत खुश मिजाज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं ना कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, घर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए, तो ये शेर आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: देखा आपका अदब का बहुत शौक है, मैंने इसलिए आपके लिए दो शेर रखे थे।
0: अहलन वसहलन, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, और अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, आप भी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
0: तो भाई ये देखिए आप, इसमें कितनी चीजें जुड़ जाती हैं, एक तो कतर से मोहब्बत और कतर के लिए मोहब्बत, और कतर में जो आया वो कतर का होकर रह जाता। नादिया, इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा यार।
2: ये बात तो खैर सभी पे एप्लीकेबल, आई थिंक जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इसके इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि ये मुल्क है ही इतना अच्छा,
0: तो नींद क्यों ना आए अच्छी जब हम हैं कतर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
2: एक और वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंशु जी हमारे साथ, क्या
0: जी बिल्कुल वही है
3: जी, जी बिल्कुल,
2: कैसे आप, खैरियत से अंशु जी?
3: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आज हम बहुत ही सिंपल से सवाल कर रहे हैं, पूछ ही रहे हैं कि आप वो शख्स हैं जिन्हें प्रॉपर अपना सुकून चाहिए, बेड चाहिए, आराम से, कोई साइलेंस हो, कोई शोर ना कर रहा हो, फिर नींद आती है, या आप उस तरह के शख्स हैं किसी के भी बेड पे कहीं भी कैसे भी आराम से जहाँ जगह मिल जाए नींद हो और सो जाते हैं, और शोर वोर का भी आपको मसला नहीं होता?
3: हम दूसरे वालों में से हैं, जहाँ मिल गया जगह वहाँ सो जाएंगे। या ड्रम बजे,
0: क्या बात है,
2: अच्छा,
3: या तो बगल में जगह हो,
0: आहा,
3: कुछ भी हो, नींद आ गई सो जाएंगे घोड़े बैठ के।
0: यार मैं तो ऐसे कोने कूचे ढूंढता हूँ, किस घर में शादी चल रही है, किस में बारात आने वाली है, वहाँ जाके अपनी नींद पूरी कर लूँ, क्योंकि वैसे सो ही नहीं पा रहा यार। क्या बात है अंशु भाई,
2: तो मतलब ड्रम बारात के आगे आप नाचते हैं जो थक जाते हैं?
0: सोते हैं, जगह ढूंढते हैं,
3: सो जाते हैं, सारी दुनिया जाती है, यहाँ तक कि हम अपने जगह में भी सो जाते हैं।
0: अजी हाँ, वाह
2: वाह,
0: क्या कह रहे
2: हैं,
0: बहुत अच्छे, बड़े सोते हुए हैं भाई, वाह वाह वाह वाह, क्या सोता हुआ
3: जगह, सारे खानदान के लोग जगे थे, हम इधर
0: खर्राटे
3: मार के सो रहे
0: थे। क्या बात है, वो इसीलिए जगे थे, आपके खर्राटों से ही एक्चुअली हुआ ये था। जी
3: ऐसे एक दफा हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे, तो हम लोग गए थे नदी में नहाने।
0: अच्छा,
3: हमारी तरफ नहर है ना यूपी के, हम लोग
0: हाँ,
3: तो नहर बहुत ज्यादा है महाराजगंज साइड गोरखपुर, तो उधर हम गए थे नहाने, तो नागनी होती है,
2: हाँ जी,
3: उस पे ही सो गए थे।
2: हर जगह सो रहे हैं सर, मैं मिर्जा भी जोड़ दिया।
3: दोपहर का मतलब आराम का दिन, दोपहर का मतलब मतलब
0: नहीं यार, वो तो खैर जगह, वो तो जगह भी ऐसी है, वो तो जगह भी ऐसी है, ऐसी जगह किसको नींद नहीं आएगी भाई, नदी किनारे और वो हवा वो मौसम, क्या बात क्या बात है, अभी भी लग रहा कहीं टकरा गई सोते सोते, आवाज ऐसी आई,
3: हम सो गए थे, हम सो गए थे, साइडों समय से ताक रहे थे कि बंदा देखो कहाँ सोया।

0: हाँ सोया पड़ा है,
1: कुछ नहीं, नदी कितनी बड़ी है किधर तूफान है ना कुछ नहीं, लगी सोगा
2: कुछ नहीं हो
1: पता है, हमेशा याद रहता हर वक्त वही याद
2: रहता, एक करवट लेते तो खुदा ना खास्ता सोते ही रह जाते। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है अंशु भाई की।
1: और ये भी अच्छी बात है कि हम जिस करवट सोते हैं उसी करवट सोते हैं, जब नींद पूरी होगी तो उसी करवट उठेंगे भी।
2: अरे
0: अच्छा? पूरी रात में आप ऐसे एक ही पोजीशन में सोते रहते हैं।
2: नया एंगल है भाई ये, नहीं
0: ये तो बहुत ही
2: नई चीज सामने आई।
0: हाँ और मुझे लगता है बड़ी डिफरेंस
1: है कि कोने में जैसे एक इंसान का होता है ना सीधा लंबा सो गया तो लंबा ही सोएंगे, बायस हो गए तो बायस, डायस हो गया डायस, कुछ नहीं।
2: वाह क्या बात है,
0: सरवर मिर्जा का तो बहुत ही बुरा हाल है, खड़े खड़े सो जाते हैं।
2: हाँ नहीं कई बार हुआ
0: है, बाहर ऐसा हुआ
2: क्योंकि ट्रेन की आदत है ना,
1: दिल्ली जा रहे थे हम गोरखपुर से दिल्ली जा रहे थे तो बिहार की बन के आती है ना, बिहार बहुत ज्यादा जाम होता है तो खड़े खड़े सो के दिल्ली गए थे।
0: और दूसरे लोग इस, आप तो चलिए एक ही पोजीशन में खड़े खड़े चल रहे हैं, ये जो सोते हैं खड़े खड़े तो दूसरों पे गिर रहे हैं।
2: नहीं नहीं गिर गिरा नहीं रहे, मैं तो पहले कह देता हूँ कि देखो भाई बैठ जाने दो, जगह खाली कर दो, अगर मैं किसी पे गिर गया तो फिर वो बैठा ही रह जाएगा, तो लोग जल्दी से जगह छोड़ देते, आइए बैठिए बैठिए
0: आइए बैठिए।
2: भाई अंशु भाई क्या बात है, बहुत ही ज्यादा सोते हुए निकले आप तो, और बड़ा मजा है। अच्छा
1: चौबीस
2: ना ना ना ये नहीं मानता मैं, ना मेरे पास एक है शख्स
1: ना
2: ना ना ना, ना मैं मानूंगा ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं,
0: क्यों नहीं मानेंगे जब है।
2: मैं सुनाऊंगा अभी नादिया आपका किस्सा, आपका किस्सा मैं सुनाऊंगा अभी, आप क्या बात कर रही कि खैर आपका रिकॉर्ड क्या है अंशु भाई,
0: बस एक बार
2: 40 घंटे
0: हो गया,
1: नहीं
2: 24 नाजिया ऐसी झाड़ देती है कंधे पे से इधर उधर, 24 हटिए यहाँ से, नाजिया का रिकॉर्ड भैया अरे 72 घंटे का। मैं सुनाऊंगा अभी किस्सा सुनाऊंगा, छोटा सा ब्रेक लेना है,
0: झूठ फ्रेम कर ले अभी सुनाएंगे बताएंगे अभी थोड़ी देर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: वो भाली तो नहीं होते बर्फ पाए जाते हैं
2: वही है। क्या पहचाने हैं यार, 6 महीने बाद निकलती हैं, मैं बताऊंगा अभी सुनाऊंगा, अभी जरा ब्रेक लेना अंशु भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
0: थोड़ा सा झूठ सही फ्रेम कर लीजिएगा
2: भाई, सोने
0: टाइम का हाइबरनेशन होता है ये देख लीजिएगा।
2: सोने सहाने की बातें चल रही है, गाना भी नाजिया के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह कहा जा रहा है इनके सोने पे, वाजिद और श्रिया घोषाल। आफ्टरनून एक्सप्रेस में सरवर और नाजिया आपके साथ, 11:26 हो चुके हैं, एंजॉय कीजिए ट्रैक, हम यू गए और यू वापस आए, सुनते रहिए FM 107
0: दिल से तेज़ी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: जो शख्स सच बोलता है वो बददियानती नहीं करता, वो शख्स नरम दिल होता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, वो धोखा नहीं देता, गलत कामों से दूर रहता है। सितम जरीफी यह है कि हमारे माशरे में अक्सर लोग सच बोलने से गुरेज करते हैं, मामूली और आम से मामलात में झूठ बोलने से दरेक नहीं करते। कोई कहीं जा रहा है, किसी वजह से लेट हो गया, फोन की घंटी बजी, भाई कहाँ हो, तो फौरन ये कह दिया जाता है मैं रास्ते में हूँ, बस 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हालांकि वो अभी घर से निकला ही नहीं और उसके 10-15 मिनट एक घंटे के बराबर हो जाते हैं। मुशाहिदे में आया है कि अक्सर लोग झूठ बोलने की आदी हैं और यही वजह है कि मुआशरे में तमाम बुराइयाँ मौजूद हैं। याद रखिए, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है और ये गुनाह कबीरा भी है, इससे बचने की कोशिश कीजिए।
1: पैगाम ऑन FM 107
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil se Desi
3: Har insaan ke piche ek kahani hai, ek jazba hai, ek khwab hai jahan uske saath sirf job title hi nahi balki zindagi ke rangon ka safar hai। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
4: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
3: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
4: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
5: हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर, मनी नेविगेटर एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। Your guide for a smarter, strong financial decision. सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए। Are you ready? Friday शाम 8 बजे लेकर आ रहे हैं आरजे फजील, वो शो जिसका इंतजार होता है सबको। Top 10 countdown. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद RJ फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: You are listening to Afternoon Express.

0: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
1: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
0: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद. आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस, सरवर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं. 11:39 ऑन द क्लॉक. नींद पर आज हमारी जो है वो चर्चा जारी है.
2: क्या बात है,
0: नींद
2: पर हो रही है बातचीत. मैं तो यही कहता हूँ कि नींद बहुत अच्छी बात है. और यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट और उसके बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे और साथ में आपके मैसेजेस भी. तो चलिए पहले कॉलर कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो आ गए हैं और उनसे हम वेट नहीं कराते. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो
0: हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
3: आप सुनाइए, आपको मेरा नंबर ना मेरा आवाज ना मेरा नंबर कुछ भी याद नहीं है
2: यार. असल में होता क्या है, क्या
0: उम्र का तकाजा है?
2: हाँ ये बात तो है ही. जो स्क्रीन फेस कर रहा है नंबर का वो सिर्फ मैडम की जानिब फेस कर रहा है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ.
0: कल तो आपकी जानिब
2: और यकीन जाने जावेद भाई के नंबर मुझे याद वैसे भी कम रहते हैं, अपना ही याद है, बहुत बड़ी बात है.
0: सही बात.
2: हाँ, आवाज
0: और नाम मैंने कभी किसी के याद नहीं रहते. हाँ वही हो तुम, वही हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ नाम बताओ. हाँ यही
2: कुछ लोगों में हर तरीके की खासियत होती है तो ये खासियत है.
0: मगर पूरी बातचीत कर लेते हैं बाद में आके घूम के पूछते हैं इसको मैंने बहुत देखा था कौन ये. ये हालत है सब बातचीत करके.
3: हालत तो आपने नाजिर जी पहले तो आप सुनाई, सब खैरियत से?
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से.
3: हालत तो जो सरवर भाई की मतलब होती है और ये खुशकिस्मत है कि मतलब है कि इनकी हालत ही हो रही है वरना लोग तरस रहे हैं.
2: वाह क्या शेर तो लाया है जावेद भाई, क्या कहने, क्या पहुंचाया है. देखिए आप ना दी, आपके बात समझ में नहीं आई होगी, ये सिर्फ मैं समझ सकता हूँ जो जावेद भाई कह रहे हैं.
0: तो
2: दिल से दिल को रहा होती है, मैन टू मैन, यू नो. जी
0: मैं नहीं समझी क्या कहा, एग्जैक्टली क्या कहना चाहूँगा.
2: जी जावेद भाई,
3: दूसरा एक वो जो हमारे एक भाई ने फोन किया था, अंशु साहब जो भी है माशाल्लाह इतनी अच्छी बात कर रहे थे. मैं सोच रहा था चलती गाड़ी में इनको चाहिए कि अपना कोई आस्ताना खोल के लोगों को ये फूंक मारा करें जिनको नींद नहीं आती.
2: अंजू भाई अगर आप सुन रहे हैं तो अब आपको क्लासेस लेनी होंगी.
0: ये तो एक ही क्लास है, मैं दो क्लास. हाँ
2: नादिया तो माय गॉड. अब मैं क्या ही बोलूं. खैर जावेद भाई से पहले बात, आपकी तारीफ तो चलती रहेगी नादिया जी. तो जावेद भाई क्या कहना है वैसे सोने के हवाले से? मुझे नहीं लगता जावेद भाई नींद में अच्छे होंगे क्योंकि एक तो ड्यूटीज का मामला ऐसा और फिर जो कलाकार होता है ना उसका सोना मुश्किल होता है. ये तो करोड़ों में एक होता है नादिया, आपके जैसा कलाकार आप भी हैं मगर करोड़ों में.
0: आपकी कलाकारी के आगे आपको नींद सही आती है?
2: जावेद साहब खुद कलाकार हैं तो मुझे नहीं लगता कि सोते होंगे. जावेद भाई ऐसे ही है
3: नाजिया जी, आपके लिए तो ये लफ्ज जो कलाकारी का है बिल्कुल फिट बैठता है और सरवर भाई के लिए जो कलाबाजियां हैं ये फिट बैठता है.
2: अच्छा है जावेद भाई, अच्छा है.
3: अच्छा नींद के हवाले से सरवर भाई, मेरी नींद बखुदा बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है. फॉर एग्जांपल अब जो वीकेंड मैंने गुजारा है आफ्टर 2.5 मंथ्स मतलब 2.5 माह के बाद जो मैंने पहली दफा वीकेंड गुजारा है, अगर मैं तकरीबन 7 या 8 घंटे सो जाऊं तो मेरी बॉडी आई फील टायर्ड. मैं
2: यार मुझे सैम टू सैम यार जावेद भाई यकीन जानिए, मैं अगर 4 घंटे से ऊपर हो गया मुझे सोते हुए तो मेरी कमर और शोल्डर बहुत दुखने लगते हैं यार. सेम बात आपने जो कही तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है एक्चुअली.
3: कमर या कमरा मुझे समझ नहीं आई क्या
2: कमरा? मतलब दोनों ही चीजें.
0: कमरा
2: खुद दुखने लगता है कि तब हार जाओ. दोनों ही चीजें एक दूसरे को सुनाती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है मगर बात सही कही.
3: नींद जो है मेरे लिए मतलब है कि एक तो अपनी जगह हो और इसमें शोर हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब इंसान ज़हनी तौर पर जिस्मानी थका हो ना तो उसको शोर शराबा उसको फील नहीं, वो सो जाता है अपने वक्त के. और नींद तकरीबन 4.5-5 घंटे मेरी नींद इतनी है बस पूरे मतलब 24 आवर्स में यही मेरी नींद.
0: काफी कम सोते हैं
3: शुरू से ही नाजिर जी, मतलब शुरू से ही ऐसी एक रूटीन है मेरी

0: क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह आजकल ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस का टाइम थोड़ा कम हो गया, तो घर जाते हुए 2:30 बज जाते हैं, जाके फ्रेश होके नमाज पढ़ी, एक ब्लैक कॉफी पी, उसके बाद अपना टेनिस खेलने चले गए, तो उसके बाद अगर फैमिली के साथ बाहर चले गए या बैठे रात को 10:30 बजे मैं लेटता हूँ तो सुबह 3:30 में उठ जाता हूँ, ऐसे रूटीन मेरी।
1: वही मैंने जो शुरुआत में ही कहा कि भाई कहना चाहिए जिम्मेदारियों के हवाले से उस हिसाब से जिंदगी सेट भी हो जाती है। क्या कहने भाई जावेद भाई, जावेद भाई नींद के हवाले से कुछ गुनगुना ही दीजिए अब जब बात हो रही है इतनी। तो
0: नहीं मैं ये तो नहीं कहता मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, चैन तो मुझे तो नींद आती है, लेकिन चैन आपको मैं, मुझे तो यार आपकी मैं, मेरे पास बेसिकली ना मैं चाह रहा हूँ आपको अच्छी जगह मैं डिनर करा के मैं आपके दुख सुनूं, मैं सुनना चाहता हूँ,
1: ये मैं खूब सुनाऊंगा।
2: तो एक डिनर से तो काम इनका चलेगा नहीं,
1: कम से कम 7-8 डिनर,
2: 10-12 तक तो जाना ही,
1: इतनी तो रातें लगेंगी आधे दर्जन के करीब।
0: मेरे भाई मेरी खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे साथ बैठूं।
1: थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू सो मच, मगर आप कुछ गुनगुना दीजिए, आई इंसिस्ट।
0: अच्छा दो लाइनें मैं गुनगुनाता हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, मुझे ऐसे तंग किया करो नाजिया जी।
1: लगा दिया शो शायद जाते जाते।
0: खुश रहिए, खुश
1: रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच,
1: अल्लाह हाफिज। तो ये थे जावेद भाई हमारे साथ बेहतरीन आवाज के मालिक।
2: अब हम एक छोटी सी अपडेट दे देते हैं और फिर अपने टॉपिक की तरफ।
1: बिल्कुल ना दीजिए, बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत जरूरी।
2: तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कतर के कतर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल के जेर एहतमाम फेम लैब एकेडमी नाम का एक अहम साइंस कॉम्पिटिशन जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है। ये कॉम्पिटिशन बेसिकली देखा जाए तो 14 से लेकर 17 साल के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर इन स्टूडेंट्स को या इन पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा कि वो अपनी साइंस अंडरस्टैंडिंग को आसान और इंटरेस्टिंग अंदाज में पेश करते हैं। वेल, इस कॉम्पिटिशन का जो मकसद है वो ये है कि जो नई जनरेशन है उनमें साइंस कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आइडियाज़, अपने रिसर्च और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं बिना किसी हेजिटेशन के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभी के सामने पेश कर सकें। वेल, इस एकेडमी के ज़रिए स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स दिखाते हैं, बाकायदा उन्हें एक्नॉलेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, और इन स्टूडेंट्स को मौका भी मिलता है कि वो इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाए। मैं आपको बताऊँ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। वहीं पर ये एजुकेशनल इनिशिएटिव फ्यूचर के साइंटिस्ट और इनोवेटर्स को तैयार करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि ये एक्टिविटीज जो है वो स्टूडेंट्स में शुरू से ही राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्रिटिकल थिंकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी फरोग देती है। तो चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात, और ये कंपटीशन आई थिंक सारी दुनिया में होते ही हैं लेकिन यहाँ कतर में भी हो रहे हैं, और बहुत ही बड़े स्केल पे, ह्यूज स्केल पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स कतर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल मिलकर इसे कंडक्ट करा रही है। और बहुत अच्छा लगता है जान के कि जो शुरू से ही बच्चों को तैयार किया जाता है रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के सेक्टर में, तो आगे जाके वो कमाल के इनोवेटर्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त सी बात। एंड विद दिस,
1: अस्सलाम वालेकुम सर भाई, नाजिया दादी, मेरा मतलब नाजिया बाजी, सब खैरियत है, फरद भाई कहते हैं यहाँ पर, तौफीक भाई हमारे साथ जुड़ गए। नाजिया एंड सरवर, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तौफीक फ्रॉम अलवाकरा, वालेकुम अस्सलाम। इंग्लिश नहीं, सुबह का मैसेज है, नीचे आते हैं, कहते हैं आज नहीं
2: बोलूंगा कुछ,
1: सेंड किया नहीं, ये वो तो नहीं है, क्या कहना चाहते हैं?
2: तो नसीम जी आज कुछ नहीं बोलूंगा,
1: क्या कहना चाहते हैं ये?
2: भूल के कहते हैं आज है, मैं कुछ भी नहीं बोलूं।
1: अबू आकिब साहब, मेरे ख्याल में ये कबीर की स्टोरी की शायद वेट कर रहे होंगे जो इनको नहीं मिली है, और उसके हवाले से लिखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, और ओहो द लेजेंड सरवर भाई,
2: यानी आपका रिटायरमेंट करीब
1: है समय। आज बहुत सर्दी है, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। अमीन भाई हमारे साथ, नहीं आमीन कहते हैं जावेद।

0: भाई हैं हमारे साथ यार, जावेद भाई टू द पावर टू। ओहो यहाँ पर तो बहुत सारे मैसेजेस ना दिए आपके लिए खास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी तक प्राइस अपडेट नहीं हुआ, रमजान क्विज का प्राइस देते भी हैं।
1: ये टोन हमारे लिसनर की होती ही नहीं है। अच्छा, नहीं, आप मतलब, अपनी सुधार हाँ,
0: नहीं मतलब वो प्यार से कह
1: रहे हैं। अरे मिल रहे हैं लोगों को धीरे धीरे, सबका चांस आ रहा है भाई। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला भी थैंक यू कि हमें जो है हमारा
0: हमने तो दावत भी खा ली उस प्राइस की, दो तीन नाजिया
1: मतलब एक हमारे साथ जो है वो
0: शाहिद भाई हमारे साथ कहते हैं मिल रहे हैं। शाहिद भाई मिल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, इंशाल्लाह
1: आपका भी नंबर आने वाला है। जी टीम कॉल कर,
0: बिल्कुल जाना शुरू हो गए हैं प्राइजेस। हेलो अस्सलाम वालेकुम,
1: मिलना शुरू हो गए हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: क्या हाल है आप दोनों, ठीक ठाक?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। तौफीक भाई फ्रॉम अल वखरा।
2: यस बिल्कुल यार, क्या तुम कब से उठाए हुए, मेरा पूरा हर वक्त बैंक खलास करता है।
0: बैलेंस खराब कर दिया।
2: बैलेंस खराब कर दिया,
0: क्या बात है भाई।
2: इसलिए जब मुझे नींद आता है तो अगर सर्वर मिल जाए मैं उसके गोद में भी सो जाता हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या शेर सुनाया आपने भाई, वाह।
2: नींद तो नींद होता है, चलते गाड़ी या रुकते गाड़ी, लेकिन अच्छा बिस्तर मिल जाए ना, उसको जरूरत नहीं हो तो सर्वर की गोद में सो जा करें
0: भाई। नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, मगर उनके आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। तौफीक भाई
2: बिल्कुल, जावेद भाई क्यों नहीं आया शादी में, ताकि उसको मैं स्टेज पे गाना गाने के लिए
0: आप की करिए, आप तो जरूर आएंगे।
1: क्यों नहीं बुलाया भाई उनको?
2: अभी मैं तो दावा सबको दिया, इतना अच्छा आवाज था, मजा आता था, स्टेज प्रोग्राम था, पश्तो वाला था लेकिन उर्दू वाला नहीं था कोई।
1: अच्छा,
2: तो इसी को बोल डालता था, पश्तो वाला था ना, सिंगर था, सिंगर मिंगर।
1: अच्छा वो गाना वाना भी था, क्या बात है।
2: हाँ ना, सिंगर मिंगर थे, सिंगर मिंगर
0: मिंगर भी थे,
1: चलिए अच्छा है आपने भरपूर तरीके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो जरूर,
2: इंशाल्लाह दूसरे बेटे का होगा तो इंशाल्लाह, तब तक
1: इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल, अपना ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह
0: हाफिज तौफीक भाई, अल्लाह हाफिज। ये थे तौफीक भाई हमारे साथ, बड़े प्यारे तौफीक भाई और बड़े ही मासूम तौफीक भाई। यहाँ पर कुछ मैसेजेस और शेयर कर लेता हूँ मैं, अभी टाइम मिल गया है तो। नाजिया ने इशारा कर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आए।
1: ये वही तो मैं कह रही हूँ, ये कुछ नहीं बोलने वाले नसीम
0: भाई,
1: आज कुछ नहीं बोलूंगा।
0: कहते हैं सरवर जी तुसी ग्रेट हो, जसविंदर शाजी। अबे यार गाबा भाई किधर है, जसविंदर भाई भी तीन चार दिन बाद आए, काफी हमारे जो रेगुलर दोस्त हैं वो नहीं मिल रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो,
0: नए लोग जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो हेलो,
3: हाँ जी।
0: ओरे यार, कम ऑन मैन, डोंट टेल मी यार गाबा यार, डोंट डू दिस विद मी यार प्लीज। और अब आप ये समझेंगे कि मैंने शायद नंबर देख के, मैं वल्लाही बता रहा हूँ, मैंने ना नंबर देखा है ना स्क्रीन। नाजिया प्लीज यार है इस बात में तो
1: सच कुछ तो बोल दीजिए
0: यार, यार तो नादिया प्लीज देखो, प्लीज सच बोल दो यार नादिया।
1: नहीं नहीं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं पता था, अभी आपका आपका ही जिक्र हो रहा था, जसविंदर जी का एक मैसेज था, फिर हमने कहा गाबी जी,
0: हमने गाबा भाई जाने कहा,
1: और आपकी माशाल्लाह फौरन से कॉल आ गई,
0: क्या बात है।
3: एक होती है सिक्स्थ सेंस, अभी इनकी कौन सी सेंस है ये मेरे को नहीं पता सर भाई की, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए।
1: इनकी 10th सेंस,
0: वल्लाही बता रहा हूँ भाई, मैंने बस सिर्फ याद किया है अभी हमने आपको और आपकी कॉल आई,
1: यानी ये वो वक्त था जब कुछ और भी अगर आप
0: कहाँ थे गाबा भाई, आप किधर थे यार, कुछ अता पता नहीं आपको।
3: हाँ बताता हूँ सरवर भाई, पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे।
0: अहलन व सहलन, रिक्वेस्ट नहीं हुक्म कीजिए।
3: सरवर भाई जब इंस्टाग्राम में डीएम आता है ना तो उसका सर रिप्लाई जरूर करें, बस यही इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे।
0: ओह माय गॉड, कुछ मैसेज
1: ही नहीं करते हैं डीएम तो। आई एम वेरी सॉरी
0: गाबा भाई, और
1: आज तक इन्होंने चेक नहीं किया,
0: आपने हुक्म किया है तो मैं जरूर चेक करूंगा। और
3: नाउ कंटिन्यू।
0: हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल चेक करता हूँ बिल्कुल। नहीं वैसे खैरियत है सब, मैं ये जानना चाहूंगा कोई ऐसी बात तो नहीं, खुदा ना
3: करे। सर एक इनविटेशन था आपके लिए और नाजिया जी के लिए, आपने वो देखा ही नहीं मैसेज।
0: ओह
1: अच्छा,
0: आई एम सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी।
1: अच्छा
3: कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
0: तो खुशी की बात थी ऑब्वियसली, इनविटेशन
1: कह रहे हैं
0: तो सर आपको तो शेयर कर दीजिए यार।
3: इनवाइट किया हुआ था सर,
0: हैं
1: आपको
3: पहले इनवाइट किया हुआ था आपको और नाजिया जी को, शायद आप भूल गए। अभी भी रिसेंटली मैसेज दिए थे दो तीन दिन पहले.
1: अच्छा अभी हम लोग चेक करते हैं
0: यार. आई एम वेरी बैड इन इट. मैं कहना चाहिए कि व्हाट्सएप के अलावा मैसेंजर
1: और
0: क्या क्या होता है वो दूसरा जो होता है मैसेंजर तो एफबी का है दूसरा होता है क्या हाँ मतलब वही इंस्टा का भी. यार आई एम वेरी सॉरी. आई एम वेरी सॉरी.
3: मैं कोई चक्कर नहीं भाई ये टेंशन ना लो थी.
0: अब ये भरपाई कैसे होगी मैं ये सोच रहा हूँ.
1: ये परेशान है क्यों दावत निकल गई
0: यार. दो तीन दावतें निकल गई नाजिया सिर्फ आपके चक्कर में यार. आपने ना कबूली ना कबूलने दी.
1: अच्छा मैं तो खुद कह रही हूँ कब से कि आप कबूल लीजिए.
0: गाओ भाई वेरी सॉरी पहले तो. और मैं जरूर देखूंगा और ढेर सारी मुबारकबाद. कुछ खास था तो अगर शेयर कर सकते अच्छी बात है वरना मैं आपको मैसेज जरूर करूंगा तो उस पर पता चल ही जाएगा अगर शेयर नहीं करना चाह रहे हो ऑब्वियसली.
1: उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से
0: सब खैर रही होगी. एंड वल्लाह यार अभी हमने आपको याद किया और बहरहाल यार अब तो
3: बस वही सर छोटे गाबा साहब का बर्थडे था.
0: हैप्पी बर्थडे टू गाबा जूनियर एंड रियली वेरी सॉरी यार. अब तो हम सबके सामने
3: ना कोई चक्कर
1: चलिए कभी ना कभी आपके छोटे बेटे आपके बेटे से हम लोग की जरूर मुलाकात होगी. हम उम्मीद कर रहे हैं पर्टिकुलरली पर्सनली हम करेंगे इंशाल्लाह. बट वी आर लाइक रियली अपोलोजाइज करते हम कि हम लोगों ने देखा नहीं आपका मैसेज.
0: हाँ यार कम से कम जवाब देते माजरत करते सॉरी बोलते.
1: तो केक वेक तो बहुत दिल से खाते हैं बहुत शौक से
3: खाते हैं या कस्टमाइज भी करते हैं मैडम.
1: केक का तो इनका ये है कि अकेले ही खाते हैं.
0: नहीं वैसे
1: पर्सनलाइज कर लेते हैं केक को ये.
0: ओहो यार मुझे अफसोस हो रहा है मैं कुछ बोल नहीं पा रहा. एनी हाउ आई एम सॉरी. और इंशाल्लाह
1: अभी भी आप उनके बेटे का गिफ्ट तो पहुंचा ही सकते हैं.
0: जरूर जरूर इंशाल्लाह ताला इसको हम और नाजिया मिलके देखेंगे कि कैसे भरपाई करनी है. दो तीन भरपाइयां करनी है. तो आ जाते हैं मुद्दे की जानिब.
3: जी मैं और कलेक्टिवली आपको बताता हूँ आप दोनों की सर शख्सियत पता क्या है सर. देखिए मैं हूँ या कोई भी लिसनर है या कॉलर है हम लोग रेगुलर आपके टच में है ना तो सर हम लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ में. तो एक ना सर हर बंदे की चाहे मैं हूँ या जो भी आपका फॉलोअर है जेन्युइन लिसनर है या कॉलर है उसकी सर दिल में तमन्ना होती है भाई एक बार आपसे मिला जाए मुलाकात की जाए बातचीत की जाए. होता है सर अंदर से एक फीलिंग होती है सर अट्रैक्शन होती है. मैं अभी लफ्जों में नहीं बयान कर
0: यार आपने दिल भारी कर दिया और मैं तो शर्मिंदा भी हो गया.
1: चलिए लाइफ में पहली बार आप हुए होंगे.
0: हाँ बिल्कुल देखिए
1: अपनी पूरी जिंदगी में
0: मुआजरत
1: माशाल्लाह 55 साल की जिंदगी में पहली बार हुए.
0: मुआजरत कबूल कीजिए. चलिए भाई अब मुद्दे की जाने जाते हैं और
3: सॉरी.
0: तो भाई नींद के हवाले से बातचीत हो रही है. गाबा भाई आज कैसे हैं सोने में. मतलब ये है कि क्या वो शांत एकदम जगह चाहिए जहां पर सुकून हो एकदम हवाएं और बिल्कुल खामोशी या फिर ढोल ताशा बारात में भी नींद आ जाती है. जैसे कि मुझे रेलगाड़ी से अच्छी नींद कहीं नहीं आई.
3: सर्वर भाई एक्चुअली पता क्या है आपने रेलगाड़ी की बात की है ना मेरे को लगता कोई ही पैसेंजर होगा जिसको रेलगाड़ी में नींद ना आती हो.
0: अच्छा ऐसा भी है क्या.
3: जी ये एक सर मोशन होता है ना हम लोग बैठे हैं आराम से टेंशन फ्री होके बैठे हैं किसी को टेंशन नहीं है ना.
0: ओके मुझे लगा मैं ही सोता हूँ.
1: मैं
0: सो रहा होता हूँ इसलिए मैं देख नहीं पाता कौन कौन सो रहा है. एक्चुअली तो ये तो अच्छी बात है. वैसे आपके साथ क्या रहता है क्या आवाज शोर शराबा चाहिए नींद के साथ या खामोशी.
3: खामोशी चाहिए सर्वर भाई. टीवी भी चलता होगा तो भी नींद नहीं आएगी जी. बिल्कुल साइलेंट लाइट ऑफ.
1: मुझे भी सेम.
0: यार असल में वड्डे वड्डे लोग वड्डी वड्डी बातें जो जितना क्योंकि जो जितनी सख्ती में बेचारे ने जिंदगी गुजारी है शोर शराबे में लाइट में तो आप समझ रहे हैं. अब गाबा भाई और नाजिया जी जैसे लोग आराम का नरम बिस्तर खामोशी ठंडा एसी चल रहा है हवाएं चल रही है
1: की जगह पे नींद आती है.
0: ये तो बस नसीब
1: नहीं
0: की
1: ये
0: बात
1: वैसे
0: है.
1: काफी परेशानी की भी बात है क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ आपको इस तरह से प्रॉपर सुकून और वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं. फिर मुझे तो खास करके काफी मसला होता है नींद एंड ऑल दैट. बट अच्छा जो लोग सो जाते हैं हर जगह हर टाइम किसी भी तरह से आराम से उनके लिए बहुत अच्छा है. ये होना चाहिए
3: नाजिया जी. जी बिल्कुल जी. होना चाहिए. दिक्कत पता कहाँ पे आती है जब हम लोग रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं स्पेशली शादी में.
1: बिल्कुल सही कहा.
3: उस टाइम 12-1 बजे तक तो म्यूजिक चलता है बहुत ज्यादा लाउड डीजे तो उस टाइम बहुत ज्यादा मैडम समस्या आती है सोने में जी. तो वो खुशकिस्मत है लोग जो शोर शराबे में भी मैडम सो जाते हैं.
1: सही बात है, वो खुश किस्मत है वाकई जो सोशल लर्निंग हो जाते हैं। चलिए अच्छा लगा जान के कि कोई तो है मेरे जैसा, कुछ काम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जितने लोग आ रहे हो कह रहे हम तो ऐसे ही सोच आते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, कोई मसला ही नहीं है, कहीं

0: ये भी सुला लो. तो ये एक था, बट थैंक यू सो मच एंड बिलेटेड विशेस हम दोनों की तरफ से आपके बेटे के लिए. एंड वी आर रियली अनफॉर्चुनेट कि हमने मिस कर दिया, बट इंशाल्लाह कभी मौका लगेगा.
1: उम्मीद करते हैं कि आप माफ कर देंगे और तमाम
0: से मुलाकात होगी.
1: तमाम वो लोग जहाँ जहाँ हमने मिस कर दिया है वो सभी लोगों से हम माजरत तलब करते हैं, माफी मांगते हैं. ओ गाबा जूनियर इज हियर.
2: हेलो करते हैं.
1: हेलो
2: करते हैं.
1: कौन सी बर्थडे थी इनकी एक्चुअली?
0: हाय क्यूटी.
1: इनकी कौन सी बर्थडे थी?
0: नहीं डोंट फोर्स हिम आप प्लीज. कोई बात नहीं, हम लोग समझ सकते हैं, ये बच्चे होते हैं वो बेचारे कंफर्टेबल नहीं हो पाते. बट चलिए हमने इनकी आवाज़ सुन ली तो बहुत अच्छा लगा. ही इज क्वाइट यंग, बहुत ही यंग लग रहे हैं आवाज़ से.
1: भाई क्या नाम है इनका एक्चुअली?
2: अयान गाबा.
1: अयान गाबा के लिए भाई ये हमारी तरफ से.

0: प्यारे प्यारे अयान
1: This
0: के लिए
1: belated wishes to you from our side.
0: बिल्कुल भाई खुश रहिए
1: God bless you
0: आपने हमें दादा कर दिया और खुश रहिए आबाद रहिए और अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: थैंक यू जी बहुत शुक्रिया
2: थैंक यू सो मच
1: थैंक यू सो मच
0: तो भाई गाबा भाई और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यूं गए और यूं वापस आए

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए 12 बज के सही 2 मिनट हो चले यहाँ पर। और भाई क्या माहौल बना हुआ है, क्या इस वक्त मिजाज बना हुआ है लोगों का। नींद के हवाले से खूब सारी बातचीत हुई और यहाँ पर बड़ा ही फिल्टर करके निकाला गया ये गाना कासम खास आपके लिए। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग जोश मूवी से हम तो दिल से हारे।

बताइए साहब क्या जुल्म है। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या क्या कर रहा है बेचारा, देखिए दिल।

0: Yes, we are talking about अच्छी नींद. और क्या आपको भी कहीं भी कभी भी कैसे भी आराम से नींद आ जाती है, या एक मसला होता है कि मुझे मेरा बेड, मेरी स्पेस, मेरा रूम एंड देन आइसोलेशन और पूरे आराम से सुकून और साइलेंस चाहिए, उसके बाद कहीं जाकर अच्छी वाली नींद आती है. तो बस हम दोनों आज यही डिस्कस कर रहे थे. और सरवर मिर्जा, मैं एक चीज़ यहाँ पर एड ऑन करना चाहूँगी टू ऑल माई लिसनर्स एंड टू यू टू, कि वो लोग जो कम नींद लेते हैं, व्हाट आई मीन टू से कम नींद यानी 7 से 8 घंटे नींद नहीं लेते, उन लोगों को अगर बहुत ज़्यादा उनका वजन बढ़ रहा है तो उसकी वजह आपकी स्लीप साइकिल भी है.
1: अच्छा,
0: तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं देन आपका वेट भी बढ़ेगा या बहुत तेजी से ड्रॉप भी हो सकता है.
1: अच्छा,
0: तो दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा केसेस में मैं ये देख रही थी, स्टडी कहती है कि ज्यादा केसेस में वजन बढ़ने लगता है.
1: ओहो,
0: लाइक व्हेन वंस यू हैव क्रॉस लाइक 45 या 40 आप क्रॉस कर चुके हो, तो उसके बाद अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो
1: तो यार अभी तो इस चीज में बहुत टाइम है. मैं सुना दिया, आप क्या कहना चाहती हैं?
0: मैं तो कह रही हूँ अभी तो 2 घंटे हुए आपको, बॉर्न हुए,
1: हद हो गए, मतलब 45 और जने 47
0: 38 इयर्स बाकी.
1: क्या क्या कह रही हैं आप, खुदा ना खास्ता अल्लाह से तौबा करिए, 10 साल मेरी उम्र में ज्यादा लगा रही हैं आप.
0: मैं कह तो रही हूँ अभी आप
1: सुबह नाश्ता नहीं खाया था तो थोड़ी सी शर्म भी खा लीजिए साथ में.
0: आप अभी 2 इयर्स के हैं, अभी आपको पूरे 38
1: हो गई यार. ये तो यार मतलब इंसान को इतना रुसवा किया जा रहा है, पता ही है ऑनलाइन में
0: जो वजन बढ़ रहा है वो 38 40 को क्रॉस कर चुका है. तो दोस्तों कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी स्लीप साइकिल को हर तरीके से बेहतर रखें. और बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, फ्रिक्वेंटली शिकायत करते हैं, जी हमारे सर में दर्द होता है, सर में दर्द हो रहा है, उसकी भी वजह ये है कि आपकी स्लीप साइकिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है. और वो लोग जिन्हें हाइपरटेंशन, बीपी ये इश्यूज हैं, उनके अभी स्लीप साइकिल से अगेन कनेक्शन है. तो स्लीप इज सो दैट मच इम्पॉर्टेंट कि हमें अपनी लाइफ में प्रॉपर 7 से 8 घंटे की रात की नींद जो है वो सेट करनी है. टाइम पे सोना, टाइम पे उठने की आदत, सोने से पहले अपना मोबाइल, अपना स्क्रीन, इसका यूज एकदम मिनिमाइज कीजिए. हल्की डाइट लें रात में जिससे आपको नींद आ जाए. ज्यादा हैवी या स्पाइसी खाना अवॉइड करें, जो आपको कम्फर्ट फूड जो आपके हैं वो खाएं. और थोड़ा सा जो है वो सेफ, मतलब अपने ब्रेन को थोड़ा सा तैयार करना शुरू करें कि नाउ इट्स माई टाइम एंड आई एम गोना स्लीप. और वो टाइम अगर आप अच्छे से अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो फिर आपको मुश्किल से 10 दिन ये करना है काम. 11वें दिन से आपकी नींद भी सेट हो जाएगी, आपकी बॉडी भी सेट हो जाएगी और आप सुबह मॉर्निंग में काफी फ्रेश और एनर्जेटिक उठेंगे, नॉट लाइक यू लेथार्जिक जैसे आप उठते हैं सुबह सुबह.
1: अल्लाह से तौबा कीजिए यार, एक तो आदमी फर्क देखे, 10 साल का फर्क उम्र में और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बातें यार. जी जी जी जी, तो
0: भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. 16 साल से आप जो है वो 16 साल के चल रहे, कब बढ़ेंगे ये?
1: अस्सलाम वालेकुम भाई बहन, क्या बोलते सब, ठीक खैरियत? आफ्टरनून भाई, मुंबई में गर्मी और कतर में सरवर भाई दोनों गर्म हैं. मुझे जब नींद आ जाए तो शोर हो या डीजे मैं सो जाता हूँ. कौन है?
0: अच्छा,
1: आसिफ भाई हमारे साथ. मॉर्निंग, अब आफ्टरनून पहुंच गए हम. एक वीडियो देख सोशल मीडिया पर FM 107 की जनाब सैफ रहमान साहब और जनाब महमूद साहब एक तकरीब का, अच्छा वीडियो देखा क्या दोनों सर FM? अच्छा तो बिल्कुल बिल्कुल सही देखा आपने.
0: जी आपने सही देखा, वो उनका जो था वो फेयरवेल पार्टी थी,
1: वो उनकी फेयरवेल पार्टी आपने देखी. हाँ. है, अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमेशा उनका साया हमारे ऊपर बरकरार रखे. बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा, सीख रहे हैं,
0: सीख रहे हैं उनसे अभी भी,
1: दीनी दुनिया भी सारी चीजें, और अल्लाह ताला उनको खुश रखे.
0: इंपॉर्टेंट इज द पेशेंस दैट वी हैव लर्न फ्रॉम देम, बोथ ऑफ देम. हम लोग हमेशा उसका आपस में जिक्र भी कर रहे होते हैं कि इतने पेशेंट हैं, इतने हम्बल हैं और ये चीजें हम सीखते हैं. तो बिल्कुल आपने सही देखा वीडियो. तो अब मुझे बताइए करना क्या है सरवर मिर्जा, आर वी गोना टेक द कॉल्स?
1: रमेश यादव हमारे साथ हैं. गुड आफ्टरनून नाजिया जी और सरवर जी. सबसे पहले आप दोनों अगर लंच ना किया हो तो आप दोनों पहले लंच कर लीजिए. नहीं नहीं, कौन सा ये भेजा है?
0: अरे ये तो
1: गायबाना लंच.
0: वाओ, थैंक यू जी. मुझे लगा कि लोगों ने सर्वर,
1: रमेश भाई है क्या, आपने पेट भरा है हमारा हवाई. आए हाय हाय हाय, बिल्कुल मजा नहीं आया.
0: कम से कम लोग इतना तो कर रहे हैं कि आपको वर्चुअल भेज रहे हैं थालियां.
1: अस्सलाम वालेकुम बहन जी और भाई साहब.
0: भाई वालेकुम सलाम
1: रिफत हुसैन है यहाँ पर हमारे साथ। रिफत भाई कभी जुड़ते नहीं, खाली बहन भाई करते रहते हैं, रिश्तेदारी निभाना नहीं चाह रहे, ताल्लुकात तो निभा रहे हैं। ओके, और

0: यहाँ पर एक कॉलर को ले लेते हैं चलते चलते, क्योंकि अब हमें चैंपियन भी बनाने हैं। और हेलो सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: कैसे आप? खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों खैरियत से। आप कैसे
1: हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज क्या हो रहा है आज FM 107 के ऊपर?
2: सरवर मिर्ज़ा जो है उनकी एज आज डिस्कस हो रही थी। नहीं नहीं, आज नींद पे बात हो रही है।
1: नहीं नहीं, आज तो सरवर मिर्ज़ा साहब की दो दो आदतें डिस्कस हो गई। सुबह कबीर भाई तो खाने के ऊपर इतनी चर्चा हो गई कि नाश्ते से पहले बहुत भूख लग गई थी।
2: अच्छा, ये होता
1: है। मैंने कहा ये टॉपिक तो सरवर मिर्ज़ा साहब का है। ये
0: कौन है हमारे साथ पहले तो ये बताइए।
2: भूख लग गई
1: आपके चाहने वालों में से कोई एक है समझ लीजिए।
0: अरे नाम तो बताइए।
2: हम क्यों बताएं?
1: मेरा नाम मजहर खान है। मजहर खान।
0: मज्जू भाई। मज्जू भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं मजहर भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
0: यार मजहर भाई, बस वही है, देखिए दुनिया की यही तो रीत है कि
2: कबीर भाई ने
0: किसी को खुश नहीं देख पा रही पब्लिक। एक्चुअली ये जितने मेरे करीबी हैं, घर वाले, क्या बताऊं मैं, बस घर वाले करीबी एकदम, वही नहीं खुश रह पा रहे मुझसे। जिसमें सबसे पहला नाम वही है जो आपने कहा और दूसरा नाम वही है जो आपने कहा। इन्हीं को ही हजम नहीं हो रही मेरी खुशी यार, तो अब मैं दूसरों को क्या कहूँ?
2: अरे भाई हमें, आपको कहाँ हजम होता है खाना?
0: अच्छा,
2: ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट कर
0: क्या होता है फिर? ये तो अगले दिया रहा
2: ब्रेकफास्ट।
0: अच्छी लगी बात है।
1: बेचारे श्री बेगी ने अपने जसामत से कि बदनाम है खाने और सोने के लिए।
0: मुझे ये
2: अल्लाह तेरे शुक्र, सोना भी उन्होंने आपके ऊपर लगाया। खाने और सोने के लिए
0: मुझे ना खाना जमीन भरा, तो वो हो क्या रहा है भाई? ये समझ रहा हूँ उसका नाम क्या रखूँ मैं, क्या मसला है आखिर?
1: जिस तरीके से अभी नाजिया मैम ने कहा कि अगर आप ज्यादा नहीं सोएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, तो सगर भाई फिर कितना सोते होंगे?
0: अरे अभी मैं सोना शुरू कर दूं तो ये कहेंगे कि अरे बताओ कितना सो रहा है।
2: नहीं ये सोते कैसे है? मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, सब लोग चुप हो जाओ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। और लोग इन्हें गौर से देख रहे हैं कि शायद सो जाए सो जाए, फिर उठ गए, अरे हाँ नहीं रही,
0: ये तरीका है दूसरों को जगा लेगा। एक्चुअली जैसे हमारे दादा हैं, वो रात में निकलते थे, वो रात में निकलते थे, मुझे याद है उनके पास वो टॉर्च थी जो वो।
2: अच्छा ये आदत आपको आपके दादा से ही मिली?
0: कुछ करके चलती थी, मुझे नहीं याद आ रहा, उसमें कुछ करना पड़ता था। वो बैटरी की तो नहीं थी, मगर वो कुछ इस तरीके से थी जैसे हाथ में बांधते हैं ना, वो जो पल्स से चलती है, वो टॉर्च भी कुछ ऐसी थी। तो वो भाई वो रात में 11:30-12 was too late at that time. नहीं वहाँ के चेक करते थे घर में सब अपनी अपनी जगह, तो मुंह पे टॉर्च मारते थे कि ओ अच्छा सही जगह सो रहा, अब आदमी उठ गया 12 बजे कि ये क्या कर रहे हैं दादा, देख रहा था बेटा सही सो रहे हैं सो रहे।
1: ये तो सही है, लेकिन एक चीज ये थी कि मदरसे के अंदर भी यही हाल होता था कि नींद नहीं आती थी लेकिन जबरदस्ती के लिए सोना पड़ता था, फिर जब नींद आ जाती थी
0: तो वो उसको
1: उठा देते थे जल्दी से।
0: वो नींद तो संटी से आती थी ना, हरी वाली संटी, बिल्कुल पतली लहकती हुई, वो दिख रही होती सामने यूं यूं करती हुई, सो जाओ
2: बस। सर आपके पास आप पे तो कई बार इस्तेमाल हुई, टूट टूट गई?
1: एक मरतबा
0: टूटती नहीं है वो, ना ना ना वो टूटती नहीं, वो चिपक जाती है बुरी तरीके से, जैसे बेल चिपक जाती है दीवार से, वो ऐसे चिपकती है।
1: एक मरतबा मेरे साथ ऐसे ही किस्सा हो गया था कि फजर में आंख ही नहीं खुल रही थी, रोज रात में पढ़ाई के बाद नींद देर से लग रही थी। एक दिन मैंने कहा कि उस्ताद जहाँ सोते हैं उससे नजदीक सो जाऊंगा मैं, क्योंकि जब उस्ताद आते हैं तो एक क्लास में, जब दूसरी क्लास में जाते हैं तो पहली क्लास वाले फिर सो जाते थे।
0: सही सही सही।
1: तो मैंने क्या किया कि मैं बोला फजर में तो आंख खुल नहीं रही है, एक काम करता हूँ नजदीक सोऊंगा, जब वो उठाएंगे फौरन उठ जाऊंगा, चले जाऊंगा मस्जिद।
0: मैंने इमेजिन कर लिया एक्चुअली,
1: जो डंडा टेकने जो बूढ़े बुजुर्ग जो डंडा टेक कर चलते हैं ना, वो तो मुझे आवाज तो कान में नहीं आई लेकिन कमर के ऊपर जो डंडा बैठा, उठने के बाद सबसे पहले मैंने बोला इधर नहीं सुनने का,
0: आज के आइंदा नमाज देने में पढ़ूंगा, इधर नहीं
1: लेटूंगा।
0: नाजिया वैसे मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा इंशाल्लाह। नाजिया उस बात को समझ नहीं पा रही कि वो संटी क्या करती थी एक्चुअली, तो वो हरी संटी मैं आपका एक्सपीरियंस इंशाल्लाह ताला जल्दी करवाऊंगा।
2: मैं खुद ही ट्राई करूंगी, डेमो मैं ही करूंगी आपके ऊपर। डोंट वरी
0: भाई, बहुत शुक्रिया मदर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया।
0: और जहाँ भी आप देखा करें, जहाँ मुझे नजर लगाई जा रही है वहाँ लाहौल पड़ा करें, और कहा करें माशाल्लाह लगाओ, माशाल्लाह
2: माशाल्लाह। मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम क्या है, ब्रेकफास्ट करने के बाद
1: हम तो दुआ करते हैं जी, हम तो दुआ करते हैं कि सरवर मिर्ज़ा साहब की सेहत हमेशा ऐसी ही सलामत रहे। और नजर लगाने वाले पता क्या है, नजर लगाते रहते हैं, आपको तो लगेगी भी नहीं किसी की इंशाल्लाह।
0: मेरा भाई कैसा पैसा ही पैसा
2: करे, आपको लगेगी नहीं किसी के माशाल्लाह।
0: अच्छा क्या करो
2: बहुत
0: शुक्रिया मधुर भाई. तो भाई ये तो मधुर भाई
2: लेकिन सर्वर ऑन अ वेरी सीरियस नोट यहाँ पे मैं फिर वापस से कहूंगी कि जो लोग सही नींद नहीं लेते हैं उनका वजन बढ़ता ही बढ़ता है क्योंकि कहते हैं कि जो हंगर हॉर्मोन्स है ना वो बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ज्यादातर लोग रात में अनहेल्दी खाना भी खाते
0: हैं. हजम हो रहा है मुझे वो क्या हो रहा है
2: आपको हजम ही
0: वो देखना पड़ेगा कि ये क्या मसला है.
2: आप कहते हैं अब खा लिया अब क्या खाऊं डाइजेस्ट करने के लिए क्या खाऊं मुझे बता जल्दी बताओ.
0: इतना खाना खा लिया अब जरा कुछ खिला तो दो जो इसको हजम कर दे.
2: वही तो और लंच के बाद फिर इन्हें भूख लगती है. लंच कर लिया अब क्या खाऊंगा अब तो भूख लग रही है लंच के बाद क्या खाऊं. तो दोस्तों खाने को कंट्रोल करने के लिए नींद को प्रॉपर तरीके से जो है वो मॉनिटर करना जरूरी है. टाइम पे सोना और उठना इस साइकिल को अच्छे से मेंटेन करना बहुत बहुत बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं कर रहे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है.

और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक। साथ होंगे आपके आरजे तला अशरफुज़्ज़मान हर वेंसडे सुबह 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। तो बस FM 107 ऑन कीजिए और

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी।

0: Right guys, ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है जो अब से थोड़ी देर में हम आपको सुनाने वाले हैं. बट बिफोर दैट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस. सरवर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं. तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
1: वबरकातुहु. मेरा शुक्र है आपने फोन तो उठा तो लिया. खैर कम से कम चार चक्कर मिलाया, एक चक्कर मिलाया कोई कॉल आ गया, दोबारा मिलाया आपने ऐड चालू कर दिया, तिबारा मिलाया आपने गाना चालू कर दिया, चौबारा मिलाया फिर गाना चालू कर दिया.
2: अरे बताइए कमाल हो गया.
0: सर मिर्जा क्या कर,
1: ये मिर्जा साहब नॉट फेयर.
0: ये मिर्जा भाई ठीक बात नहीं थी.
2: नॉट फेयर है भाई, बता रहे बिल्कुल खालिद भाई. हमें
1: खालिद भाई
0: कहे के खालिद भाई.
1: ये जमाल भाई कौन बोल रहा है?
2: ये भी नॉट फेयर है.
0: जमाल भाई को खालिद भाई बना दिया. व्हाट्स रॉन्ग विद यू?
2: कैसे हैं आजमी साहब?
1: नहीं मिर्जा साहब, ये बहुत बहुत गलत बात है, आप बार बार भूल जाते हैं.
2: अरे नहीं कैसी बात कर रहे हैं, हम तो मजाक कर रहा था. दिल लगी करने की आदत है मेरी, बस ऐसी चलता है.
1: मिर्जा साहब से आपको नाम बदल देंगे आपका फिर.
2: अरे नहीं ऐसा ना करिए, ये बहुत लोग चाह रहे हैं, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल. जमाल भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? बोलेंगे
1: हम कुछ क्या,
2: अब हम क्या बोलेंगे
0: आपने तो हद ही
2: कर रखी है. सबके सामने ये सुनना जा रहे हैं, मैं हम अभी बोल देंगे.
0: बोलेंगे
1: और बताइए.
2: अल्लाह का शुक्र, गेम खेलेंगे.
1: हाँ कौन सा है?
2: कौन सा है अभी बताओ. देखो
0: बताइए कौन सा.
2: हम बॉलीवुड के हवाले से खेल रहे हैं, गानों के हवाले से खेल रहे हैं. एक गाना आपको सुनाएंगे, धुन सुनाएंगे उसकी, उसमें आपने जितनी चीजें निकालनी है उतनी निकाल सकते हैं. कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन डायरेक्टर है, कौन गा रहा है, बांसुरी कौन बजा रहा है, पीपनी कौन बजा रहा है. अच्छा
1: आज मतलब आज है लास्ट टाइम, हमने आपको नहीं मिलाया, बिल्कुल टाइम से मिला दिया पहले.
2: क्या कहने लिए? क्या कहने, क्या नाम बता रहे थे आप अपना?
1: अब भी नहीं समझ पाए आप?
2: अरे मैंने अभी तो बताया आपको.
1: जमाल भाई नहीं है.
2: देखा नादिया, कहा था मैंने नादिया, देखा तो ये नादिया नहीं मानती ओएस भाई. मैंने इतनी बार मेरा मुंह ओ ऐसे रह गया, मैं ओएस ओएस करके बता रहा हूँ उसको, जब से मैं मेरा मुंह ऐसा रह गया. देखो जो भी चैंपियन हमारे साथ जुड़ेगा, अब हमने टाइम नहीं रखा है इसमें क्योंकि थोड़ा सा हम चाहते हैं कि खेलें और बातें पता चले.
0: और हम मैक्सिमम तीन सुनाएंगे, अगर जल्दी किसी ने किया तो.
2: हाँ हाँ अरे क्यों नहीं है, वो मैं आप जीतेंगे जब बताऊंगा क्या है, वो भी सरप्राइज है. प्राइज में हमने सर लगा दिया है साथ में.
0: इन्होंने अपनी तरफ से निकाल के सर्वर का सर.
2: हाँ
0: प्राइज में लगा
1: दिया. पैर किसके?
2: पैर इनके. ठीक है तो रेडी है उवैस भाई?
0: चलिए
2: ओके देन. नादिया
0: आपके लिए पहला म्यूजिक आ रहा है,
2: पहली धुन आपके लिए
0: ये.
2: तो आपके कॉलेज के टाइम का गाना है उवैस भाई.
1: सुन ले पूरा. अरे गाना तो याद नहीं आ रहा है.
2: सुना हुआ लग रहा है?
1: हाँ सुना तो लग रहा है. सैफ अली का है ये.
2: हैं
0: क्या?
1: सैफ अली का.
2: हाँ हाँ यार राइट राइट यार, सैफ का सबसे मशहूर गाना है यार. दिल लगी फिल्म बिल्कुल सही है. ओके और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में?
1: मेरा दिल दीवाना डोले ओले ओले शादी.
2: नहीं ये तो डोल गया, ओले भी गिर गए. अब ये बताइए कि हीरोइन याद है, म्यूजिक डायरेक्टर याद है?
1: काजोल है
2: भाई, अनु मलिक है, वही तो हम कह रहे थे उवैस भाई बता देंगे. चलिए नेक्स्ट सुनाइए नादिया.
0: अब इनको नेक्स्ट आपको सुनाते हैं और आपके लिए है ये म्यूजिक ये रहा.
2: जो झूमना शुरू हो गए उमेश भाई। पहले जरा दो तीन चोले क्या बोले अमिताभ बच्चन
1: अमिताभ बच्चन
2: हाँ
1: वो गाना का नाम
2: पहचान खूब रहे
0: आपने बिल्कुल
2: क्या बात है यार और कुछ नहीं बताया उनका भी तो
0: हेलन, हेलन, अच्छा, हेलन, हेलन,
2: हाँ चलिए वो भी हैं वो भी तो हैं वो हाथ बेचारे बिना हाथ के टहल रहे चोल डाल के
1: पूरी फिल्म वो दो बेचारे वो गब्बर ठाकुर साहब हैं संजीव कुमार
2: हाँ ओके और
1: धर्मेंद्र संजीव कुमार अमिताभ बच्चन
2: हाँ ये तो सब हो गए रामलाल का नाम नहीं याद है
0: लास्ट आपके लिए धुन लास्ट है तीन तीन हम रख लें जितना स्कोर कर लें लास्ट
1: अच्छा ये क्या
0: है सुनिए तो
2: ये तो बहुत इजी है ये च्युइंगम खा के ये बजाती थी फिर
1: क्या
0: अरे ये तो बहुत अरे यार, था।
2: यार उमेश भाई च्युइंगम खा लेते थे उसके बाद जो सीटी बजती थी पीपनी वो ऐसी आवाज निकालती
0: अच्छा,
2: थी
0: अच्छा फिर से सुनिए
1: फिर से सुनाइए
0: हाँ फिर से सुनिए
2: ये तो हमारे टाइम वाली आ गई पीपनी
0: अब चलो बदल ले अब ये पहचान ले
1: डॉन
2: कहा
0: बिल्कुल सही
2: आगे
1: अमिताभ बच्चन
2: ओके
1: तो मुझे पहचानो
2: मैं
1: मतलब मैं
2: हूँ
1: कौन डॉन वही गाना
0: पहचानो
2: मैं नहीं पहचान पाया
0: वो ये वो गाना नहीं है मुझे पहचान
2: गाना वो नहीं है बाकी आपने
1: एक मिनट अच्छा शुरू की मुझे तो फिर बिल्कुल वही थी एक गोविंदा वही तो गाना है ये मेरा दिल दीवाना
2: है भाई ये मेरा दिल दीवाना है क्या कहने हैं
0: बिल्कुल सही पहचान लिया
2: एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह का स्कोर है उमेश भाई का यार
0: क्या बात है
2: भाई क्या बात है उमेश भाई बेहतरीन खेले आप
1: मिर्जा साहब बचपन में फिल्में बहुत देखी और सबसे ज्यादा इसी की फिल्में देखी थी
2: सही
0: चलिए तो इसका मतलब सारे के सारे हमने आपके लिए आसान ही रखे क्या पहचान पाए है ना
2: क्या बात है भाई
1: आसानी अपने इतनी पुरानी पुरानी म्यूजिक सुनाई
2: बताइए अपने जमाने की म्यूजिक लगा के आप कह रही हैं कि
0: नहीं तो आपने कहा ना आप अमिताभ के फैन रहे हैं और हैं फैन तो आपके लिए देखिए ज्यादातर मूवीज इसमें अमिताभ जी की थी ना तो पहचानना आसान हुआ नहीं हुआ आपको
2: क्या बात है भाई हॉल में तालियां
0: है ना
2: और आपके लिए बहुत सारी दुआएं बहुत बहुत शुक्रिया उमेश भाई अभी तक तो आप ही
1: जीतेंगे
2: अभी जीतेंगे जब
0: पता तो चले
2: जीतेंगे जब हाँ ठीक है
1: अच्छा जीतेंगे तो
2: हाँ
0: ये है
2: चलिए भाई
0: चलिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिए ऑलराइट एक और कॉलर
2: चिकन सूप है
1: अस्सलाम
2: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह
1: दिल है खोया मेरा दिल है
2: आए हाय हाय हाय गलत जगह खो गया लग रहा है ये
1: भाई कैसे
2: अल्हम्दुलिल्लाह कौन है हमारे साथ
1: है बस कोई बंदा है की तरह करीब
0: गुमनाम भाई
1: है बस कोई है बस समझ जाओ कोई है बंदा
2: आसिफ
0: समझ जाओ भैया कोई है
2: आसिफ भाई
0: है हमारे साथ
2: आसिफ भाई
1: है बस है ये बच्चा है कोई इधर आया है काम कर रहे हैं
2: आसिफ भाई हमारे साथ सही
1: जी
2: अहलन वसहलन चलिए भाई आसिफ भाई जल्दी से गेम खेल लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों को मौका देना है और जरा लेंदी है मामला रेडी हैं
1: जी भाई बहुत टाइम के बाद गेम खेलने का मौका मिला
0: आप भाई सर्वर एक बार बता भी दीजिए कि आज हमारा गेम है क्या एक्चुअली
2: गेम यही है कि आपने गाने हम धुन सुनाएंगे और धुन से आपको गाना मूवी एक्टर एक्ट्रेस
0: जो भी याद आता
2: रहता उससे मिली जुली यादें किस सन में था आप किस क्लास में थे उस वक्त क्या माहौल था ये सारी चीजें जो भी कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ
0: चलिए ठीक है तो आपके लिए आप तैयार हैं और पहली म्यूजिक क्या बोल रहे आप कौन सा पहचान लेते हैं
1: न्यू सॉन्ग
0: अब क्या होगा सर
2: न्यू ही है
0: ये इनका सही है ओल्ड कह दिया कि न्यू ही है अब चलिए देखिए ट्राई करते हैं अगर आप पहचान लेते हैं ओके तो पहली म्यूजिक आपके लिए है ये बिल्कुल सही
2: हां और
1: जॉनी लेवर भी है इसके अंदर
2: ओके
1: उसका नाम है हिंदुस्तानी आज हिंदुस्तानी
2: ओके ओके गुड
1: बहुत अच्छी मूवी है
2: गाना तो बताओ यार
0: बेटे वेरी गुड चलिए
2: चलिए नेक्स्ट
0: आपके लिए

0: नहीं छैया नहीं है कुछ और है तो छाजे ही
1: माधुरी
0: नहीं नहीं
2: नहीं माधुरी नहीं थी
1: म्यूजिक थोड़ा कम बजा मेरे लिए
2: अच्छा फिर सुनिए म्यूजिक एकदम लास्ट तक बजा वर्डिंग शुरू हो गए गाने के

0: लेके।
1: हाँ हाँ याद आया, याद आया।
0: बताइए क्या याद आया?
1: बोल रहे उसमें माधुरी थी ना।
0: ये माधुरी अच्छा हाँ थी इसमें, नहीं थी? हाँ नहीं थी,
1: अनिल कपूर का भाई था और माधुरी थी।
2: नहीं बिल्कुल, ये नहीं। दिल समझ रहे हैं एक्चुअली।
1: ओके
0: हाँ ये वो नहीं है, वो नहीं है सही। चलिए दूसरी धुन आपके लिए, और वो है ये।

0: ओके ओके ओके
1: म्यूजिक थोड़ा बजाओ।
2: अच्छा फिर से बजाओ वापस से।
0: शाहरुख खान काजोल
1: हो गया, दूसरा कंफर्म हो गया।
0: अच्छा तो कौन कौन क्या और गाना कौन सा है, मूवी कौन सी है?
1: जा, ओ, दिल गुड।
2: हाँ, सही
0: मूवी मूवी
1: दिल एक मिनट मूवी है दिल नहीं
0: हाँ हाँ दिल दिल भी है, दिल भी है नाम में
2: है, दिल
0: दीवाना नहीं है बिल्कुल भी,
2: दिल दीवाना
0: दिल कुछ और कर रहा है फिल्म में,
2: लेके कुछ जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे।
0: चलिए भैया यहीं तक पहुंचे हो आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का स्कोर है आसिफ भाई का, नॉट बैड एट ऑल, क्या बात है भाई आसिफ भाई, जबरदस्त अच्छी कोशिश करी, अच्छा खेले भी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ कनेक्ट होते हुए, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सरवर जी, नाजिया जी कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह
2: ठीक है, आप कैसे हैं?
0: आप कैसे हैं सर?
3: मैं बढ़िया हूँ सर, आप तो बढ़िया?
2: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो रमेश जी की आवाज है
3: एकदम, मैम वाह क्या बात
0: है, आज आज नाश्ता अच्छा नहीं करा लग रहा है
2: आज मैंने रमेश जी की आवाज में बोल ही नहीं सकती, मैं जान लेती हूँ।
3: गैरेज में बैठे हुए ना इसीलिए,
2: गैरेज में बैठे हुए इसीलिए।
0: अच्छा मैंने कहा प्यारे जो बैठे हैं इसीलिए।
3: प्यारे तो आप
0: वही देखिए,
2: मतलब आप कहीं ने ले जाए, बाजार हो गैरेज हो रेस्टोरेंट हो, ये अपना जो है वो लेके तारीफ बीच में आते ही कूद के है।
0: यार मैं हुई इतना प्यारा क्या करूं, मैं करूं क्या, मैं खुद परेशान हूं,
2: मैं बताऊं
0: अपनी प्यारगी से,
2: मैं बताऊं जहर लीजिए,
0: मैं अपनी प्यारगी से इतना परेशान हूं।
3: बड़े भाई है जो कह ले,
2: सही कहा, अरे हमारे बड़े बुजुर्ग है जो चाहे कह ले, हम सुन नहीं पड़े।
0: चलिए रमेश भाई रेडी? ओके देन नादिया पहली धुन सुनाइए।
2: हाँ, पहला म्यूजिक आपके लिए ये रहा।
3: रुक जाओ दिल दीवाने।
0: ओके
2: हाँ जी
0: आगे।
3: शाहरुख खान
0: जल्दी
3: काजोल।
0: ओके
3: डीडीएलजे।
0: ओके गुड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट।
2: ओके
3: राजा हिंदुस्तानी।
0: ओके गाना
2: राजा
3: आमिर खान।
0: आगे
2: नहीं नहीं राजा हिंदुस्तानी नहीं है।
3: हाँ राजा हिंदुस्तानी नहीं है। नहीं
2: राजा हिंदुस्तानी नहीं, मैं वापस से प्ले करती
0: हूँ। नेक्स्ट करें नेक्स्ट
2: शायद पहचानना।

0: अभी अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। ए ये
1: ये दिल का गाना है।
0: आईवा
2: सही okay. पहचान लिया।
0: दिल एंड
1: माधुरी दीक्षित।
0: ओके और साथ में कौन है उनकी हीरो नहीं याद है?
1: आमिर खान है ना।
0: अच्छा आमिर खान बोला आपने। ओके गाना कौन सा है?
1: ये सर गाना
2: नहीं नहीं सुनिए सुनिए आप स्कोर कर लेंगे, मैं वापस से सुनाती हूँ म्यूजिक याद आ जाएगा।
0: वो दूसरा गाना है इसी मूवी का,
2: ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था उसका।
1: मुझे नींद
0: आई वाह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ का स्कोर किया भाई रमेश भाई ने, क्या बात है। अभी तक वैस भाई आगे चलते हुए क्या कहने भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: थैंक यू सो मच।
0: तो भाई यहाँ पर रमेश भाई हमारे साथ, और अब क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उनको हम कनेक्ट कर लें। ओके यहाँ पर कौन है हमारे साथ? फरहत भाई हैं, मैं फरहत भाई को कॉल मिला रहा हूं,
2: तो
0: अगर उठा लेंगे तो अच्छी बात है।
2: तो डू यू वांट मी कि अभी हम इसको कंटिन्यू करें, छोटा सा ब्रेक ले लें और वापस आएं?
0: ब्रेक का टाइम नहीं है, अगर उठा लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं उठाते हैं तो फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ जाएंगे। नाजिया जी
2: आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है? करना ये है कि आप हमें जो है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ऑन द नंबर 666-22-107 या फिर आप डायरेक्टली हमें कॉल कीजिए, नंबर है 4434377 एंड वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर। हेलो मिर्जा बेग आप?
0: नहीं नहीं हम कनेक्टेड हैं, हम कनेक्टेड हैं। ओहो
2: जब कनेक्ट हो जाते हैं तब कहते हैं सर मेरे से कनेक्टेड है, जब बेल जा रही होती है तो
0: डबल डबल लाइन मुझे लग रहा है। आप ऑन तो कीजिए।
2: हेलो
3: जी जी जी सुन रहा हूँ।
0: हाँ कौन है हमारे साथ?
2: कोई तो बोल रहा है।
3: कौन है आपके साथ?
2: कौन है
0: हम हैं आपके साथ FM 107। हाला हाला
2: शहजादा जी हमारे,
0: क्या बात है, चैंपियन आए भाई लौट के। तो चलिए शहजादा भाई रेडी? चलिए नाजिया शुरू हो जाइए।
2: चलिए ठीक है आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं और पहली धुन आपके लिए ये रही।
0: हाँ क्या आई है?
2: नहीं नहीं नहीं है ये उस रात आई है, नहीं है।
0: अब देखिए। हाँ
3: पास पास

0: नहीं नहीं अभी क्यों बात कर रहे हैं, सुन तो लीजिए
1: ना। नहीं चलिए ये वाला

0: पास
1: ये भी पास
0: पास पास
1: पक्का
2: हाँ। ये गाना याद था लेकिन पास पास पास
0: पास पास पास
1: चलिए लास्ट आपके लिए
2: सब नए जमाने के बजाय पुराने जमाने के
1: अरे वो पहले तो पुराना ही था पहले वाला जो चलाया था वो तो पुराना ही था
2: आपने कोई बात नहीं आज मैं अंडे से संतोष कर रहा
0: हूँ
1: अब हम लोग कुछ ना कुछ तो इनको जरूर पहचानवाते हैं एक चांस और देंगे शहजादा जी को ये अगर आप पहचान लेते हो देखिए
2: तम्मा तम्मा
0: अरे टी हटाओ टा हटा दो इसमें ये बात अब लगा सही
1: अच्छा धुन नहीं पकड़ी तम्मा तम्मा
0: टी टी ज्यादा लगा दिया तम्मा पे चले गए छम्मा तो छम्मा में क्या हो रहा था
1: छम्मा
0: कौन कौन था
2: छम्मा छम्मा ही छम्मा छम्मा ही कौन गा रहा था और कौन नाच रहा था और कौन सी फिल्म थी बिल्कुल नहीं पता
0: ये सारे सब मेरे भाई ने एक का स्कोर किया है क्या बात है नीचे से किया टॉप
1: लेकिन चलिए आपने एक का तो एटलीस्ट किया ना
0: क्या बात है भाई चलिए भाई एक आखिरी और जोड़ लेते हैं शहजादा भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच शहजादा भाई ने किया नीचे से टॉप हो और यहाँ पर अब मुझे लगता है कि हम इन्हीं को आखिरी शायद बनाएंगे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम
1: चैंपियन
0: कहाँ थे
1: हमारे पास तो नए ट्रैक्स भी नहीं है और ये चैंपियन हमारे साथ है
0: इनसे खरीद पूछ लेगा यूसुफ भाई खैरियत कहाँ थे और सुनाओ यूसुफ भाई क्या हाल चाल है
3: दूसरों को थोड़ा चांस दे रहा
1: है
0: गाने तो हमारे पास खत्म हो गए यूसुफ भाई आज के लिए सिर्फ बात ही रह गई है हमारे
1: चलो फिर भी हम तीन गाने के लिए प्ले करते हैं
0: कोई बात
3: कुछ
1: लेट्स सी ये तीन सॉन्ग
0: मैंने यूसुफ भाई की जगह यूसरा क्यों लिख दिया जल्दी में यहाँ पे यूसुफ भाई ओके
1: कोई बात नहीं चलिए ट्राई करते हैं आपके साथ शायद आप पहचान लें इनमें से कोई भी गाना लेट्स सी ठीक है तो पहला म्यूजिक आपके लिए आ रहा है ये

0: ये आंखों में बच्चे
1: ओके गुड ओके
2: बिल्कुल सही
1: एंड
0: सुनील शेट्टी सोनाली बेंद्रे अभिजीत है सिंगर इसके
1: ओके
2: बिल्कुल सही
0: मलिक म्यूजिक डायरेक्टर
1: ओके ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नादिया
2: नेक्स्ट आपके लिए

0: बच्ची नहीं जाती।
1: ओके एंड हीरो हीरोइन कोई याद है?
0: हीरो नंबर वन, हीरो नंबर वन करिश्मा कपूर, गोविंदा, डेविड धवन, आनंद मिलन।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: वाह जबरदस्त।
0: अलका याग्निक,
1: राइट राइट बिल्कुल।
2: और आखिरी जो थर्ड हम तीन सबके लिए प्ले कर रहे हैं और वो म्यूजिक है आपके लिए ये।
0: ये मेरा दिल प्यार का दीवान।
1: ओके ओके एंड
0: अमिताभ बच्चन, हेलन, जीना समान।
1: नो नो नो,
0: शाहरुख खान की फिल्म।
1: ओके ओके ओके ओके ओके,
0: शाहरुख खान, करीना कपूर, क्या नाम है उसका, ये सिंगर है सुनिधि चौहान।
1: ओके क्या बात है,
0: म्यूजिक शाहरुख खान के साथ कौन है फिल्म, करीना कपूर और वो प्रियंका चोपड़ा।
1: ओ गुड गुड गुड,
0: डायरेक्टर है फरहान अख्तर।
1: क्या कहने यार, क्या कहने यूसुफ भाई। भाई वाह, एक दो तीन चार पाँच,
0: म्यूजिक शंकर एहसान लॉय।
2: क्या बात है भाई,
1: एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस का स्कोर है यार। यूसुफ भाई यार चैंपियन यार, बिल्कुल यही
0: एक्सपेक्टेड था, पता होगा तो गाना सभी बता सकते।
1: यहाँ शहजादा भाई बेचारे अंडा लेके जा रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किलों से ऑमलेट बनाया और फिर दिया उनको, तो कहीं एक का स्कोर कर पाए। आपने 20 का किया है, कह रहे इजी है,
2: लेकिन
1: आपके लिए इजी है यार,
2: कितना अच्छे से कह रहे टम्मा
1: टम्मा। हिरोइन कौन है? टुर्मिला, टुर्मिला थी उसके अंदर, क्योंकि गाना टम्मा किया उन्होंने तो हीरोइन भी टुर्मिला थी उसमें। बहुत-बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत-बहुत
1: शुक्रिया। अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातुह, वालेकुम अस्सलाम। तो भाई इसी के साथ आज उवैस भाई की कोशिश अच्छी थी, कोशिश अच्छी थी वैसे।
2: मुझे खुशी हुई कि एक गाना जो मेरा बहुत फेवरेट था, मोहब्बत की नहीं जाती वाला,
1: यूसुफ भाई ने बता दिया,
2: फाइनली किसी ने पहचान लिया।
1: नहीं चलिए मैं तो बता ही देता हूँ, नाजिया कैसी बातें कर रही है यहाँ पर।
2: मैं आपका मानती हूँ।
1: 30837 जिनके नंबर में लास्ट है वो हमारे साथ है, और 3399 भी हम ट्राई कर रहे हैं, 5941 भी हम ट्राई कर रहे हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस भी हैं जो खेलना चाहते हैं। फरद भाई हमारे साथ कहते हैं मुझे भी खेलना है, ये कौन है? आसिफ भाई हमारे साथ हैं, एंड देन
2: आप लोग के साथ जो है वापस करेंगे।
1: ये हैं हमारे साथ, ये भी नाम तो आतिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं आज। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, तो मूवी में एक्स्ट्रा के नाम भी बता देंगे। अच्छी लाइफ।
2: एंड
1: 31463 इस वक्त कॉल आ रही है, तो भाई आप सभी की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब वक्त हो गया कि हम आपसे इजाजत ले लें आज के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा वक्त भी गुजरा इंशाल्लाह ताला, इसी उम्मीद के साथ कि कल खैरियत से फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आज के लिए इजाजत ले लेते हैं,
2: बस जाते जाते अभी जी तो सुनिधि चौहान की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक आपके हवाले करते हैं, और इंशाल्लाह कल 11 बजे डॉट इसी शो में आपकी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हुक्ड टू FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर।
3: दोस्तों, ओलंपिक गेम्स को क्या पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए या इसी को कंटिन्यू करना चाहिए, ये एक मसला है, ये एक टॉपिक है, ये डिबेट है जो पिछले एक दिहाई में हमें पढ़ने सुनने में नज़र आ रहे हैं, हम देख रहे हैं इस चीज़ को। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे ऑन आवर पॉडकास्ट शो। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और पॉडकास्ट शो जिसमें बेसिकली हम टॉपिक्स, इश्यूज, स्पोर्ट्स इश्यूज को लेकर हम बात करते हैं। तो आज ये टॉपिक मेरे दिमाग में, आप यकीन जानिए, एंड कि पिछले एक हफ्ते से मैं सोच रहा था कि ओलंपिक गेम्स, तो 2024 का ओलंपिक गेम्स हमने देखा पेरिस में होते हुए, और इससे पहले भी टोक्यो, अन तमाम मुख्तलिफ शहरों में ओलंपिक गेम्स मतलब इट्स अ बिग थिंग। ओलंपिक गेम्स दुनिया का, अगर अब बात करूँ कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद, या कुछ लोग कहते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप से भी बहुत पॉपुलर है, या क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स है, मल्टीपल स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है जिसमें फुटबॉल भी वन ऑफ द की इवेंट है, और ओलंपिक्स को हर मुल्क जो है वो बहुत अहमियत देती है, क्योंकि ओलंपिक्स इज समथिंग लाइक आप उस लेवल के बात करते हैं जहाँ पे दुनिया के जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो एथलेटिक्स हो, बास्केटबॉल हो, गोल्फ हो, अभी तो क्रिकेट भी शामिल हो गया है, एंड तमाम टॉप प्लेयर्स, टीमें, जितने भी दुनिया के जितने भी टॉप एथलीट्स हैं वो ओलंपिक गेम्स में अगर मेडल हासिल करके लाता है तो दुनिया या फैंस या एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ, ही इज़ द रियल स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज ओलंपिक्स में मेडल जीता है। लेकिन पिछले 10-15 सालों में, 10-15 साल, चलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10-15 साल, बट आई वुड से कि पिछले 20 सालों में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है दुनिया में, स्पेशली रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू यू नो प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे कि आप टूर्नामेंट करवाते हैं, तो टूर्नामेंट होस्ट करते हैं, इसके पीछे काफ़ी खर्चा होता है, एंड कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे कंट्री सपोर्ट्स, एंड वहाँ पर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर नो स्पॉन्सर्स इज़ नीडेड, नो नथिंग इज़ नीडेड, कंट्री अपने ही जो भी है सब कुछ यू नो डाल देते हैं कि चलिए इस इवेंट को हम होस्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर भी कई जगह पे हमने देखा है कि दे सफर्ड ह्यूज लॉसेस, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ओलंपिक गेम्स को अगर आज बात करूँ कि ओलंपिक गेम्स को क्या हम पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम कदम होगा, बिकॉज ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए हर खिलाड़ी, मैंने बच्चा जब वो यू नो ट्रेन करता होगा अपने आप को, यू नो एक एथलीट के तौर पे अगर आपने आपको बनाता होगा कि उनका करियर जो है वो एथलीट बनना है उसको, तो वो भी ख्वाब देखता है कि वन डे, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगा द ओलंपिक गेम्स। तो पूरी तरह ओलंपिक गेम्स को अगर हम बंद कर देंगे तो देन दैट विल बी अ रियली रियली devastating for such athletes, जो कि अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करूँ तो गांव-गांव से एथलीट जाते हैं एंड देर टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा अगर ओलंपिक्स को टोटली हमने बैंड ही कर दिया, ख़त्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया, और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है। अगर ये सोच, अगर यू नो कुछ आईओसी में, इवन कुछ मेंबर्स ने, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में कुछ मेंबर्स ने ये सोचा कि यार ये तो बहुत खर्चीला वाला गेम्स है, इसको ख़त्म कर दो। लेकिन बेहतर सवाल ये है कि क्या ओलंपिक्स को रिफॉर्म की ज़रूरत है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, अहम सवाल ये है कि हम स्क्रैप के बजाय इसको अगर रिफॉर्म कर दें, थोड़ा सा चेंजेस लाएं इस गेम के नेचर को, द वे इट इज़ बीन होस्टेड, द वे इट इज़ बीन कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज, इसको अगर थोड़ा चेंज लाएं तो आई थिंक ओलंपिक गेम्स विल बी अ हिट। तो अगर शॉर्ट आंसर यहाँ पे दूँ कि क्या यू नो इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, लेकिन उन्हें खत्म करना शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हर एथलीट का एक ख्वाब होता है कि चार साल के बाद, एवरी फोर ईयर साइकिल है, तो इस चार साल के बाद वो ओलंपिक्स में अपने ही कंट्री को रिप्रेजेंट करने का जो फख्र महसूस होता है वो ओलंपिक गेम्स को भी मिलता है। एंड फुटबॉल की बात कर रहा था मैं कि फीफा वर्ल्ड कप इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप इवेंट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में चंद ममालिक जो है वो उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, एंड दैट इज समथिंग पॉसिबल नहीं है कि हर मुल्क के लिए। जैसे कि देखिए, इंडिया वर्ल्ड कप विल नेवर क्वालिफाई और दे हैव डिफिकल्टीज टू क्वालिफाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, क्या ये फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते? बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल वो जो दौर है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। ओलंपिक्स में सबका रास्ता खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है। आप अपने स्पोर्ट्स उठाइए, कोई भी एक स्पोर्ट्स ले लीजिए और उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, प्रोवाइडेड यू क्वालिफाई फॉर दैट ओलंपिक क्वालिफिकेशन। और ओलंपिक क्वालिफिकेशन में मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। ओलंपिक क्वालिफिकेशन वहाँ जाके एथलीट्स के बारे में बात करूँ, एथलेटिक्स के बारे में बात करूँ, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, ये जो मैराथन रेसेस, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू डोंट नीड, हाँ हिट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो उसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं। हिट्स में जाना भी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हर वो मालिक जो है ओलंपिक्स में मौजूद रहते हैं। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओलंपिक गेम्स को रिफॉर्म की जरूरत है, ना कि स्क्रैप कर देने वाली बात है। देखिए मोमेंट्स, एक कई मोमेंट्स हमारे नज़रों के सामने हैं। अब भूलिएगा मत कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स बिकॉज ऑफ उसेन बोल्ट, दुनिया का तेज तरीन इंसान उसेन बोल्ट। उस ओलंपिक्स में 100 मीटर फाइनल, आप सोचिए, उसेन बोल्ट बिकेम अ लेजेंड, लार्जर देन लाइफ। आज भी दुनिया का अगर कोई क्विज डाला जाए कि सबसे तेज तरीन इंसान कौन है, इट्स अ क्विज, एक सवाल, इंपॉर्टेंट है, फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ उसेन बोल्ट, 100 मीटर रेस में क्या धमाका कर दिया था। या नादिया कोमानिची का 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में परफेक्ट 10 लेना, परफेक्ट 10, ओनली वन जिमनास्ट जिन्होंने

ओलंपिक गेम्स के साथ, तो आई थिंक इट विल बिकम किट. आईपीएल क्रिकेट देखिए, टेस्ट क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया है. सो वैसे ही कुछ लिए ये एक ऐसा ग्लोबल स्टेज है जहां वो चमक सकते हैं. अब जमैका, उसेन बोल्ट कंट्री क्या है? जमैका. उसेन बोल्ट का कंट्री का नाम है जमैका. आपको जमैका शायद आप सुने होंगे, लेकिन इतना यू नो पॉपुलर कंट्री नहीं है. जमैका बेसिकली कैरिबियन आइलैंड्स के वन ऑफ द आइलैंड नेशन है. जमैका को हम क्रिकेट के हवाले से सुनते आए हैं. जमैका के कई फास्ट बॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं जो टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं, लेकिन क्रिकेट इज अगेन प्लेड बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज. सो बाकी मुल्कों के लिए जमैका क्या है किसी को नहीं पता. उसेन बोल्ट ने जमैका को एक जगह बना के दी. सो यहाँ पर भी एक सवाल ये भी है कि यू नो रिफॉर्म्स है तो ठीक है, लेकिन तनकीद भी बिल्कुल वैलिड है. तनकीद यानी क्रिटिसिज्म, यानी ओलंपिक गेम्स को लेकर देखिए बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं. कंट्री, गवर्नमेंट, एवरीबॉडी गेट्स इन्वॉल्व्ड इनटू दिस मेजर स्पोर्ट्स इवेंट. लेकिन इसमें भी लोगों ने कभी कुछ सोचा नहीं है कि एक बजटिंग होनी चाहिए, एक यू नो यू नीड हैव अ प्लानिंग. यू नो प्रोफेशनल लोग हैं उसमें, प्रोफेशनल पीपल आर इन्वॉल्व. एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे बात करूं या यू नो ऑर्गेनाइजर्स के तौर पे बात करूं, देयर आर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व. लेकिन आई बिलीव कि यहाँ पर ओलंपिक गेम्स एक, मुझे पर्सनल ओपिनियन में बता रहा हूँ कि ओलंपिक गेम्स एक तरह से खर्चीला, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है. इसको इस कॉस्ट को आप कट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज दैट लीड्स टू एन इम्पैक्ट ऑन योर कंट्रीज इकोनॉमी. देखिए कॉस्ट ओवररन्स हमेशा से रहा है. होस्ट सिटीज अक्सर बिलियंस खर्च करते हैं और कर्ज में चले जाते हैं. यहाँ पर एक ब्राइट एग्जाम्पल और चमकता हुआ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा. यह मिसाल इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट है. 2016 में जब ओलंपिक गेम्स हुआ था ब्राजील के शहर रियो दी जनीरो में, तो रियो दी जनीरो में जब हुआ था तो लोग तो एक्साइटेड हो गए थे कि यार हमारे शहर में ओलंपिक गेम्स इज कमिंग. लेकिन अंडर यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे यू नो दे वर यूज्ड बिकॉज इट वाज नॉट कंप्लीट. टाइम फ्रेम, दे फेल द टाइम फ्रेम. उनको एक टाइम दिया गया था, देखिए ओलंपिक जस्ट नॉट कि आप ओवरनाइट में आपने सोच लिया कि ओलंपिक्स आपको होस्ट करना है तो आप रेडी हो जाते हैं. नहीं, इट्स अ प्लानिंग, 10 साल प्लानिंग लेके चलिए. तो ब्राजील में ऐसा हुआ था कि अंडर यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस पर बाद में बहुत सारे क्रिटिसिज्म मीडिया के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से कई रिपोर्ट्स पेश हुए जिससे समझ में आया कि नथिंग वॉज ओके ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम्स. अच्छा, इसमें करप्शन भी है, करप्शन के भी यू नो कंसर्न्स होते हैं. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पर ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज बार बार उठते रहे हैं. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज बिगर, मच मोर बिगर इन साइज, जहाँ पे हर ममालिक के मेंबर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं. तो करप्शन एक कॉमन फैक्टर है. इसके साथ साथ अगर आप ओलंपिक्स करवाते हैं किसी शहर में, तो उस शहर में तैयारी के दौरान कभी कभी लोगों को हटाया जाता है, और इसमें कुछ परेशानी होती है लेबर्स के लिए. हाँ, एक बात और यहाँ पे, और एक रीज़न मैं बताऊँ कि ये क्रेडिबिलिटी और फेयरनेस को नुकसान पहुँचाते हैं. क्या? डोपिंग स्कैंडल्स. देयर आर कंसर्न्स. मैं बता रहा हूँ, ओलंपिक गेम्स करने का मतलब यह कि आपका सर में दर्द हो जाएगा. तो एक इस जितने भी रीजंस मैंने आप लोगों को बताया, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है. बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस और ट्रैवल से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है. तो आज दुनिया भर में पीपल आर कंसर्न, द कंट्रीज, द गवर्नमेंट्स आर कंसर्न कि कार्बन फुटप्रिंट जितना कम हो उतना बेटर है. तो इसको भी मद्देनजर रखा जाता है. लेकिन ओलंपिक्स इज मेगा. वर्ल्ड कप फुटबॉल में 48 टीमें हैं, ओलंपिक्स में 200 से ज़्यादा, दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं तो वो पार्टिसिपेट करने जाते थे. अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने लोग, कितने फैंस उस शहर में पहुंचते हैं, उस शहर में बस यू नो 15 दिनों तक उस पर्टिकुलर शहर को अपना घर बना लेते हैं. तो इट्स अ बिग हेडेक. तो इसलिए ओलंपिक्स को ख़त्म करने के बजाय ज़्यादा एक्सपर्ट्स रिफॉर्म की बात करते हैं. मैंने बताया कि एथलीट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और एक कंट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है. एक छोटा सा अगर मुल्क हो तो वो अगर गोल्ड मेडल जीत ले तो वो यू नो चांदी चांदी यानी

तो दुनिया भर में एवरीबॉडी वुड नो एथलीट कौन से मुल्क से हैं, जैसे हुसैन बोल्ट फ्रॉम जमैका। तो इसी तरह से इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, होस्टिंग को जैसे हम रिफॉर्म्स की बात करें, होस्टिंग को कुछ सिलेक्टेड सिटीज के दरमियान रोटेट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स यूज की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप नए शहर में आप ओलंपिक्स को मत डालिए, बिकॉज नए शहर में अगर ओलंपिक्स को देते हैं होस्ट सिटीज, कंट्रीज चढ़बड़ के आ जाते हैं कि यार हमारे शहर को भी हमारे शहर में भी ओलंपिक्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इंडिया की बात कर लूँ कि इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द दावेदार

0: लॉज हैं। अगर आप ग्रीस की बात करें कि हमने उस जमाने में ग्रीस को एक शहर बना के एथेंस में जो एंशिएंट ओलंपिक्स को हमने शुरू किया था, उसके बाद सन 1900 में द मॉडर्न ओलंपिक्स केम इनटू द पिक्चर, उसके बाद लोगों ने सोचा कि ओलंपिक्स होनी चाहिए बिकॉज एवरीबडी वुड कम एंड दे वुड कम्पीट टुगेदर। एक भाईचारे की बात होती है, एक ब्रदरहुड की बात होती है, स्पोर्ट्समैनशिप की बात होती है, लेकिन ये सब इमोशन सेंटिमेंट उस टाइम अच्छा लगता था। लेकिन आज जो है इट्स अ मल्टी आई वुड से बिलियन डॉलर इवेंट जहाँ पे कंपनीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एथलीट्स के पीछे खर्चा, कंट्रीज के पीछे खर्चा, ये सब बहुत सारी चीज़ें। तो ओलंपिक्स में आज के डेट में मैं समझता हूँ कि फ्लॉज हैं, लेकिन ये अभी भी एक यूनिक ग्लोबल पर्पस सर्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट, इस बात को गौर कीजिए कि अभी भी एक यूनिक ग्लोबल पर्पस सर्व करते हैं। उन्हें खत्म करना एक रेयर पीसफुल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को खत्म कर देना है। एक दुनिया में हर कोई अमन मोहब्बत हर कोई चाह रहा है, इस तरह के स्पोर्ट्स फील्ड या स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल बैन अक्वामी सतह पर अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई खेल कूद हो, तो वहाँ पे तमाम ममालिक के मेंबर्स, एथलीट्स, ऑफिशियल्स, ये लोग आते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो दैट गिव्स अ राइट पिक्चर ऑफ द इंटरनेशनल पीस जो आज के डेट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो ओलंपिक गेम्स में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे एथलीट्स एक दूसरे के गले लगे, ऑफिशियल्स हाथ मिलाए, दैट्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओलंपिक गेम्स, और इसलिए उन्हें ठीक करना ज़्यादा बेहतर अप्रोच लगता है कि जो ओलंपिक गेम्स है उसको वहाँ रहने दीजिए और ओलंपिक गेम्स को थोड़ा सा रिफॉर्म करें, थोड़ा सा टिटबिट्स जो है उसको चेंज करें। चेंजेस आर इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ, और इंडिविजुअल लाइफ की बात करें, किसी चीज़ के बारे में बात करें, परिवर्तन यानी बदलाव ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ओलंपिक गेम्स में ये ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तब इस चर्चा को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए FM 107।
1: आप सुन रहे हैं स्पॉटकास्ट विद मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: वेलकम बैक, दोबारा इस्तकबाल है आप सभी लिसनर्स का। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट शो जहां आज हम बात करें कि ओलंपिक गेम्स को क्या हम इसको स्क्रैप कर दें या इसकी रिफॉर्मेशन जरूरी है। बिल्कुल, हमने ये थोड़ा सा पॉइंट्स एनालाइज किया था बिफोर द ब्रेक, वहाँ पे मैंने कहा था कि जी हाँ, ओलंपिक गेम्स को हटा देना, बंद कर देना, एकदम इरेज कर देना, इट्स नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट्स, और बल्कि इसको अगर थोड़ा रिफॉर्म कर दिया जाए, थोड़ा सा चेंजेस लाए जाए इसके वे ऑफ कंडक्टिंग इट, आई थिंक दैट वुड बी ब्रिलियंट आइडिया, बिकॉज होस्ट कंट्री कोई भी हो, होस्ट सिटी कोई भी हो, वहाँ पर जो खिलाड़ी पहुँचते हैं वहाँ पर दे मेक अ कैमरे and they brotherhood, the friendship, wo cheeze important hai. Sports brings happiness, sports brings brotherhood, sports brings peace, that's its more important message than anything else. So Olympic games ko khatam na kare balki usko thoda sa idhar udhar thoda sa change कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जिन्होंने ओलंपिक गेम्स से, होस्ट सिटीज जिन्होंने ओलंपिक गेम्स से फायदा उठाया, बार्सिलोना 1992 ओलंपिक्स, मशहूर बार्सिलोना शहर फुटबॉल के लिए मशहूर है, लेकिन उस टाइम बार्सिलोना वॉज नॉट नोन फॉर फुटबॉल क्लब। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि 34 साल पहले बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के कोई फैंस आपके सामने इर्द गिर्द में है? किसी ने कभी नहीं सुना था। They were there, Barcelona club. लेकिन Barcelona शहर became famous because hosting the 1992 Olympics. एक आज के डेट में कहा जाता है कि gold standard, that was the standard that Barcelona maintained. एक major global tourist city बना दिया था Barcelona. आज everybody loves Barcelona, not because of the football club, but the city, coastline, infrastructure और urban planning को improve किया, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और कल्चरल जो फायदा पहुंचा वो बार्सिलोना को पहुंच गया था। एंड आज बार्सिलोना एक इंटरनेशनल सिटी है, जैसे कि एग्जांपल दूं कि दोहा, व्हेन इट होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2022, दोहा मान के चलिए आज से 25 साल पहले कतर दोहा लोगों को थोड़ा सा कम आइडिया, आज दोहा हैज बिकम अ हब ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और ये मुमकिन हो पाया बिकॉज ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। समझिए इस चीज को कि स्पोर्ट्स

0: में वो ताकत है, स्पोर्ट्स इवेंट्स में वो ताकत है. तो बार्सिलोना दैट टाइम दे थॉट कि एक इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर जो है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर को ओपन करने की जरूरत है थ्रू होस्टिंग ओलंपिक गेम्स, एंड देन बार्सिलोना होस्टेड इट. उससे थोड़ा सा पहले हम जाते हैं 1984 के ओलंपिक गेम्स जो लॉस एंजलिस में हुआ था. काफ़ी प्रॉफिटेबल इवेंट माना जाता है, जो कि बहुत ही रेयर है इन द ओलंपिक हिस्ट्री. एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स का यूज़ किया गया था. लॉस एंजलिस इज ऑब्वियसली, इससे पहले भी दे हैड होस्टेड. तो लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम्स के जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा लॉस एंजलिस में हर खेल भी तो होता है ना, स्विमिंग, एथलेटिक्स एंड यू नो बास्केटबॉल, बेसबॉल, क्या नहीं. तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया गया. थोड़ा तोड़फोड़ है तो चलिए उसको पुताई वुताई लगवा दिए आपने, वो कर दिया, बस नए सिरे से बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. बिकॉज देन यू आर स्पेंडिंग, ओवर स्पेंडिंग, नॉट स्पेंडिंग बल्कि ओवर स्पेंडिंग. और लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी उस टाइम में ये डिसीजन लिया था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम है उसी को हम यूज करेंगे. एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया. प्राइवेट फंडिंग और स्पॉन्सरशिप का मॉडल सेट किया. फर्स्ट टाइम एवर कि आप प्राइवेटली अगर आपने डोनेट करनी है या स्पॉन्सर करनी है, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम. और ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर यू नो जो है कि इकोनॉमिक प्रेशर है वो कम होता है. एंड ये लॉस एंजलिस सिटी शहर ने करके दिखाया था कि स्पॉन्सरशिप भी कैन बी इंक्लूडेड इन मॉडर्न ओलंपिक्स. एंड लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स केम होल हार्टेडली कि भाई हम भी शामिल होना चाहते हैं, हमारा नाम भी दिखे इधर उधर. तो दैट बिकेम अ स्टैंडर्ड ओलंपिक्स यू नो फाउंडेशन फॉर अ स्टैंडर्ड ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स. लॉस एंजलिस 1984, लंदन 2012 ओलंपिक्स, ये हाल ही की बात है जहाँ पे मुताज बाशिम, कतर के मुताज बाशिम ने मेडल जीता था. नासिर साले अलातिया जो कि एक रैली ड्राइवर हैं, मारूफ रैली ड्राइवर कतर के, उन्होंने उस 2012 के लंदन ओलंपिक्स में राइफल शूटिंग स्कीट जो इवेंट है, स्कीट कैटेगरी में मेंस ब्रॉन्ज नासिर साले अलातिया ने जीता. तो दिस इज अ काइंड यू नो मॉडर्न ओलंपिक्स, जस्ट 14 साल पुरानी बात है. तो ईस्ट लंदन को रीजनरेट किया गया था, स्ट्रैटफर्ड उसको रीजनरेट किया गया था स्ट्रॉन्ग लेगेसी प्लानिंग के साथ. हाउसिंग, पार्क्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ लेगेसी प्लानिंग का एक हिस्सा था. और वेन्यूज भी अभी भी यूज हो रहे हैं. देखिए उस वेन्यूज को चलानी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल बिकम व्हाइट एलिफेंट्स. व्हाइट एलिफेंट में तो आपको खर्चा करना है, हाथी, हाथी को पालना इज बहुत बहुत बड़ी बात है. तो उसको खर्चा करना, उसको मेंटेन करना, उसके पीछे इतना खर्चा खाने पीने का. तो वेन्यूज भी इस तरह का होते हैं ओलंपिक वेन्यूज, ह्यूज, उसको मेंटेन करना. सोचिए डे बाय डे, डे टू डे एक्टिविटीज कुछ ना कुछ होनी चाहिए. रेंट इट आउट, किसी को दे दीजिए, किसी को चलाने के लिए दे दीजिए. कुछ खेल कूद हो, इवेंट्स होनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल क्रम्बल इनटू पीसेस. जो कि बाद में हुआ है, मैं बताता हूँ आपको. 2004 ओलंपिक गेम्स जो कि एथेंस में हुआ था, एथेंस यू नो कदीम तरीन वन ऑफ द शहर इन द वर्ल्ड. और एथेंस में ओलंपिक्स मीन्स एथेंस, लोग सोचते हैं एथेंस, और एथेंस एक हिस्टोरिकल सिटी है. लेकिन इसी शहर में द एंशिएंट ओलंपिक्स, एंशिएंट ओलंपिक्स वाज होस्टेड. सो एथेंस ओलंपिक जब 2004 में किया गया, लोग बड़े खुश थे, अरे हमारे शहर में ओलंपिक्स आ ही रहा है.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: आज एथेंस शहर जो है दोस्तों, अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ज में डूबा हुआ है. एंड पूरे ग्रीस की इकोनॉमी है वो लगा दिया गया था, वो लगत जो है पूरे ओलंपिक्स के पीछे खर्च कर दिया गया था. एंड दैट इज व्हाट यू नो हैड क्रिएटेड अ बिग इकोनॉमिक प्रॉब्लम. बहुत से वेन्यूज बाद में अबंडन यानी बंद कर दिया गया. और ग्रीस के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी इस चीज को जोड़ा जाता, बिकॉज ओलंपिक्स जैसे मैंने शुरू से बताया कि मामूली गली नुक्कड़ का कोई टूर्नामेंट नहीं है. इट्स अ बिग इवेंट. बिग इवेंट मतलब सोचिए बड़े पैमाने पर दुनिया के हर मुल्क जो है इसमें हाजिर होते हैं, एथलीट्स पहुंच जाते हैं, फैंस पहुंचते हैं. तो इसको संभालना इट्स नॉट ईजी. और जैसे कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि रियो डी जेनेरो में 2016 ओलंपिक जब हुआ था तो वहां पर भी आज क्राइसिस हमें नजर आते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस. इसके साथ साथ वेन्यूज जो है जल्दी खराब हालत में चले गए थे, बिकॉज मेंटेनेंस, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो एंड से कि मेंटेनेंस ऑफ द स्टेडियम. घर आप अपना घर की घर ही समझ लीजिए. घर में अगर आप मेंटेन घर को मेंटेन नहीं करेंगे तो टूट फूट जो है आपके सामने नजर आएंगे. तो इट यू नीड एन एनुअल मेंटेनेंस या मंथली मेंटेनेंस, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो स्टेडियम के मेंटेनेंस, स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस अगर ना हो तो डेफिनेटली वो तो कुछ ना कुछ टूट फूट होगा, धीरे धीरे धीरे वो गिर जाएगा एक दिन. सो यही हो रहा है पूरे कुछ ना, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, मुख्तलिफ शहरों में ये हो रहा है. और लॉन्ग टर्म रिटर्न जो रियो डी जनेरो में ओलंपिक्स हुआ था वो लिमिटेड था. लॉन्ग टर्म रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट हुआ, ऑब्वियसली आरओआई के बारे में हम बात करते हैं ना, तो वो रिटर्न बिकेम वेरी लिमिटेड. वो मतलब प्रॉफिट कम, लॉसेस ज़्यादा. तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि ओलंपिक्स ना पूरी तरह अच्छे हैं ना बुरे, सब कुछ डिपेंड करता है प्लानिंग और बजटिंग, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज, पोस्ट गेम्स लीगेसी स्ट्रेटेजी. जिस शहर ने ओलंपिक्स को लॉन्ग टर्म अर्बन प्रोजेक्ट समझकर प्लान करती हैं वो जीतती हैं, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रेस्टीज के लिए करती हैं वो अक्सर स्ट्रगल करती हैं. हमारे सामने हमें देखने को मिल गया. सो ये आज का जो टॉपिक था कि क्या ओलंपिक गेम्स को स्क्रैप कर देनी चाहिए या रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. आप भी क्या समझते हैं ये आप बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, और टेक्स्ट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर 6622107 पर, और आप बता सकते हैं इस पॉडकास्ट में ये जो आपने टॉपिक सुना, क्या आप इसमें सहमत, इसमें सहमत हैं, इससे सहमत हैं कि क्या आप ओलंपिक गेम्स को स्क्रैप कर दी चाहिए यानी ख़त्म कर दो ओलंपिक गेम्स को, या आप चाहते हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इन सच मेगा इवेंट्स को. मैं हूं मोहम्मद अमीन, आप सुन रहे थे एफएम 107 का खास पॉडकास्ट शो. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर ज़रूर शेयर करें और हमें बताइए कि आप किस लेजेंड पर या किस टॉपिक पर अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें. ये पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन www.urduradio.qa पर. तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और स्पोर्ट्स को एंजॉय करते रहिए, ओलंपिक गेम्स को एंजॉय करिए. अगला ओलंपिक गेम्स जो है, मैं आपको बता दूं, 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस में है. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आफ्टर 1984 लॉस एंजलिस वंस अगेन गोइंग टू होस्ट अनदर मेजर ओलंपिक गेम्स. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: पॉडकास्ट
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर. दिल से देसी.
3: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक नहीं सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए.
4: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी.
3: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड. द स्टूडेंट्स गाइड. तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी कितने बजे आ रही है भाई? देखो मेरा चश्मा कहाँ रह गया है, चश्मे के बगैर ही बता सकती हूँ, मेरी आवाज़ चल रही है तो 1:31 ही हो रहे होंगे।
4: एब्सोल्युटली, और सुपर सफाई फॉर अमिता आ चुके हैं आपके लिए लेकर।
5: आप सुन रहे हैं द सुपर किट

0: सो ये सुपर किड्स, क्या हाल चाल है हमारे सुपर लेजेंड्स? कहाँ घूम रहे हैं, क्या चल रहा है, स्कूल से आ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं? वैसे तो सफा आज जैसी मैं आई ना जाने क्यों वेंसडे को वेंसडे आते ही ना मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती है थर्सडे में बाहर ना हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो हमारे स्टूडियो के उस बार बैठती है सारा, मैं उनको बोलने वाली थी कि तुम्हारा वीकेंड का क्या प्लान है, यू नो लाइक दिस क्वेश्चन वॉज रोलिंग सुबह से. मैंने कहा यार ये चल रहा है फिलहाल दिमाग में कि वेंसडे को हमने थर्सडे बना दिया है.
1: बेटा मुझे तो ट्यूसडे को थर्सडे लग रहा था.
0: ये अगर हमारे बॉसेस ने सुन लिया ना बोलेंगे बेटा तुम लोग काम करना है नहीं करना है.
1: चलो भाई छुट्टी करो छुट्टी करो. भाई मुझे मैं सोचती हूँ कि स्कूल लाइफ कितने मजे की होती है ना.
0: एब्सोल्युटली मतलब ये छुट्टी वाला टाइम उनके लिए कितना स्पेशल होता है. और इनफैक्ट यू नो हम एंटायर वीक वेट करते हैं कि चलो हमें जब छुट्टी मिलेगी तो हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे. बट व्हेन यू आर इन स्कूल और जब आपकी छुट्टी होती है स्कूल खत्म होता है यू सी द एक्साइटमेंट.
1: ओ भाई
0: यू सी द एक्साइटमेंट.
1: स्कूल के लिए उठे ना उठे छुट्टी वाले दिन सबसे पहले उठे हुए होंगे.
0: यस क्योंकि उनका एक्साइटमेंट रहेगा कि आज क्या करना है, आज खाने में क्या मिलेगा, आज नाश्ता क्या स्पेशल होगा.
1: नहीं सबसे पहली बात सबसे पहली चीज ये होती है कि आज हमने क्या गड़बड़ करनी है, किस किस को छिपवाना है, किस किस की जिंदगी हराम करनी है.
0: सो यस हमारे सुपर लेजेंड सुपर किड्स आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर 4434377. वैसे अच्छा सफा ये बताओ कि जब हम बात करते हैं स्ट्रांग होने की सो व्हाट डू यू थिंक लाइक स्ट्रांग होना क्या होता है?
1: मेरे ख्याल से ना स्ट्रांग होना तब होता है इट्स नॉट अबाउट लिफ्टिंग डंबल्स एंड गोइंग टू द जिम.
0: ऑलराइट
1: व्हाट आई फील इज स्ट्रेंथ इज मोर बियॉन्ड दिस कॉन्सेप्ट. गुस्सा ना करना, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना, दूसरों को फॉरगिव कर देना.
0: वाओ सी सो मेनी थिंग्स लाइक दीस आर द क्वालिटीज. और अगर इनफैक्ट ये सबसे ये सारी चीजें जब आती है जब आप जेंटल होते हो जेंटलनेस
1: जेंटलनेस से ना एक और चीज बड़ी रिलेटेड होती है हम कहते हैं एम्पैथी, दूसरों को फील करना.
0: एब्सोल्युटली
1: जो जेंटल होता है ना अक्सर औकात लोग आपने सुना होगा लोग कहते हैं भाई ये बहुत ही ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा वीक है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है.
0: इतना मतलब सॉफ्ट स्पोकन है तो कैसे ही मतलब यू नो चीजों को मैनेज कर पाएंगे. मतलब हम बड़ों को भी सुनने मिलता है बच्चे तो बच्चों के साथ तो होता ही होगा. सो ये वाला जो एक फैक्टर है ना कि अगर आप बड़े शांत हैं बड़े प्यार से बात करते हैं गुस्सा कम करते हैं लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपको और बोलने का कि यू नॉट स्ट्रांग. बट लेट मी टेल यू ये किसी भी सुपर हीरो से भी ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है जो आपके पास है.
1: रियली ऑनेस्टली अच्छा मैंने अक्सर औकात बच्चों को देखा है दूसरे बच्चों को ना बुली करते हुए क्योंकि जो सॉफ्ट बच्चा होता है ना अच्छा वो माशाल्लाह कदकाठ में भी अच्छा होगा सेहत में भी अच्छा होगा बच्चा लेकिन वापस हाथ नहीं उठाएगा किसी के ऊपर. तो उसको खास तौर पे खास लड़कों में होता है लड़के थोड़े होते हैं माशाल्लाह से
0: प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं
1: तो वो जरा उसको चिढ़ाएंगे तुम बेबी हो तुम ये हो तुम वो हो
0: डेफिनेटली
1: और उसको और ज्यादा गैसलाइट करेंगे इस बात के ऊपर. तो आई थिंक दिस इज जो बच्चा बर्दाश्त कर जाता है ना चीजों को आई थिंक दैट्स द थिंग दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट किड जो आपको उसको अच्छी खासी उसके अंदर स्ट्रेंथ है लेकिन दैट किड विल नॉट हिट यू बैक.
0: यही तो
1: उसे मैं कहती हूँ भाई वो स्ट्रेंथ है. और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आदत होगी गुस्सा करना जिनकी आदत होगी दूसरों को चिढ़ाना जिनकी आदत होगी बगैर बोले सोचे समझे कुछ भी बोल देना दूसरों को गैस लाइट करके खुश होना.
0: राइट
1: आई थिंक नो मैटर वेयर यू गो अगर आप ऐसी नेगेटिव हरकतें करोगे ना चाहे आप बड़े हो चाहे आप बच्चे हो यू आर द वीकेस्ट पर्सन ऑन
0: आप सही बोल रहे हो. इसलिए आज बच्चा पार्टी हम एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं आपका. आपको हमें कॉल करके बताना है 4434377 पर आई रिपीट द नंबर 4434377 पर कि जब आपसे कोई गुस्से से बात करता है या जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हो? आप कंट्रोल करते हो अपने आप को प्यार से बात करते हो या फिर भड़क जाते हो?
1: अच्छा एक और चीज मुझे दिमाग में आई मुझे हंसी आ रही इस बात के ऊपर क्योंकि वी हैव डेल्ट होता है कजन्स में इसमें उसमें जो ना दोस्तों में होता है कुछ दोस्त होते हैं बड़े शो ऑफ होते हैं उनके साथ डील करने होगा तो मजा ही कुछ और होता है भाई. अच्छा आपने कभी देखा होगा बच्चा पार्टी ये हर फ्रेंड ग्रुप में और आई थिंक रिलेटिव्स में खासतौर पे कजन्स वगैरह में होता है.
0: राइट
1: कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि देयर आर सर्टेन पीपल इन आवर लाइफ दे लाइक शोइंग ऑफ.
0: Okay.
1: कभी वो अपनी कोई स्टेशनरी शो ऑफ कर रहे होंगे कभी अपना कोई बैग शो ऑफ कर रहे होंगे कभी कोई कपड़ा शो ऑफ कभी अपनी वॉच कोई डिजिटल वॉच शो ऑफ कर रहे होंगे
0: लाइक द बिग ब्रांड.
1: तो दिस इज आल्सो पार्ट वेयर आई फेल्ट दैट अल्हम्दुलिल्लाह without the cape,
0: yeah,
1: I was a superhero. I never fell into it.
0: That's very good.
1: And I never reverted back. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये चीज़ भी समझना ना, छोटी सी एज में ये चीज़ भी समझ लेना. और आजकल के बच्चे भाई ये देखो. This generation is very smart.
0: Smart, in fact, मैंने अभी देखा है मेरे घर पे, ठीक है, मेरे घर पे, in fact, मेरे cousins के साथ और मेरे दोस्तों के साथ. तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका you know, जो gaming बड़े बड़े उनके devices आते हैं, और नाम तो मैं नहीं लूंगी, like there's lot of things, but वो अभी उसके लिए मतलब capable नहीं है, like actually not capable is the right word, वो अभी उनके लिए नहीं है,
1: mature नहीं है,
0: ठीक है. सो बट उस पे रोना पीटना मचा हुआ है क्योंकि किसी एक पेरेंट ने दिला दिया है, किसी ने नहीं दिलाया,
1: फलाने के पास है तो मेरे पास नहीं है,
0: एंड दे आर फीलिंग यू नो कि उनका स्टेटस डाउन हो रहा है. दैट्स वेरी रॉन्ग.
1: देखो ये जो आजकल की सोशल मीडिया की जो दौड़ है ना, और एक दूसरे को देखम देखी की दौड़ है. हमारे टाइम पे होता था भाई, देखो प्रोडक्ट्स भी कम होते थे, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं था, मार्केट में चीजें बड़ी महंगी मिलती थी, तो इट वॉज लाइक इट वॉज समथिंग कि आप अगर रीच कर जाओ उस चीज तक. आजकल का मसला ये है कि अगर अमिता के पास है तो मुझे भी चाहिए.
0: Yeah, exactly.
1: और नहीं मिला, wrong thing.
0: और नहीं मिला तो एक अलग ही उसमें कि हमारे पेरेंट्स
1: फसाद
0: नहीं, एंड दे यू नो बच्चे ये सोचने लगते हैं कि पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते.
1: कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स
0: कि हमको कॉम्प्लेक्स सिटी देना चाहते हैं हमारे पेरेंट्स बाकी लोगों के साथ, मतलब ये जो बच्चों की कम्युनिटी उसके बीच में.
1: अरे भाई अगर हम बड़े बड़े ये अपने गेमिंग कंसोल्स को छोड़ भी दें, तो हम लोग अपने ये जो स्क्रीन्स हैं, मोबाइल्स हो गए, ये जो हमारे टैब्स हो गए, ये क्या चल रहा है भाई. मैं कहती हूँ बच्चा वो मजे का होता है जो बच्चा होता है, मतलब इन द सेंस आप जो हो ना इन चीजों के बगैर भी, इट्स यू हैव एन एज फॉर इट, यू विल गेट इट समहाउ. नॉट जो जिस इंसान के अंदर, जिस बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है ना, नॉट टुडे इंशाल्लाह टुमारो, नॉट टुमारो इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो, जिस बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है ना,
0: होप रहती है.
1: और वो भाई बिलियनियर बच्चा है, वो बिलियनियर बच्चा है वो, मैं बता रही हूँ, दुनिया की कोई करेंसी नहीं खरीद सकती आपको.
0: हाय क्या कह दिया आपने. तो बच्चा पार्टी, आई एम वेरी श्योर कि आप हमें सुन रहे होंगे अपनी सुपर सफाई फॉर अमिता को. सो आई विल सिंपली से जस्ट बाजार कॉल करें बस 4434377 पर 4434377, एंड लेट अस नो कि ये जो अभी भाग दौड़ की जिंदगी है जहाँ पर गुस्सा जो है ना वो एकदम नाक पर हर किसी के बैठा रहता है, तो आप क्या करते हैं.
1: लालच,
0: या लाइक द थिंग्स जो हम अपने मॉरल साइंस में काउंट नहीं करते, एंड वो सब मेरे ख्याल से मैं बताने की जरूरत नहीं है, हमारी बच्चा बाड़ी बहुत इंटेलिजेंट है, समझती है. सो जस्ट टेल अस कि जब कोई सिचुएशन आती है, जब आपको एक्चुअली गुस्सा आ रहा है या कोई और आप पे गुस्सा कर रहा है,
1: हाँ,
0: what do you do?
1: How do you strengthen yourself?
0: Yes, आप शांत रहकर उस चीज को डील करते हैं, या फिर किसी ने जैसे अक्सर होता है ना कि हमारा फेवरेट टॉय तोड़ दिया, फेवरेट पेंसिल तोड़ दी, हाँ, हमारा टिफिन बॉक्स खा लिया, हाउ यू डील विद इट. क्या आप भी एकदम मतलब गुस्से में आके यू नो मुंहबाजी कर लेते हो कि कैसे हिम्मत हुई, या फिर आप प्यार से समझाते हो.
1: अच्छा, देखो ऐसा एक चीज याद रखिए कि गुस्सा आना इज अ नेचुरल थिंग, इट्स नॉट दैट यू आर अ बैड पर्सन, इट डज नॉट इवैल्यूएट यू एज अ बैड पर्सन.
0: एब्सोल्युटली.
1: जब प्रॉब्लम होता है ना, उस प्रॉब्लम का हल तभी मिलता है जब हमें उस वो प्रॉब्लम रूट कॉज मिल जाती है. कुछ लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज फाइन, आई एम ऑलवेज राइट.
0: Yeah, absolutely.
1: जो इंसान इस चीज से हटकर चलता है ना भाई, उसका आता है मजा लाइफ जीने का.
0: So yes, again I'll repeat the number 4434377 4434377 is our number. आप definitely हमसे call पे बात कर सकते हैं.
1: आप जरा सोचें, और हाँ, remember we listen and we don't judge.
0: Yeah.
1: तो वी आर ओवर हियर टॉकिंग टू यू. एक सिंपल सी डिस्कशन चल रही है कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करते हो इन टाइम्स ऑफ वीक स्टेट्स, लाइक आपको गुस्सा आ गया, आपने जो है ना कभी किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना हो, कभी समथिंग विच यू नो इज नेगेटिव, हाउ डू यू स्ट्रेंथन योर सेल्फ इन दैट.
0: एब्सोल्युटली. अभी हमारे साथ कोई है, चलें इनसे बात करें. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी. कौन है हमारे साथ?
2: रूहान.
1: वेयर हैव यू बीन?
0: अच्छा जी, तो चले अब कॉल लग गया. रूहान आए तो भी एक और इनके साथी अनम, अनम कहाँ है?
2: अनम स्कूल में
0: है. रूहान स्कूल नहीं गए?
2: मैं भी गई थी.
1: गई थी लेकिन फिर जल्दी वापस आ गई हैं. अच्छा, अनम को कहाँ भूल आई फिर? पता चला गई, अब ईद के बाद मिलेंगे अनम से.
0: बोले ये साथ में आके बिल्कुल राइम करते हुए बात करती थी ना, इसलिए मैंने अनम को लाज नहीं लाया. सो आज ये हुआ कैसे, ये तो बताओ कि आप स्कूल से जल्दी आ गई एंड अनम नहीं आई.
1: यू गाइस गो टू अ डिफरेंट स्कूल,
0: ये डिफरेंट टाइम. अच्छा
1: ओके ओके ओके ओके,
0: दैट्स व्हाई ये थोड़ा लेट कॉल करते थे जब दोनों साथ में. तो अनम के बिना कैसे कॉल कर लिया आपने,
1: कुछ अकेला अकेला नहीं लग रहा?
2: मम्मा ने बोला.
0: हाउ स्वीट इज दैट, हाउ स्वीट. चलो
1: मम्मा ने कहा आराम से तुम भी बात कर लो आज,
2: अनम भी आपसे बात कर.
0: बहुत बढ़िया, इंशाल्लाह हम वेट करेंगे अनम से बात करने का. अच्छा ये तो बताओ अभी आज आज आज अभी स्कूल का दिन कैसा गुजरा, क्योंकि ये तो देखो ट्रेडिशन है, हमें जानना तो बनता है कि क्या किया आपने स्कूल में आज.
2: बहुत अच्छा.
0: हाँ तो बहुत अच्छे को थोड़ा बता दो क्या क्या किया, पढ़ाई करी दोस्तों से. हाँ
2: हम लोग ने क्लब में हम लोग ने ग्रीन कैक्टस बनाया है.
1: ग्रीन कैक्टस,
2: ड्रीम कैचर.
1: अच्छा
0: ड्रीम कैचर, इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट.
1: नाइस नाइस नाइस.
0: ओके और क्या, थोड़ा सा बताओ किस तरह से आपने ड्रीम कैचर को बनाया, लाइक क्या आगे बताओ थोड़ा क्या कॉन्सेप्ट था किस तरह से.
2: मुझे अभी उसको खत्म करना है. मैंने उसको फेदर्स डाली लेकिन अभी जरा और थोड़े फेदर्स अटैच करना है.
1: Okay. You know, it's one of my favorite things, Dream Catcher.
0: Dream Catcher, मैंने ना एक fantasy series देखी थी सफा, उसमें रुहान Dream Catcher ना एक हिरन होता है, like a deer. So, आपका जो Dream Catcher है वो क्या है?
2: मेरा white और black color का
0: है. Oh,
1: Dream Catcher ना एक, मैं बताती हूँ अमिता. हाँ, I was about to tell Amita, handmade एक traditional ना, उसे कहते हैं.
0: Yeah, I know this.
1: और कोई नाम है उसका, ओजी बावा करके कुछ उसका नाम
0: है. It's kind of a wall hanging. It's like a charm.
1: Charm होता है ना, वो होता है.
0: So इसी fantasy जो series की बात करी ना, उसपे dream catcher एक हिरन होता है. So anyway, so आपने बनाया तो like अभी complete नहीं किया?
2: नहीं अभी करना है थोड़ा.
1: अच्छा इसका कॉन्सेप्ट पता है क्या है, इट्स अ वेरी आई वुड से एन इंटरेस्टिंग थिंग. इसको जो ड्रीम कैचर पता है क्यों कहते हैं, इसको ड्रीम कैचर इसलिए कहते हैं कि वो एक एक एक ट्रेडिशनल एक ट्रेडिशन है एक मैं कहूँगी एक ट्राइब का कि वो कहते थे कि जब किसी को इट्स एक्चुअली मेंट टू बी हंग ओवर योर बेड व्हेन यू स्लीप बिकॉज इट्स सेड दैट इट कैचेस द बैड ड्रीम्स, इट ट्रैप्स द बैड ड्रीम्स. अब आप इसका पैटर्न देखोगे ना तो इट्स लाइक अ स्पाइडर वेब. सो द कॉन्सेप्ट इज दैट द बैड ड्रीम्स आर कॉट इन इट वाइल यू आर स्लीपिंग एंड द गुड ड्रीम्स पास थ्रू इट in from the hoop. It's just a you can say wo 60s or 70s mein na pan Indians type kuch log the unhone isko ijaad kiya tha. So it's something from their side considered as but it's a very beautiful
0: it's
1: thing.
0: It's a beautiful concept aur bahut sari fantasy movies mein bhi ye wala jo dream catcher jisko aap chimes ki tarah dete hai na उसके बारे में बहुत बताया गया. सो एनी वे टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट कि आपका जो ड्रीम कैचर है कैसे आप बना रहे हो, लाइक व्हाट आर द कलर्स यू आर यूजिंग, हाउ आर यू मेकिंग इट. या
2: आई एम यूजिंग अ ब्लैक एंड वाइट कलर.
0: ब्लैक एंड वाइट, ओके ओके एंड
1: डिसेंट.
2: मेरे डॉट ने वाइट कलर बनाया है.
1: नाइस.
2: सो मैं ब्लैक एंड वाइट बनाऊंगी.
1: अच्छा मुझे कलरफुल, कैन यू मेक अ कलरफुल वन फॉर मी प्लीज. तो बस एक काम करना, छुपके से कल दोस्त वाला उठा के ले आना मेरे लिए. किसी को बताना नहीं. ओके रुहान, किसी को बताना नहीं. ओके ओके अभी रही
0: हाँ मैं ले आऊंगी, देखो जरा. क्या कह रहे,
1: उसने मुझे देख लिया तो.
0: हाँ देख लिया तो बताओ क्या करोगे.
1: तो फिर उससे कहना मैं ऐसे ही देखने के लिए उठाया था मैंने. नहीं नहीं नहीं नहीं, उसे कहना मैं तो सिर्फ देख रही थी, मैं देख रही थी कि मैं भी अगर ऐसा बनाऊं तो फिर वो कैसे बनाऊं. यू नो आई लाइक योर स्टफ एंड दिस एंड दैट.
0: नहीं मत उठा के लाना रुहान,
1: ये मजा असल में उठा के ले.
0: राइट, यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड कभी अगर सफा से मिलना हो, उसे देना हो ना, तो आप कलरफुल वाला ये ड्रीम कैचर बना देना, ठीक है?
1: प्लीज प्लीज प्लीज.
2: ओके
0: ओके, दैट्स अ गुड वन.
2: जी।
0: अच्छा रूहान ये तो बताओ, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चा बाटी अपने ना जो गुस्सा है और जो इस तरह की चीजें जब आप बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते तो कैसे मैनेज करते हो। सो टेल अस समथिंग कि कभी किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आप गुस्सा नहीं हुए।
2: हाँ

0: आपने अपने आप को कंट्रोल किया और बहुत हाँ क्या ये मैंने कुछ सुना हाँ मेरी क्या सॉरी क्या बोल रहे हैं
1: अरे नहीं वो पीछे से आवाज आई थी तो अच्छा आप बताएं आप अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करती हैं इन द मोमेंट्स व्हेन यू आर यू वुड से कि व्हेन यू कैन चूज अ नेगेटिव रिप्लाई बट यू चूज टू बी पॉजिटिव एंड यू स्ट्रेंथन योरसेल्फ
2: मैं ना ऐसी गुस्सा नहीं करती हूँ मैं लाइट लेके उन लोगों को बोलती हूँ कि नहीं करना
1: ऐसे ही बस मैं सोच लेती
0: हूँ बोल देती हूँ
1: ऐसे बोल देती हूँ देखो मैं मुझे तंग नहीं करो मुझे गुस्सा नहीं करना शक्ल नहीं दिखाओ अपनी
0: हाँ ऐसे बोल देते हो या फिर क्या मतलब क्या होता है क्योंकि हम ऐसे बोलते कोई नहीं सुनता बताओ यस रुआन टेल अस
2: नहीं सुनते हैं तो मैं बोलूंगी फिर से बोलूंगी फिर नहीं सुनते हैं तो मैं मैम को बोलूंगी मैम बोल लेते हैं
0: शी इज लाइक कि अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो अपने से बड़े से आपके बारे में बताऊंगी जो आपको बेहतर तरीके से समझा सके ओके रुहान नॉट अ बैड अप्रोच इट्स स्टिल वेरी नाइस
1: इट्स अ गुड थिंग
0: इट्स अ वेरी गुड थिंग
1: लाजमी थोड़ी कि हर चीज हम खुद हैंडल करें बड़े क्या करेंगे फिर हमारे लिए कोई तो काम करेंगे
0: वेरी नाइस डियर वी रियली लव दैट एंड इट इज अ गुड अप्रोच क्योंकि कई बार क्या होता है ना जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि कोई बच्चा बहुत प्यार से जब बात कर रहा होता है ना तो लोग इग्नोर करते हैं सुनते नहीं है इसलिए जरूरी होता है किसी बड़े को लेकर आओ
1: तब
0: बातें सुनाओ अच्छा ये बताओ हमारे साथ टंग ट्विस्टर का गेम खेलोगे
1: तो रोहान कितने साल की हो गई आप 10 12 15
0: 8 ईयर्स
1: अरे इतने सालों बाद आपने कॉल की और अभी तक 8 ईयर्स की हैं
2: इतने सालों नहीं है खाली 4 दिन हुए हैं
0: ओ भाई साहब
1: बता दो देखा मुझे तो 4 दिन भी सालों के बराबर लगते हैं अगर आप लोगों से बात ना हो तो देखा दिस इज हाउ मच आई लव यू गाइस 4 दिन अच्छा भाई
2: मैं भी आपको बहुत प्यार करती
1: हूँ दैट्स सो स्वीट ऑफ यू
0: सो स्वीट इज दैट
1: अच्छा भाई ये बता दें जल्दी से कि अमिता या मैं
0: देखो जरा
2: दोनों
0: ये वो वाला बच्चा है नहीं अभी हम टॉस कर रहे हैं ये हुआ टॉस
1: पहले अमिता चले अमिता
0: अच्छा ठीक है पहले मैं आपको टंग ट्विस्टर देती हूँ
1: बचत हो गई इनकी
0: चलो अच्छा टंग ट्विस्टर इनको कौन सा वाला दिया जाए ओके आई एम जस्ट स्टिल थिंकिंग ओके आई गॉट इट रुहान ध्यान से सुनना आपको 6 टाइम ये बोलना है ठीक है गोल गिलहरी गमले के पास गई ओके ओके लिसन केयरफुली ओके गोल गिलहरी गमले के पास गई डिड यू गेट इट
2: गोल
0: हाँ
2: गोल गमले
1: गिलहरी
0: के पास गई नहीं नहीं नहीं नहीं ओके रुहान रुहान स्टॉप ओके डियर आई विल गिव यू अनदर वन मे बी इट विल बी इजी फॉर यू ओके बिल्लू बोला बबलू से बबलू बोला बिल्लू से अच्छा ठीक है नाम से हम बात करेंगे लेकिन पहले आप ये पूरा बोल के बताओ हमको बिल्लू बोला बबलू से बबलू बोला बिल्लू से
2: क्या
1: बिल्लू बोला बबलू से बबलू बोला बिल्लू से
2: बिल्लू बोला बबलू से
1: भालू हो गया भालू हो गया हो गया भालू भालू हो गया दो में ये बिल्लू घर पे भालू क्यों बना देता है बेचारा कोई प्यार नहीं करता बिल्लू से
0: बट इट्स वेरी नाइस आपने अच्छा ट्राई किया सो गुड वन
1: ये अनम की वजह से डिस्ट्रैक्शन हुआ है ना रुहान
0: हमारी अनम से भी बात करें बट बिफोर यू लीव आप हमें कुछ मैसेज देना चाहेंगी
2: नेवर फॉरगेट टू कॉल यू दैट्स
1: अ स्वीट
0: लवली
1: एंड नेवर से बिल्लू भालू
0: ओके सो यस अनम से हमारी बात कराएं
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: ओ भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम।
1: एनर्जी आई अब
0: दोनों साथ में आ गए। सो अनम

0: हमारी रूहान से भी बड़ी मजे की बातें हुई हैं. आपको काफी मिस किया. अभी आप आई हैं, कहाँ थी, कहाँ गुम हो गई थी?
1: क्लास में लंच बॉक्स भूल गए थे. बेटा शुक्र करो लंच बॉक्स के बगैर घर नहीं चले गए, नहीं तो अम्मा का सुपर लिटर काफी था.
0: मुझे पड़ा कल, मैं भूल गई थी. मैं भूल गई थी अपना टिफिन, पता है अनम, ऑफिस में ही भूल के चले गई थी इतने बड़े होने के बाद भी. तो फिर घर पे
1: खूब सारी डांट पीटी
0: जो है उन्होंने कहा कि कहाँ टिफिन कहाँ है,
1: खूब सारी डांट पीटी.
0: ऐसा आज बिना टिफिन के आई हूँ मैं, पता है. ओके अनम, सो टेल अस समथिंग अबाउट योर डे. किस तरह से आज का दिन गुजरा आपका?
2: अच्छा,
1: लंच बॉक्स के बगैर
2: नॉर्मल डे.
1: ओके अनम, आज थकी थकी लग रही हैं. भाग कर आई है तभी. मैंने कहा ना आज कुछ कुछ एनर्जी का लेवल कुछ फ्लक्चुएटिंग है.
0: हैव सम वाटर अनम, यू विल फील बेटर. यस.
1: अच्छा भाई ये बताएं कि हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ. एक तो होती है ना फिजिकल स्ट्रेंथ, एक होती है मेंटल स्ट्रेंथ. मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है लाइफ में बहुत सारी जगह, यानी कि जब आपको एंगर इश्यूज हों तब आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, आप काइंड रहते हो लोगों के साथ, आप जेंटल रहते हो, आप जो है हम्बल रहते हो. तो एट मोमेंट्स व्हेन यू आर फीलिंग मेंटली एग्जॉस्टेड और देर आर पीपल हु आर बुलिंग यू या तंग हो रहे हो आप किसी चीज़ से, हाउ डू यू मेंटली स्ट्रेंथन योर सेल्फ? अच्छा, टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू कैन गिव एन एग्जाम्पल, अ गुड एग्जाम्पल कि हाँ भाई ऐसा एक सिनेरियो हुआ था जिसमें मैंने ऐसे बिहेव किया एंड देन द रिजल्ट वॉज गुड. कभी हुआ ऐसा?
2: हाँ, जस्ट रिसेंटली हमारे बुलेटिन बोर्ड बना रहे थे हम, तो फाइट ब्रोक आउट ऑन ओवर डू विच वर्क.
0: अनम आपकी ना आवाज थोड़ी सी चले गई बीच में.
1: वी क्या बोर्ड बना रहे थे,
0: बोर्ड
1: तक
0: हमें ढंग से सुनाई दिया, बताएं.
2: लड़ाई शुरू हो गई थी.
1: अच्छा,
2: ये बना दो, मैं वो बना दो.
0: फिर
2: एवरीवन वाज फाइटिंग ऑन व्हिच पार्ट दे वुड
1: डू. ओके,
2: लीडर
1: थी तो शी हेल्प. अच्छा इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस.
0: या That's a good one.
1: I'm so happy to hear that your friend helped you out to stay calm.
0: Mm-hmm.
1: That's why it's said ki bhai dost jo hai na wo bahut dekhbhal ke banao. You should always choose the right people to be your friends. And
0: absolutely.
1: I'm so proud of both of you.
0: Yeah.
1: Ek to gusse mein kisi dost ki bhi baat samajh mein nahi aati, pata hai gusse mein.
0: Ek to
1: inhone suni, ha, ek to inhone suni baat aur person ke dost ne advice bhi kiya. Acha, this is very good.
0: This is actually, I should say ki jab bhi humse koi is tarah ki baat karta hai, we really want to say that you guys are lucky to have people around you. And jaise ki bhi humne jab Rohan se baat ki, she simply told us ki main try karti hu, logo ko mana karti hu ki bhai gussa mat karo, मुझे परेशान नहीं करो, लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो मैं टीचर को सीधा लेके आ जाती हूँ. एंड लुक एट यू, लाइक यू आर रियली अ ग्रोन अप गर्ल. लाइक क्या कमाल की चीज आपने, माशाल्लाह क्या कमाल का आपने.
1: लीडरशिप क्वालिटी होती है,
0: दीस आर द थिंग्स.
1: तो भाई ये तो अच्छी बात हो गई, लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये लोगों के अंदर होनी चाहिए. दिस इज टू सॉर्ट आउट थिंग्स और वो भी एडवाइस के साथ.
0: अच्छा ये बताओ इसी बात पे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ यू कंट्रोल योरसेल्फ, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज पर्टिकुलर में जब जो ट्रिगर पॉइंट है आपका कि आपको लगता है हाय हाय ये कैसे हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन आई हैव टू कंट्रोल, हाउ यू डू इट? या नम,
2: आई डोंट नो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन.
0: ओके, सो कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं है, बट डिपेंड कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? लाइक दैट.
1: डिपेंड ऑन द मूड.
2: लाइक आई डोंट नो कि ये ट्रिगर पॉइंट कैसा काउंट होता, बट
1: क्या चीज?
0: आई नो वी मिस्ड आउट यू.
2: लाइक क्लास लाइक माय ऑलवेज लाइक The bulletin board fight also started with her.

0: बुलेटिन बोर्ड
1: मैं ऐसा कह रही हूँ कोई किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ. देयर इज अ गर्ल इन योर क्लास.
2: हाँ, लाइक आई डोंट नो इफ दिस
1: देर आर सर्टेन पीपल इन एवरी ग्रुप के जो जिनको हम कहते हैं स्निचे. वी हैव अ थिंग दे डू सच स्टफ. तो वो जो ना बहुत अनकम्फर्टेबल होता है टू बी अराउंड देम एंड आई डू अग्री विद With that, सिर्फ स्कूल में नहीं होता. देखिए स्कूल जो है ना इट इज एक्चुअली सोशल ग्राउंड फॉर अस टू लर्न लाइफ. दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट जस्ट इन स्कूल, यू विल फाइंड देम एवरीवेयर इन योर लाइफ. स्कूल इज जस्ट गिविंग यू मीडियम टू लर्न.
3: Yeah, and it's an experience that you will learn. So how you deal with that? जब आप ये देखते हो, though it's still we consider it's not a major trigger point, but ये आपको परेशान कर देता है. So how you deal with it? क्या करना है ऐसा वाला है ना. ठीक है कोई नहीं, बट वी अंडरस्टूड दैट यू नो वॉट एग्जैक्टली टू डू एंड दिट्स अ वेरी गुड थिंग. बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं कि यू नो एक जेंटल बंदा जो भी होता है, लाइक जेंटलनेस जो एक चीज होती है उसमें अक्सर लोग जो है ना उसको वीकनेस समझते हैं, बट यू गाइज आर रियली डीलिंग इट. इट्स अमेजिंग.
1: अच्छा वेरी गुड. अच्छा चलो भाई अब एक काम करते हैं, कन्वर्सेशन को बोरिंग भी करते हैं ठीक है, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी स्कूल से थके हुए आ रहे हैं. अब एक काम करते हैं टंग ट्विस्टर खेलते हैं. क्या कहती हो नम? आई खिलकारी आई. देख जब गेम की बात करते हैं ना तो की फिर होती है सबकी.
3: चले इसी बात पे अपन गेम खेलते हैं एंड सफा आपको बड़ी मजे की चीज बताने वाली है. लाइक आपको देंगी टंग ट्विस्टर ठीक है, और टंग ट्विस्टर आपको 6 टाइम बोलना है एंड देन लेट्स सी कि कौन जीतता है कि नहीं.
1: ठीक है अनम होके चली गई.
3: अनम गायब होगी. मैंने कर रही टंग ट्विस्टर.
1: अरे भाई डरने का क्या है इसके अंदर. अच्छा चलो गोलू को घुमाते हैं ठीक है. आज गोलू बोर हो रहा है. पहले गोल गोल घूम घूम के उसने गोल गप्पे खा लिए, रख लिए, सब कुछ कर लिया, अब वो बोर हो गया है. तो अब आपने ये बोलना है गोलू गोल गोल घूमता गया गार्डन में. गोलू गोलू है ना, गोलू गोलू नहीं नहीं नहीं गोलू गोल गोल
2: गोल गोल
1: घूमता गया गार्डन में.
2: गार्डन में
1: सिंपल गोलू को गार्डन घुमा कर आते हैं.
2: गोल गोल घूमता गया गार्डन में. हाउ मेनी टाइम्स?
1: सिक्स टाइम्स. जल्दी जल्दी बोलना है. 1 2 3 गो.
2: गोलू गोल गोल घूमता गया गार्डन में. गोलू गोल गोल घूमता गया गार्डन में. गोलू गोल गोल घूमता गया गार्डन में. गोलू गोल गोल घूमता गया गार्डन में. गोलू गोल गोल घूमता गया गार्डन में. गोलू गोल गोल घूमता गया गार्डन में.
1: डार्डन में डार्डन नहीं नहीं डार्डन सिक्स वाला डार्डन हो गया था भाई. वो गार्डन से डार्डन हो गया था.
3: बट आपने 5 का स्कोर कर लिया. दैट इज
1: आखिरी वर्ड में भाई डार्डन.
3: हम मतलब बिल्कुल हमारी सांसें रुक गई थी कि इसने तो 6 तक पहुंच ही गई है. मतलब अनम यार
1: डार्डन,
3: बट वो गार्डन का डार्डन हो गया. बट यू रियली डिड अ गुड जॉब.
1: डार्डन डार्डन हो गया, 5 का स्कोर हो गया और गोलू को गोल गोल घूमते हुए डार्डन पहुंचा ही दिया हमने. अब गोलू वीकेंड पे भी डार्डन घूमने जाएगा. चलें जी अनम, थोड़ी सी मुस्कुराहट आई चेहरे पर, एनर्जी वापस आई, रिवाइव हुई
2: जी.
1: अभी जो आधी बज गई है, जो आधा आधा अभी होना है, वापस से रिचार्ज होना है, तो वो कब होंगे? वो खाने के बाद होंगे. ओके घर पहुंच कर. क्या हुआ? कुछ तो कहा.
2: एग्जैक्टली.
1: चले भाई जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी? जी क्या मैसेज है?
2: टीचर
1: का लेक्चर बोरिंग होता है, लेकिन
3: मतलब जिंदगी की सीख लेनी है तो भले ही बोरिंग फील हो लेकिन आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है.
1: अगर बोर हो रहे होते हो तो आके हमसे भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करो ना. बोरियत हमारे साथ शेयर कर लिया करो. हम सुन लेंगे लेक्चर. चले जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, घर पहुंचें और खाना वाना खाएं और रिचार्ज हो जाएं. ठीक है अल्लाह हाफिज.
3: अल्लाह हाफिज. क्या बात है. कोई और भी हमारे साथ जुड़ गया, चलिए इसी बात पे उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी कौन है हमारे साथ?
2: ईशान।
1: ईशान वेयर हैव यू बीन? मैंने सोचा लंदन वंदन चले गए, छोड़ छाड़ के हमें। वेयर डिड यू गो?
3: नहीं, ईशान के सबसे बेस्ट पार्ट है ना, ईशान जोर जोर से हेलो ईशान हमसे बात करते हैं, बालकनी वगैरह में छत में तो नहीं चढ़ के बात कर रहे हो हेलो कार में ओके ईशान, तो स्कूल से घर जा रहे हैं?
2: हाँ
3: ओके तो भाई ईशान बता तो दो, आज स्कूल में क्या किया?
2: आज मेरी टेस्ट था।
1: टेस्ट था? ओह नाइस। अच्छा फिर टेस्ट कैसा हुआ?
2: बहुत इजी था।
1: तो किस सब्जेक्ट का था जो इतना इजी था?
2: कंप्यूटर।
1: भाई कंप्यूटर इजी था?
3: कंप्यूटर भैया आजकल बच्चों को बहुत मजा आता है, तो कंप्यूटर में सबसे मजे की चीज क्या लगती है आपको?
2: कंप्यूटर वर्क करना।
1: कंप्यूटर का वर्क करना
3: मुझे लगा माउस चलाना बोलेंगे
1: अच्छा ये बताएं कि प्रैक्टिकल था कंप्यूटर का या वो जो एक रिटन एग्जाम होता है? प्रॉपर
2: एग्जाम होता है?
1: प्रॉपर एग्जाम होता है, रिटन वाला था, प्रैक्टिकल नहीं था। ओके ओके
3: मैं तो इवन वाइवा भी होता था इसका पता है। अच्छा तो कैसे अच्छा गया ना का आपका कंप्यूटर का एग्जाम?
2: बहुत अच्छा गया था।
1: मजा आया माशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह,
3: बहुत सारे मार्क्स मिलने वाले हैं।
1: अच्छा भाई ये बताओ कि अगर एग्जाम खुदा ना खास्ता सही नहीं होता तो गुस्सा वुस्सा आता? नहीं आता।
3: अच्छा तो क्या करते जब ऐसे कोई न्यूज मिलती है अरे यार आपका नंबर अच्छे नहीं आया तो क्या करते?
1: मैं तो रोना शुरू कर देती हूँ
3: अच्छा ये तो बताओ कि ये जो आप करते हो ना कि मैं वापस से एग्जाम देता, मैं फिर ट्राई करता, ये आपको किसी ने सिखाया या खुद से सीख लिया?
1: सच बताओ, किसी से तो इंस्पायर हुए होगे?
3: टीचर से, मम्मा से या बाबा से, किससे?
2: मैंने अभी
3: हाँ जी
2: बोला था।
1: क्या बोला था? किसको क्या बोला था?
3: ईशान किधर चले गए?
1: इनका साबुन स्लो चल रहा है। अच्छा एक बात बताएं, यू विल प्ले रिडल्स? Oh no, riddles नहीं, sorry, tongue twister.
2: Yes.
1: चले भाई, ईशान, you have to first select tongue twister मैं दूँ या अमिता दे? सफा या अमिता?
3: वो भी सोच रहा है। कोई भी टेंशन मत लो, कोई भी नाम ले सकते हो।
1: एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई।
3: Yeah.
1: अमिता या सफा?
2: हाँ?
3: तुम सफा, सफा you are तुम।
1: देखो मैं तुम अच्छा मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है?
2: सफा।
1: ओह माय गॉड, ही रिमेम्बर्स।
3: चलो वेरी गुड।
1: चलो भाई 7 years old ईशान है हमारे पास और देखते हैं ईशान को ना हमने कौन से टंग ट्विस्टर देने। ईशान अच्छा लेवल बता दे, मीडियम, इजी या एडवांस लेवल?
2: इजी।
1: इजी। चलो गुल्लू गोल गोल घूमकर गिर गया, क्या कहते हैं? सही है। गुल्लू गोल गोल घूम कर गिर गया। हाँ, यू हैव टू से दिस 6 times, ओके एंड फास्ट स्पीड से। चलो हाँ
3: ओके ईशान बोले,
1: 1 2 3 गो। तालियां भाई, तालियां बजा दो। यू नो व्हाट द थिंग इज,
3: हाउ स्वीट वाज दैट।
1: अच्छा ईशान टेल मी वन थिंग, आई एम वेरी क्यूरियस, व्हाट इज योर मदर टंग?
2: मराठी।
1: Oh boy, mashallah, mashallah. You know, that is exactly what I was wondering. it's not your mother tongue, but he tries his level best to talk in Hindi and Urdu.
3: Yeah.
1: This is very good. Bhai, hats off to your confidence.
3: Ek bar aur taaliyan ho jaye.

0: तालियां। I appreciate this. अच्छा, that is why when you're trying to talk in Urdu, आप जो ना थोड़ा सा वो क्या करते हैं, ये थोड़ा फंसते हैं थोड़ा सा उर्दू बात करने में, but I really appreciate this.
1: एक तो चीज है, हमने यहाँ पर गुल्लू को गोल गोल घुमाया था, बट देन द वे ही स्पोक, रियली
0: वेरी गुड,
1: इट्स वेरी नाइस. ये नया टंग ट्विस्टर बन गया हमारे पास.
0: गुल्लू को गिरा दी, आज तक गुल्लू गिर गया.
1: ठीक है, तो आपने मतलब सिक्स का पूरा स्कोर किया है. ओके, एक वर्ड आपने हटा दिया, लेकिन हमने उसको नहीं माना, इट्स फाइन, मान लिया कि हटा दो इसको.
0: फिर उन्होंने पूरा पैटर्न से चले ना, सिक्स टाइम वो वर्ड उन्होंने गुम नहीं किया, सो गुड हो गया. ईशान, यू आर द टॉप स्कोरर फॉर टूडे एज ऑफ नाउ. Till now, you're the top scorer for today. जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको? सोच रहे
1: हैं, सोच के बताएंगे.
0: अच्छा, इनको तो दिमाग में रिफ्रेश करना पड़ता होगा पूरे सेंटेंस को.
1: बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, माशाल्लाह. They can do, they can learn so many languages. इतना ही नहीं है. अच्छा बताएं तो कहाँ खो गए ईशान? ईशान, आर यू देयर?
0: अभी थोड़ी बार जवाब आएगा, इनका साउंड स्लो है. ईशान हो के चले गए, आज कोई मैसेज नहीं
2: है.
0: मैंने कहा ना, ये इनके दिमाग में चल रहा होगा, अरेंजमेंट चल रहा होगा इनके दिमाग में. अच्छा भाई, जल्दी से बता दें, नेक्स्ट कॉलर भी है हमारे पास.
2: Never give up.
0: This is a very right thing. चलो भाई, never give up. और लैंग्वेजेस लर्न करते रहो, इंशाल्लाह यू विल अचीव समथिंग.
1: और हमारे ईशान का जैसा कॉन्फिडेंस सबके पास होना चाहिए.
0: यस,
1: सो ईशान, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.

0: Kwentos lang.
1: Oh my God, Princess, how are you?
0: I'm fine.
1: How about you? I'm fine. Okay, tell me. Our health is how? How are you? How are you? मैं देखिए मैं अपने दोस्तों को याद रखती हूँ
2: और अमायरा की बात है ना. हाँ हाँ अमायरा
0: समझ गई
1: देखिए हम जो है ना अच्छे अच्छे दोस्त जो होते हैं ना आप भूल सकती हैं अपने अच्छे दोस्तों को.
0: नहीं
1: तो फिर मैं कैसे भूलूंगी.
2: और अमायरा तो हमारी डॉल है. हमने तो पहले से ही बोला है कि व्हेनेवर वी स्पीक टू यू तो हमें ऐसा लगता है कि छोटी सी डॉल सामने आ गई है.
1: She's different, mashallah. She's her voice is very unique. आपकी right. unique voice है. आपको हम आवाज से पकड़ लेते हैं.
2: So, हमारा इतनी प्यारी अब माशाल्लाह से. आप बताएं आज का दिन कैसा गुजरा आपका अभी तक.
1: अच्छा अमायरा जो ना जो टॉपिक आज हम बात कर रहे हैं ना आई विल हाईलाइट इट कि अमायरा इज गोइंग टू बी आई वुड से द बेस्ट इंस्पायरिंग पर्सन फॉर दिस टॉपिक. अमायरा आपने मुझे बताया था कि आपको एक कंडीशन है ठीक एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेंथ. सो आई बिलीव दैट यू आर द बेस्ट इंस्पायरेशनल स्टोरी अराउंड एट दिस टॉपिक. सो टेल मी अमायरा कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करती हैं. बिकॉज होता ये है देर आर टाइम्स वेन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड वेन वी गेट एंग्री वेन वी अक्सर औकात ऐसा होता है कि इवन फॉर मी मुझे ये प्रॉब्लम है मायरा दैट आई स्टार्ट क्राइंग एट टाइम्स वेन आई कैन नॉट डू स्टफ अकॉर्डिंग टू माय वे. तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करते हो. सोच रही है.
2: यस
1: Let's say that you are feeling angry on something. ठीक है तो फिर आप उस एंगर को कैसे कंट्रोल करते हो. क्या करती हो.
0: कभी कोई मुझे छेड़ देता है ना बाद में थोड़ा देर शांत रहकर बाद में मैं थोड़ी देर बाद मुंह छुपा के रोने लग जाती
1: हूँ.
2: Like she takes her emotions.
1: ये तो मेरी तरह निकली. ये तो मेरी तरह निकली.
2: सब अभी exactly यही करती हैं. पहले बहुत try करती हैं control करने का.
1: बिल्कुल.
2: Yeah, क्योंकि मैं live example हूँ उनके सामने का इसलिए. So okay, so you cry it out. Then after that क्या होता है? इस process के बाद क्या होता है? Like हाँ.
0: जब भी मम्मा मुझे देख लेती है तो मुझसे क्या
1: अच्छा मम्मा से शेयर करती है ना कंसोल करती है ना मम्मा. भाई देखो लाइफ डज नॉट कम विद अ मैनुअल बट लाइफ कम्स विद अ मम्मा. सो यस इट हैपेंस. आई एम सो मतलब मैं अच्छी खासी बड़ी हूँ. हमारे और मेरी एज में बहुत ज्यादा फर्क है बट आई स्टिल रन बैक टू माई मम्मा समटाइम्स. दिस हैपेंस.
2: मम्मा एक्चुअली आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल जज नहीं करती एंड शी ऑलवेज विल गाइड यू द राइट थिंग. या
1: एंड यू नो मम्मा की जो हग्स होती है ना वार्म हग बस दैट इज एवरीथिंग. व्हाट डू यू से अमायरा. ये तो वैसे ही मम्मा की दीवानी है. मम्मा की दीवानी माय फेवरेट पर्सन से मैंने पूछा था. हाँ जी
2: हाँ क्या कह रहे हैं अमायरा. किस्मत में कहीं भी अगर गलती से फंसी आई थिंक योर मम्मा विल बी द फर्स्ट वन जो आपको हमेशा वहां से निकालेंगी.
1: मैंने मुझे बताया था इतना माशाल्लाह इतना प्राउडली यू नो हु इज माय फेवरेट पर्सन. माय मम्मा इज माय फेवरेट पर्सन. इनको तो केक भी वही पसंद है जो इनकी मम्मा को पसंद है. अभी मैं से पूछी आपका फेवरेट केक कौन सा है. कह रही नहीं मेरी मम्मा को जो पसंद है ना. मैंने कहा अरे भाई मम्मा को नहीं मुझे वही पसंद है. अच्छा अमायरा ये तो बताएं टंग ट्विस्टर खेलेंगी. चलिए भाई. अच्छा इन्होंने एक चीज तो हमें क्लियर कर दी. स्ट्रेंथ मम्मा है.
2: Yeah, strength mama है and यार emotional हो रहे हैं हम तो मतलब ठीक है. हम भी अपनी मम्मा को ना अभी शो के बाद कॉल करने वाले हैं जस्ट आपसे बात करने के बाद. एंड
1: ये बताएं कि आपको टंग ट्विस्टर कौन देगा अमिता कि मैं. बेटा फंस जाओगी. लास्ट टाइम फंस गई थी मुझे टंग ट्विस्टर. अच्छा चलें पक्का मैं.

0: पक्का दे।
1: तो भाई 8 इयर्स ओल्ड जो है ना हमारे पास अमायर 8 हैं कि 7 एंड हाफ हैं? 8 हैं भाई। चलें ये आपको देते हैं। राजू ने रंगीन रिबन रोल की
2: क्या?
1: मुझे पता था। अच्छा इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। क्या दें क्या दें? अली और अहमद आम का अचार खाते हैं। अली और अहमद
2: आम का अचार खाते हैं।
1: 1 2 3 गो।
2: अली और अहमद
1: अली और अहमद अम नहीं करते, आम का अचार खाते हैं। ओके
0: ओके, अब ध्यान से सुन लिया आपने, एक बार और रिपीट करना चाहेंगे?
2: हाँ।
1: अली और अहमद
2: अली और अहमद
1: आम का
2: अहमद आम
1: लिखना नहीं है बेटा, ना ना ना ना ना ना लिखना नहीं है हमारा। हमारा 8 आंखें हैं मेरी। मुझे दूर तक नजर आता है।
0: क्या बोल रहे हैं अमायरा?
2: अगर आप वहाँ
1: हैं। देखा, मुझे पता चल गया। अमायरा मेरी 8 आंखें हैं, मुझे दूर तक नजर आता है, बहुत दूर तक। वो जो हबल टेलीस्कोप है ना, वो देखो मेरा जो हबल टेलीस्कोप है ना, वो मैंने छुपा के रखा हुआ है, ऊपर से वो पूरा मुझे सब कुछ दिखाई देता है। लिखना नहीं है। अच्छा सुने छुपा के रखा है। अच्छा सुने अली और अहमद आम का अचार खाते हैं। ओके 1 2 3 गो।
2: अली और अहमद आम का अचार खाते हैं। अली और अहमद आम का अचार खाते हैं। अली और अहमद आम का अचार खाते हैं। अली और अहमद आम का अचार खाते हैं। अली और अहमद आम का अचार खाते हैं। अली और अहमद
1: अरे भाई,
0: भाई साहब
1: खा लिया दोनों ने, डब्बा खाली
0: आज की हमारी,
1: हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। ये सेकंड
0: विनर है जिन्होंने 6 का स्कोर पूरा किया। दैट इज सो नाइस।
1: आम का अचार अली और अहमद को खिला दिया इन्होंने। माशाल्लाह, वेरी गुड भाई,
0: ये काफी अटेंटिव बच्चा है सच में।
1: अच्छा इनकी मम्मा ने मुझे इनके बारे में बड़ी मजे की बात बताई थी। शी हैज अ फोटोग्राफिक मेमोरी।
0: She
1: does not remember things. Right. She does not has to remember things. Yeah. She just gets them. MashaAllah.
0: एक बार देख लेती हैं तो समझ में जाता है। Wow, MashaAllah,
1: MashaAllah. हाँ जी।
2: मैंने कभी मम्मा से spelling नहीं learn किया।
1: MashaAllah.
2: Classes लेती थी, मैं सुनती थी, तभी मुझे खुद से ही मुझे सारी spelling आ गई।
1: तो मुझे एक बात तो बताओ, ये जो केप है ये कहाँ छुपा के रखा हुआ है? पहनती क्यों नहीं उसे? वो जो सुपर हीरोज वाला केप होता है,
0: ये जो मैजिकल केप है ना आपका, ये क्यों नहीं पहनती हो?
1: कैसी, पता नहीं, मुझे पता ही नहीं है।
0: मम्मा से पूछना, उन्होंने कहीं छुपा के रखा होगा।
1: मम्मा ने छुपा के रखा है, ठीक है। चलिए जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे सारे बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं?
0: हाँ,
1: नाइस आइडिया।
0: नाइस आइडिया क्या मतलब? नाइस आइडिया क्या आगे मतलब? हम लोग को नाइस आइडिया लगाने दे, लगाते रहना चाहिए, आइडियाज ढूंढने चाहिए।
1: बलीच कंप्लीट योर सेंटेंस।
2: आपको एक रिडल पूछ लूं?
1: अच्छा रिडल नहीं, रिडल वाला अभी नहीं आया ना। रिडल वाला जब सीजन आएगा, जब रिडल वाला वीक आएगा तो फिर पूछ लेंगे, ठीक है? चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज अमायरा।
1: अच्छा एक मिनट हाँ जी। Oh my God, I love you too, girlie. I love you too, and we both love you a lot.
0: Yeah, we both love you a lot. So have a really, really good day. और फिर आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, okay?
1: चलें जी, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। Oh dear, so sweet.
1: Princess. और हम बस एक और कॉलर हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है।
0: Assalamualaikum.
2: वालेकुम
1: असलम जी, कौन है हमारे साथ?
2: मेरी
1: आवाज तो आपकी पहचान नहीं। देखिए मैं तो पहचान लेती हूँ। अनीता से पूछूंगी,
0: है शफक आई है क्या हमारे साथ?
2: यस।
0: हाँ शफक फाइनली, चलो गैसिंग सही होगी, मेरे 10 में से 10 हो गए नंबर। कैसी हो शफक, ये तो बता दो।
1: ये बोल रही है अरे भाई सुबह से क्यों कॉल कर रही थी, हम तो अभी आए 1:30 पर।
2: मतलब
1: हाय बेचारी। अच्छा चले, वो दूसरे बच्चे भी थे ना तो सबसे बातें शातें हो रही थी ना, अब तो आपकी कॉल हमने उठा ली अल्हम्दुलिल्लाह।
0: से जुड़ चुके हैं शफक, तो अभी जल्दी से बताओ अभी तक का दिन कैसा गुजरा, स्कूल में क्या मस्ती की?
2: अच्छा गुजरा, लेकिन हाँ। आज
1: अरे भाई टीचर ने कहा जाते जाते तोहफे लेकर जाओ।
0: अरे बाप रे,
1: टीचर ने ट्रेन चला दी जाते जाते।
0: तो जब ये
1: क्लास से कोई बाहर नहीं जाएगा। हाँ अच्छा, ये शफा की करती टीचर हमारे साथ भी करती थी, जो लास्ट पीरियड वाली टीचर होती थी ना, उनकी धमकी यही होती थी, वो कहती जब तक मैंने जो काम लिखा है या जब तक टेस्ट याद नहीं करोगे तब तक क्लास से कोई बाहर नहीं जाएगा।
0: यही तो प्रेशर दिया जाता था ताकि आप जल्दी जल्दी काम करो। तो फिर आपने क्या किया, काम कर लिया फिर या पेंडिंग हो गया काम? वेरी गुड भैया, कमाल बच्चा है ये। चलो चलो फिर बढ़िया। तो अभी तो खैर अब स्कूल की बातें अब हो गई, अब स्कूल से आप आ गई हैं, कुछ खाया पिया कि नहीं ये बताओ?
2: What?
0: कुछ खाया कि नहीं खाया?
2: खाया।
0: क्या खा लिया?
2: लंच में मम्मा ने शामी कबाब दिया था।
0: माशाल्लाह।
1: अब मुझे मेरी मम्मा याद आ रही है, मुझे शामी कबाब याद आ गए, अब मुझे शामी कबाब खाना है।
0: मेरे लिए पता है मेरी एक बार फ्रेंड ने बनाए थे शामी कबाब, मतलब नाम देकर, पर वो वेज वाले बना दिए थे उन्होंने। क्योंकि एनीवे सो यस, तो फिर मजा आया खाकर, एनर्जी आई?
2: यस।
0: चलो बहुत शानदार बात है। तो शफक अब तो आप हमें सुन ही रही हैं, तो आपने सुना ही होगा कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की। तो कभी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई जब गुस्सा बहुत आया लेकिन फिर आपने कंट्रोल किया?
2: Yes, एक बार हुआ था। हाँ? हमारी बैग ना बाहर थी, मैं वन में थी तो मैं मॉनिटर थी।
0: ओके।
2: और पक्षमा से मेरी दो दोस्त आई थी लेकिन यहाँ पर वो मेरी दुश्मन बन गई थी। वन की मॉनिटर तो एक बार मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। मैंने ब्रेक में उसको गला दबाने स्टार्ट कर दिया। हमारी स्कूल में ना
1: बेटा बेटा ये
2: स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी उसका नाम अग्रेश है, उसने मुझे रोक लिया, उसने मुझे बोल दिया अपने आप को मरवाएगी बाबा से, चुप कर लिया चल ले क्लास
1: में। बेटा इतना इतना ज्यादा गुस्सा
0: तो वायलेंट हो गए काफी। हाँ उसको बचा लिया, गला दबाते दबाते रुक गई। अच्छा आपकी दोस्त ने रोक दिया, उसके बाद क्या हुआ? वो फ्रेंड वो आपसे बात कर रही है आजकल की नहीं करती?
1: कहाँ ही रही होगी वो
2: फ्रेंड।
0: ओह नाराजगी अभी तक चल रही है।
1: पता है स्ट्रेंथ किसमें होती है? लोगों को फॉरगिव करने में स्ट्रेंथ होती है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ ठीक है, आप जरा मुझे बताएं कि बीइंग जेंटल इज स्ट्रेंथ या बीइंग एंग्री इज स्ट्रेंथ? तो इस सिचुएशन में जब आपको पता है कि कोई आपको बिला वजह चिढ़ा रहा है, बिल्ला वजह मतलब उसको तो मजा ही आएगा ना आपको चिढ़ा, उसका टारगेट पता है क्या है? उसका टारगेट ये है कि आपको हाइपर करना है, उसने आपको गैसलाइट करना है। गैसलाइट का मतलब पता है क्या होता है? किसी को बस ऐसे पिन करते रहना किसी बात के ऊपर ताकि वो फटे और वो लावा की तरह ना यूं शूट अप हो जाए,
0: गुस्सा हो जाए। हाँ, चिल्लाए चीखे इस तरह की चीजें,
1: वर्स्ट बिहेवियर पर आ जाए। तो जब आपको सामने वाला, अब मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, अगर आपको पता है कि शफक आपको सामने से कोई चिढ़ा रहा है, गैसलाइट कर रहा है, तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन?
2: गुस्सा।

0: अच्छा ये ऑटोमेटिक है जो आयरन नेचुरली है, ओके ठीक है ओके.
1: लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हो, क्या करना चाहिए शफक को?
2: कि अगर मेरे क्लास में तो मेरी टीचर को बताना, क्योंकि हमारे क्लास में पूरे स्कूल में फाइटिंग अलाउड नहीं है. अगर वो दूसरी क्लास से हो तो जाके उसकी क्लास टीचर को बताना.
1: एग्जैक्टली,
0: दिस इज समथिंग वेरी नाइस.
1: नो टू बुलिंग, ये एक किस्म के बुलिंग में आता है कि आपको कोई टीज करे, ओ तुम तो पीछे रह गई, तुम तो ये हो गई, तुम तो वो हो गई. कोई भी आपको टीज कर रहा है ना, उसका सबसे, अब देखो आप लोग भी छोटे हो, यू कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग, ओके. तो तरीकेकार ही होता है किसी बड़े के पास जाओ, और जैसे टीचर हैं, आपने बिल्कुल सही कहा. सो रादर देन हैविंग अ कैट फाइट इन द क्लास, यू शुड हैव गॉन टू टीचर एंड यू शुड हैव टोल्ड द टीचर, टीचर ये देखो ये जो है ना ये अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ, फिर मैं अपने मम्मा पापा को शिकायत करूंगी या कुछ करूंगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा. इससे बोलें बिहेव, या मुझसे दूर रहे या अपना एटीट्यूड सही करे.
0: तो ये करने से इजी हो जाएगा, फिर हमारी शफक को किसी का गला नहीं दबाना पड़ेगा. ठीक है शफक. हाँ मैंने शफक ने जैसे बताना शुरू किया ना, मैंने पूरी पिक्चर देखी, मैंने शफक यहाँ पर धूम धड़ाका कर रही है. बट सीरियसली नाउ यू गॉट द आंसर शफक.
2: यस.
1: अच्छा मुश्किल होता है, आई विल से दिस इज अपना गुस्सा कंट्रोल करना ना, वो बहुत मुश्किल होता है. लेकिन जो इसे कंट्रोल कर जाए ना, जो इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर ले अपनी एंगर इश्यूज के ऊपर, तो वो लाइफ में आगे चल के, स्कूल तो पीछे रह जाएगा, ये चिढ़ाने बढ़ाने वाले लोग सारे पीछे रह जाएंगे. लाइफ में आपको दर्जनों लोग ऐसे मिलेंगे आगे चल के भी, जो आपको ट्रिगर करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपको
0: चिढ़ाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे?
1: वी फोकस ऑन द सोल्यूशन, वी डोंट फोकस ऑन गेटिंग एंग्री. अच्छा भाई ये ऐसा कर रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि गुस्सा जो है वो सोल्यूशन की एबिलिटी खा जाता है.
0: So, and what if जब आप लोग की फाइट हो रही थी तो अगर उसे हर्ट हो जाता and you know, फिर ज्यादा मसले हो सकते थे. ठीक है. सो शफक आई एम वेरी सर्टेन कि अभी वो इस चीज जान चुकी है कि नहीं, कि वायलेंट होने के नहीं है, बस साइलेंट होना है. क्यों शफक?
1: ऐसे वाला नहीं होना, बताओ भाई किसी बड़े को बताओ जो उसका सोल्यूशन निकाले.
0: ऑब्वियसली सोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट. सो अभी के लिए हम थोड़ा सा और लाइट मोड पे आते हैं. ये बताओ टंग ट्विस्टर खेलने को तैयार हो?
2: मुझे गोलू को
1: गिराना नहीं है. नहीं गोलू नहीं गिराएंगे, गोलू को दूर दूर.
0: ये बताए हमारी शफक कितने साल की हो गई अभी? टेन की हो जाएंगी हमारी शफक.
1: कब होंगी?
0: सेप्टेम्बर में.
1: माशाल्लाह. अरे सितंबर में तो मेरे नीस की भी बर्थडे आती है या 3rd September. ओके माशाल्लाह. अच्छा भाई अमिता बोलेंगी आपको कि आप मैं क्या अमिता.
0: ओह डियर. बताओ शफक, बताओ आपके साथ गेम खेलने वाले हम. करते करते मत निकल जाना शफक. हाँ शफक.
2: आप?
1: मैं. आप कौन? अमिता के सफा?
0: या
2: सफा.
0: बस घुमाना नहीं, ठीक है?
1: अच्छा ठीक है, घुमाऊंगी नहीं, ठीक है. काला कौवा कान काटा, ठीक है. नहीं गोलू तो मैंने
2: कान काटा.
1: हाँ मैंने पता है क्या देना था आपको, मैंने देना था गुल्लू गोल गप्पे गिनकर गैलरी में गया.
0: देखो मैंने,
1: लेकिन मैंने नहीं दिया, मैंने कहा इन्होंने गुल्लू नहीं चाहिए इनको,
0: या
1: तो फिर मैंने छोटा कर दिया. ठीक है. काला कौवा कान काटा, क्या बताएं एक दफा?
2: काला कौवा कान काटा.
1: हाँ तो 6 times रिपीट करना जल्दी जल्दी. ओके
2: ओके
1: 1 2 3 गो.
2: काला कौवा कान काटा, काला कौवा कान काटा, काला कौवा कान काटा, काला कौवा कान काटा, काला कौवा कान काटा, काला कौवा कान काटा.
1: अरे भाई स्पीड में चलिए, सेट स्पीड में किया सही.
0: ऑल राइट शफक, यू डिड इट.
1: गुड हो गया भाई.
0: एंड यू आर द 3rd विनर. कमाल है आज, बच्चा पार्टी बहुत ही तेजी से चल रहे हैं.
1: अच्छा एक मजे की बात बताऊं शफक, टंग ट्विस्टर्स अगर शॉर्ट भी होते ना तो उसके अंदर भी लोग फंबल कर जाते हैं, ज्यादा शॉर्ट हो ना तो हाँ, लोग फंबल कर जाते हैं.
0: ये होता है, बट द थिंग इज जितने बार आप ये टंग ट्विस्टर करते हो ना, पहली चीज आप फोकस आपका बढ़ जाता है, हंसी आपको बहुत तेज आती है, एंड यू आर हैप्पी एक्चुअली, एंड 3rd जुबान साफ हो जाती है.
1: ठीक है तो भाई जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज दे दें सबको.
2: mm-hmm.
1: नो कैट फाइट्स ओके
0: हमने दे दिया आपको ये मैसेज अब इसे आप अमल कर लेना ठीक है
1: अपना ढेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़
0: अल्लाह
2: हाफिज़
0: क्या बात है कमाल कमाल के बच्चे हैं सभा मतलब
1: बच्चा पार्टी याद रखें कि लड़ाई झगड़े से चीजें सॉल्व नहीं होती अगर सॉल्यूशन निकालना है ना तो साइड पे सुकून से बैठना पड़ता है और उस बैठने के लिए अपने गुस्से को पीना पड़ता है
0: हाँ।
1: दुनिया में एक ही चीज है हमें जो कहा गया है कि भाई वो एक ऐसी चीज जिसके बारे में भी कहा गया कि वो हराम है लेकिन उसे पीना जायज है वो पता है क्या चीज है आपका गुस्सा
0: ओहो
1: तो भाई गुस्से को न्यूट्रल करें क्योंकि ये आपको सोचने समझने की आपकी सलाहियत खा जाता है और गुस्से में अक्सर औकात वी बिकम वायलेंट एंड थिंग्स गो रॉन्ग
0: एब्सोल्युटली डिसीजन सही नहीं होते हैं सो भी देखो हमने काफी हम हमेशा बहुत सारी बातें करते हैं एंड वी नो दैट कि जब भी गुस्सा आए सो टेक अ ब्रेक और वो ब्रेक करने के लिए आपको उस जगह से दूर जाना पड़े पानी पीना पड़े दस तक गिनती गिननी पड़े एनीथिंग जस्ट डू इट और अभी के लिए मैं कहूँगी बच्चा पार्टी को कि नंबर है हमारा 4434377 इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं आप सुन रहे हैं द सुपर किड शो विद सुपर सफा और ए फॉर अमिता Stay tuned.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए।

0: ले जाएंगे किताबों के उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
1: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
2: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
1: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
3: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट। हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं।
3: इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं
5: द सुपर किड शो।

0: सो यस सुपर किड्स वेलकम है आप सभी का एफएम 107 पर. मैं हूं आपके फॉर अमिता और हमारी सुपर सफा. और आज बातें हो रही है भाई जेंटलनेस की. क्या
1: भाई
0: बात है.
1: देखो जेंटल का जब वर्ड आता है ना तो मेरे जैसे लोग लोगों को एक चीज सीखनी पड़ती है.
0: क्या
1: जेंटल होना.
0: जेंटल होना.
1: अच्छा भाई देखिए हमारे पास मैसेजेस भी हैं. लंबे चौड़े मैसेज बच्चों ने भेजे मेरे खास अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तो हम आज आपसे ये सवाल कर रहे हैं बच्चा पार्टी. इट्स वेरी सिंपल. देखो फॉर यू Being gentle is a strength. What do you think? Is it a strength? या एक weakness है? अगर अपने experiences share करो ना.
0: हाँ तो अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो 666-22-107 इज़ आर नंबर. आप हमें उस पर मैसेज कर सकते हैं 666-22-107. और अगर आपको फोन मिलाना है तो सीधा आप हमें कॉल करें.

0: 443-443-777 पर एंड शेयर विद अस द सिचुएशंस कि जिसमें यू नो आपको कभी गुस्सा आया
1: एंड देन
0: यू नो सडनली यू फेल्ट कि चलो यार ये सिचुएशन कुछ भी हो हमको जेंटल होना है हमको काम डाउन होना है हमको अच्छे से बिहेव करना है सो शेयर थिंग्स विद अस एंड वी हैव सम मैसेजेस
1: आयशा का मुझे मैसेज आया हुआ है आयशा क्या कह रही है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आयशा है और मेरी एज 9 years की है ठीक है
0: ओके
1: क्या कह रही है मुझे लगता है जेंटल होना स्ट्रेंथ होती है
0: ओके दैट्स स्वीट एक्चुअली शी नोज इट ओके
1: और इन्होंने एक आगे अपना किस्सा भी लिखा है बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है मेरी क्लास में एक न्यू लड़की आई थी ओके स्टूडेंट नहीं क्या लिखा हुआ है एक दफा मेरी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट रो रही थी क्योंकि उसका लंच गिर गया था ओके ओके
0: ठीक है
1: सब बच्चे उसके ऊपर हंस रहे थे लेकिन मैंने उसको अपना सैंडविच उसके साथ अपना सैंडविच शेयर किया ओके उस दिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई मुझे समझ आया कि जेंटलनेस और काइंडनेस लोगों का दिल जीतती है वेरी गुड
0: दैट इज रियली रियली नाइस और मैंने एक फैक्ट पढ़ा था सफा जिसमें ये कहा गया था कि जब आप मतलब ऑब्वियसली जब आप जेंटल होते हो किसी के साथ तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है स्पेशली जो ये बच्चा पार्टी है ना तो एक एवरेज जब निकाला गया तो ये जो बच्चे होते हैं दिन भर में पता है कम से कम 400 टाइम्स दे कैन स्माइल मोस्टली दे स्माइल अगर सब कुछ अच्छा हो तो
1: वेरी गुड
0: एंड यू नो एंड इट इफ इट इज कम्पेयर टू द एडल्ट्स तो हम सिर्फ 20 टाइम्स उतना मुस्कुराते हैं
1: मैं भी बोलने वाली थी ये चीज मुझे पता थी
0: जस्ट इमेजिन कि अगर आप
1: खड़ूस हो जाते हैं
0: इफ यू आर जस्ट जेंटल टू समबडी आप अच्छे से एक्ट अच्छा कर रहे हो किसी को ट्रीट अच्छा कर रहे हो तो यू ऑल्सो स्माइल एंड दी अदर लाइक कंटेजियस होता है एंड दे ऑल्सो स्माइल सो इमेजिन कीजिए कि अगर आप स्माइल करते रहते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल
1: अच्छा एक और मैसेज है हमारे पास और ये कौन है ये है हमजा ये कौन से वाले हमजा है नहीं नहीं ये वो वाले हमजा नहीं है हमारे वाले हमजा मोहम्मद चौधरी वाले हमजा नहीं है
0: ओके
1: तो भाई इन्होंने क्या लिखा है अरे भाई मैसेज चला गया हमजा सॉरी आपका मैसेज कहाँ गया हाँ ये रहा रहा रहा रहा। क्या कह रहे हैं मैं हमजा हूँ हेलो फ्रेंड्स मैं हमजा हूँ
0: ओके हेलो हेलो हेलो हमजा
1: अच्छा आगे भी लिखा है फॉर मी बीइंग जेंटल होना बिल्कुल वीकनेस नहीं है और आगे कुछ उन्होंने लिखा है कि एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे छोटे भाई ने मेरा टॉय तोड़ दिया मुझे बहुत गुस्सा आया था लेकिन मैंने जो है चिल्लाने की जगह उसको प्यार से समझाया कि मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाया करो उसने मुझे सॉरी बोला और फिर हम दोनों ने मिलकर टॉय को रिपेयर किया
0: अरे भाई कितना प्यारा भाई है मतलब ये क्या मैच्योरिटी है
1: हाँ कह रहे उस दिन मैंने सॉफ्टनेस चूज की
0: That is nice because ये छोटे भाई बहन होते ना यू
1: चिल्लम चिल्ली हो जाती है
0: मतलब ओके सफा
1: भी कौन से बड़े हैं छोटे ही होंगे
0: नहीं वो भी छोटे हैं बट इट्स लाइक जैसे मैं अपनी बात करूं मैं खुद भी छोटी और मेरी बहन भी छोटी थी मतलब ठीक है बट वो मुझसे छोटी थी एंड शायद अगर मेरी उम्र का कोई बच्चा होता मैं अपने बचपन की बात कर रही हूं सो मैं शायद नाराज हो जाती गुस्सा हो जाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरी चीजें कोई टच ना करे
1: सही सही
0: बट शी वॉज दी ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड मैं बता सकती हूँ टिल डेट अगर किसी चीज़ की मतलब कोई भी चीज़ मेरी है जिसको एक्सेस मुझे देना है तो जिसका मुझे एक्सेस देना है शी इज़ दी ओनली वन और वो करती थी ऐसा नहीं छोटी है तो कुछ चीज़ें गिर जाएंगी टूट जाएंगी बट आई डोंट नो दिस समथिंग यू नो कि वो प्यार होता है ना छोटे बच्चों से अपने से छोटों से सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग दिस ऑल्सो शोज मेच्योरिटी कि आपने कैसे अपने से छोटों को ट्रीट किया
1: अच्छा ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो बड़े बहन भाई होते हैं सबसे बड़ा जो होता है अब आपने ऐसी बात कर दी इमोशनल कर दिया मुझे अब मुझे अपनी बड़ी बहन की तारीफ करनी पड़ेगी शुक्र है वो यहाँ पर नहीं है जो सुन नहीं सकती
0: बेशक करें बताएं
1: यू नो माय सिस्टर माय एल्डर सिस्टर शी हैज ऑलवेज बीन रोल मॉडल फॉर मी आई ऑलवेज लुक अप टू हर एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर इट क्योंकि वो हम सब में से माशाल्लाह हम लोग वी आर टोटल 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सो वो ना वो सब में वो सारे बहन भाई का ख्याल करती है वो आज भी ऐसी है लाइक आई नो ऑब्वियसली मॉम्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द फैमिली लेकिन पता नहीं क्या हिसाब है जब भी किसी बहन भाई को कोई मसला होगा ना अम्मा से पहले
0: उनके पास जाएगा
1: उसके पास भागेंगे सब फोन उसको
0: वो
1: पहले
0: पता है क्योंकि ना जो बड़ी सिस्टर्स होती है वो हमेशा मम की जगह ले लेती है मतलब मम तो नहीं बन सकती
1: लाइक
0: दैट या फिर
1: तो जो है ना वो हमेशा बेचारी यही करती थी उसके कपड़े मैं छप्पड़ कर लेती थी उसके जूते मुझे पूरे आ जाते थे इत्तफाक ये था कि हम दोनों की फिजिक एक जैसी थी तो अक्सर औकात ऐसा होता था अमिता दैट इवन फॉर द यूनिवर्सिटी ना वी यूज्ड टू स्टडी इन द सेम यूनिवर्सिटी उसका नया जोड़ा बनकर आता था व्हेन एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील बैड आई एम सॉरी
0: एंड यू स्टिल

0: laughing. I can see on your face.
1: I'm sorry. I regret this. But मैं क्या करूँ? It was me.
0: Yeah.
1: वैसे तो I did not used to wear girly stuff. लेकिन वो जो उसके बहुत ज़्यादा girly और fancy कपड़े होते थे ना, fancy वाले जो party wear होता था.
0: Right.
1: I used to die for it. Die for it. उसका जूता और उसका कपड़ा. She still like that fancy ना.
0: Okay.
1: तो मैं क्या करती? कुछ ईद पर भी होता था ना. तो मैं कहती नहीं, मुझे वो वाला पहनना है, उसके वाला पहनना है.
0: Then what she used to do?
1: वो बेचारी रोते रोते फिर मुझे दे देती थी.
0: ले ले, अब मैं क्या बोलूं, दिल पे पत्थर रख के.
1: यूनिवर्सिटी में उसको नया सूट सिलवाया. वैसे तो आई बी अ टॉम बॉय, क्योंकि उसने नया सिलवाया तो बस कुछ कुछ था. आई वांट टू वेयर इट.
0: ये आपकी सिस्टर क्या करती है? अब उनको भी वही पहनना है, देन अब फिर वो कुछ और पहन के जाएंगी.
1: वो बेचारी कुछ और कर ले.
0: अरे सैक्रिफाइस.
1: शी वाज, शी स्टिल इज लाइक दिस. इफ आई कीप माय हैंड ऑन समथिंग, that is mine. If you I know, find it, it's mine. If it's on the floor, it's mine. If it's hers, it's mine.
0: Oh, Safa ki jo badi didi hai na, I'll simply say it's not easy. It's not easy. Achha, to be the eldest.
1: एक और चीज़. कोई और बोल कर दिखा दे.
0: ये
1: कोई तो और करके दिखा दे ना. कोई और उसकी चीजों में हाथ नहीं डाल सकता. नो,
0: दिस शोज, दिस शोज कि एक जब हम जेंटलनेस की बात करते हैं तो ये भी एक इस एग्जांपल के जरिए यू नो वी कम टू नो दैट कि जब अगर आप बड़े हैं, अपने छोटों से भी आप जेंटली बिहेव करें. क्योंकि ठीक है, मतलब अक्सर होता है सिबलिंग्स में, लाख कोशिश कर लो एक आध बार तो लड़ाई झगड़ा होना ही है, एंड दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लव. और क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि कोई मसला है.
1: अच्छा, मजे की बात ये, उसके अंदर एक और आदत थी कि उसको ना अपने जैसा कोई ट्विन ड्रेस पहना हुआ पसंद नहीं. सो शी डिड नॉट यूज टू वेयर एनी स्टफ, शी यूज टू डिजाइन देम बाय देमसेल्फ. तो बाद में जब उसको ये समझ में आई ना कि सफा का दिमाग ऐसा है कि व्हाट आई वांट और व्हाट आई हैव, शी लाइक्स माय चॉइस बिकॉज शी लुक्स अप टू मी. तो उसने क्या किया फिर, उसने अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर रखा कि फिर वो वही चीज अपने लिए भी सिलवाती थी और वही चीज मेरे लिए भी सिलवाती थी.
0: भाई साहब, दिस वन इज बिग, दिस वन इज रियली बिग.
1: एंड इट वाज इट. मैं उसको देखकर, मतलब मैं जो उसको कभी-कभी तो जानबूझ के टीज करने के लिए करती थी, तो मैं उसको फिर हैरान होकर देखने लगी. And I'm like, अब मैं किससे लड़ूंगी भाई, अब मैं किससे लड़ूंगी.
0: So beautiful. Actually, वो परेशान हो गई थी, उन्होंने सोल्यूशन दे दिया कि नहीं सफा, आप करोगे.
1: You know, even for her own kids, what does she calls her, मतलब मुझे जब रिप्रेजेंट करती है ना, भाई तुम्हारी खाला नहीं, she says, ये मेरा, ये तुम लोगों से पहले मेरा बच्चा, ये ये मेरा बच्चा है, शी इज माय बेबी. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल बॉन्ड बिटवीन सिस्टर्स, स्पेशली सिस्टर्स. और भाइयों में भी ऐसा होता है, आई बिलीव. तो क्योंकि मेरे जो कपड़े मेरे छोटे भाई ले जाते थे, छप्पड़ कर लेते थे. तो आई अंडरस्टैंड, वो जो मैंने अपनी बहन से टॉर्चर किया ना, वो मेरे छोटे भाइयों ने मेरे साथ किया था.
0: बट ये यही खास बात है भाई बहनों की. एंड सी, लाइक हमने कितने अच्छे से बात की आप लोगों से, सारे बच्चे हमसे जुड़े, एंड वी स्पोक अबाउट लाइक कि आप कैसे यू नो प्रोवोकिंग सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं बाय बीइंग जेंटल. और उसके बाद दिस एक्चुअली टुक अ डिफरेंट ट्विस्ट की, जहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे सिबलिंग्स की.
1: सिबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं. अक्सर औकात बच्चों का ये होता है कि एक दूसरे के, अपनी जो बहन भाई है ना, उनसे चिढ़ जाते हैं. अरे भाई, इन्हीं बहन भाइयों को अल्लाह ताला ने बनाया, इसलिए दे आर टीचिंग यू समथिंग वेरी डिफरेंट. दे आर टीचिंग यू हाउ टू बिहेव विद ईच अदर, हाउ टू कैरी ऑन विद द सोसाइटी. देर आर मेनी थिंग्स. और ये सिबलिंग्स अगर आप निकाल दो ना अपनी लाइफ में से, अगर इनको साइड पे कर दो, जिंदगी इतनी बोरिंग हो जाएगी ना. इतनी ऐसा लगेगा जैसे क्रेयॉन का बॉक्स किसी ने खाली कर दिया है,
0: मतलब कुछ बचा ही नहीं है, कोई मसाला ही नहीं है. बट सो टच वुड, वी ऑल आर हैविंग सिबलिंग्स, सो प्लीज अपना खूब सारा ख्याल रखें. इनफैक्ट मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट जेंटलनेस, सफा, इट्स, देयर इज अ गोल्डन रूल कि जेंटलनेस ना, इसका मतलब है कि बेसिकली यू ट्रीट एवरीथिंग एंड एवरीवन एज दे आर प्रेशियस.
1: हाँ, एंड हाँ, एक और चीज याद रखें, treat others the way you want to be treated.
0: Yes,
1: if you
0: absolutely.
1: do not want to be treated, agar aapko kisi ka cheekhna chillana gussa karna harsh lagta hai na, to dusre bande ke joote mein paon rakh kar dekho na bhai, usko bhi aise hi lagega, bilkul aise hi lagega use. So treat others, baki jo log tease karte hain, tum gentle ho, tum baby ho, tum ye, bolne do, you have your own personality.
0: Yes,
1: carry
0: absolutely.
1: It with proudness. दुनिया में वैसे भी जेंटल लोगों की बहुत कमी है. वी नीड मोर भाई, वी नीड मोर फैक्ट्री, ज्यादा ज्यादा जो है ना बनाएगी जेंटल लोग, तो हमें चाहिए.
0: एग्जैक्टली. और इसी के साथ हम कहेंगे कि बच्चा पार्टी, अब हमें, हमारा वक्त हो गया है आपकी सुपर सफा और एफर अमिता के जाने का. तो सुपर किस शो पर अब आपकी हमारी कल मतलब वीकेंड वाले दिन मुलाकात होगी दोपहर 1:30 बजे. एंड कल भी हम आपके लिए कुछ मजे मजे के टंग ट्विस्टर्स लेके आएंगे. एंड लेट्स सी कि
1: कल गोलू होगा.
0: गोलू मेरे ख्याल से
1: गिरा दिया था,
0: ठीक है, गोलू को धीरे से हटा के हम कोई दूसरा मोलू और फोलू और भालू ये सब लेकर आएंगे, ठीक है. सो इट्स गोना बी मी एंड सफा और हम दोनों आपके लिए रहेंगे. सो डोंट मिस आउट, तो जरूर मिलिए. कल हम आपसे मुलाकात करते हैं, वीकेंड साथ मनाते हैं, प्लान साथ में करते हैं और फिर क्या ही है.
1: बच्चा पार्टी याद रखो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखो, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता
0: वो किसी का नहीं रख सकता. बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए। इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे बच्चों और तमाम अम्मियों अब्बुओं को खुश आमदीद प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स में। सामिन इकराम, मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल जाना किसको पसंद नहीं? तो बच्चों, आप ज़रूर ये सवाल कर रहे होंगे कि तलहाई क्या कह रहे हैं कि स्कूल जाना पसंद है, ये वो। तो बात दरअसल वही है दोस्तों, आप अगर ऐसा तवील कोई अरसा गुजर जाए और आप घर में बैठे रहें, बड़ा एक कोई इस तरह समर वेकेशन हो, इस तरह की कोई दूसरी छुट्टी हो, दिल दिल में आप ये महसूस कर रहे होते हैं कि भाई दोबारा जो है ना स्कूल लौटें और वहाँ टीचर्स के साथ मुलाकात हो, वहाँ जो दूसरे बच्चे दोस्त वगैरह आते थे वो एक माहौल ही अलग है, वहाँ रिसेस और ब्रेक में वो आपस में मिलकर सैंडविच वगैरह खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो इस तरह जो है ना आपको दोबारा वो चीज़ें तड़पाती हैं, याद आती हैं, दिल चाहता है कि दोबारा स्कूल को जाएं। इस तरह स्कूल जाना हर किसी को पसंद है, नई चीज़ें सीखना किसी को पसंद नहीं, ठीक है ना, लिखना पढ़ना। तो इस तरह देखें, अगर आप कुरान को कुरान की तरफ देखते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा कि कुरान की पहली आयत में पहला लफ्ज़ जो था वो क्या था, इकरा। अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए क्या फरमाया, पढ़ो, इकरा। तो गोया कि इस दीन का जो मंबा है, पूरे दीन का असल ये कुरान है और इस कुरान की शुरुआत हो रही है लफ्ज़ इकरा से। तो इस इकरा पर मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इंशाअल्लाह आपको जो है ना तफसीली तौर पर मैं बताऊँगा, तफसील वजाहत पेश करने की कोशिश करूँगा कि इस इकरा से रिलेटेड क्या कुछ अहम बातें और टॉपिक्स हैं। इकरा, पढ़ो, बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया है। तो ओवरऑल बच्चों, यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट तो ये मिलता है कि एक तो पढ़ाई है जो अपने रब के नाम के सिवा, यानी यूं ही पढ़ाई, और एक है जिसे आप अपने रब के नाम लेकर पढ़ते हैं। अच्छा, दोनों पढ़ाइयों की नौईयत अलग अलग हो सकती है, दोनों पढ़ाई का तरीक़ा सब कुछ अलग है, यहाँ तक कि टॉपिक भी अलग हो सकते हैं ना। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर अल्लाह सुब्हानहु ताला की तरफ से दार हिरा में आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा, पढ़िए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? जाहिर सी बात है, हमारे नबी वो, और जैसे यहाँ आम तौर पर हम स्कूल वगैरह कॉलेज में जाकर लिखना पढ़ना सीखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इस तरह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो फिर अल्लाह ने पढ़ो क्यों फरमाया? बच्चे, ये तो ज़रूर आप लोगों के दिल दिल में सवाल आया होगा कि अल्लाह ने पढ़ो क्यों फरमाया। यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सिर्फ किताब के लफ्ज़ पढ़ने की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिसमें सोच हो, समझ हो, गौर व फिक्र हो। इस तरह कोई ऐसे यूं ही आसमान की तरफ देखता है, सूरज को देखता है, बारिश, पौधों और अपने आप को यूं ही देख रहा होता है, लेकिन एक वो नज़र होती है जिसमें सोच हो, गहराई हो, भाई ये कैसे आसमान जो है ना अल्लाह सुब्हानहु ने कैसे बनाया, ये सूरज, ये बारिश कैसे हो रही है, हाँ ये पौधे कैसे उग रहे हैं, ये हम अपने आप में کیا معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے، کیا نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو بچوں سوچو یہ سب کس نے بنایا؟ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خلقت، اپنی جو اتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو جو پیدا کیا ہے، یہ تمام مخلوقات کی تخلیق کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے ہم پر، تو اسی کو جتلاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے سب کو پیدا کیا ہے. تو یہ گویا کہ مخلوقات کو پڑھنا، ہاں اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا، یہ بھی ایک پڑھائی ہے. اور یہاں گویا کہ ہمیں لگتا ہے آیات کے سبا سیاق و سباق سے کہ یہی پڑھائی یہاں مقصود ہے خاص طور پر. ہاں ایک وہ پڑھائی ہے جس کے سلسلے میں آگے بھی آ رہا ہے، الذی علم بالقلم، جنہوں نے قلم کے ذریعے سکھایا. تو وہ

इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस वही और इस पैगाम का भेजने वाला कोई मामूली नहीं बल्कि हर शय पर कादिर है। अब आगे इकराए सानिया है यानी दूसरी मरतबा इकरा का लफ्ज आया है इकरा व रब्बुकल अकरम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसव्वुर कीजिए कि वो गार में मौजूद हैं और खुदा का फरिश्ता उनसे हम कलाम है। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तजुर्बे से बराह रास गुजर रहे हैं। एक अजीब मकाम हैरत है, जहन में कई सवालात पोशीदा हैं। इस कैफियत में फरिश्ता उनसे मुखातिब है तो वो दोबारा हिदायत करता है कि इस मकाम हैरत और उन सवालात को फ़िलहाल पसे पुष्ट डालिए और फिर पढ़िए और घबराइए नहीं। ये कलाम जिस हस्ती की जानिब से आ रहा है वो कोई जाबिर जालिम और मुतशद्दिद किस्म की हस्ती नहीं बल्कि वो तो इंतहाई करीम शफीक मेहरबान और ख्याल रखने वाली ज़ात है। वो आपके तमाम सवालात के जवाब देगी, आपके इस हैरत को दूर कर देगी, वो आपके इस्तराब को सुकून में बदल देगी। ये वो पैगाम है जो इस आयत में खुदा ने अपने नबी को दिया है। दूसरी जानिब इस आयत में अगर आप नज़र गौर देखेंगे तो यहाँ वही भेजने वाली जो हस्ती है उसकी चौथी सिफत बताई जा रही है। पहली आयत में बताया गया इस कलाम का भेजने वाला रब भी है, खालिक भी है और कादिर मुतलक भी है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो बहुत ही करम लुत्फ मेहरबानी वाला खुदा है। इकरा व रब्बुकल अकरम, वो बेशक सबसे बुलंद व बाला है। लेकिन दुनिया में हुक्मरानों की तरह वो कोई तशद्दुद करने वाला नहीं है। वो अपनी बात जो भेज रहा है वो दुनियावी हुक्मरानों की तरह तशद्दुद करने वाला नहीं है। वो अपनी मर्जी अगर थोपना चाहता तो उस पैगाम के बगैर ही ये काम कर देता, लेकिन वो तो करीम नफ्स हस्ती है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, ये वो ज़ात है जिसने इंसान को सिखाया कलम से, जिसने कलम से सिखाया।

तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है, हम जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं बस वो काफ़ी है, ये लिखना और पढ़ना पूरे बोरिंग काम है। लेकिन देखें ये बेसिक है, बेसिक बेसिक। लेकिन अगर आपने आपकी जो इल्म की बुनियाद, मालूमात की बुनियाद को मजबूत करें तो फिर ज़रूर आपने इस तरह कालम लिखना, इसी तरह मुख्तलिफ वाक़ात, मुख्तलिफ आर्टिकल्स, और यानी जिस मरहले पर भी लिखने के हवाले से जो जो आप लोगों को टूल वगैरह दिया जाता है या जो भी मौजूआत टॉपिक्स दिए जा रहे हैं अपने उस्तादा की तरफ से, तो उसे गनीमत समझें और इस सिलसिले में बेपरवाही और गफलती न बरतें, बल्कि इसको बड़ी चुस्ती के साथ गनीमत जानते हुए इन आप यानी आपकी जिम्मेदारियों को पूरी करें। तो जी हाँ, बात चल रही थी सूरतुल अलक की जो पहली आयत, जहाँ हम कह रहे थे कि भाई ये वही के हवाले से सबसे पहली जो आयत वही की आई थी तो यही वो आयत थी। तो आप लोगों को मैंने यहाँ तक बताया कि अल्लज़ी अल्लमा बिलकलम, यहाँ अल्लाह सुब्हान व तआला ने कलम के ज़रिए जो हमें इंसान को सिखाया, इसका क्या मतलब बन सकता है। और इस तरह आप जो है ना आगे बढ़ते हैं मज़ीद, और आगे अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं अल्लम अल इंसान मालम यालम, इंसान को सिखाया जो वो न जानता था। तो इस आयत में ये बताया कि इंसान को जो कुछ भी इल्म मिला है वो खुदा की जानिब से मिला है। इंसान को अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है वो उसके फितरत व जबिल्लत और वजदान के साथ साथ वही के ज़रिए भी दिया है। इसी तरह इंसान अपने तजुर्बात से बहुत कुछ सीखता और अपना इल्म अगली नस्ल को मुंतकिल करता तो ज़रूर है, लेकिन एक हद तक आपको ज़रूर यानी वही की ज़रूरत, वही के अलावा ये तमाम उलूम में जो मादिया है, उलूम तजुर्बात यानी तजुर्बात वगैरह के हवाले से जो इल्म है ना, ये पायदार नहीं होती, क्योंकि एक वक्त के बाद नया नया तजुर्बा आ जाता है और आपकी जो ना वक्त के हवाले से फिर पिछले तमाम तजुर्बात जो है ना फिर वो नाकाम साबित होते हैं, नामुराद हो जाते हैं। तो इल्म अता करना ये अल्लाह सुब्हान तआला की नेमत है हमें हमारे लिए, और इंसान तो नहीं जानता था बल्कि उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से सिखाया गया है। तो इस आयत में अल्लाह की रुबूबियत और खल्लाकी की झलक है। तो दूसरी जानिब ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि वही का ये जो इल्म है वो वाली ये उन सब मालूमात की जो तालीम जो दरअसल इंसान जानता ही नहीं है, मालम यालम यानी वो नहीं जान सकता, इसकी काफ़ी अहमियत है और इसमें लोगों के लिए हिदायत है। इस वही के इल्म की ख़ास बात ये है कि बराह रास्त अल्लाह सुबहान तआला के अल्फाज में नाजिल करता है, जबकि दीगर उलूम जो है ना बिलवास्ता तौर पर जो है ना इंसान को तजुर्बाती वजदानी तौर पर अदा किए जाते हैं। और इसी तरह इस इल्म और दूसरे उलूम में फ़र्क ये है कि दीगर उलूम के मुंतकिल होने का तरीक़ा एक नस्ल अपने से अगली नस्ल को मुंतकिल करती है ना, जबकि ये इल्म एक ही शख्स को अता किया जा रहा है और एक ही शख्स से अब पूरी उम्मत को ये इल्म जो है ना बाद में मिलेगा। और इस तरह जो है ना क़्यामत तक ये इल्म, ये वही का ये इल्म बरकरार रहेगा बग़ैर किसी चेंजिंग के। तीसरी चीज़ यह है कि इस इल्म के मानने और न मानने का नतीजा बाकी उलूम की तरह नहीं होगा। अगर किसी ने समझ लिया कि खुदा की जानिब से ये आयत है, ये कुरान है, उसके बावजूद नहीं माना तो इसका इनकार खुदा की तौहीन के मुतरादिफ होगा, जिसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। सामिन किराम, मेरे प्यारे बच्चों, हमने काफ़ी सारे पहलुओं का अहाता किया है हमारी सूरतुल अलक की इन पहली आयात की वजाहत में। तो ये पांच आयात इंसानों को एक अजीम हिदायत देने से कबल एक तारफ़ की हैसियत रखती हैं। इनमें बताया गया है कि पैगाम किसी इंसान, फरिश्ते, जिन या दीगर मखलूक की जानिब से नहीं, इनकी नस्बत आलम के परवरदिगार की जानिब से है। इसीलिए कहा गया कि अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया है, यानी ये पैगाम उसी रब के नाम से है जो खालिक भी है, वो कादर मुतलक खालिक भी है जिसने जमे हुए खून से इंसान के हैवानी वजूद को पैदा किया। हाँ,

इसमें पोशीदा हैं। आज 1400 साल बाद भी लोग कुरान पढ़कर हैरान होते जाते हैं, उसकी गहराई और गहराई में उतरते हैं और नई नई बातें एक्सप्लोर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुरान के लिए टाइम निकालना, वक्त निकालना, कुरान को पढ़ना, और जैसे कि हमने कहा है, एक तो वो पढ़ाई जो हम सिर्फ यूं ही रट्टा लगाकर पढ़ते हैं, और एक वो पढ़ाई जो गौर व फिक्र के साथ, वो दिलचस्पी के साथ, इन दोनों में फ़र्क है। और प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने कहा, वही का इल्म ये सबसे अहम इल्म है, ये वो इल्म है जिसके ज़रिए हमें हिदायत मिल सकता है। और इस इल्म के साथ अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस सिलसिले में पढ़ना, लिखना और तालीम तालुम के हलकों से जुड़े रहना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे मोबाइल और सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए कुछ बयानात सुन ली, कुछ तकरीरें सुन ली और बड़े बड़े मसले देने लगे, तो उससे आपको यानी वही के इल्म के हवाले से वो जो सही नॉलेज आपको नहीं हासिल होगा, उसे आप सही से हासिल नहीं कर पाएंगे। ये मत समझो मेरे प्यारे बच्चों कि आज दुनिया आसान है, आज सब कुछ हम जो है ना ऐसे मोबाइल में बैठे बैठे देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि दरअसल क्या है। इस बात को जहन नशी कर लो कि आप AI, सोशल मीडिया, इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर सकते। वही के इल्म के हवाले से अगर बात करें तो फिर आपको तलाश करते हुए हक की राह निकालनी है। सूरतुल अलक हमें सिखाती है कि इल्म बहुत कीमती है, और जब वही के इल्म की बात आए तो ये तो सबसे बड़ी रोशनी है। और कुरान ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, न वो किसी के शागिर्द थे, फिर भी उनको इस तरह पूरा कुरान जो है ना उन्होंने याद किया, या याद था, यानी याद तो नहीं किया लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से याद करवा दिया गया। और उन्होंने इस कुरान को बड़ी दिक्कत शफाफियत के साथ लोगों तक पहुँचाया, और उम्मत एक नस्ल दूसरी नस्ल की तरफ जो है ना इस किताब को हिफ्ज भी करती आ रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, और इसमें आज तक कोई चीटिंग नहीं है। आप अगर कुरान के अलावा दूसरी किताबों को देखें तो एक एडिशन से दूसरे एडिशन में कितनी सारी चेंजिंग्स आ जाती है, अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन कुरान का एक लफ्ज़, एक हर्फ और एक हरकत को भी आप ज़रा ज़ेरो ज़बर होने होते नहीं देखेंगे। और प्रोग्राम के इस मरहले में सामिन कराम वालदेन से मैं गुजारिश करूँगा कि बच्चों को सिर्फ नतीजा न सिखाएं, कोशिश की कदर जो है ना ये भी सिखाएं, मेहनत की जो अपनी इज्जत है ये भी सिखाएं, सच्चाई की अहमियत उन्हें बताएं। यानी बच्चा कोशिश करे तो उसकी तारीफ करें, हाँ कोशिश कर रहा है, सिर्फ नतीजे पर डिपेंड करेंगे तो भाई कोशिश के बगैर ही अगर कोई कुछ काम कोई नतीजा लाता है तो फिर कहेंगे हाँ भाई वाह वाह तुमने अच्छा कर दिया, और फिर इसे आगे चला देंगे और वो उसकी कोशिश की कोई फिक्र नहीं रहेगी तो आगे वो जाके पछताएगा। उसे ज़रूर आपने कुछ मेहनत करवानी है, जद्दोजहद, और कोशिश क्या होती है इसकी सही डेफिनेशन तत्बीकी तौर पर, वाकई तौर पर इस पर अमल करके और अमल करवा के उसे सिखाना है कि भाई ज़िंदगी इसको कहते हैं, मेहनत तुम्हें करनी है अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह के शोर को हासिल करने के लिए, इबादत के लिए, तालीम के लिए, तालुम के लिए, हर सिलसिले में मेहनत करोगे तो सब खुश होंगे, मेहनत नहीं करोगे तो ये जो बैठे बैठे कुछ तुम्हें हासिल हो जाएगा लेकिन इस पर तुम्हें सही इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि इज्जत का ताल्लुक, सही बदला दुनिया में भी आखिरत में भी उसका ताल्लुक है मेहनत के साथ। आप लोगों को एक छोटी सी वजाहत के साथ मैं अलविदा कहूँगा, वो ये कि देखिए यहाँ कुरान में एक खूबसूरत बात है, या कुरान की जो इब्तदाई आयत है, यहाँ कहा गया है कि पढ़ो, सिर्फ पढ़ो कोई अलग जुमला के तौर पर नहीं कहा गया, बल्कि बाद में कहा गया बिस्मा रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो। यानी पढ़ाई इसमें नियत का रुख जो है ना इसे जो है ना सही सिमत पर गामजन करने की कोशिश है कि हर पढ़ाई, हर इल्म, हर किताब यानी सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों?

0: आपने पढ़ना है अल्लाह के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, इंसानियत को फायदा देने के लिए। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। तो अगर अल्लाह अपने रब के लिए जिसने पैदा किया है उस नियत को अगर आप मुस्तहज़र रखते हुए दिल में इसको याद करते हुए आप जो है ना पढ़ेंगे तो आप गलत चीज़ें पढ़ने से बचेंगे, फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मैं जो सीख रहा हूँ ये भी अल्लाह की नेमत है, ये वाली एक सोच, एक फिक्र और एक दिली एक कनात होगी। यहाँ तक कि बच्चों जब आप साइंस पढ़ते हैं, बारिश सितारे जिसम पौधे और इस सिलसिले में जो साइंसी हकायक हैं वो बयान किए जाते हैं, तो एक मुसलमान क्या सोचता है, वाह अल्लाह ने ये सब कुछ कैसे बनाया, हाँ क्या अजीब तख्लीक है उसकी। यही है इकरा बिस्म रब्बिक। यहाँ तक कि जब आप डॉक्टरी के हवाले से कुछ पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ आपकी पढ़ाई हो रही है, तो बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक ये वाली कैफियत आपके दिल में हो। और इस तरह ये तमाम दुनियावी जो मवाद हैं ये भी इबादत बन जाएंगे, चूँकि दीन और दुनिया में फ़र्क तो हमने खड़ा किया ना, वैसे ख़ास फ़र्क तो नहीं, चूँकि हमारी दुनियावी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जो पूरे दीन हो, इस दीन के सिवा दुनिया की कोई तसव्वुर ही नहीं है। ख़ास अगर हम अपने आप को मुसलमान और मोमिन दावा करते हैं तो हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी को पूरी तरह जो है ना अपने रब चाहिए मर्ज़ी के मुताबिक इस्तवार करना है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें उसकी तौफीक दे। तो सामिन किराम, सूरतुल अलक, मेरे प्यारे बच्चों, सूरतुल अलक की इस पहली आयात, ये जो पहली आयात हैं वही की इब्तदाई आयात हम इसे कहते हैं, तो इसमें ख़ास तौर पर यही बताया जा रहा है कि पढ़ो, इल्म हासिल करो, और वो इल्म जो दिल को अल्लाह के करीब करे, वो इल्म खूबसूरत है जो अल्लाह के नाम से हो। इस तरह बार बार अल्लाह सुब्हान ताला अपनी नेमतों को याद दिला रहे हैं कि भाई आपने सब कुछ पढ़ना लिखना है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि हमने ये सब कुछ पैदा किया है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इंसान को सिखाया और उसे इतनी सारी नेमतें दीं और ये सब चीज़ें सिखाईं जो उसे कुछ इस सिलसिले में उसको कोई इल्म था ही नहीं। तो सिर्फ पढ़ना जो है काफ़ी नहीं, हम अपने कैरियर बनाने के चक्कर में सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और इस तरह जो है ना माँ बाप भी कोशिश में लगे रहते हैं। आप लोगों को एक छोटी सी वजाहत के साथ मैं अलविदा कहूँगा, वो ये कि देखें यहाँ कुरान में एक खूबसूरत, बस कहते हैं बाद में हो जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में ये बात याद रखिए कि पढ़ना भी हमारे एक एक बच्चे के लिए इसका मकसद उस रब के नाम होना चाहिए, उस रब के नियत से, उस समाज की खिदमत की नियत से जो जिसका हमें हुक्म किया गया इस कुरान में। जब हम उसकी चाहत को, उसके मंशा को सामने रखेंगे तो हमारी पढ़ाई, हमारा पढ़ना लिखना वो भी अपने रब के नाम से होगा और उसी तरीके से होगा जो उसे राज़ी करे, जो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह सुब्हानहु ताला हमें सही इल्म नाफ़े हासिल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स के आज के इस हलके से शकीब अहमद और मुझे तलहा शफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

Assalamu alaikum and good evening. आप सुन रहे हैं डियर फैमिली विद आरजे महावेश खान. चार बज के हो गए हैं तकरीबन दो मिनट. मेरा और आपका साथ रहने वाला है पांच बजे तक. और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल एकदम से सेट होंगे. और आज क्या होने वाला है शो में, ये मैं आपको बताती हूँ. आज का थोड़ा सा ना टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं गंभीर है, कुछ सोचने वाला है. मतलब थोड़ा सा कुछ गौर व फिक्र करना पड़ेगा, गौर व फिक्र नहीं भी करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा सीरियस मूड की तरफ कह सकते हैं आप. तो मैं बताती हूँ टॉपिक, लेकिन उससे पहले आप नंबर्स नोट कर लीजिए हमारे. 4434377 पे आप हमें कर सकते हैं कॉल. और इसके साथ

0: थी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 666-22-107। तो टॉपिक क्या है ये मैं बता दूं, वरना लोग ज़्यादा ही सीरियस ना हो गए और इतना भी सीरियस नहीं है, मतलब परेशान ना हो। खैर जी, आज हम बात करेंगे इस बात पे कि ये जो लग्जरीज आ गई ना ज़िंदगी में, मतलब अगर देखा जाए ना कुछ पिछले 20-25 साल में लोगों की ज़िंदगियों में बहुत फ़र्क आया है। मतलब लग्जरी जो है ना वो एकदम से आ गई है और तकरीबन सभी लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर इंक्लूड हो गई है। पहले ये होता था कि लोग अपनी ज़रूरियात के लिए जीते थे, लेकिन फिर अब ये हो गया है कि लोग जो है ना ज़रूरियात से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात के लिए जीते हैं, है ना। तो कहीं इस जो लग्जरी को चेज़ करते करते कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि हम जो है वो ज़िंदगी की जो असल खुशियां हैं उनसे अपने आप को दूर कर चुके हैं। सवाल ये है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, रेडियो तो ऑफ कर दीजिए, देखते हैं। जी यार, ये क्या हो रहा है, मतलब कॉल करनी है तो प्लीज़ कॉल कीजिए, रेडियो लेकिन ऑफ कर दीजिए और बात कीजिए। हेलो, लास्ट टाइम, हेलो ना। चलें तो फिर इनका मतलब जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुनी है। वो नहीं, पहले डम कॉल्स आया करती थी घरों पे और वो फ़ोन करके जो ना वो बिला वजह मतलब खामोश रहते थे, अजीब अजीब सी हरकतें करते थे, वही वाली कॉल लेके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी क्या हाल चाल हैं आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है मैडम जी, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और टॉपिक सुना आपने,
1: मतलब कि भाई इतना भी सीरियस नहीं होना ठीक है, चीजें होती है मतलब
0: वो पहले वाले कॉलर बोल ही नहीं रहे थे, मैंने कहा यार अब बोल लो भाई, टॉपिक के ऊपर बात कर लो। वो मतलब बोले जा रही हूँ हेलो हेलो हेलो, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा।
1: तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि बंदे ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, तो देख समझ के रहना कि भाई ऐसे नहीं होना है सीरियस के, भाई कोई भी दिल पे लेना नहीं चाहिए।
0: नहीं नहीं, कुछ भी दिल पे नहीं लेना चाहिए वैसे तो। हाँ क्या हाल चाल है भाई, सब कुछ ठीक ठाक है?
1: बस ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, चल रहा है। देखिए आपने आज के लिए, और सच बात है कि लग्जरी लाइफ जो है इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो खत्म कर दे रही है। ये एक ऐसा कि मतलब वो डेड हो जा रहा है, और वो है हैप्पीनेस। कि इंसान पहले जैसा होता था कि जो भी हमें मिल जाया करता था, छोटी से छोटी चीज रही या बड़ी भी रही, तो हम उसे खुश हो जाया करते थे। और अगर हमारे पास ना भी हो तो हमारे जानने वालों के पास हो, तो हमारे रिलेटिव्स हो गए या फिर हमारे पड़ोसी हो गए या फिर कोई भी हो गया, फ्रेंड्स एंड ऑल, तो हम खुश होया करते थे। ऐसा फील करते थे कि भाई ये तो हमारे पास ही आया है या फिर हमारे साथ ही हुआ है, लाइक दैट वे। लेकिन आज जिस तेजी से माहौल है माशरे में, जिस तेजी से जो है लग्जरी को अपनाया जा रहा है कि वो उसके पास ये है तो मेरे को उससे अच्छा चाहिए, अच्छा ये है तो वो उससे, तो इसी भाग दौड़ में ना साल सबकी जिंदगी, मैं जहां तक समझता हूँ कि सारे सब EMI पे आ चुके हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: मतलब कि भाई आपकी जो अपनी जो दिमागी जो सुकून था वो कहीं ना कहीं खो चुके हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो फैमिली पे आता है। कि आपने अपने बियॉन्ड द लिमिट्स, वो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए वाला, तो अभी वो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चादर पैर बड़े ही फैलाओगे तो चादर खरीदो, सपने देखना चाहिए, ऐसे नहीं के नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात वो सपने, लेकिन उसके लिए काम करना होता है, पेशेंस रखना होता है, और उसके लिए जो है आपको स्ट्रेटजीज बनानी होती है, और ऐसे नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा कि अब आज प्लान बनाए और कल हो जाएगा, ना बिल्कुल नहीं। 10-15 साल लग जाते हैं किसी एक इंसान को या फिर किसी एक की एक पीढ़ी चल जाती है कि वो अपने आप को इस काबिल बना सके कि वो सारी चीजें जो लग्जरी जो चाहता है उसको अवेल कर सके। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम मिडिल क्लास लोग को ना पेशेंस नहीं चाहिए, लाइबिलिटीज चाहिए, दिखाना है सब चीज, शो ऑफ कि इसने ये किया उसने वो किया ऐसे ऐसे, इसमें ना सब पेड़ा घर को रखा है।
0: हाँ, हमें बेसिकली हमारे पास ना थोड़े से पैसे आना शुरू होते हैं, हम फौरन से ना सोचते हैं कि इतना बड़ा घर बना लेते हैं, मतलब जो है घर बड़ा बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। जो वाकई में जो लोग अमीर बनते हैं ना, वो लोग शुरू में किसी को बताते ही नहीं है, वो इधर उधर इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो हकीकतन अमीर होते हैं।
1: हाँ, पैसे को पैसा खींचता है मैडम।
0: हाँ ऐसे ही
1: हमारे यहाँ में क्या है कि हम खाएंगे

0: लेकिन आईफोन जरूर लेंगे।
1: किडनी बेच के लेंगे, खाने की बात तो छोड़ें, किडनी बेच के लेंगे।
0: आजकल तो यही चल रहा है कि किडनी बेचो, कुछ भी करो, मुझे चाहिए। अभी क्या बताएं कि भाई ठीक है आपको रहना है और कोई बात नहीं, बट मुझे ये समझ नहीं आता जो आईफोन कैरी कर रहे हैं वो अपने आप को देख लेंगे भाई हमारा बैंक बैलेंस भी क्या है। मेरा ये मतलब ठीक है आप कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप साथ साथ में कुछ एक ऐसा बनाओ कि आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे डाल रहे हो, फिर एक साल के बाद में वो खत्म हो जा रहा है तो इट इज लग्जरी, बट उसकी वैल्यू तो कुछ है नहीं। फिर आपकी पेमेंट वापस से नहीं आएगी जब आप बेचने जाओगे तो वो उतनी वाली, तो उससे बेहतर है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। और मैं इसमें अपने आप को भी रखता हूँ कि कभी कभी मैं भी जो है कुछ फुलिश स्टेप्स ले लेता हूँ, लेकिन इट्स ओके बट नॉट ऑल द टाइम, थोड़ा बहुत सोच समझ के भी चलना पड़ता है तो उस हिसाब से ये है। बट लग्जरीज इज किलिंग द हैप्पीनेस, अगर आप देखेंगे तो डैमेज कर रही है वो और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। हम जो है जो भी मिल जाएगा ना, वो कहावत मशहूर थी ना कि नमक मिर्ची और वो कुछ कहते हैं ना मिर्ची चटनी कुछ समथिंग डायलॉग, वो हम खा कर जी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे तो शो ऑफ वर्ल्ड में जी रहे हैं मैडम जी हम।
1: ऐसे ही ऐसे ही, पता है आपको लग्जरी के पीछे जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत मेहनत करना पड़ती है 15 साल तक, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी खुशियाँ इंजॉय करो, थोड़ी हो, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े टास्क अपने रखो, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ जो आप पहले इंजॉय करते थे उनको अभी भी रखो और उसमें अपने लिए खुशी रखो। ये नहीं कि मतलब ये लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब लोगों को थोड़ा सा स्टेटस बढ़ता है ना तो फौरन से वो अपने आप को मतलब उस जगह पे लेकर आ जाते हैं कि 5 स्टार से कम पे जाएंगे नहीं, जबकि आपको असल जो मतलब अगर आप इमेजिन करो ना तो आप देखो कि बच्चे, एक बच्चा जो कि बैठ के अपने घर पे गेम्स वगैरह खेल रहा होता है PS4 वगैरह, वो बच्चा इमेजिन करो, और दूसरी तरफ आप वो बच्चा देखो जो टायरों से ना वो डंडे से टायर घुमाता हुआ भाग रहा होता है खूब हंसता हुआ, तो आपको अंदाजा होगा कि वो जो बच्चा है ना जो रोड के ऊपर घूम रहा है ऐसे टायर को बिला वजह घुमाते हुए वो ज्यादा खुश है, और जो घर पे बैठा हुआ बच्चा है ना वो खेल रहा है लेकिन स्ट्रेस में खेल रहा है। तो ये खुशी हमेशा छोटी चीजों में होती है, मतलब ऐसी मामूली चीजें जो कि मिल जाती हैं आपको और आप उनको मतलब जो है ना उनसे महसूस होते हो, बेसिकली नेचर में खुशी होती है, हम जो है ना खुशी कहीं और ढूंढ रहे होते हैं,
0: खुशी हम आर्टिफिशियल चीजों

0: वो बड़ी फेमस हुआ करती थी।
1: हाँ,
0: वो मतलब
1: हाँ,
0: वो एक ऑरेंज कैंडी में ही हम बहुत खुश हो जाते
1: अच्छा,
0: थे।
1: हमारी यहाँ आती थी
0: रॉबिन्स के नीचे कोई नहीं आएगा।
1: हाँ हमारी यहाँ होती थी वो इमली की पता नहीं क्या हाजमोला कैंडी भी होती थी और इस तरह की कुछ और भी इस तरह।
0: हाँ, हाजमोला कैंडी
1: हाजमोला कैंडी तो हमारी यहाँ वो वाली होती थी।
0: बट आजकल थोड़ा सा यू नो ये सब सारी चीजें कम हो रही है और दिखावे में जो है हमने यहाँ खाया हमने वहाँ खाया हमने ये ब्रांड किया हमने वो ब्रांड किया ऐसा कुछ नहीं है भाई। दिल्ली सुकून कुछ नहीं होता है इसमें और बेचैन हो जाते हैं एंजाइटी को और इजाफा मिल जाता है और कुछ नहीं है।
1: बिल्कुल
0: एंजाइटी तो हर इंसान में परमानेंट होती है लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फीड कर रहे हो। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में फीड कर रहे हो तो वो पॉजिटिव वे में ग्रो होगी। अगर आप उसको ये जो लग्जरीज और जो आर्टिफिशियल लाइफ में फीड कर रहे हो ना तो वो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे आप जो है ब्लड प्रेशर शुगर की तरफ चले जाओगे क्योंकि ये जो चार लोग हैं ना ये खाने से लग जाने वाले हैं मैडम।
1: जो चार लोग फिक्र करते रहते
0: हैं
1: वो एग्जैक्टली
0: ये चार लोग खाने पे लग जाएंगे और ये चार लोग के चक्कर में साला पूरी जिंदगी ईएमआई पे चल रही है।
1: बिल्कुल सही है बिल्कुल ऐसे ही चार लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए फिक्र अपनी खुशी की करनी चाहिए।
0: खुश रहो जितना भी है छोटी सी जिंदगी क्या करना है किससे क्या कर लेंगे किसको क्या बता लेंगे और जो देख रहा है उसे भी पता है कि किसने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है तो छोड़ो यार खाओ पियो मजे करो।
1: एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चले जी। थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए थैंक यू बाय
0: मिलते
1: हैं इंशाल्लाह थैंक यू जी ख्याल रखिएगा। रे जी तो हमारे साथ थे समद और बेहतरीन कॉल भाई मतलब जबरदस्त बातें करके गए हैं और बिल्कुल ऐसे ही भाई स्ट्रेस आपकी जिंदगी में रहता ही रहता है लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं ना तो आप उसको अपनी मतलब तरक्की में अपनी अपने आप को ग्रो करने में उसमें आप स्ट्रेस लीजिए थोड़ा बहुत लीजिए जो हेल्दी होता है लेकिन गैर जरूरी तौर पे मुकाबलाबाजी और इन चीज़ों के पीछे भागने पे ना ही लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम मैडम
1: जी क्या हाल चाल है अली रजा।
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैडम आप कैसी
1: हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप बताएं।
2: मैं भी ठीक हूँ मैडम
1: अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त गुड जी। अली क्या चल रहा है आज छुट्टी तो नहीं आज छुट्टी कल गुजर गई होगी है ना याद है।
2: नहीं नहीं आज छुट्टी थी लेकिन मैं आया हूँ।
1: अच्छा सही क्यों
2: लास्ट वीकेंड मेरी दो छुट्टियां हो गई।
1: अच्छा अच्छा सही सही
2: इस वीकेंड में
1: अच्छा अच्छा इस वीकेंड की कुर्बानी दे दी आपने।
2: कुर्बानी देनी पड़ी मैडम।
1: हाँ वही जो हम लोग बात कर रहे थे ना दो तीन दिन पहले। जी अली आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम जो है ना मतलब लग्जरीज को चेज करने में क्या हम हकीकी खुशियों से दूर होते जा रहे हैं।
2: लग्जरीज को चेज करते करते सब कुछ खो बैठे कुछ नहीं है।
1: इतना इतना लंबा तवक्कुफ के बाद ये वाला जुमला बात सही
2: है। हकीकत तो वही है जो अल्लाह ने आपको दे रहा है और दे के भी छीन लेना है तो भागने की जरूरत नहीं है गो विद द फ्लो। बहुत सीधा हो गया इन मामले मैडम।
1: अच्छा सुधर गए मतलब
2: गो विद द फ्लो हो गया मेरा। हाँ लग्जरियस लाइफ ये गाड़ी वो चीज ये वो भागते भागते भागते फिर मैंने अपनी अपनी अपनी उम्र से ज्यादा मेरी उम्र है उससे ज्यादा मैंने चीजें अचीव कर ली थी अपनी लाइफ में लेकिन उससे ज्यादा जल्दी मैंने खो भी दी।
1: क्या
2: पता कह सकते हैं कि मैंने कि मैं उन चीजों को सही से नहीं रख सका या फिर सही से मन के साथ नहीं चल सका या फिर वो चीजें मेरे लिए सही नहीं थी वक्त से पहले तो वो चली गई। तो ये मैंने इन सारी चीजों के जाने के बाद सीखा गो विद द फ्लो जो आ रहा है आने दो अपनी लाइफ को सही टाइम सही जगह पर एक्सपेंड करो। चीजों के पीछे भागने से बेहतर है कि आप उन लोगों के साथ दो जो आपके लिए है
1: मतलब
2: जो समझो आपकी फैमिली है छोटी सी फैमिली होती है इंसान की बहन भाई बीवी बच्चे
1: अब तो
2: फैमिली हो गई है बड़ा
1: आपको
2: पता है तो मैं बहुत स्पीड हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ऐसे। अच्छा अली मैंने ना एक बात कहीं पे पढ़ी थी कि आप जो है ना जब अगर आप चाहते हो कि आपकी उम्र में इजाफा हो तो कभी भी ख्वाहिश ना करो कि आपको चीज़ें जो है ना बहुत जल्द मिल जाएं क्योंकि अगर आप अपने हिस्से का रिस्क में जल्दबाजी करते हो ना तो बेसिकली आप अपनी उम्र घटा रहे होते हो। तो मुझे बड़ी बात क्लिक की कि वाकई मतलब अगर देखा जाए ना आजकल के दौर में हर बंदे का ये स्ट्रेस है कि हमें चाहिए हमें सब कुछ चाहिए मतलब अभी चाहिए जो चीज़ें लोगों को मैंने देखा है ये बात करते हुए कि कोई मतलब 50 ईयर्स का है और

0: एक जो है ना 25 ईयर्स का बंदा ये बोल रहा है कि वो देखो यार उनके पास तो भाई उन्होंने तो ये भी कर लिया, उन्होंने वो भी कर लिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया. तो भाई उसने इतनी उम्र लगी है उसको करने में और तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है, तुम्हारा अभी करियर स्टार्ट हुआ है. तो ये थोड़ा सा ना इन चीज़ों को समझना चाहिए कि आप अगर एक प्रोलॉन्ग एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हासिल करने के ऊपर आप ना मतलब वो रहो, मतलब तवक्कुल करो या फिर क्या कहना चाहिए, हाँ बस इतना
1: कि
0: हाँ आमादा रहो इस तरह से. ये नहीं कि बहुत जल्दी है मतलब सब कुछ मिल जाए, तो वो मिल तो जाता है लेकिन फिर वो यही होता है कि आपके जो है ना उम्र कम हो रही होती है, आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, मतलब दोनों तरह से अगर देखा जाए ना तो ये बात बिल्कुल सही है. ये सीन है जी. कुछ
1: यही है मेरा मैडम, इतना सा ही मेरा है, इतना सा मैं ज्यादा बोलता रहा फ्लो फ्लो में कुछ और निकल जाता है, थोड़ा बोलना चाहिए फ्लो फ्लो में, मेरे को बाद में माजरत करना पड़ता लोगों से.
0: अरे नहीं भाई इतना क्यों सोचते हैं आप तो इतना ही बोलना है
1: नहीं बोलना है और इतना ही सोच के बोलना चाहिए, जितना जितना आप देख सकते हो, जितना आप सोच सकते हो, जितना आप समझा सकते हो उतना बोलो, उससे ज्यादा बोलोगे तो फिर सिचुएशन हो जाएंगे,
0: उससे
1: हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मैडम,
0: इतने सेंटिमेंटल है अभी तक. चले कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं आली. चले ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत और इंशाल्लाह ताला फिर बात होती है, ठीक है. थैंक यू फॉर योर कॉल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़. रे जी तो हमारे साथ थे अली और इसी के साथ हम बढ़ते हैं पहले म्यूजिकल ट्रैक की तरफ.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: Excuse me. अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ, उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली RJ महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM और मेरे पास मैसेज है अमृतिक पाल साहब का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कतर, सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। आप ऐसा चुन चुन के लाते हैं कि सामने वाले को उससे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन, आपने मतलब आज का भी टॉपिक बेहतरीन।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रईस भाई।
4: ये जो हमारा रब है वो हमें बहुत पहले हमारे दिन को जानता है, वो आगे पीछे और अजल से अबद तक का वो वाकिफ है। इसके लिए उसने आगाह भी किया है कि अगर मतलब तुम गाफिल ना हो जाओ। ये माल का जिक्र अल्लाह ने पहले किया है और फिर औलाद का जिक्र किया है और फरमाया है अगर तुम ऐसा करोगे, गाफिल हो जाओगे तो तुम बेशक बहुत नुकसान उठाने वाले में से हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये माल जो है ना, ये आज हम लोग इतना टफ बना लिए हैं अपने लाइफ को कि हमारे जो करीब से करीब रिश्तेदार थे उनसे भी हम हसद में और बुग्ज में और अपने गुरूर में उनसे इतना दूर हो गए हैं कि बिल्कुल उनसे दुआ सलाम बातचीत सारी चीजों से हम मतलब इतना गाफिल हो गए हैं। शैतान इतना ज्यादा मतलब ये पैदा कर दिया है लोगों के अंदर तकब्बुर कि वो बिल्कुल अपने आप को इतना वो समझने लगे कि बस हाँ जो है, ये नहीं सोचते कि मतलब ये किसका दिया हुआ है हम इस लायक, बस अपनी काबिलियत का हर जगह कि बस जो किया मैंने किया और इसी चीज को अल्लाह बहुत सख्त नाराज होता है कि भाई तुमने क्या किया है इसमें, अगर मेरा ये ना होता तो ये बंदे को अपनी लाइफ को मतलब इस तरीके से अगर कोई ये किया तो उस हिसाब से अगर हम अपने जैसे छोटे लोगों को तरफ भी ध्यान दें और ये करें तो शायद उनके अंदर गुरूर और घमंड ना आए और अपनी लाइफ में भी उनके अंदर सुकून रहेगा। लेकिन लोग इतना टफ बना लिए हैं अपने लाइफ को कि उनके मतलब अंदर से सुकून छिन चुका है। ये बिल्कुल आपने एकदम से बात छेड़ा है। और ये जो एक शायर भी है मतलब हाँ नए नए जो अमीर होते हैं ना उनका रवैया उनका लहजा कुछ अलग ही हो जाता है फिर उनका, तो यही है ना कि अल्लाह ताला जब दे देता है तो ये आजमाइश भी है हमारे लिए, आजमाइश है कि कुछ वक्त के लिए अल्लाह ताला हमें देता है तो हमें आजमाता है कि देखते हैं ये बंदा क्या करता है। और ये हमसे सवाल भी किया जाएगा, ये पक्की बात है कि तुम्हें इतना माल मिला, तुमको इतना सेहत मिला, तुमको ये मिला वो मिला, तो तुमने किस तरीके से इसे यूज किया।
1: बिल्कुल,
4: तो ये लोग हम लोग मिस यूज करके और लोग अपने से मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ तक बिल्कुल दीवार से दीवार लगा है अपने सगे भाई का और अपने मतलब उनका खास इवेंट होता है शादी का और छोटी छोटी बातों पे वो इतने मतलब मगरूर हो के एक दूसरे के उसमें हसद में इतना ये हो गए हैं कि मतलब कोई थोड़ा सा मतलब 2-4 लाख ज्यादा रख लिया है, कोई थोड़ा सा कम है, बस हालांकि सबका चल रहा है गुजारा लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर मतलब उनको इतना इस तरीके से नफरत बढ़ गया है आपस में। ये चीजें पहले नहीं थी, आज के 15-20 साल पहले इतना मतलब एक जबान पे मैं खुद मुझे याद है कि 15-20 साल पहले की एक आवाज पे पूरे गांव के लोग जमा हो जाते थे कोई भी काम करना होता था। तो अभी हमारे पड़ोस को बुला के देखो तो अभी तू कौन है, तू आके इधर से तू आके मिल, तू कौन होता है बुलाने वाला मुझे। इस तरीके से लोगों का लबो लहजा बदल चुका है। तो ये क्या थोड़ा सा पैसा कोई बाहर कमाने वाला हो गया या ये हो गया, जो हमारे घरों में मजदूरी करते थे उनके घर में अगर बोल देती जाके मजदूरी तो वो हमको बोलेंगे तुम आ जाओ कल हमारे घर पे। इस तरीके से लोगों का मतलब नजरिया

0: घर पे, ये हमारा मकसद नहीं उनको दिलासेरी करने का, लेकिन उनके अंदर इतनी तब्दीली आ गई है, इतना ज्यादा मतलब ये आ गया कि लोग बस इसी हिसाब से करो कि ताकि तुम सेटल कर सको कि यार अगर वो धोखा उससे मतलब अगर तुम नाकाम भी हो जाओ तो दूसरी तरफ से एक रास्ता बना के रखो।
1: हाँ, मतलब एक नॉर्मल लिविंग की आपको आदत हो, ऐसा ना हो कि लग्जरी छिन जाए तो बिल्कुल ही मतलब। हाँ, सही हो गया।
0: नहीं करो, ये अल्लाह ने मतलब दिया है मौका, ये नहीं कि मतलब नहीं आप वही पुराने जो फटे पुराने पहनते थे जो कपड़े या वो नहीं, ये वो नहीं, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन अपने जो अपने माहौल है, अपने जो मतलब करीब के, जैसे मिसाल के तौर पर अब हम कोई ऑफिस में जाते हैं तो हमारा पहनावा कुछ अलग होता है, जब ड्यूटी पे होते हैं तो पहनावा अलग होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना भी मतलब ये ना गुरूर आना, मतलब ये करो कि अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है गुरूर। अल्लाह ताला बिल्कुल जर्रा बराबर भी जिसके अंदर गुरूर होगा वो अल्लाह ताला का है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मैं मतलब हदीस को ही कोट कर रहा हूँ, मैं बस मैं शॉर्टकट में बयान कर रहा हूँ कि ये सब बातें हमें याद रखना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, दुनिया में हमें किस लिए भेजा गया। तो थोड़ी वक्त के लिए दुनिया में अल्लाह ने हमें मौका दिया, तो हमें इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि मतलब लोग बाद में हमें पीछे, तुम निकलो गुरूर तो करते हैं लोग, थोड़ा सा दिखावा करते हैं लेकिन बाद में पीछे से लोग उनको अच्छा नहीं कहते हैं, ये भी बात मैंने नोट किया है।
1: बिल्कुल,
0: डिंग डांग करते हो लेकिन तुम्हारे जब तुम्हारे मुंह पे तो तारीफ करेंगे वो, लेकिन थोड़ी जगह जाओ यार छोड़ो ये कल का, इसका बाप दादे कैसे थे, ये थोड़ा इसको हो गया तो देखो इसके अंदर, तो वो चीज ना कहने का।
1: सही हो गया, सही हो गया भाई।
0: जी जी,
1: चले दी, थैंक यू रईस भाई, नहीं नहीं नहीं बहुत जबरदस्त। हाँ जी जी बिल्कुल, एक कॉलर वेट पर भी है, तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ रईस भाई थे, बस एक ब्रेक लेना, वापस आते हैं।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं डियर फैमिली RJ महविश खान के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: जी, तो वापस आ गए हैं, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी शहजादा सलीम, क्या हाल चाल हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, और बस मैंने चालू ही किया तो टॉपिक ए, इसका उमान क्या है, उमान
1: आज
4: उमान बोलते
1: हैं, उनवान आपने क्या बोला, उमान
4: मैंने उमान बोला
1: नहीं उनवान आज का उनवान है हमारा कि ये जो हम लग्जरी के पीछे भागते भागते कहीं जिंदगी की जो हकीकी खुशियां उनको खो तो नहीं बैठे हैं,
4: खो बैठे हैं कि गुम हो गई है कहीं, मुझे तो लगता है गुम हो गई है, और गुम हो भी गई है, और सारी कुछ है ना नजर के सामने भी है, बस ये कि आंखों पे शायद पर्दा पड़ गया है या कुछ मिस्टेक है, कहीं ना कहीं स्क्रू लूज है मेरा ख्याल है, मुझे तो ऐसे ही कहीं नजर आता है अभी तलक तो, क्योंकि जब मैं आया था दुनिया में, एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा था मैं तो, और क्या खेलता था, क्या हंसता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कोई शऊर ही नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे वक्त गुजर गया, तो क्या मैं वही बच्चा था मानिश में मैं कभी सोचता हूँ अपने आप को उस जगह,
1: हर बंदा ये सोचता है। और अच्छा पता क्या, ये भी लगता है कि अभी तो बच्चे थे, मतलब हम भी तो अभी बच्चे ही हैं है ना,
4: क्या तो वाकई में वो तो क्या आए यहाँ दुनिया में बड़े हुए, शादियां हो गई, तो ये दुनिया का यही मकसद, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं दिल में बेचैनी लेते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, या कुछ मूवीज देखते वक्त दुनिया का दिमाग और उसमें घूमता होता हुआ कि भाई इसके बाद का ये प्लान रहा, वो प्लान रहा, ये प्लान रहा, तो ये प्लान मतलब ये हम खुद ईजाद करते हैं मेरा ख्याल है, सारे कुछ नए नए जो प्लान है ना, नई नई परेशानी हम खुद ही क्रिएट करते रहते हैं रोजाना एक है, बजाय इसके कि कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढा जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज हो गई और खाना पेट भर के खा लिया और एकदम पीसफुल, जिसको कहते हैं पीसफुल, तो वो मुझे चाहिए। हाँ, वो पता नहीं कहाँ है, वो नहीं मिल पा रहा है। मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि आम मर्रा की जिंदगी में और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जितनी भी है और एक एक नई नई कुछ नए नए इश्यूज

0: वैसे है ना, तो इंसान को इस तरह से झिझोड़ के रख दिया ना हर इसमें कि वो हर एक को ही वक्त देना चाह रहा है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो अपना गम हो, चाहे जिम्मेदारी हो, चाहे तरक्की हो, चाहे कुछ गुड लग हो, बैड लग हो, हर एक चीज में अपने आप को इस तरह से वो डिवाइड करता चला गया ना, तो वो फिर वो जब आया था दुनिया में वो फिर तो वो नहीं रह पाया, वो पता नहीं कहीं खो गया है। तो ये सारी चीजें हैं ना, वो कब मतलब इसका क्या रिजल्ट होगा, मैं तो बस यही हो गया ये तो ना मतलब क्या रिजल्ट, हाँ आखिरकार फिर वही सवाल आके खड़ा क्योंकि रिजल्ट क्या होगा उसका, लास्ट फाइनली रिजल्ट क्या होगा। और ऐसी दुनिया तो है जब तक है, और सारी चीजें हमको तो ये विरासत में तो मिली है, यानी काश हम लोग एग्जाम्पल कुरान शरीफ जो आसमान से नाजिल हुई किताब है ना, काश हम फॉलो कर लेते, या हमारे पास टाइम ही नहीं था या समझने की कोशिश नहीं किए या जाए किए, बाकी हकीकत बिल्कुल सामने है और हर चीज के गाइडलाइन से सारे कायनात का मालिक है, हर एक फीडबैक पे, हर एक चीज पे हाँ पूरी नजरें रखी हुई है, चाहे एक चींटी से लेके बड़ा शेर हाथी क्यों ना हो जाए, चाहे समंदर हो, चाहे सारे आसमान के परिंदों, सारे हर जगह पर उसकी सिक्योरिटी में हम हैं, सांसें ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं, सही है
1: बिल्कुल
0: जी हाँ। अब उसके बाद भी फिर एक ही दिशा आपकी बेचैनी क्या ये मजा नहीं आ रहा यार, थोड़ी और होनी चाहिए यार,
1: इंसान का लालच नहीं खत्म होता ना बेसिकली।
0: तो ये सारी जो ये है ना, तो अल्लाह बस यही कि मैं यही मेरी अपनी ये रहेगी, क्योंकि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ ना आपकी टॉपिक में, तो मेरा पार्टिसिपेट करने का एक मतलब एक अंदाज होता है कि मैं अपने इस टॉपिक से मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, तो हाँ तो बस मेरे यही है कि अल्लाह मेरे को इतनी हिदायत दे, भी इतनी हिदायत दे क्या ईमान के पे खात्मा हो और खुशी आले आ रहा था रास्ते में निकल रहा था। ओके जी अल्लाह भी
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। रही जी तो हमारे साथ ही शहजादा सलीम और इसके साथ ही कुछ मैसेजेस जल्दी जल्दी शामिल कर दूं फिर कॉल की तरफ चलते हैं। मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम टू द शो और डियर फैमिली दिल से देसी, हैप्पी वेंसडे इवनिंग भी आपने कहा। जी हाँ सही है, लग्जरी के पीछे जो है ना भाग पीछे सभी चीज़ों को हमने खो दिया है, सुकून चैन और सबा सबा कौन है और इसके साथ ये लग्जरीज के पीछे और बंदे जुर्म या गुनाह की तरफ जाता है और अल्लाह रहम करे, और तो जो है उसमें खुश रहें, शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है उस पर शुक्र अदा करते रहें, जो नहीं है सब्र करें। अच्छा सब्र, मैंने कहा ये सबा को कैसे खो दिया आपने, मैं हैरान हुई थी ओके और इसके साथ ही एक भाई ने बोला मावशी कॉल मी, अच्छा किसने कहा था ये है आसिफ, अच्छा आसिफ मैं अभी थोड़ी देर में बस कॉल करती हूँ आपको। इसके साथ ही एक मैसेज और है और ये है अस्सलाम वालेकुम, लग्जरी लाइफ इज स्पॉइल आवर नेचुरल लाइफ बट यू हैव टू मूव, और ये हैं कौन, ये हैं जी अजीज बट। चलें जी तो आपका मैसेज भी शामिल हो गया, हम थोड़ी देर में करते हैं आसिफ को कॉल और उसे पहले देखते हैं कि अभी कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम,
2: वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है
1: जी? जी बिल्कुल आ रही है।
2: कैसी है मविशा आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मेरी आवाज नहीं पहचान रही?
1: नहीं नहीं मैं पहचान गई हूं निका, ऐसा कैसे हो सकता है नाम पहचानू है
2: मुझे लगा था आप मेरी आवाज नहीं
1: पहचान, नहीं नहीं मैं बिल्कुल पहचान गई, नहीं नहीं पहचान गई हूं मैं मैसेज का बेसिकली साथ साथ ना जवाब दे रही थी एक, तो इस वजह से तो थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है दिमाग, लेकिन उसको ये ना समझा करें मैं हूँ इतरी और आपको पहचान भी गई हूँ जी। तो बताएं भाई क्या कहेंगी आज के टॉपिक पे
2: आप पहले बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, वो कल परसों बस थोड़ा सा मेरे कल ही की बात है ना, हाँ कल सर में दर्द हो रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक है।
2: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत शिफा दे। तो आज के टॉपिक पर बात ये करेंगे कि बस माशाल्लाह से सभी अच्छा अच्छा बोल के गए, अब समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं कर दिया हुआ है और तो कुछ नहीं है, बस यही है कि लग्जरी के पीछे भागते भागते जो है अल्लाह ताला पर हमारा जो है ईमान कम होता जा रहा है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि दुनिया जो है आरजी ठिकाना है जहाँ पर हम आए हुए हैं और हमने वापस जाना है। जब इंसान ये भूल जाता है ना तो बस समझ लेता है कि बस यही दुनिया सब कुछ है, वहाँ पर फिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी किसी भाई ने आई थिंक सो अगर मैं गलती

0: करते।
1: हाँ।
0: और जो नहीं जहाँ पर देता अल्लाह पाक, वहाँ वो देखता है ये बंदा कितना सबर करता है। और जब हम वो सबर छोड़ देते हैं और हम शैतान के बहकावे में आ जाते, अमीर हो के भी मतलब पैसा है तो भी शैतान के बहकावे में आके बहुत से गलत काम करते हैं, गरीब हो के भी यही कुछ है नहीं है पैसा तो भी हम करते हैं। तो बस ये कि अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए और अपने जोरे बाजू पर मैं समझती हूँ कि भरोसा होना चाहिए। बाकी कल की फिक्र में मैं समझती हूँ आज अपना कुर्बान नहीं करना चाहिए। वो जॉन एलिया की भी एक है ना, वो पूरी तो मुझे अभी जहन में आ रही है, लेकिन उसकी एंड की जो एक लाइन है कि कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर।
1: जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, थैंक यू अनिका, थैंक यू सो मच। और बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त स्टोरी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कल का भी टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। चले जी, तो हमारे साथ ही अनिका, और मैं सोच रही हूँ कि एक ब्रेक की तरफ, और आसिफ को थोड़ी देर इंतजार करने का पड़ेगा हमारे साथ कॉल पे रहते हुए, और हम एक सॉन्ग सुन के वापस आते हैं, बस 2 मिनट का गाना है।

0: वहां तुम बड़ी कहानी सुना रहा था, बाद में तुम्हारी बात में कबीर भाई को बोला था, मतलब कबीर भाई ये बंदा तुम्हारे बारे में बात कर रहा था और अचानक दुख बड़ी कहानी सुना, मतलब इतना बड़ा मिलता है इंसान है वो अपना भाई है वो मतलब मेरे को सुन के अफसोस हुआ, मतलब यहाँ भी मतलब एफएम पे भी सत्तो खाला बैठी रहती है
1: याल्ला
0: मतलब सत्तो खाला तुम समझ गए ना?
1: मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई, हम खाला खैरन कहते हैं उनको
0: अच्छा हम लोग मुंबई में बोलते हैं खत्तो खाला
1: सही।
0: मतलब एफएम भी नहीं छोड़ेंगे किसी भी गरीब को, अगर कोई इंसान अपनी बात कर रहा है, फीलिंग शेयर कर रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, चला भाई कोई मौका नहीं, कोई है नहीं अपने पास बात करने के लिए, कम से कम इन लोग से बात करके अपना दिल बहला लेंगे, नहीं मगर उसमें भी आके बोलना है भाई ऐसा नहीं ऐसा हुआ, अरे अल्लाह रहम करे मैं तो बोलूं भाई
1: मैं ये नहीं पूछूंगी कौन था, लेकिन ये क्यों मजे का,
0: मैं भी नहीं कौन था बाकी वो समय वो सुन रहा होगा अभी इस टाइम पे अच्छा। बोल रहा बोले भाई गलतियों को दोबारा नहीं बोलूंगा
1: सही हो गया
0: वो बेचारा कबीर भाई भी सोच रहा होगा बोले आसिफ भाई छोड़ता नहीं कहीं भी नहीं बहन क्या है ना एक्चुअली मैं बता रहा हूँ मेरी हकीकत क्या है, मतलब मैं कसम से मतलब मैं घर का ड्राइवर हूँ तो मेरे पास तो मैडम एक घंटा बैठेगी गाड़ी में, आधा घंटा बैठेगी, उसके बाद में वो ऑफिस में आके बैठेगी, तो मैं दिन भर क्या करता रहूंगा, एफएम ऑन करूंगा, ना कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई वाइफ है, फैमिली है, फैमिली को टाइम जो बात हकीकत है फैमिली टाइम टू टाइम बात करती है मेरे से, जैसे लंच टाइम हो गया बात करेगी, डिनर टाइम हो गया बात करेगी फैमिली,
1: अरे कोई मसला नहीं है आसिफ भाई आप किया करें कॉल, कोई मसला नहीं है,
0: बिन मैं बेशरम इंसान हूँ, मैं अगर नहीं बोले तो भी करूंगा
1: नहीं कोई मसला नहीं है, आप करें किया करें कॉल, हम एंजॉय करते हैं आपकी कॉल को, असल चीज ये है। तो क्या कहेंगे भाई लग्जरी के ऊपर, एक कॉल बस इसके बाद मैंने रिसीव की हुई है, तो इसलिए मैं चाहूंगी जितना जल्दी हो सकता है ना जवाब देके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लग्जरी का तो मतलब ऐसा है, हमारे पापा ने एक ही बात सीखा है, जितनी चद्दर उतना ही पैर फैलाओ,
1: बात आपने सीरियस बोली है लेकिन बोली ऐसे है ना कि उसमें भी हंसी आ गई, बात बिल्कुल सही है
0: सच्ची में झूठी बोल रहा हूँ, एक दिन मतलब मेरे पापा को मैं देख के बोला पापा आपको मालूम है बाइक RX 100 आई थिंक आपको मालूम है पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत है वो बाइक, और हम लोग का मतलब हम लोग के कॉलेज टाइम पे वो हम लोग की ड्रीम्स बाइक थी, तो मैं अपने पापा को बोलने का पापा वो आदमी देखो ना वो लड़के के पास देखो ना इतनी अच्छी बाइक है मेरे को भी दिला दो, मेरे पापा भी एक टपली मार के बोलते जितनी चादर बेटा उतनी मैं पैर फैला ले, मेरे पास साइकिल है साइकिल पे चले जा, मतलब वही चीज लग्जरी छोड़ दो खत्म, अपनी कहानी लग्जरी नहीं है, हाँ इतना है कि जो सैलरी मिलती है कतर में हम लोग को तो जाके 100 रियाल में अच्छे कपड़े खरीद के लेके आते, वो पेंटर पब्लिक को दिखाते बस और कुछ
1: जबरदस्त गुड है भाई, मतलब यही है भाई, देखिए इंसान की ना लग्जरी वो है जिसके ऊपर वो खुश है, आप उस पे खुश हैं बस उतना काफी है, ठीक है? अच्छा आसिफ आई एम सो सॉरी लेकिन आज थोड़ा सा कम वक्त बचा है, एक कॉलर को मैंने और ले लिया वरना फिर वो कहेंगे कॉल उठाई क्यों, ठीक है? तो बस उनको वक्त दे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना भाई जी। तो हमेशा हमारे हंसते मुस्कुराते आसिफ और इसके साथ ही देखते हैं कौन है, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, करा रहे थे देख रहे थे मजे की बात थी अच्छा, और मैंने जितनी भी ये कॉलिंग सुनी है बातें सही है लग्जरी, लेकिन लग्जरी आपको ना जरूरियात के लिए जब इंसान चलता हुआ जाता है ना और माशरे में देखते हुए कहीं आप स्कूल में एडमिशन कराने जाएं तो कहीं वो डोनेशन या वो उसको चाहिए पैसे चाहिए म्यार चाहिए, आपके पास अगर ये चीज़ें बुनियादी अवेलेबल नहीं है, घर है स्कूल है और हॉस्पिटल में जाएं, इवन मुझे याद है कि एक दफ़ा कहीं घर देखने के लिए मैं गया ना तो देखिए वो मुझे जज कर रहा है कि मैं घर देखने के लिए टैक्सी या रिक्शे में आया हूँ उसकी स्टेट एजेंसी में उसको दिखाने के लिए, तो मुझे कहता है इस आदमी आप ना ऐसा करें ये मेरा एजेंट है आप इसके साथ अपनी गाड़ी में ले जाएं। मैं जब आया मैंने कहा मैं गाड़ी में नहीं आया मैं टैक्सी में आया हूँ, वो कहते हैं मैं एक मिनट अंदर आता हूँ, वापस आया तो वो आके कहते हैं अभी ना वो एजेंट अवेलेबल नहीं है, वो जो जिसको दिखाने अवेलेबल नहीं है, तो बाद में मुझे दूसरे बंदे ने बताया कि ये पहले जज करते हैं ये जो घर लेने वाला आया इसके पास गाड़ी है इतनी हैसियत है या नहीं है, तो जब हर बंदा आपकी हैसियत को जज करता है ना तो इंसान अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए कोशिश शुरू कर देता है, इसी में ही वो कहते हैं ना रील और रियल में फ़र्क करना, ये मुश्किल हो जाता है। फिर हर बंदा ना इमेजिनेशन को इन चीजों के लिए पाने के लिए, कहीं इज्जत का सवाल है, कहीं तालीम का, कहीं सेहत का, कहीं हर चीजों का, और हर चीज के पीछे पैसा पैसा। फिर जब इस लाइन में आ जाता है तो फिर वो लग्जरी भी आ जाती है कि इसकी नुमाइश या यही चीजें, इसका फिर एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है, इसका कोई एंड नहीं है। हर

0: चीज इसी में शो ऑफ हो रही है। और एक वर्ड वो जो लास्ट आपका ना दो दिन पहले जो था कि जो बाहर वाले हैं, आखिरी वर्ड जो मिजरेबल है कि जो बंदा 15-20 साल द वर्ड 15-20 साल काम करके जब किसी वजह से कहे ना कि मैं अब नहीं आप कर लें, वो सारे जिनको पाल रहा होता है ना मोस्ट ऑफ देम उसके दुश्मन भी बन जाते हैं।
1: ऐसे ही है वो कहते हैं ना जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो, हजरत अली का कॉल है।
0: तो इसका मतलब अगर शुरू से आप उनको अर्निंग की तरफ डाल दें और वो काम शुरू कर लें तो वो ऐसा एटीट्यूड नहीं होता, वो सिर्फ उसी की तरफ देख रहे होते हैं, फिर उनका तो सारा हुक्का पानी समझे बंद। तो वो है, तो ये एक है, अल्लाह सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक दे लेकिन उनको हैंडीकैप ना बनाए, उनको बोले नहीं आपने भी ये करना है। तो टाइम आपका खत्म है,
1: कल का मैं टॉपिक भी बता दूं क्योंकि थोड़ा सा कुछ मिलता जुलता आप कह सकते हैं, व्हेन कंपैरिजन एंटर्स अ लाइफ आवर फैमिली। ठीक है, जब भी कंपैरिजन किसी भी फॉर्म में फैमिली में आता है इसके हवाले से हम बात करेंगे। और उसके साथ ही जल्दी से मैं मैसेजेस पढ़ लूं, कॉल मेरे पास आ रही है लेकिन अब मैं ले नहीं सकूंगी, बहुत टाइम हो गया है। आदाब अर्ज, शाम बखैर, सदा खुश रहें। टॉपिक का खुलासा यह है कि मासी की खुशी एक तस्वीर की तरह है जिसे हम जब चाहें देख कर खुश हो सकते हैं, जबकि हाल की खुशी एक जिंदा मंजर है जिसे हमें खुद जीना और बनाना पड़ता है। हकीकी खुशी हाल में पनहा है और जबकि माजी की खुशी एक सुकून बख्श याद है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। क्या बात है सलमान फारूकी साहब, जबरदस्त। कराची पाकिस्तान से, थैंक्स मुझे कहा था किसने, थैंक्स मुझे कहा था अजीज पट ने, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और इसके साथ ही असमत आफरी दिए कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वेरी नाइस टॉपिक माशाल्लाह, आज डियर फैमिली में फर्स्ट टाइम कॉल करना चाहता था बट नंबर इज वेरी बिजी। ओहो, वासिफ अली वासिफ का कॉल है कि खुश नसीब वो होता है जो अपने नसीब पर खुश रहे, बट उससे भी ज्यादा खुश नसीब वो होता है जो दूसरों के नसीब पे खुश हो। ओए होए, ये वाला जर्फ ना सब पे होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो दूसरों की खुशियों पे खुश हो सकता है ना, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत ना गमगीन नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है। चलिए जी, इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल एक टॉपिक जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसके साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अभी भी टाइम चेक कर लो एफ एम 107 के स्टूडियो की घड़ी में। फिलहाल 5:03 और आप सुन रहे हैं शो।

बहुत दिनों बाद आज ऐसा फील आ रहा है जैसे यू नो पांचवी छठी या आठवीं क्लास में आप स्कूल से आए पढ़ वढ़ के और उसके बाद बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, गर्मी का मौसम है, छुट्टियां बस शुरू ही होने वाली हैं और आपको पता है कि बस 4-6 दिन में छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो है वो गवाही नहीं दे रही है। घर आने के बाद स्कूल से आपने दाल चावल या खिचड़ी या भारी खाना खाया है, फिर आपका निकलने का दिल नहीं कर रहा और दिन में आप सो गए। दिन में सोने के बाद जो भारी जो गहरी नींद आती है ना, उसी को काहली कहते हैं कि कहीं निकलने का दिन नहीं है और आज मेरा दिन वैसे ही गुजरा, जरा भी कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था यार। मैं अभी ये महविश से भी पूछ रहा था कि ये आपके साथ भी हुआ है क्या, क्या आज का दिन जो एकदम ही यार, मतलब ऐसा भी नहीं है कि यू नो बहुत सुस्त इंसान जो है वो हो रखा हो, मन ही नहीं कर रहा है आज उठने का है, बदन पड़ा है तो पड़ा है सोफे पे, पैर ऐसे भारी हो गए हैं जैसे कि उनमें खून नहीं है यार। मुझे लग रहा है सबके साथ हुआ है, ये पतझड़ के मौसमों में होता है मेरा भाई, एक रुपए की हालत नहीं हो पा रही कि उठे और काम को निकले यार, नींद भी नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं हो रहा कि नींद आ रही हो, बस बदन जो है वो टूटा हुआ है, जोश नहीं आ रहा, नहा धो लिया फिर भी वो पार नहीं आ रही थी, लेकिन खैर अब आ गए, थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई है, अभी धीरे धीरे जान जो है वो आ जाएगी। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, और अगर आपका भी दिन ऐसा गुजरा है तो बताओ ज़रा यार, मुझे लग रहा था कि मेरा ही अपना मामला एकदम ऐसा ही है। अगर आज भी ऐसा हुआ कि सबका दिन ऐसा है तब तो मैं मान जाऊँगा चलो ठीक है सबके साथ ऐसा, लेकिन अगर सिर्फ मेरे साथ ऐसा है तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि मैं काहिल हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन ओवरऑल आज का दिन तो भाई देखो सही में, मैं महवे से भी यही पूछ रहा था, उनने भी यही कहा हाँ यार आज भी कोई काम

0: करने का दिल नहीं किया, उनके पास तो एक काम था उनने किया भी नहीं, मेरे पास दो काम थे मैंने दोनों नहीं किए तो अब जो है 7 बजे के बाद ही काम होगा। कई बार ऐसा होता है यार कि आप सुबह उठे हैं, आपका सुबह उठने के बाद काम करने को दिल नहीं कर रहा है, अब शाम को ही दिहाड़ी लगाएंगे। तो अभी की मेरी दिहाड़ी जो है वो शुरू हो गई है, वो शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रहती है। अब ये दिहाड़ी जो है वो चलती रहेगी, शाम को 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा, रापता रहेगा। बाकी आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 666-22107 पे कि आप भी ऐसे ही दरियाई घोड़ा जैसे पड़ा रहता है या फिर जैसे लाश पड़ी होती है कि जिधर उसे लात मार दो उधर चली जाती है, वैसे ही आपके साथ हुआ है क्या? आज मेरे साथ लिटरली यही हुआ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद हम बात करेंगे इवेंट से लेकर दुनिया भर की अपडेट जो कतर में चल रही है। दिल से देसी।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5:18 स्टूडियो की घड़ी में और आज के वेदर की अपडेट ले लेते हैं. सबसे पहले ये मौसम गर्म पे गर्म होता जाएगा. फिलहाल आज का जो अभी का तापमान है वो है 34 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी कल की बजाय आज दुगनी ढाई गुनी बढ़ गई है जो कि है 44% पे, और इसलिए टेम्परेचर आपको ज़्यादा महसूस हो रहा होगा. इस वक्त आपको 37 डिग्री सेल्सियस महसूस हो रहा होगा, और मेरा फिर से वही सवाल, जब महसूस ही 37 का हो रहा है तो 37 ही बता दो भाई साहब, क्यों मेहनत कर रहे हो 34 फीस लाइक 37. आपकी राइडिंग में थोड़ा सा और बढ़ ही जाता है काम, मेहनत थोड़ी सी और बढ़ी जाती है. तो कतर मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि आने वाले वक्त में हवाएं जो हैं वो और तेज़ होंगी, अलबरावी जो विंड है ये भी आपको परेशान करेगी. अरे हमको कौन परेशान कर सकता है, कोई ज़्यादा परेशान करेगा तो एसी चला देंगे बस. लेकिन हाँ, एसी चलाने से पहले चला ही दिया होगा वैसे तो अब तक आपने, इस बात का बस ध्यान रख लीजिएगा कि गाड़ी से जब जब आप एसी चलाते तो एक महक आती है, वो महक अच्छी चीज़ नहीं है. इसलिए गाड़ी के एसी वाले जगह पे जहाँ से यू नो एसी इनटेक करती है, या फिर और आसान तरीके से कह सकते हैं एयर प्योरीफायर होता है वो, नहीं एयर प्योरीफायर नहीं होता है, क्या कहते हैं यार उसे, अरे होता है ना यार, हवा हवा पड़वाओ तो फिर वो साफ़ हो जाती है, उसमें गंदगी होती है, वो ग्लव बॉक्स के नीचे होता है, ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है. आज का दिन ऐसा है ना तो मैं आज ऐसी ही बात करूँगा, ठीक है. कह रहे वो होता है ना, वो बगल में होता है, लेफ्ट राइट में होता है, वो ग्लव्स बॉक्स के अंदर होता है, उसमें ग्लव्स बॉक्स खोलने पड़ते हैं, फिर अंदर हाथ डालो फिर बाहर निकाल लो, है ना, उसको एसी फिल्टर कहते हैं आई गेस. तो वो फिल्टर जो है क्लीन करा लेना, फिल्टर कहते हैं, बाकी उसका असल नाम क्या है मेरे को पता नहीं, एसी एयर फिल्टर समथिंग, तो मैं भूल रहा हूँ बस. तो आज पूरे 7 बजे तक ऐसी ही बात होगी, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में. अब आज आपका एग्जाम है. रोज मेरा होता है ना, आज आपका एग्जाम है, मैं बोलूंगा तुम समझो. आज के लिए मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ रोहित शर्मा का. रोहित शर्मा का था, अरे क्या है ना, वो उधर था, मैं उसके आगे गया, फिर मैंने उसको ये दिया, फिर मैं ये किया. बाकी तुम समझो, ठीक है. आज तुम विराट कोहली हो, टीम के बाकी मेंबर्स हो, और मैं रोहित शर्मा. आप देख लो अपना अपना. और बाकी टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं. 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान आज रहा था, और न्यूनतम कम से कम जो टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा. अरे बाबू, हम इसी से इस 30 को 16 कर लेंगे, तुम चिंता मत करो. उसके अलावा कई बार आपको प्यास का एहसास नहीं होगा, लेकिन पानी आपको इतना पीना है कि जब तक आपको डकार ना आ जाए ऐसा लगेगा अरे नली तक भर गया है, अब नहीं पियेंगे. अब अगर पानी पी लिया तो अंदर से पेट के जो ऑर्गन्स है वो तैरने लग जाएंगे, ठीक है. तब तक पानी पीते रहो, जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो, और रुक रुक के थोड़े थोड़े वक्त में भी पीते रहें. उसके अलावा इवेंट्स के बारे में अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि इवेंट्स ही तो कतर की जान है आज.

0: कल सबसे पहले जिनको किताबों का शौक है उनको बता दें कि 14 मई यानी कि कल से शुरू हो रहा है, थर्सडे के दिन से शुरू हो रहा है दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर, और इसकी लोकेशन है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। फ्री में अटेंड कर सकते हैं, हैं जी, अपने लोगों को दो ही चीज़ तो फ्री है, एक इवेंट, दूसरा फालतू की बकवास। हाँ, बाकी फ्री में जो है हरी धनिया मिल जाए वो भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी मैसर नहीं है, ठेले वाले नहीं है ना, ठेले वाले से ले लेती थी अम्मी,
1: अरे इतना सामान लिया है भैया जी, थोड़ा सा हरी धनिया तो दो, अरे हरी धनिया दिए दो मिर्चा डालने में तुम्हारा क्या जा रहा है,
0: तो अम्मी ये भी करके ले लेती थी। ठेले वाले बेचारे ये सोचते थे कि इन आंटियों के पास जाओगे तो ठग लेंगे, और असल में आंटियां ठगी जा रही थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है, और ये 35वां सेशन है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, फ्री है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो बुक्स होंगी, ग्लोबल ऑथर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स वगैरह होंगी, और ये जो इवेंट है ये बड़ा ख़ास होता है क्योंकि किताब जो पढ़ते हैं बाकायदा बैठ के, उनकी इमेजिनेशन से लेकर उनकी स्किल, लैंग्वेज स्किल तक बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके अलावा जिनको एग्जीबिशन का शौक है वो जा सकते हैं कंटेम्प्रेरी ग्राफिक आर्ट एग्जीबिशन में, जो कि डेली 18 मई तक खुला रहेगा। तो ये चल रहा है कटारा कल्चरल विलेज के हॉल नंबर 18 में कंटेम्प्रेरी ग्राफिक आर्ट एग्जीबिशन, सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं। 18th ऑफ मई तक ये जारी रहेगा, इनसाइड हॉल 18 एट कटारा कल्चरल विलेज। उसके अलावा मोनोप्रिंट वर्कशॉप के बारे में बात कर लेते हैं। ये अडल्ट मोनोप्रिंट वर्कशॉप है जो कि पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से आप क्रिएटिव हो सकते हैं, और यहाँ पर आर्ट लेआउट सेशन शेड्यूल किया गया है 16 मई को आप इंजॉय कर सकते हैं 11 बजे सुबह से दोपहर के 2 बजे तक एट एडुकेशन सिटी। लेकिन इसके लिए आपको कतर म्यूजियम्स प्लेटफॉर्म पे जाकर प्रायर बुकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बुकिंग मैंडेटरी है, बगैर बुकिंग के काम जो है वो नहीं चलेगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं लाइव एंटरटेनमेंट का, जिनको शौक है इस वीकेंड म्यूजिक का, एंटरटेनमेंट का, तो ओपेरा का माहौल अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो कटारा ओपेरा हाउस में शाम को 7:30 बजे 16 मई को हो रहा है ज़बरदस्त ये ओपेरा, जहाँ पर कतर के ज़बरदस्त और कतर कॉन्सर्ट कोयर के ज़बरदस्त परफॉर्मर यहाँ पर होने वाले हैं, तौफीक मातूक होंगे जो कि लाजवाब है, जिनको इनके बारे में पता है उनको पता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं फोंताना सर्कस के बारे में। फोंताना सर्कस बहुत ज़्यादा फेमस है और ये हयात प्लाजा में चलेगा अंटिल 31st of May 2026। एक्रोबेटिक से लेकर आप फैमिली फ्रेंडली म्यूज़िक का इन्जॉयमेंट जो है इस जगह पे कर सकते हैं। उसके अलावा 4th GCC गेम्स के बारे में हम बात कर चुके थे कल, टोरबा मार्केट के बारे में भी बात कर चुके थे, बट टोरबा मार्केट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि कनत क्वार्टर में होता है, और पर्ल आइलैंड के इस खूबसूरत जगह अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कतर की जो मार्केटिंग है, तोरबा मार्केट है, वो और भी लाजवाब है बाकी इवेंट से। तो 16 मई से आप जो है शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक तोरबा मार्केट में इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स FM 107 पे। अब बात कर लेते हैं जरा हल्के हाथ से आज के सवाल के बारे में, कि आज का सवाल एक्चुअली है क्या।

FM 107 पे वाइब ट्रू. और आज का सवाल ये है कि यू नो मोबाइल वगैरह हम सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. बगैर मोबाइल के आजकल काम कहाँ चलता है. बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दो. बच्चा टेंशन दे रहा है, आपको सुकून से दोस्तों के साथ बैठने नहीं दे रहा, अरे दे दो मोबाइल, दूसरे कमरे में जाके लगा रहेगा, हमारी टेंशन कम होगी. उसके अलावा यू नो आप रील चलाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर होते हैं तो आप टीवी की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर टीवी चलाते चलाते आपको मोबाइल भी देखना होता है. कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है लेकिन मोबाइल देखना लाजमी हो जाता है. तो ये जो बोरियत है, बोरियत को कवर करने के लिए ये मोबाइल की रील्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई. इसकी वजह से हमारा काम हैम्पर हो गया है. तो आपकी ज़िंदगी में कब कब ऐसा वक्त आया है कि आपका कोई काम हैम्पर हुआ हो क्योंकि आप रील बहुत ज़्यादा चलाते हैं या फिर मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं? कितने लंबे वक्त तक आप स्क्रॉल करते हैं? या फिर आपकी ज़िंदगी में कौन सा काम मुतासिर हुआ या आप लेट हुए जब आप रील इस्तेमाल कर रहे थे, या कुछ ऐसा ब्लंडर हो गया हो कि रील इस्तेमाल करते करते हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में या तो आप यू नो अपने ऑफिस में, अपने घर में, या अपने बच्चों से, अपनी बीवी से सूते गए कि अब्बा आपके चक्कर में ये मसला हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया तो ये मसला हो गया. तो वो मेरे को आज जानना है क्योंकि पिछले दो बार से, मेरे ख्याल में एक तो एक हफ्ते पहले हुआ है और एक दो दिन पहले हुआ है, मैंने ऐसे कांड कर दिए हैं मोबाइल चलाने के चक्कर में, रील ज़्यादा देखने के चक्कर में, कि इसकी वजह से मेरा दो नुकसान हुआ है. मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना है हमारा व्हाट्सएप नंबर 666-22-107. तो वो नुकसान बताइए, या तो आपको रील चलानी थी या आपके बच्चे ने रील चलाई, ज़्यादा यू नो सोशल मीडिया पे लगे रहे, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे लगे कि ऑफिस के लिए लेट हो गए, या फिर घर का काम कोई हैम्पर हो गया, या कार चला रहे थे और फिर रील आ गई, कोई बढ़िया सी दोस्त ने भेज दी थी, वो हंस रहे थे उस पर, तो उस पर कुछ कांड हो गया. तो ये आपको बताना है कि मोबाइल के एडिक्शन से या रील के एडिक्शन से आपको एडिक्शन से क्या नुकसान हुआ है आपको. व्हाट्सअप 666-22-107. बाकी मैसेज की तरफ आते हैं धीरे से. और सबसे पहला ये मैसेज है सलाम का, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. बस सलाम किया और फिर 9:11 हो गए. मोहम्मद शौकत अली, क्या बात है, शौकत साहब ने सलाम किया और फिर पतली गली से कहीं तो निकल गए. यूसुफ भाई का मैसेज है सलाम वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वेंसडे इवनिंग, हैप्पी वेंसडे इवनिंग मेरा भाई. और उसके अलावा ये मैसेज है खुर्रम शहजाद का, भाई क्या दिहाड़ी लेबर की होती है, दिहाड़ी लेबर की होती है कह रहे हैं एसी कौन, ये कौन सी दिहाड़ी है एसी में बैठकर, अरे ये मॉडर्न दिहाड़ी है मेरा भाई तुम तो ये मतलब अब आपको एकदम ही, एक तो क्रिएटिव आदमी से कुछ भी पूछोगे ना तो फिर उसके पास जवाब होता है ये मॉडर्न दिहाड़ी है, ठीक है. हाँ मैं मानता हूँ कि आपके नज़रिए में, आमतौर से लोगों के नज़रिए में जो दिहाड़ी है ये अलग वाली होती है, उनके हिसाब से दिहाड़ी वो दिहाड़ी होती है जिसमें मतलब बाहर काम करो और फरसा लेकर काम करो, तब तक मानेंगे नहीं ये दिहाड़ी है. ये कैसे दिहाड़ी दिहाड़ी होती है भाई, अब आप एसी में बैठ कर करें, आप कहीं पर भी बैठ करें. हाँ ये मैं मान सकता हूँ, कुछ दिहाड़ी हल्की कुछ दिहाड़ी भारी होती है. और ज़िंदगी में हर छोटा और हर बड़ा आदमी दिहाड़ी ही तो कर रहा है. दिहाड़ी का मतलब यही है कि दिन में जाओ, सुबह जाओ काम करने के लिए, शाम को वापस आओ, उसके पैसे हमें मिल जाए. बस स्ट्रक्चर ये है कि वो पैसे मिल रहे हैं, जमा हो रहे हैं कंपनी के पास, महीने के आखिर में मिल जाते हैं ये दिहाड़ी भाई वाली है खुर्रम भाई. उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, ये मैसेज है अंसारी भाई है शायद, ये नहीं नहीं एम एम खान, के एम खान का है. अस्सलाम वालेकुम भाई, हैप्पी वीकेंड इन एडवांस. आ गया वीकेंड तो बगल में ही है मेरा भाई, मतलब एक कदम उधर रखो वीकेंड आ गया. अभी क्या 5:30 हो रहा है, 6:30 घंटे बाद एग्जैक्ट वीकेंड शुरू हो गया समझ लो, और क्या मतलब रात को 12:15-12 बजे वीकेंड मानोगे नहीं मानोगे भाई, थर्सडे वाला. तो कुछ लोगों का तो देखो रात को 12 से 6 काम होता है, उनका वीकेंड शुरू. सलाम अलैकुम. बाकी एक और इस भाई का मैसेज है सलाम अलैकुम फजल भाई, डेली दिहाड़ी नहीं महीने वाली दिहाड़ी. हाँ ये भी देखो कितनी अच्छी बात कही, नाम तो नहीं लिखा है भाई ने और बहुत महंगी कार की तस्वीर लगाई हुई है ट्रेडिंग एंड सर्विसेज वाले भाई ने नाम क्या है आपका, जो भी है नाम,
दिख तो नहीं रहे, ऊपर भी कहीं लिखा नहीं है, इनका नाम नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप नाम लिख दें, तनवीर इनका नाम है, और तनवीर साहब ने लिखा है कि डेली दिहाड़ी नहीं या महीने वाली दिहाड़ी बस, है ना। तो ये वाला है, ये डेली का तो अलग होता है कि सुबह आ गए मजदूरी करा सही में वापस आ गए। तो देखो मजदूर हर आदमी है ना भाई, बस फर्क है। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है अबू सर, उनका बिजनेस है, तो हम जब भी ग्रुप में बैठते हैं तो ये कहते हैं भैया हम मजदूर, हम मजदूर, सब अपने अपने को ये कहते हैं। तो कहते हैं अरे भैया सबसे अच्छा उधर का है, तो हमने कहा नहीं भाई, वो भी अगला आदमी भी मजदूरी पे है, फर्क है बस, है ना। उनका वो किसी और के लिए, और सच में देखो तो सबसे ज्यादा

0: दर्दी तो बिजनेस ही संभालना भाई। तो ये टेंशन है भाई। आगे तनवीर लिखते हैं, फोन के चक्कर में नुकसान तो नहीं हुआ मगर हाँ कतर फोन कैमरे से बचें। हैं आधी आधी बात हो गई भाई, ये क्यों है, कैसे है, क्यों बचें, ये सब कुछ नहीं। ये कह सकते हैं कि फिजूल की चीजों की तस्वीर लेने से बचें, ये वाला ज्यादा सही हो गया। नहीं उसके अलावा एहसान उबैद कुरैशी, बहुत दिनों बाद सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे है मेरा भाई, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। यूसुफ भाई ने कहा है, फजील आज का क्वेश्चन अच्छा है, आई एम श्योर सभी के पास कोई ना कोई किस्सा होगा ये मोबाइल की एडिक्शन से। अगर मेरा कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक तो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, इतना ज़्यादा टैलेंट है क्या आपके अंदर, इतना सब्र, क्या आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। लिखा है, और मैं ऐसा एडिक्टेड हूँ नहीं, ये सभी सोशल मीडिया को घूरते रहना, बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा देख लेता हूँ, जैसे कि न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए बस। तो यार टैलेंट तो है भाई, अगर आप अगर ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए खो नहीं जा रहे हैं, तो मैं तो मानूंगा यार आप में टैलेंट है। मेरे साथ तो किस्से हुए हैं, मैं बताता हूँ कुछ देर में। FM 107 पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पहले एक किस्से के बारे में बात करेंगे जो मेरे साथ एक हफ्ते पहले हुआ है। भाई साहब बेल्टे उड़ गई थी घर में। कुछ देर में FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ एफएम 107 कतर दिल से देसी।
3: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सरवर के साथ सुनिए जूनियर शेफ हर जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी। अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन एफएम 107। Stay tuned and stay inspired. सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो पढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न।

107 पे वाइब ब्लू 5:36 स्टूडियो की घड़ी में। और आज का सवाल के रील चलाने को लेकर या मोबाइल चलाने को लेकर ज़्यादा बिजी रहते हैं कुछ लोग, और उस बिज़ी होने के चक्कर में कुछ लोगों का काम हैम्पर हो जाता है, कुछ लोग कुछ भूल जाते हैं, कई बार ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, कई बार किसी लोकेशन पे पहुंचने के लिए लेट हो जाते हैं, कई बार अनहोनी हो जाती है। तो आपके साथ क्या हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपने मोबाइल इस्तेमाल किया कभी, या फिर आप सही में गफलत में हो गए और इस कदर रील वगैरह चला ली कि आपसे कोई बड़ा ब्लंडर हो गया कुछ, तो वो आपको शेयर करना है। छोटा सा कोई किस्सा, फनी कोई किस्सा आप बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662210 6662210 तो अभी मैंने बताया था ना कि मेरे साथ क्या किस्सा हुआ, मतलब बताया नहीं तो बताने वाला था। तो मेरे साथ एक तो सबसे पहले वाला किस्सा मुझे एकदम से याद आया, और ये बहुत पहले का, करीब 7-8 साल पुराना है। उस वक्त भी मोबाइल का बहुत ज़्यादा शौक था, तब रील तो नहीं आई थी उस वक्त तक, लेकिन तब बहुत ज़्यादा चलता था वो था सोशल मीडिया, जैसे कि नया नया आया था ब्लू वाला एक सोशल मीडिया, ठीक है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। उसमें मेरे साथ एक हरकत हुई थी कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, अम्मी ने कहा था कि बेटा, वो अम्मी को कहीं काम से जाना था, अम्मी ने कही कि बेटा एक काम करना, मैं जा रही हूँ, उनने नकाब पहना और वो चली गई। मैं उनने इतना कहा गैस बंद कर देना, मैंने कहा हाँ बंद कर दूंगा, फिर मैं मोबाइल पर लग गया। अब आपको पता है 8 साल पहले मेरी टीनेजर वाली एज थी भाई, मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था और मैंने रख रहा था जवानी की दहलीज पे, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। ठीक है, उसमें हुआ ये कि अम्मी ने दूध चढ़ाया था, तो अब उधर तो ऐसा होता है ना, ख़रीदा आपने और फिर आपको उबालना होता, तो दूध उबालने के भी 3 स्टेज होते हैं, या कहें दूध ख़राब होने के 3 स्टेज होते हैं। एक उबल रहा है, उबलते उबलते वो गैस जब नॉर्मल एक चल रही हो तो पतीले के ऊपर आ जाती है, सिंपल। इस वाले में तो कोई गड़बड़ नहीं भाई, तुमने लास्ट मोमेंट पे बंद किया, कोई बात नहीं। एक है कि उबल कर फिर वो अपनी लोकेशन पे आ जाता और अंदर ही अंदर वो उबलता रहता पतीली के अंदर। उबलना का मतलब ये कि यहाँ पर दूध थोड़ा सा गिरा, फिर थोड़ा सा पतीली में बच गया, अब वो अंदर ही अंदर उबल रहा खूब देर तक, और वो इतना उबलता कि येलो पड़ जाता है। ठीक है, ये दूसरी स्टेज है। अब आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में पतीले के अंदर जो येलो हो गया है वो भी इतना उबल जाता है कि उसके अंदर कुछ नहीं बनता और कुछ नहीं बचता। और अम्मी कम से कम 5-6 घंटे के लिए गई थी भाई। मुझे पहली बार पता चला है कि दूध ज्यादा उबल जाए तो पतीले में कुछ नहीं बचता और पतीला काला अलग हो जाता है। और जब यही बात अम्मी को पता चलती है तो अम्मी बेल्ट से मार मार के काला कर देती है हमारी पीठ। तो पहली बार था जब मुझे पता चला कि सोशल मीडिया ज्यादा चलाओ तो दूध उबलने से लेकर दूध खत्म हो जाने तक 3 स्टेज होते हैं। तो पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ था, इसलिए ये तो मुझे एक किस्सा याद है। एक मेरे साथ अभी 1 हफ्ते पहले हुआ है, और वो हुआ ये कि वाइफ ने बोला, इस बार दूध का मसला नहीं था, कि 3 सीटी आए तो आपको चावल बंद कर देना है। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि सीटी नहीं रुकती है, सीटी तब तक नहीं रुकती जब तक पानी का एक कण भी कुकर के अंदर हुए, तब पानी का छोटा सा एक बूंद भी है सीटी आएगी, वो खत्म होती है अंदर ही अंदर, चावल जो है चावल के अंदर की जो पानी है वो फिर सीटी बनाते हैं। तीसरी स्टेज आती है, फिर तीसरी स्टेज ये है, चावल अंदर ही अंदर काले होने लगते हैं और इतने काले होते हैं कि फिर आपको कुकर बदलना पड़ता है। अब ये सिचुएशन देखो डेंजर है। वाइफ को पता चला बहुत धो रही थी वो, फिर वो धुला भी नहीं, इतना हो गया कि कुकर काला हो गया एकदम, फेंकने की स्थिति आई। अब वो ये मेरे को देख रही है इतने गुस्से से कि इस आदमी को भी नहीं फेंक सकते, कुकर ही फेंकना पड़ेगा, मोबाइल में इतना ज़्यादा लगा रहता है। भाई मेरा सबसे बुरा दिन पिछले 1 हफ्ते पहले वाला ही गया था, बता रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा सोशल मीडिया का सेवन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं इस्तेमाल करता हूँ। 2 दिन पहले वाला किस्सा भी बताऊँगा क्या हुआ, लेकिन वो लाइट मूड वाला है, उसमें बेगम ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। पता नहीं यार, हम मर्द सिर्फ इसलिए आए हैं क्या, या तो अब्बा से मार खा रहे हैं, या अम्मा से हम सुनाई दे रहे हैं कि अम्मा सुनाई दे रही हैं आके, या बहन उल्टा सीधा बोल जाती है, और फिर इन सब के बाद जब सोचते हैं कि बेगम के ऊपर थोड़ा हुक्म चलाएंगे तो आजकल सिस्टम बदल गया है, उल्टा बेगम सुना देती है यार।
हर कोई सुना रहा है यार मर्द को। एक और दो लोग हैं सुनाने वाले, उनका नाम नहीं ले सकते। ओके सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई क्या नाम है आपका? इश्तियाक नाम है। सलाम मेरा भाई, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। फिर ये है, जहां मोबाइल कैमरा वही इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, एक सेकंड बोल के होल्ड करना पड़ता है ड्राइव करते टाइम। ड्राइव करते टाइम, हाँ कतर में, अब ये आपकी लाइन समझ में आई, कतर में फ़ोन कैमरे से बचे, यानी कि जो रोड पे चलते हुए कैमरे लगे हैं उनसे बचे वाइल्ड ड्राइविंग, जब आप फिर फ़ोन करते हैं किसी को या फिर किसी से फ़ोन पर बात करते हैं कान में लगा के, इतनी मस्त फोटो आती है ना, फिर आपको वो फ़ोटो आपके मोबाइल पे नहीं दिखेगी, वो फ़ोटो सिर्फ दो जगह दिखती है, या तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाके, या फिर आपको दिखती है मेट्रैश पे जाके जब आप फाइन भरते हैं। ये एक लौती ऐसी फोटो है जो आपको आपके मोबाइल में नहीं दिखती है, वो मेट्रैश में दिखती है। पर सेल्फी 500 कतरी रियाल। ये भी बहुत कर्री लाइन बोल दी मेरा भाई तनवीर ने, कहा है पर सेल्फी 500 कतरी रियाल का खर्चा है बाबा, महंगी सेल्फी है ये, एक लौती ऐसी सेल्फी जो जेब से खर्चा कराती है और जरा भी अच्छी नहीं लगती है। उसके अलावा कहते हैं अम्मी से रोटी वाला बेलन नहीं पड़ा कभी। खुर्रम भाई देखिए, मेरी किस्मत माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि जब तक अम्मी बेलन उठाती थी मेरे पैर में इतनी जान होती थी कि मैं गेट से बाहर भाग जाता था। फिर अम्मी भी कम चलाक नहीं थी, अम्मी का अगर जिस दिन हो गया कि आज तो इसको पिटवाना है, फिर वो कुछ नहीं कहती थी, वो चुप होकर पहले सुनती थी, समझती थी और सारा गुस्सा अपने दिल में भरती थी। अब जब अब्बा के आने का टाइम होता था वो मुझे प्यार से बैठाती थी और देखती थी कि उस वक्त बताएं जब अब्बा सही में गुस्से में हो, सारी जो कहानी है फिर अब्बू को बताई जाती थी और अब्बू ऐसा लगता था, मेरे पता नहीं क्या सिस्टम था उनका, ऐसा लगता था वो हमेशा गुस्से ही में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता था कभी कभार वो मुद्दा ढूंढते थे कि कोई मुझे कह दे कुछ, मुझे औलाद को पीटना है। अब्बा मौका ही ढूंढते थे कि आज यार बहुत दिन से कुछ किया नहीं है यार, बेल्ट भी टंगी हुई है। अच्छा वो बेल्ट क्यों लेकर आते तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि आज भी आप मेरे अब्बा को देखेंगे वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। कुर्ते पैजामे में भाई कौन से बेल्ट की जरूरत होती है, नहीं होती ना। मुझे नहीं याद है कि फोटो के अलावा अब्बू ने कभी भी जीन्स पैंट पहनी हो, जीन्स भी नहीं पहनी, पैंट ही पहनी है, लेकिन बेल्ट मुसलसल घर में हर जगह दिखती थी, हर कमरे में दिखती थी कि कभी मौका मिल गया फजील को। मुझे लगता था ऐसे ही कि अब्बा जो हैं किसी बात का गुस्सा तो उतार रहे हैं मुझ पर, एक बार कहना होता था अम्मी का, अब्बा का तो हो जाता था आज तो पार्टी है। ओके बाकी खर्रम भाई ने लिखा कि हमको पड़े हैं और कपड़े वाला थापा भी। कपड़े वाला थापा छोटा होता भाई, फेंक के भी मारा जा सकता था ना वो। अरे यार बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है हम मर्दों पर। नसीम भाई कहते हैं मिर्ज़ा साहब बर्तन धोने चले गए क्या? अच्छा ये सुबह वाला है, ओके सॉरी भाई। फज्जू कुकर नहीं बेलन पड़े हैं, नहीं कुकर तो फेंका है, बेलन से मैं बचा हूँ, बेलन से नहीं पड़ा है, क्योंकि अम्मी को लगता था कि बेलन अगर फेंक दे सर्वर पे पड़ गई तो घर धनिया भी तो मंगवाना है, फिर वो किससे मंगवाएंगे अगले दिन। अम्मी मेरी बहुत कैलकुलेटिव थी है ना, तो वो टीचर थी ना अम्मी, तो अम्मी को पता था कि बच्चे को इतना मारो कि काम भी निकलवाना है। तो आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं, कुछ ऐसे जेल होते हैं ना जिस जेल में इतना खाना दिया जाता है कि जिंदा भी रहे, एनर्जी रहे, उससे काम निकलवाते रहो। तो अम्मी मेरी बहुत दिमागदार थी, मुझे लगता था अम्मी कभी कभार टीचिंग तो बहाना था, अम्मी जेलर थी। लेकिन मैंने खैर अम्मी को देखा भी, अम्मी पढ़ाती थी। तो कभी कभार तो शक था। तौफीक भाई का सलाम है। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं? और वो कौन सा फोर व्हीलर है जो सबसे कम माइलेज देती है? दुनिया का सबसे कम माइल देने वाला चार व्हीलर, दुनिया का सबसे कम माइलेज देने वाला चार व्हीलर, चार व्हीलर तो नहीं पता मुझे, ये पता दो हाथ दो पैर वाला तो मर्द बच्चा ही होता है, मैं तो इससे ज़्यादा तो मुझे पता भी नहीं है भाई, थोड़ी थोड़ी नॉलेज।

0: यूसुफ भाई ने क्या कहा है, फजील ये टैलेंट नहीं है, यानी कि उनका टैलेंट नहीं है, ये कहते हैं बस अपनी अपनी पसंद है और ज़रूरत है। कोई वक्त ख़राब कर रहा होता है, कोई वक्त का सही यूज़ कर रहा होता है बस। अब ये बात तो आपने यार टॉन्ट मार दी मेरे ऊपर कि इतना मोबाइल भी इस्तेमाल ना करा करो फजील, ये तो मेरे ही ऊपर है यार, गलत बात है भाई। ओके एक और ये मैसेज है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजील भाई एक बार मेरा भी एक किस्सा है, बड़ा डर डर के पढ़ना पड़ता है भाई, पूरी लाइन पहले मैं पढ़ लूं क्योंकि लाइव पढ़ना होता है ना, कहीं ऐसा ना हो फ्लो फ्लो में पढ़ दिया और फिर कुछ और निकल कर चला आया, फिर ये तो बच गए हम चले गए। फिर मेरे साथ वही वाला किस्सा होगा असली वाला, कि जेल में है फजील भाई, बस उतना खाना दिया जाता है जितने में जिंदा रहे और काम करवा लिया जाए इनसे। ओके सलाम लिखा है, ओके वालेकुम अस्सलाम। भाई ने कहा है कि मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ है, मैं घर पे जिस गैस पे दूध चढ़ा हुआ था उसका रेगुलेटर बंद करना आप भूल गए थे। ओके नाम क्या है इनका, वाजिद भाई भूल गए। वाजिद भाई फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वाला किस्सा तो बहुत बढ़िया है भाई। कल ही की बात है कि मैं ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने बहुत डांटा, रील का सेवन अच्छा नहीं। रील का सेवन तो अच्छा नहीं है दोस्त। नाम क्या है आपका, रफ्तार नहीं कुछ और लिखा है, ये किसी और तो का जवाब है, नाम लिख दिया करो मेरा भाई साथ साथ में। अरे फज्जू भाई, सुपरमार्केट का ट्रॉली 10-15 मीटर में 500,000 रियाल का खर्चा। अच्छा ओहो, सबसे महंगा चार व्हीलर जो बता रहे हैं तनवीर साहब, वो बता रहे हैं कि 15 मीटर में 500,000 रियाल का खर्चा। ये वाली ट्रॉली तो आपकी सहूलियत के लिए भी है नहीं। ओके तो दोस्तों जो नए लोग हैं एक बार सवाल जो है आपके लिए रिपीट कर देते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है, सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई काम नहीं होता उस वक्त, तो हम रील बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते। तो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा किस्सा हुआ कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने पर या ज़्यादा रील इस्तेमाल करने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ हो, कुछ गड़बड़ी हो गई हो, कुछ हैम्पर हुआ हो, आपका काम हैम्पर हुआ हो, आप ऑफिस लेट पहुँचे हों, है ना, रील स्क्रोल करते हुए, ज़्यादा मोबाइल स्क्रोल करते हुए, तो वो किस्सा क्या है वो आपको बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107-6-6-6-2-2-107। बाकी आप हमें बता सकते हैं। उसके अलावा ये एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, नहीं नहीं नहीं ये वाला नहीं पढ़ सकते भाई, हल्की हल्की बात लिखो कि मैं यहाँ पर पढ़ लूँ। मुझे लगता है लोगों का यही हिसाब है कि इसकी नौकरी खा जाता हूँ जरा। यूसुफ भाई कहते हैं, नहीं फजील ये टॉन्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक आजकल की दौर की हकीकत है कि एडिक्शन आपको ही नहीं बल्कि आपकी जनरेशन के सभी को है। ये बात तो मैं मानता हूँ, हम सबको एक एडिक्शन तो लग गई है हर बात पे जो है, मोबाइल इस्तेमाल करना, रील देखना और घंटों घंटों पड़े रहना, पूरा टाइम जो है उसी में खाली खोटी ख़राब हो जाता है। बाकी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल आपके मैसेज हम कुछ देर में लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद हम इस पर बात करेंगे। और सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ हो जिसके वजह से आपका काम भी हैम्पर हुआ हो, कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, रील स्क्रोल करते हैं, रील चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, इसके वजह से कोई नुकसान हुआ हो, कोई चीज़ भूल गए हो, लेट ऑफिस पहुँचे हो, कोई गड़बड़ी हो गई हो, या काम कोई आपका हैम्पर हो गया हो, वो बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 666-22-107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद आपके मैसेज पढ़ेंगे। दिल से देसी।
1: दोस्तों अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हो। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं।

0: ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है। हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा अंत अहक मन ज़िक्र व अहक मन उबद। ऐ अल्लाह, तो सबसे ज्यादा याद किए जाने के लायक है, तो सबसे ज्यादा इबादत के लायक है। व अंसर मन बतगी, मदद के लिए सबसे बढ़कर तुझसे ही मांगा जाता है। व अरअफ मन मलक, तो हर मालिक से ज्यादा मेहरबान है। व अजवद मन सुइल, सवाल किए जाने वालों में सबसे ज्यादा अता करने वाला तू है। वे सामिन किराम, ये दुआ अल्लाह ताला की अजमत, रुबूबियत, रहमत, कुदरत और बंदे की आजजी को नुमाया कर रही है। ये दुनिया इंसान को याद दिलाती है असल अजमत किसकी है, असल ताकत किसकी है, असल रहमत किसकी है। दुनिया में इंसान लोगों को याद करता है, माल को याद करता है, मसाइल को याद करता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको याद करना चाहिए? अल्लाह को, क्योंकि सबसे ज्यादा इबादत के लायक वही है। सजदा, दुआ, उम्मीद, खौफ, तवक्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब मुश्किल आए, रास्ता बंद हो, जब इंसान कमजोर हो जाए, तो दरवाजा किसका खटखटाना चाहिए? अल्लाह का। दुनिया के लोग अगर मेहरबानी करें तो वो महदूद है, लेकिन अल्लाह की रहमत बेहद, बेहिसाब, हमेशा के लिए जारी। लोग देते हैं हिसाब से, अल्लाह देता है बेहिसाब। अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्द ला निद लक, तू बादशाह है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू यकता है, तेरा कोई बराबर नहीं। दुनिया की हुकूमतें बदलती हैं, तख्त बदलते हैं, निजाम बदलते हैं, लेकिन अल्लाह की बादशाहत हमेशा है। न मिसाल, न शरीक, न मुकाबिल, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक, हर चीज फना होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ तू बाकी रहने वाला है। समीन, माल खत्म होगा, शोहरत खत्म होगी, जिस्म खत्म होगा, लेकिन अल्लाह बाकी है। अलबका उलिल्ला लन तुताअ इल्ला बिइज़्निक, कोई तेरी इजाजत के बगैर इताअत नहीं कर सकता। अगर हम नमाज पढ़ते हैं,

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी, टाइम फॉर द लंच चेक। FM 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:02।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6:05 स्टूडियो की घड़ी में, और आज का सवाल के रील चलाने को लेकर, आपने कभी ऐसा कुछ किया है कि कुछ गलती हो गई हो, ज़्यादा रील चला ली हो तो गड़बड़ हो गई हो, या ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर लिया हो तो आप घर से ऑफिस के लिए लेट निकले, या फिर बॉस ने कोई काम दिया था वो आपने काम नहीं किया, घर का कोई काम नहीं हुआ, तो अगर ऐसा कोई फ़नी इंस्टेंस हुआ हो आपके साथ तो वो ज़रूर बताएं। फिलहाल राशिद भाई ने तो बहुत ही अच्छी बात कह दिया, और ये शायद पता नहीं मेरे साथ भी ऐसा कि कभी तो हुआ होगा। बहन जो है वो ट्यूशन जाती थी, कहते हैं कि उनका काम ही ये था कि बहन को ट्यूशन से ले कराना है, क्योंकि वो स्कूल और ट्यूशन का हिसाब बनता था ऐसे कि ट्यूशन तो पहले बहन चली जाती थी, ये लेट आते थे तो बहुत लंबा चिट्ठा लिखा है। फिर उसके बाद होता यह कि इनको लेने जाना होता था। एक बार अब्बा ने कहा कि तुम ले आना, गाड़ी की चाबी दी, और फिर ये भूल गए। क्यों? क्योंकि मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, और वो आखिरी दिन था जब इन्होंने कम मोबाइल, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करा

उसके बाद मोबाइल कम हो गया। तो अब्बा ने पहले तो अब्बा ने उस दिन दो चीज तोड़ी है, कह रहे ये वाली मेरी लाइन थी कि अब्बा ने उस दिन दो चीज तोड़ी, लेकिन उस दिन के बाद से भाई ने कहा है कि मोबाइल कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब्बा ने तो मोबाइल तोड़ ही दिया था, बहुत गुस्सा था और कायदे से पड़ी भी थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी, मेरी बड़ी बहन थी, मैंने कभी उसको कहीं मेरे ख्याल से एक दो बार लेकर आया हूँ कॉलेज वॉलेज से, उसके बाद तो मुझे याद भी नहीं है मैं कभी गया हूँ, लेकिन ऐसा रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ है। तो उस दिन दो चीज़ टूटी है बाबा, एक तो मोबाइल, एक तो ये भाई। बड़ा गम है हम लोगों के साथ। ओके, नईम रैन है, इनका नाम लिखा है यहाँ पर और लिखा है हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई लव कतर, हम सब कतर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ताहिर खान लिखते हैं सलाम भाई, मेरे साथ आज और हुआ है और बार भी हुआ है, यूज़ करते हैं एक सोशल मीडिया, उसके बारे में लिखा, ड्यूटी टाइम लेट होता है तो 250 कतरी रियाल फाइन लगा है। हाँ यार, ये भी होता है, अगर आप ऑफिस लेट से पहुंचे ना, एक दिन तो आपको छूट मिलती है, दूसरे दिन आपका हाफ डे होता है, तीसरे बार भी अगर, और महीने में तीसरे बार अगर आप हो तो डायरेक्ट फाइव की सैलरी से कट जाएंगे, और 250 रुपए का चट्टा लगा यार ताहिर भाई को। ताहिर भाई, हम और आप दोनों गम मना रहे, वरना लेकिन ये 250 एक ही बार कटेगा अब, क्योंकि इसके बाद अब आपको समझ में आ जाएगा मोबाइल कितना इस्तेमाल करना है भाई। जैसे वो वाला मुझे जब पता चला था ना कि दूध उबलने के 3 स्टेज होते हैं, पहला दूध बाहर आ जाता है, दूसरा दूध इतना उबलता कि पीला हो जाता है, तीसरा कि दूध काला भी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये वाला मामला है, अब आपको पता चलेगा कि दूध जो है काला पड़ चुका है, क्योंकि 250 का तो फाइन आपने दे ही दिया है। ओके, सलाम का आया है, बहुत ही बेहतरीन तस्वीर आई है खादिम साहब की, वाह, खादिम साहब की भेजी हुई, ठीक है, खादिम साहब की नहीं। रिजवान का मैसेज है, फजील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास गाड़ी में लगा होता है ना, क्या लगा होता है, मैंने भी आपकी बातें सुन के मुंह से हंसी निकल जाती है, गाड़ी में लगा होता है, माँ ना भी हंस, मैंने भी हंसू, मैं भी हंसता हूँ, ऐसा कुछ लिखा है यार, इतने टूटे टूटे शब्दों में लिखा है, टाइप आराम से गाड़ी रोक के कर लिया करो मेरा भाई। लिखा है कि आपकी बातें सुनकर मेरे मुंह से हंसी निकल जाती है, आपका वीकेंड भी ख़त्म होना चाहिए, आपका ओवर टाइम लगा दे, दो दिन का ऑफ होने से आपका शो नहीं सुनते, याद करते हैं आपको। रिजवान साहब, ये कैसी मोहब्बत है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे खिलाफ ही हो रही है। एकदम से ऐसा एहसास हुआ कि ये ही वाली तो मोहब्बत नहीं चाहिए, बाकी वीकेंड भी मेरा ये खाने के चक्कर में है। देखो दुनिया कितनी अलग है ना, एक तरफ दुनिया जो है दुआ मांगती है कि अल्लाह मेरी कार हमेशा सलामत रहे, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें, अल्लाह मेरी गाड़ी में कोई परेशानी ना आए, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी गाड़ी में परेशानी नहीं आएगी तो मैकेनिक का पेट कैसे भरेगा। वो भी तो एक तरफ दुआ कर रहा है अल्लाह लोगों की गाड़ी में प्रॉब्लम आए, देखो कितनी सही चीज़ है ना ये। तो ये वाली दुआ मत करो मेरा भाई, क्या मालूम कबूल हो जाए, कह रहे हैं दो दिन का ऑफ भी खत्म हो जाना चाहिए, वाह भाई वाह, मिस कर लो भाई, तभी तो मजा भी आएगा है ना। ये अलग तरह की दुआ है इनकी, ओवर टाइम लगा दे, दो डेज ऑफ होने से आपका शो नहीं सुनते तो याद करते हैं मेरा भाई। बातें अच्छी लगी लेकिन बातें अच्छी नहीं लगी। एक ही लाइन में इतना कुछ लिख दिया इन्होंने कि दुख भी हो गया। ओके, एक और ये मैसेज है सलाम का, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हैं। एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम सर, जुमे के दिन आपकी छुट्टी की होती है, जिम के दिन क्या, तो आपको सारा दिन आना चाहिए था ना, सुबह से लेकर अगली सुबह तक, ये क्या हो रहा भाई। वो आपने सुना कि गलत जगह फेमस हो रहा है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से आजकल यही कह रहा हूँ, मेरे जो आम तौर पे जितने भी दोस्त रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर आदमी यही कहता है मुझसे कि भाई तुम्हारा फेक आईडी बन गया है, और लिटरली कम से कम 15-20 फेक आईडी बन गया है। तो वो लोग मालूम है एक मैसेज कि भाई तुम तो बहुत फेमस हो गए हो, मैं उनसे ये कह रहा हूँ भाई गलत कम्युनिटी में फेमस हो गया हूँ मैं, इधर इधर की तरफ नहीं होना, स्कैमर के बीच में फेमस कैसे हो रहा हूँ। तो वैसे ये वाला केस हो रहा है कि दिन भर आना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक आना चाहिए, वाह मेरा भाई। ये मोहब्बत मुझे अच्छी लगी।

ई, लेकिन अच्छी नहीं लगी यार। आगे लिखा है कि जुम्मे के दिन कोशिश करेंगे, जुम्मे के दिन आया करें, जुमा के दिन बहुत अच्छे और आप बहुत अच्छा हो जाता है। मैं ये

0: सुबह से शाम तक आइए, आपके दोस्त आपके यार आपको बुला रहे हैं।
1: अरे सर जी नहीं, सर जी, अरे सर जी नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप?
0: मेरे आंसू निकल आएंगे मेरा भाई।
1: क्यों,
0: ये दुआ अच्छी है? बस यही कहूंगा कि अच्छी नहीं है। थोड़ा तो सुकून रहने दो भाई, वीकेंड के नाम से चेहरे पे हंसी आ रही है हमारे, और आप ये कह रहे हैं कि वीकेंड पे आओ। मतलब सबने सही में सोच लिया कि इससे मजदूरी ही करानी? अरे मैं ऐसे मजाक में दिहाड़ी बोलता हूँ मेरा भाई, आप तो फ्राइडे के दिन दिहाड़ी करा ले रहे हो सबके सब। रहम रहम। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद हम बात करेंगे FM 107 पे, दिल से देसी
2: उर्दू रेडियो FM 107 पे। अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

0: वो कब उजड़ सकता है? तबाह तो हम उसको कर देते हैं नफरतों, हसद, खुदगर्जी और मतलब परस्ती के हाथों। अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से प्यार कीजिए, यकीन जानिए दुनिया जन्नत बन जाएगी।
1: पैगाम ऑन FM 107
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

107.21 स्टूडियो की घड़ी में, और आज व्हाट इफ में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं कुछ देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले बाकी के मैसेज। ये मैसेज है, सर जी आपके बॉस का नंबर मिल सकता है। अरे क्यों मेरा भाई खान साहब, ऐसा क्या कह दिया मैंने? नहीं मेरा भाई, ऐसे हमारे पास खुद भी नहीं है बॉस का नंबर ना भाई। हम भी मेल से ही काम चला रहे हैं। बाकी नसीम साहब क्या कहते हैं, मियां फज्जू स्कैमर को आपसे मोहब्बत हो गई है। ये वो मोहब्बत है जो हमें चाहिए नहीं, और जो चाहिए थी वो मिली नहीं मोहब्बत, तो वो बस यही है दुनिया का निज़ाम। जो निज़ाम है वो निज़ाम चाहिए नहीं भाई, और जो निज़ाम नहीं चाहिए वही निज़ाम तो चल रहा है।

खैर अलग अलग होता है हिसाब किताब। ये स्कैमर वाली मोहब्बत तो मुझे नहीं चाहिए थी लेकिन अब आ रही है तो ठीक है। फजील भाई का 3 डे का वीकेंड होना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। मेरा असली दोस्त पता है ये इकबाल नेपाली, ये भाई आज आपको मिलेगी चाय, वो भी ये नॉर्मल करक वाली नहीं, अपन पियेंगे समोवर वाली, महंगी वाली, ठीक है। इकबाल साहब हल्का फुल्का हिसाब होना ही नहीं है। उसके अलावा मोहम्मद हमजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हमजा हूँ, कैसे हमजा भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपने क्या, आप में नया ड्राइवर था, अच्छा कैसे हो आप, इसके बाद कॉमा है इनविजिबल जो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बाद इन्होंने लिखा है मैं नया ड्राइवर था तो मेरा भी कतर में फर्स्ट एक्सीडेंट मोबाइल की वजह से हुआ था, सिग्नल पर पीछे से गाड़ी को आराम से आराम से मारा था, अभी भी 100 QAR मेट्रेश में पड़े हैं। ओ क्या बात कर रहे हैं, हैवी ड्राइवर ये बॉय, ए बॉय ये तो हैवी ड्राइवर लगता है रे बेटे, रे तुमने तो गजब ले बेटे हैवी ड्राइवर, मौज काट दी भाई। लेकिन मैं यही कहता हूँ मोबाइल तो कभी भी गाड़ी चलाते हुए इस्तेमाल मत करें, सिर्फ मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे किसी लोकेशन पर जाना हो और वहाँ की जगह का हिसाब किताब ना हो मेरे पास, यानी कि अब यहाँ पर वो भी नहीं है ना कि गाड़ी चलाते चलाते आप रुक लो और मुँह में पान भरा हो, बोले टाटा ये अलखोर किधर पड़ेगा है आगे से बाएं, अच्छा ठीक है आगे से वहाँ पड़ेगा तो ले लेते, तो वो वाला तो हिसाब है भी नहीं यहाँ पे, तो मुझे चलाना पड़ता है मैप, उस मैप के जरिए आप पहुँच जाते हैं, तभी इस्तेमाल करना होता है और तभी इस्तेमाल किया करिए, वो भी बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करिए कि किसी भी तरह का ख़तरा ना हो, है ना। तो वैसे तो अगर अच्छी ही बात है अगर आपको पता है, और सिग्नल पे कहीं आपका कैमरा अगर ऐसा देख लिया कैमरे ने तो बहुत महंगी फ़ोटो लेता है, अभी तनवीर साहब ने बताया 500 कदरे रियाल की फ़ोटो का है साहब वो, और इतनी महंगी फ़ोटो जो कभी इंसान नहीं लेना चाहता है, और उस फ़ोटो की एक बुराई है और वो बुराई ये है कि वो धुल कर नहीं मिलती है ना, शादियों की फ़ोटो तो फिर भी एल्बम में आ जाती, वो वाली एल्बम में नहीं आती भाई। तो कुछ चीज़ों से बचना बहुत लाजमी है। आगे अब बढ़ते हैं, ज़रा व्हाट इफ़ के बारे में बात कर लें। फजील भाई आप खेलते हो क्रिकेट तो हो जाए एक एक हाथ, अरे भाई क्रिकेट खेलता हूँ मुक्काबाजी थोड़ी करता हूँ, एक एक हाथ क्यों करना है, एक एक ओवर का हो। अगर आप जीते तो छुट्टी करना और नहीं जीते तो वीकेंड में आप ड्यूटी करोगे और हम सब आपको सुनेंगे, ये वो शर्त है जिसको मैं कभी कबूल नहीं करूँगा। ये इस वाली शर्त में, ये ऐसी पहली शर्त है जिसमें मैं हारना चाहूंगा, वो भी खुशी खुशी, है ना, क्यों नहीं हारूं भाई मैं। ओके अब हम जरा बात कर लेते हैं बेहतरीन से आज व्हाट इफ के बारे में। अगर अर्थ, ये कई लोगों का मानना भी है वैसे, अर्थ फ्लैट है तो अगर अर्थ, वैसे तो है नहीं ठीक है, अगर अर्थ फ्लैट होता तो फिजिक्स के सारे जो नियम है वो बदल जाते दोस्तों, और आज व्हाट इफ में हम यही बात करने वाले हैं, क्या होता अगर ये अर्थ फ्लैट होता, ये धरती फ्लैट होती, चपटी होती, तो ऐसा नहीं होता कि आप यू नो कतर से निकले पूरा ट्रेवल करे सीधी लाइन में और फिर कतर आ गए, तब ऐसा नहीं होता, आप सीधे निकले फिर वापस यहीं आना है, यू टर्न लेना पड़ेगा फिर, है ना, तो वो वाला हिसाब हो जाता। लेकिन हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अगर अर्थ फ्लैट होता तो दुनिया के जो फिज़िक्स हैं वो चेंज हो जाते, हमारे DNA तक चेंज हो जाते, ट्रीज़ और प्लांट्स का हिसाब किताब बिल्कुल अलग होता, ये जो आपको यू नो गाड़ी चलाते हुए बेहतरीन हवा लगती है ये हवा अलग तरह से लग रही होती है, मतलब इस पर भी हम बात करेंगे, और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये पेड़ बिल्कुल अजीब होते, आपको देखने में अजीब लगता या शायद आपके आँखों को वो नॉर्मल लगने लगता क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे देखते। दुनिया एकदम खात्मे पे होती, मे बी हम इस पर भी बात करेंगे, एटमॉस्फेयर का क्या हिसाब किताब होता है इस पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अगर अर्थ फ्लैट होता तो क्या होता। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस कुछ देर में। अभी आपके लिए मैं गाना प्ले कर रहा हूँ अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और वैसे तो यहाँ बहुत से गाने हैं अरिजीत के, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा, अच्छा बस आपको ये बताना है कि सॉफ्ट गाना या एकदम ढिकचिक ढिकचिक, यानी कि हार्ड गाना आपको सुनना है। अगर कोई जिसका पहला मैसेज आएगा

मैं उसी हिसाब के गाने प्ले करूंगा। एक तो मेरे पास तुम बिन टू मूवी का है गाना, देख लेना, ठीक है। और एक गाना और है अरिजीत सिंह का, वो भी बड़ा लाजवाब है। एक वो है ना तमाशा मूवी का 2015 में, लगा वत वत वत वत, तो ये भी अच्छा गाना है। और मेरे पास एक और लाजवाब गाना है, डेटाबेस बहुत खंगालना पड़ता है भाई, इतनी तो चाय हमारे पतीली में नहीं है जितने गाने हमारे सिस्टम में है। वहां पर छानो ना तो चाय बत्ती अलग हो जाती है, यहाँ पर इतने सारे गाने हैं, चाय बत्ती और चाय एक साथ उतर आती है। पसूरी एक गाना बहुत अच्छा है, पता नहीं ये वही पसूरी वाला गाना है कि नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। और ये मैसेज किस बार का, अच्छा इन्होंने अरे मैंने हार्ड बोला तो इन्होंने डिक्चिक लिख दिया। चलो मैं डिक्चिक प्ले कर देता हूँ। ये गाना दोस्तों है सूरज डूबा, ये भी अच्छा है। और ये गाना सुनिए, ये नए ज़माने का गाना है, मुझे लगता है आपको ज़्यादा पसंद आएगा। एंड दिस सॉन्ग इज़ व्हाट झुमका, अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी की आवाज़ में। फिलहाल 6:28, कुछ देर में वापस, और फिर बात होगी व्हाट इफ में, आज के अगर।

0: झुमका। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे

0: करेंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 पीएम ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर।
2: माहिरीन की राय पर
1: लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड।
2: हेल्थ गाइड
1: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक।
2: इलाज और एहतियात तक
1: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: दिल से देसी
1: याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: ये कौन सा नया स्मार्ट टूल है?
4: इतने कैची हुक्स कहाँ से लेके आऊं?
3: आई नो दिस AI लेकिन मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूं?
5: और कौन सी ऐप है जो बेस्ट है?
3: इन सारे सवालों का एक ही जवाब AI अनलॉक्ड। AI अनलॉक्ड
6: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल सारी अपडेट्स सारी मालूमात एक ही शो में AI अनलॉक्ड
7: विद RGV
6: एवरी संडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: You are

हाँ जी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6:34 स्टूडियो की घड़ी में और समय आ गया, वक्त आ गया कि हम बात कर लें जरा व्हाट इफ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैट अर्थ के बारे में। कई लोगों का ऐसा मानना था एक जमाने में कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, वो गोल नहीं है, ये दुनिया जो है ये गोल नहीं है, ये फ्लैट है। एक तरफ के बाद यानी कि एक लेवल पे आने के बाद आपको सिर्फ जो है स्पेस मिलेगा, और स्पेस से जब एक बार आप गिर जाएंगे तो आपका हिसाब किताब हो जाएगा। जो अंटार्कटिका है, जो बड़ी बड़ी बर्फ़ की सिल्लियाँ वो बहुत ऊंची हैं, उसके पार अगर आप निकल गए तो वो स्पेस में ही आप जाएंगे, गिर जाएंगे। वेल, ये बहुत पहले कुछ लोगों की मान्यताएँ थी, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, उनके अपने थॉट्स थे। खैर, लेकिन यहीं से ये आज का आइडिया आया, व्हाट इफ़, क्या होता अगर अर्थ फ्लैट होता तो। एक्चुअली अगर ऐसा होता तो फिजिक्स के सारे लॉज जो हैं दोस्तों वो बदल जाते। ये एक ऐसी दुनिया होती जहां साइंस और सर्वाइवल दोनों नामुमकिन लगते। ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करती। फिजिक्स के मुताबिक अगर हम देखें तो ग्रेविटी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी मास के सेंटर की तरफ खींचती है। तो फ्लैट अर्थ पर ग्रेविटी आपको नीचे नहीं बल्कि सेंटर यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ खींचेगी। जैसे जैसे आप किनारों की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बहुत ज़्यादा खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। आप कभी किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़े तो आपको थोड़ा झुक कर चढ़ना होता है ना, तो वैसे ही आप जैसे ऐसे नॉर्थ पोल की तरफ खींचने का एहसास होगा। जब आप किनारे पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, ऐसा एहसास होगा। और ये बड़ा अजीब होगा, एक ऐसा लगेगा ये स्टीप हिल है, आप वहां पर चढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे सेंटर की तरफ खींच रही होगी। क्योंकि ये अर्थ गोल है तो ऐसे में जो कोर है या जो मास है, मास आपको नॉर्मल अपनी ही जगह पर रखता है और आप खड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर यही फ्लैट अर्थ होता तो आपको थोड़ा बेंड होकर खड़ा होना पड़ता। या फिर आपने और आसान तरीके से बताएं, आपने वो देखा है मूवी कोई मिल गया, उसमें एक स्टेप करता है डांस वाला ऋतिक रोशन, इधर चला मैं उधर चला तो बस उसी में आप आगे वाले पोजीशन पे होते, जाने कहां में किधर चला वाले पोजीशन पे होते आप लिटरली ये लिटरली हो रहा होता, क्योंकि आगे अभी आपको पता चलेगा कि पेड़ जो है वो एक्चुअली में ऐसे ही उग रहे होते, पूरा जंगल ऐसे ही होता। लेकिन अभी

डीएनए और म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। सूरज की जो रेडिएशन है और कॉस्मिक रेज हैं, उनसे बचने के लिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ग्लोब की घूमती हुई कोर से बनता है। तो हमारे अर्थ के अंदर एक कोर है जो लगातार घूम रहा है और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज की जो रेडिएशन है और कॉस्मिक रेज है उससे अर्थ बचा है। अर्थ बचा है तो पेड़ बचे हैं तो हम इंसान बचे हैं। लेकिन अगर यही अर्थ फ्लैट होता, जो ग्लोब की घूमती हुई कोर से बनता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होता, तो ये नहीं होता। फिर हम पर डायरेक्ट सूरज के रेडिएशन जो है वो हम पर आ रहे होते हैं, फ्लैट अर्थ पर आ रहे होते हैं, और फ्लैट अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, जिससे डेंजरस रेडिएशन सीधा हमारे सेल्स तक पहुंचेंगी, इससे हमारा डीएनए डैमेज होगा, कैंसर्स बढ़ेंगे और ऐसी अजीब म्यूटेशन होंगी जो इंसानों और जानवरों की नस्ल पूरी पूरी बिगाड़ देंगी, स्पेशीज पूरी पूरी बिगाड़ देंगी। उसके बाद ट्रीज जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो साइड की तरफ बढ़ने शुरू होंगे। जो पेड़ हैं, जो दरख्त आप देखते हैं, वो हमेशा सीधे होते हैं, लेकिन ग्रेविटी के ऑपोजिट और सूरज की तरफ बढ़ते हैं। और अगर ऐसा फ्लैट अर्थ होता तो ये सूरज की तरफ बढ़ते और ये सारे साइडवेज होते, तिरछे होते। फ्लैट अर्थ के किनारों पर ग्रेविटी सेंटर की तरफ खींचेंगे, इसलिए वहाँ पेड़ जो हैं वो टेढ़े या साइडवेज उगेंगे। जंगल बिल्कुल अजीब और स्केरी दिखेंगे, जहाँ सब कुछ एक तरफ झुका होगा। फ्लैट अर्थ के साइड पर क्या होगा, ये भी एक सवाल है। अगर हम पुरानी थ्योरीज माने तो वहाँ एक बहुत बड़े आइस वॉल यानी कि अंटार्कटिका होगी, जो समंदर को रोकती है, लेकिन अगर आप उस वॉल को पार कर जाएंगे तो आप सीधा स्पेस में गिर जाएंगे, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, सिर्फ मौत होगी। एनिमल्स और नेविगेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। बर्ड्स और सी क्रिएचर्स जो हैं, जैसे कि व्हेल्स और टर्टल्स, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके रास्ता ढूंढते हैं। फ्लैट अर्थ पर उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाएगा, परिंदे रास्ता भटक जाएंगे और माइग्रेशन ना करने की वजह से बहुत से स्पेशीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आज भी मसाई मारा, सेरेंगेटी, ये बहुत बड़े बड़े लेवल के बहुत बड़े जंगल हैं। अगर इन जगहों पे जो बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स को पता है कि खाना गर्मियों में कहाँ मिलेगा, सर्दियों में कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ बारिश नहीं हो रही है। जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ से माइग्रेट करके जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पर पहुँचना होता है, लेकिन अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो खाना कैसे मिलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, इसलिए जो परिंदे हैं वो भटक जाएंगे, जो जानवर हैं वो भटक जाएंगे और पूरी पूरी स्पेशीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा कोई हवा नहीं होगी, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ग्रेविटी के अजीब खिंचाव की वजह से सारी हवा सेंटर में जमा हो जाएगी, किनारों पर हवा बिल्कुल नहीं होगी, वैक्यूम प्रेशर होगा, इसलिए वहाँ कोई भी इंसान या जानवर जिंदा नहीं रह पाएगा। वाटर का बैलेंस भी बिगड़ेगा, समंदर का सारा पानी सेंटर की तरफ भागेगा, जिससे बीच में एक मैसिव वाटर डोम बन जाएगा और किनारे बिल्कुल सूख जाएंगे, ख़त्म, इंसान ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम दोनों तिरछे खड़े होंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर हम आगे लीन कर रहे हैं और सामने वाला बंदा हमको देख रहा है तो वो पीछे की तरफ लीन करेगा, जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी ना, तो ऐसे में आप दोनों को साइडवेज खड़ा होना पड़ेगा, तब आप बात कर सकते हो, क्योंकि दोनों ज़मीन की तरफ झुक कर देख रहे होंगे, क्योंकि अर्थ वो फ्लैट हो गया ना अब तक। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कभी कुछ होगा नहीं, वैसे ये ऐसा होना भी नहीं है ऑब्वियसली। अभी तक हमने जितने भी व्हाट इफ के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं एक चांसेस थे कि शायद ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो है, लेकिन शायद ये हो भी जाए, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अंटार्कटिका की बर्फ तो पिघल रही है, 24 साल में कई ऐसे शहर हैं जो डूबेंगे, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट इसमें सच्चाई भी है। बट ये फ्लैट अर्थ वाले में कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, तो डरने की कोई ऑब्वियसली बात नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसलिए कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास की चीज़ों से थोड़ा एजुकेशन ले पाएँ और समझ पाएँ कि कैसे बहुत ही खूबसूरत ये दुनिया है और हमारे लिए कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ें लेकर आती है। फिलहाल 6:41 स्टूडियो की घड़ी में अब बेहतरीन सा एक गाना प्ले करते हैं और जब वापस आएंगे तो आपके लिए आपके जो मैसेज हैं वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल एक लाजवाब गाना आ रहा है, वो है दलेर मेहंदी और ममता शर्मा की आवाज़ में। ममता जी ने बहुत अच्छा साथ दिया है, लेकिन दलेर बाजी ने
इस गाने में बिल्कुल पकड़ बना ली है. दिस सॉन्ग इज कट्टो.

6:46 स्टूडियो की घड़ी में और ये मैसेज है, सलाम क्या बोलती पब्लिक। मैं क्या बोलूँ, आप बोलिए मेरे भाई। इन्होंने ऑडियो भेजी है, नहीं ऑडियो नहीं, फोटो वीडियो भेजी है। भाई कॉल मी, देखिए अब तो देर हो गई है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आसिफ भाई को जल्दी से लगा लेता हूँ कॉल। क्या क्या बात करनी है, मतलब आप बताते तो मुद्दा समझ में आता, बट अब तो बहुत यू नो टाइम कम है। पसूरी एक भाई ने कहा था गाना प्ले करने को, तो अब तो देर हो गई है। वैसे मैं पसूरी यार प्ले कर सकता हूँ अगर आप कह रहे, आपकी बात काट सकता हूँ मैं क्या। मेरा एक दोस्त था, उसने हमारे बॉस को ऐसे ही बनाया भाई, ऐसा बनाया है। कभी भी बॉस उससे कोई काम करने को कहते थे पहले, अब तो नहीं, कोई भी काम उससे करवाने को कहते थे और वो नहीं करता था। फिर बाद में होता यह था कि उससे जब पूछा जाए कि यार तुम ये फला काम करते नहीं हो, वो कहता अरे अभी करके देता हूँ, आपकी बात मैंने कभी काटी है। वो ऐसे करता था भाई। तो ये कलाकार लोग होते हैं। वैसे मुझे नहीं आइडिया कि ये गाना किसने, अच्छा ये कौन सा, एक तो अरिजीत सिंह ने, तुलसी कुमार ने गाया है, एक कोक स्टूडियो का, अली सेठी और शाइगिल का है। कौन सा सुनना चाहेंगे? पसूरी मुझे देखना पड़ेगा यार, ये वाला पता चल जाए कौन सा गाना है ये, तो मेरे को आइडिया हो जाएगा ना फिर। अच्छा चलो अपन लगा ज़रूर देंगे, मैं वादा नहीं करता हूँ बट अपन लगा देंगे। आपकी बात कभी काटी है मैंने? उसके अलावा ये मैसेज है, चलो कोई भी चला दो, करीम शाह कहते हैं। ठीक है मैं कोई भी चला देता हूँ, सैयारा लगा दो। एक भाई ने कहा रिजवान साहब मैं, अरे आपकी बात कभी काटी, अब सैयारा और पसूरी दोनों चलाना पड़ेगा। सैयारा तो नहीं लेकिन एक अच्छा गाना है हनी सिंह का, और आशिकों को, आशिकों की कॉलोनी है, मधुबंती वाक्षी और जावेद अली की आवाज़ में। लेकिन पसूरी लगाना तो अब लाजमी है, अगर ये नहीं लगाया तो फिर तो कल मुझे बहुत सुनने को मिलेगा। ठीक है पसूरी प्ले करता हूँ। वैसे मेरा यहाँ से निकलने का भी वक्त आ गया है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपको दुनिया भर की जो कतर की न्यूज़ है वो सुनने को मिलेगी। कतर से लेकर इंटरनेशनल बैरोलकवामी स्तर पे आपको सारी न्यूज़ जो हैं वो सुनने को मिलेंगी। ये मैसेज देख लेते तब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हवा हवा सुनना है, हवा हवा कौन सा गाना है यार, हवा तो वैसे भी गर्म चले, लू है यार, लू लू सुनना तो बताओ। हवा चल रही गर्म, अब भाई को ये पता नहीं कैसे गाना पसंद, ये वाला ना, हाँ ये पसूरी है। चलो ठीक है ये पसूरी तो मिल गया मेरे को, एक पसूरी में प्ले कर दूंगा। सैयारा भी मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे टाइम पे मिल गया तो ये गाना आपके लिए प्ले कर दिया जाएगा। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल शाम 5 बजे एक नए सवाल के साथ और एक नए व्हाट इफ के साथ, जहां पर हम इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और देखेंगे कि इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कल क्या है हमारे पास। तब तक ये गाना सुनिए और अरिजीत सिंह शैगल की आवाज में पसूरी। चलो भाई आशिक भाई अपना निकलने का टाइम आ गया है, दफ्तरी हो गई आज की, दिहाड़ी मिली क्या, महीने बर्बाद आएगी यार। तुम रील पे लगे रहते हो, कुछ जवाब

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: दावत।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सरवर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सरवर।
3: पुलिस एकेडमी की नुमाइंदगी करते हुए पुलिस कॉलेज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहां टुमारोज पुलिस समर 2026 प्रोग्राम के सातवें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया गया, जो मैतराश ऐप के जरिए शुरू होगा। हेड ऑफ द टुमारोज पुलिस प्रोग्राम कमेटी मेजर मोहम्मद नासिर अल सैयद ने कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोग्राम के सफर पर रोशनी डाली, जो 2018 से शुरू हुआ, जहां वक्त के साथ साथ इसकी मकबूलियत और शिरकत में नुमाया इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल में कौमी शनाख्त को मजबूत करना और लीडरशिप स्किल्स को फरोग देना है, जबकि ये भी बताया कि प्रोग्राम ने 2023 में प्रिंस नाइफ अवार्ड फॉर अरब सिक्योरिटी में तीसरी पोजीशन हासिल की। उन्होंने वाजे किया कि ये प्रोग्राम कतरी तलबा के लिए है जो 2014 से 2017 के दरमियान पैदा हुए हैं और रजिस्ट्रेशन इतवार 10 मई को सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है और एक हफ्ते तक या फिर सीट मुकम्मल होने तक जारी रहेंगी। असिस्टेंट हेड ऑफ द प्रोग्राम कमेटी कैप्टन जाबर राशिद अल शाहवानी ने प्रोग्राम के तनफीजी मराहिल के हवाले से तफसीलात बताई और कहा कि ये जून और जुलाई के दौरान 3 मराहिल में मुनक्किद होगा, जिसमें मिलिट्री और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ साथ फील्ड विजिट्स भी शामिल होंगी। सिस्टम्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेफ्टिनेंट मोहम्मद जाबर अल शारकी ने भी मैतराश ऐप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का तरीका समझाया और ये बताया कि टुमारोज पुलिस का ऑप्शन सिटीजन्स विंडो में नजर आएगा, जहां सिंपल स्टेप्स के जरिए एप्लीकेशन आसानी और तेजी से मुकम्मल करी जा सकती है। कदर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ने जुवेनाइल पुलिस डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी में वजारत दाखला को अखलाकना इनिशिएटिव में अपनी शिरकत और किरदार के एतराफ़ में एजाज से नवाजा। ये तकरीब पार्टनर्स ऑफ सक्सेस रिकॉग्निशन सेरेमनी के दौरान मुनक्किद हुई, जो फाउंडेशन की प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन थिएटर में मुनक्किद हुई, जहां मुख्तलिफ रेलिवेंट इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। हेड ऑफ द एजुकेशन एंड अवेयरनेस सेक्शन जुवेनाइल पुलिस डिपार्टमेंट कैप्टन मोतिब अली अल कहतानी ने फाउंडेशन की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हासिल किया। यह एतराफ डिपार्टमेंट के उन कोशिशों को जाहिर करता है जो उसने इनिशिएटिव के जरिए तालीमी और अवेयरनेस एक्टिविटीज में अदा की हैं, जिनसे मुआशरे में शऊर बढ़ाने में मदद मिली है। ये बात भी काबिले जिक्र है कि अखलाकना इनिशिएटिव का मकसद मुआशरे में अखलाकी कीमतों को फरोग देना और तालीम और अखलाक के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाना है, जो मुख्तलिफ कम्युनिटी एक्टिविटीज के जरिए शऊर पैदा करती हैं। ट्रैफिक वीक 2026 की सरगर्मियों में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के जरिए पैलेस विंडम मॉल में एक ट्रैफिक अवेयरनेस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मुतालिका इदारों ने भी हिस्सा लिया। इस एग्जीबिशन का मकसद रोड सेफ्टी को फरोग देना और अवाम में महफूज ड्राइविंग कल्चर को बढ़ावा देना है। डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ब्रिगेडियर जाबर अली अल कुबैसी ने एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन हमद अलसानी ने भी इस मौके पर शिरकत की। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कई डायरेक्टर्स, अफसरान और मुख्तलिफ शिरकत करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी तशरीफ फरमा थे। 38वें यूनिफाइड GCC ट्रैफिक वीक के सिलसिले में ये एग्जीबिशन आई क्रॉस सेफली के उनवान से मुनक्किद हुई, जबकि इसी के

साथ साथ वर्ल्ड ट्रैफिक डे और अरबिक ट्रैफिक वीक भी मनाया गया, जिनका थीम स्लो डाउन वी आर वेटिंग फॉर यू था। ये सरगर्मियां 8 मई तक जारी रही, जिसमें अवेयरनेस और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज शामिल थी, जिनके जरिए लोगों को ट्रैफिक कानून और रोड एटिकेट के बारे में मजीद समझाया गया। डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल काबी ने इस बात पर जोर दिया कि इन तीन अहम मौकों का एक साथ आना अवेयरनेस एफर्ट्स को मजीद मजबूत बनाता है और हादसात कम करने और इंसानी जानों की हिफाजत में मदद देता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सर्विसेज की तरक्की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की स्ट्रेटेजिक हदफ का हिस्सा है, जो सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मैत्राश एप्लीकेशन के जरिए ट्रैफिक सर्विसेज की तादाद 85 तक पहुंच चुकी है, जबकि 2025 के दौरान 5,52,000 से ज्यादा मामलात मुकम्मल किए गए, जो डिजिटल सर्विसेज के फरोग और असरी सहूलियात की वाज़ेह मिसाल है। डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ने इस एग्जीबिशन में शिरकत करने वाले तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रोड सेफ्टी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है, जो कानून की पाबंदी से शुरू होती है, और सड़क का एहतराम असल में इंसानी जिंदगी का एहतराम है। दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्फानी ने रियासत कतर में मुकीम कनाडा के सफीर करीम मॉर्को से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम और मुश्तरका दिलचस्पी के मौजूदात पर बातचीत हुई। इसके अलावा दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में। इसके अलावा दो तरफा तआवुन के रवाबित को मजीद मजबूत बनाने और उन्हें फरोग देने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन ने 7th ओपन पुलिस बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप को कामयाबी से मुकम्मल किया, जो अलगर्राफा क्लब के बीच वॉलीबॉल कोर्ट्स पर मुनक्किद हुई। इस टूर्नामेंट में वजारत दाखला की तरफ से 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि कतर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भी एक टीम ने शिरकत की। क्लोजिंग सेरेमनी में वाइस प्रेसिडेंट कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन कर्नल अहमद बिन हमद अल सानी, डायरेक्टर पुलिस इंस्टीट्यूट मेजर फैसल साद अल हाजरी और सिक्योरिटी मिलिट्री स्पोर्ट्स फेडरेशन लेफ्टिनेंट कर्नल स्टाफ खालिद हबाश अल सुवेदी ने शिरकत की। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर पुलिस फेडरेशन की टीम चैंपियन करार पाई, जबकि पुलिस इंस्टीट्यूट की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की और कतर आर्म्ड फोर्सेस की टीम तीसरी पोजीशन पर रही। दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं, वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक की जानिब से ट्रैफिक वीक 2026 के दौरान यूनिफाइड गल्फ ट्रैफिक वीक भी मनाया गया, जो योर सेफ्टी इज आर गोल के स्लोगन के तहत मुनक्किद किया गया, जबकि वर्ल्ड ट्रैफिक डे और अरबिक ट्रैफिक वीक भी इसके साथ साथ मनाया गया, जिनका स्लोगन रहा अवेयरनेस एंड पार्टनरशिप। ये तमाम सरगर्मियां रोड यूजर्स के दरमियान मजबूत पब्लिक अवेयरनेस पैदा करने, ट्रैफिक खतरों को कम करने और हिफाजत को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा करती हैं। रियासत कतर की जानिब से रीजनल, अरब और बैनुल अक्वामी ट्रैफिक इवेंट

0: इसमें मुसलसल और फ़ाल शिरकत इस बात की तस्दीक करती है कि ट्रैफिक सेफ्टी को एक आला इंसानी कीमत और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी समझा जाता है। यूनिफाइड गल्फ ट्रैफिक वीक में शिरकत से ये भी वाज़े होता है कि रियासत कतर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मुश्तरका फैसलों पर अमल करने के लिए पुर अज़्म है और बेहतरीन ट्रैफिक प्रैक्टिसेस को अपनाने में उसका तजुर्बा उसे रीजनल और इंटरनेशनल सतह पर रोड सेफ्टी के हवाले से एक नुमाया मकाम पर लाता है। वजारत दाखिला की 7वीं स्ट्रेटेजिक हदफ के मुताबिक जो सर्विसेज की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर मरकूज है, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक मुसलसल ट्रैफिक सर्विसेज को वसी और तरक्की दे रहा है। इसके साथ साथ प्रोसीजर्स और ट्रांजेक्शंस की एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जा रही है ताकि ये ज्यादा आसान हो और तेज हो सके। ये तमाम इकदाम डायरेक्टोरेट के मॉडर्न ट्रैफिक सर्विसेज की तरफ रुझान को जाहिर करते हैं। ये बात दोबारा वादे की गई है कि ट्रैफिक सेफ्टी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है जो सिर्फ एक फर्ज ही नहीं बल्कि इंसानी और कौमी जिम्मेदारी भी है। ये एक महफूज और मुस्तहकम मुआशरे की बुनियाद रखने में बुनियादी किरदार अदा करती है। तमाम रोड यूजर से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें और रोड सेफ्टी की कल्चर को फरोग दें। अवाम को दावत दी गई है कि वो इसके साथ लगाए गए ट्रैफिक एग्जीबिशन का दौरा भी करें जो 28 मई तक जारी रहेगा। आखिर में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने अपने तमाम पार्टनर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया जिनकी मुसलसल कोशिशों ने ट्रैफिक हादसात कम करने और रोड सेफ्टी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वजारत दाखिला ने अपनी ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अवाम को ट्रैफिक वीक 2026 की सरगर्मियों में शिरकत की दावत दी है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक की जानिब से ट्रैफिक वीक 2026 के हवाले से अवाम में रोड सेफ्टी अवेयरनेस को फरोग दिया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अवेयरनेस एक्टिविटीज और एग्जीबिशन मुनक्किद की जा रही है जिनका मकसद रोड यूजर्स को ट्रैफिक कवानीन और महफूज ड्राइविंग के उसूलों से आगाह करना है। मिनिस्ट्री ने अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया कि ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ इदारों की ही नहीं बल्कि हर ड्राइवर और रोड यूजर की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कवानीन की पाबंदी, ट्रैफिक साइंस का एहतराम और दूसरों के लिए एहतियात बरतना एक महफूज मुआशरे की बुनियाद है। अवाम को हिदायत दी गई है कि वो अपनी और दूसरों की जिंदगी के तहफ्फुज के लिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और रोड पर एहतियात और डिसिप्लिन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

फॉर ऑल। कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ हर जुमेरात शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है। विदारत दाखला अपने इरादों का वाज़े तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग ना सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुँचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: अजदवाजी जिंदगी में दो बातें अहम हैं जिनकी वजह से जिंदगी या तो जन्नत बन जाती है या फिर जहन्नम। इनमें से एक है मोहब्बत और प्यार, जिसमें उतार चढ़ाव तो रहता है क्योंकि इसका ताल्लुक जज्बात से है। दूसरी बात है रहम, जो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की याद दिलाता है और हमारी अजदवाजी जिंदगी को कामयाब और खुशगवार बनाता है। तो जरूरी है कि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहम का सलूक करें। यह एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं बल्कि खुद अपनी जात के साथ एहसान है। वो इसलिए कि अल्लाह ताला को रहम करना बहुत पसंद है। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी सिफत रहमान और रहीम बयान की है। यह जो कंसेप्ट है कि मियां बीवी में अगर मोहब्बत होगी तो शादी कामयाब होगी, ये किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन दोनों के दिलों में अगर रहम का जज्बा होगा, अल्लाह का खौफ होगा, अपनी जात को अल्लाह के सामने रखते हुए बेहतर बनाने की कोशिश होगी, तो अजदवाजी जिंदगी जरूर कामयाब होगी। अल्लाह ताला हमें अपने अंदर ये जज्बा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूजडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजी शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर असली भंडारा आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हेल्थ गाइड और इस उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें अपनी लपेट में ले रही है, मगर ये कि हमें छोटे छोटे मेजर्स अपना कर इससे निपटना है, अपनी सेहत को बेहतर बनाना है। जिसके आपने सब्जियां, फल और जो पानी है उसका ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह से जो पीक टाइमिंग्स हैं उसमें कोशिश कीजिए कि आप कम बाहर निकलें, ख़ासतौर पर बच्चों की केयर कीजिए। और इस तरह छोटे छोटे मेजर्स अपना कर हम जो है अपनी सेहत को बेहतर बना सकेंगे। चलिए सर, हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करते हैं तो आज भी एक बहुत अहम मौजू अपने जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, जो कि बहुत आम है, आम हम सुनते भी हैं। बहुत सारे अफराद जो हैं वो इसमें बात करते हैं कि अच्छा उस शख्स का या मेरा या किसी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है तो क्या है, क्या उसमें मोटापा हो सकता है या दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं या और क्या क्या मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहिबान, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैर शाहद जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं हार्ट हॉस्पिटल HMC में। और मैं अपने तमाम लिसनर्स के साथ डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और हमें उम्मीद है हमेशा की तरह हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा और हमारे जो लिसनर्स हैं उनके सवालात के जवाब भी ज़रूर देंगे आप, क्योंकि आज टॉपिक ही ऐसा है। और डॉक्टर और लिसनर्स आपके साथ शेयर करती चलूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, वो पूरी दुनिया में ही एक इशू है। अगर हम ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो उसमें बहुत सारे जो अफराद हैं तकरीबन मिलियंस के हिसाब से वो इसमें मुब्तला हैं और इसकी बहुत सारी जो कंडीशंस हैं उसमें बहुत सारे मसाइल, हेल्थ इश्यूज भी साथ साथ चलते हैं। इसी तरह से कतर में भी जो रिसर्च की गई और उसमें ये देखा गया कि 30-40% जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल को देखा गया है। इसी तरह से जो ये जो कनेक्शन है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का, उसमें मोटापा है, टाइप 2 डायबिटीज़ है और इस तरह हार्ट डिजीज तो हैं ही, मगर इस तरह से जो मेल और फीमेल में भी अलग अलग से देखा गया, मगर ये कि और क्या क्या एग्जाम है उसमें कितने परसेंट है कतर के हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये कि आप हमारे साथ आ सकते हैं अपने इस प्रोग्राम में, हमें कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए 6662107। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। और अगर आप QMC नाउ ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिर आप हमारे साथ साथ होंगे।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: इंस्टेंस जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल की, ये क्या है और ये कि हाई क्या है, बाकी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होता है, वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम डॉक्टर साहब से बिल्कुल शुरू में ही ये पूछेंगे कि ये है क्या। जी डॉक्टर साहब।
1: जी बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है ये कोलेस्ट्रॉल
0: जी,
1: और बहुत ज़रूरी है कि इसकी अवेयरनेस हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन को हो
0: जी,
1: लोग इसको जानें कि ये होता क्या है और असल में ये चीज़ क्या है। तो ज़्यादातर जो भी मेरे पास मेरे फ्रेंड्स, कोलीग्स या जो भी सवाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल के, वो समझते हैं ये कोई बीमारी है या ये कोई बुरी चीज़ है जिस्म के लिए। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक जो बॉडी का अपना प्रोडक्ट है जो बॉडी बनाती है, लिवर कोई अबाउट 70-80% जो है ये बॉडी बना रही है
0: जी,
1: जो बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है।
0: ठीक है।
1: तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करती है। सबसे पहले कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जितने भी सेल जो अराउंड 37 trillion सेल्स हैं, उसकी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उन सबको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है।
0: ठीक,
1: तो इसका मतलब
0: है कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है
1: जी।
0: ठीक,
1: तो जितना भी बॉडी की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन कर रही है वो ये मेम्ब्रेन कर रही है, जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है
0: जी।
1: दूसरा, बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन्स हो गए, कोर्टिसोल या टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं
0: जी। ठीक,
1: इसके अलावा जो है वो जिस्म को जो विटामिन डी की ज़रूरत होती है ये भी कोलेस्ट्रॉल से
0: जी।
1: अब जब सूरज की किरणें पड़ती हैं बॉडी पे तो जो कोलेस्ट्रॉल है वही विटामिन डी में कन्वर्ट हो रहा है।
0: अच्छा, ठीक।
1: और चौथी जो चीज़ है जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है वो होता है बॉडी में ऐसे एसिड्स जो बनाते हैं लिवर, जो सारे जो विटामिन्स और बाकी फैट्स हैं उनको अब्सॉर्ब करता है, जिसको ब्रेक डाउन करता है। वरना अगर ये बाइल एसिड्स ना हो तो जो भी फैटी सब्सटेंस या विटामिन्स हैं जो वो अब्सॉर्ब नहीं होंगे।
0: ठीक,
1: तो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के, और इसीलिए बॉडी खुद इसे प्रोड्यूस कर रही है
0: जी।
1: 70-80% लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है
0: जी?
1: कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक वैक्स टाइप फैट लाइक सब्सटेंस होता है,
0: जो मतलब आम जो है पब्लिक यहाँ मतलब उसमें ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट है, मतलब ये समझा मतलब यही जाता है, कॉन्सेप्ट यही है कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फैटी हैं, कॉन्सेप्ट ये है। आपके पास तो ज़्यादा है, आप बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं, पेशेंट्स भी ऐसे ही सवाल करते होंगे जी।
1: पेशेंट्स के लिए या लोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो तो उसकी बॉडी में क्या फंक्शन है उसको तो नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं

0: डिपॉजिट होने लग जाता है।
1: ठीक,
0: तो ऐसे ही समझ लें कि ये हमारे आर्टरीज हैं, पाइप ग्रीस की तरह पाइप में लग रही है।
1: ठीक है, मगर एक्सेस है जो ज़्यादा है।
0: जी, एक्सेस जो ज़्यादा है। अब ये विद टाइम अगर ज़्यादा ही रहे और ये उसमें जमा होती रहे अगर आर्टरीज में, तो ये प्लैक बन जाता है, जो सख्त कैल्शियम की तरह बन जाता है या कंक्रीट की तरह,
1: और उन्हें वो कर देते हैं स्टीन, मतलब तंग कर देते हैं,
0: वो नालियों को टाइट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हो रहा है और विद टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं।
1: ठीक ठीक,
0: ये हो गया डेंजरस कोलेस्ट्रोल की टाइप।
1: ये एक टाइप LDL, ठीक है।
0: सेकेंड हमारे
1: इसको आम जुबान में बैड कोलेस्ट्रोल भी कहते हैं।
0: बेसिकली ये है बैड कोलेस्ट्रोल या डेंजरस कोलेस्ट्रोल।
1: ठीक है,
0: ठीक है।

0: इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इस पे फोकस होना चाहिए इंसान का और ये मॉनिटर करना होता है।
1: ठीक,
0: ये इसके अलावा हमारे पास दूसरा इम्पोर्टेंट जो है वो है HDL।
1: HDL ठीक है,
0: ये है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन
1: जी,
0: इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा बच्चा है
1: जी। ठीक है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है।
0: ये बेसिकली सफाई करने वाला है जो
1: अच्छा
0: जो जहाँ ये प्लैक्स बन रहे हैं या जहाँ पे वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है आर्टरीज
1: में आपने
0: या सेल्स में इधर उधर।
1: हम अगर देखें तो जो एक वेसल है उसकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर वो डिपॉजिट हो रहा होता है। ठीक है,
0: तो ये जाता है, ये वहाँ से हटा के उठा के लीवर को वापस दे देता है।
1: अच्छा ठीक,
0: तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल हम डॉक्टर्स हम यही प्रेफर करते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में ज़्यादा हो।
1: ठीक है,
0: तो ये हो गई सेकंड टाइम। ये वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, ये दिल को प्रोटेक्ट करता है और ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। आप देख सकते हैं कि अगर बेशक आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है लेकिन ये अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड होगे।
1: ठीक ठीक,
0: फिर तीसरी तरह कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड।
1: अच्छा, ट्राइग्लिसराइड ठीक
0: जी। ये गुड बैड के अलावा एक कोलेस्ट्रॉल है जो बेसिकली तो बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब कैलोरीज बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं एक सर्टेन तरह के मतलब डाइट
1: लेने से, ठीक,
0: उससे जब कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं तो ये स्पेसिफिक किस्म का कोलेस्ट्रॉल है जो जाके बॉडी के सेल्स में स्टोर हो रहा है, फैट बना रहा है। तो अगर आपकी कैलोरीज नॉर्मल लिमिट से या अब्जॉर्प्शन लिमिट से या यूटिलाइजेशन से ज़्यादा हैं तो वो जाके फैट बन रही हैं, वो ट्राइग्लिसराइड बन रही हैं
1: जी।
0: तो ये बेसिकली आपका स्टोरेज है। तो जब ये ज़्यादा होता है तो इससे आपके दिल के जो अमराज हैं
1: जी
0: वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: ट्राइग्लिसराइड के
0: जी, ट्राइग्लिसराइड होने से।
1: ठीक है,
0: तो अब ये तीन जो हैं ये मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं और ब्लड टेस्ट में भी यही हम देखते हैं
1: जी। ठीक,
0: एक चौथी टाइप है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन।
1: अच्छा ठीक,
0: ये अभी हाँ रिसर्च में आना शुरू हुई है, इस पर भी फोकस आना शुरू हुआ है और ये जो है ये ट्राइग्लिसराइड्स को बेसिकली इसके साथ मिलके प्लैक वगैरह बनाता है या स्टोर फैट को ये और डेंजरस बनाता है
1: जी।
0: ठीक है, तो ये चार मिलके टोटल कोलेस्ट्रॉल बना रहे हैं
1: जी। ठीक, इस तरह से चार जो टाइप्स हैं वो टोटल जिस तरह की आपने कोलेस्ट्रॉल का बताया। डॉक्टर साहब, इसमें पूछना ये चाहूँगी, जैसे आमतौर पर ये होता है कि अच्छा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल का ये जो वैल्यूज़ हैं थोड़ा हम ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि ये क्या है। आपने चार टाइप्स हमें बता दी हैं, तो क्या उन चार टाइप्स को अलग अलग से हम उनकी जो वैल्यूज़ हैं या लेवल्स हैं वो हम देखते हैं या एक टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये है और ये पूछूँगी कितना होता है, कितना नॉर्मल है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि जैसे सुपरफिशियल हम देखते हैं तो
0: नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट रफ आइडिया हो, क्योंकि हर दूसरे दिन मेरे पास कोई ना कोई आता है आगे बोलता है मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100 से ऊपर हो गया है
1: जी,
0: तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहा कि अगर नॉर्मल क्या है, मतलब क्यों 100 से ऊपर हो गया तो मतलब क्या है
1: जी।
0: तो वो कहते हैं 100 से ऊपर मतलब 100 से ऊपर ज़्यादा हो गया ना
1: जी।
0: तो मैं कहा जब कट ऑफ ही 200 है तो 100 से ऊपर ज़्यादा कैसे हो गया। तो कट ऑफ या नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए या रफली आइडिया होना चाहिए कि 200 जो है वो आपका
1: 200 मिली के 200 जी कितना उसकी जो
0: टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है ना सब मिला के
1: जी,
0: तो वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल है।
1: ठीक है,
0: उससे कम होना चाहिए, ये हम कहते हैं डिज़ायरेबल वैल्यू है। 200 से ले कर 240 तक ये रिस्क या बॉर्डर लाइन हाई होता है। अब 240 से ऊपर जो है वो हाई होता है जिसको अटेंशन देनी पड़ती है या उसको ट्रीट करना पड़ता है या जहाँ आपको ज़रूरत पड़ जाती है उसको मैनेज करने की।
1: ठीक है ठीक है,
0: इसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले देखा जाता है, उसके बाद आप सब पार्ट्स देखते हैं।

0: तो जब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जब टेस्ट करवाए जाते हैं तो एक तो टोटल ये आ गया, जैसे आपने बता दिया कि 200 मिलीग्राम पर डीएल, मतलब ये है उसकी इतना, इससे कम मतलब कोई भी है टोटल वैल्यू आ गई। तो उसके बाद जो टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर ही ये चार टाइप्स होती हैं जो आपने हमें बताई या डिस्कस किया बताया हमें
1: जी। अब तो काफ़ी लोगों को शऊर आ गया है, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या ख़ुद जाके टेस्ट करा रहे हैं प्राइवेट में
0: जी।
1: और फ्री टेस्ट हो रहे हैं, चेकअप्स हो रहे हैं, तो उनके पास अक्सर मुझे लोग रिपोर्ट्स भेजते हैं जिसमें ये टेस्ट होते हैं। अब बेसिकली हम ये कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कैसे कर रहे हैं, सिंपल सा टेस्ट है जिसे कहते हैं लिपिड पैनल। तो ये टेस्ट करते हैं हम अक्सर फार्मेसी लैब में जाते हैं तो वो पूछते होंगे कि आपने फास्टिंग की है या नहीं। तो ये वो टेस्ट है जिसके लिए कम से कम 8 से 10 घंटे फास्टिंग चाहिए।
0: अच्छा ठीक
1: ठीक है
0: ठीक है।
1: कुछ लोग 12 घंटे भी कहते हैं लेकिन 8 घंटे अप्रोप्रिएट है, ओवरनाइट फास्टिंग भी करके सुबह ये टेस्ट दे सकते हैं।
0: ठीक है।
1: तो जब ये टेस्ट करते हैं लिपिड पैनल, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आती है टोटल कोलेस्ट्रॉल
0: जी,
1: LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड। तो ये चार हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है उसके सबसे पहला टॉप पे होता है, उसका 200 जो है उससे नीचे नॉर्मल है और 240 जैसे मैंने कहा उससे ऊपर मैनेजमेंट चाहिए होती है। दूसरे नंबर पे होता है LDL, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है और ये हम इसको देखते हैं बहुत सी बीमारियों में जैसे कि हार्ट कंडीशंस में, डायबिटीज़ में, हाई रिस्क पॉपुलेशन में या ओबेसिटी में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में
0: जी।
1: तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो होती है 100 या उससे कम।
0: अच्छा ठीक ठीक।
1: 100 से 130 तक ये जो है जिस कहते हैं रिस्की होता है और 130 से 160 तक ये बॉर्डर लाइन हाई होता है।
0: ठीक है।
1: 160 से ऊपर ये हाई होता है जिसे ट्रीट करना होता है या मैनेज करना होता है।
0: LDL की बात करें,
1: LDL
0: ठीक।
1: 190 से ऊपर ये वेरी रिस्की इसे कहते हैं कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब रिगार्डलेस ऑफ एनी फैक्टर या एज आपने इसको मेडिसिन से ट्रीट करना है।
0: ठीक ठीक ठीक है।
1: फिर गुड कोलेस्ट्रॉल आता है 3 नंबर पे, HDL
0: जी।
1: इसके लेवल्स जो कहते हैं कि 60 से ऊपर प्रोटेक्टिव है, मतलब अगर आपके लेवल 60 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ऊपर है ये बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव है।
0: ठीक है।
1: 40 से नीचे जो है वो लो है।
0: ठीक है।
1: 40 से 60 के बीच में डिजायरेबल है, ठीक है ये लेवल्स।
0: ओके ठीक। तो 40 से लो नहीं होना चाहिए,
1: 40 से लो नहीं होना चाहिए और एक्सेप्टेबल रेंज है 40 से 60, 60 से ऊपर आप प्रोटेक्टेड हैं।
0: ठीक है ठीक जी।
1: तो ओवरऑल हम ये देखते हैं। फिर ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड के लेवल इस तरह हैं कि 150 से नीचे जो है वो हम चाहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड लेवल हो, ये नॉर्मल होते हैं। 150 से 200 तक बॉर्डर लाइन हाई है और जैसे ही ये 200 क्रॉस कर गए इसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और मैनेजमेंट चाहिए।
0: ठीक है।
1: और जब ये 500 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से क्रॉस करते हैं जो कि काफ़ी लोगों में कर जाते हैं तो ये डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन करा सकते हैं, पेंक्रेटाइटिस करा सकते हैं।
0: अच्छा, जो है डिफरेंट और इश्यूज, हेल्थ इश्यूज वो जो हैं वो
1: जी है। तो उसमें इसको मेडिसिन से ट्रीट करना होता है।
0: ठीक
1: ठीक
0: जी। डॉक्टर साहब हमारे लिसन हैं मोहतरम खादिर अब्दुल हादी, सलाम कह रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि वेरी गुड टॉपिक और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जैसे प्लेक है, जैसे बताया आपने आर्टरीज में वो हो जाता है और वो पूछें कि क्या परसेंटेज जो होती है LDL की यानी शुड बी इन द बॉडी। ये तो आपने मैं बताया अभी जैसे बताया आपने कि 160 जो है वहाँ तक है और उसके बाद जी डेंजरस। एक और पूछे हैं कि क्या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ भी LDL के ज़्यादा होने से हो सकती है
1: जी। अब ये है कि परसेंटेज में देखा जाए तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का अबाउट 60-70% होता ही LDL है।
0: अच्छा ठीक।
1: और 30-40% हम HDL होता है जिसमें 10-15% ट्राइग्लिसराइड्स के होते हैं। ये बेसिकली बॉडी कंपोजिशन है।
0: ठीक है।
1: जब हम वेसल्स की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ दिल की वेसल्स नहीं है, यही वेसल जा रही हैं दिमाग में भी, यही वेसल जा रही हैं लेग्स में भी, पूरी बॉडी में ये वेसल्स हैं और जहाँ जहाँ ये
0: वेसल्स
1: नैरो हो रही हैं वहाँ ये प्रॉब्लम कर रही हैं। अगर तो ये

0: बॉडी के वेसल्स को नैरो कर रही हैं, ब्लड प्रेशर बना रही हैं। दिल के अंदर ये अगर दिल की नालियों को या वेसल्स को नैरो कर रही हैं या ब्लॉक कर रही हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। अगर ये दिमाग के जो वेसल्स हैं उनमें टाइट हो रहा है या ब्लॉक हो रहा है तो ये फॉलेज करा रही हैं, स्ट्रोक करा रही हैं, या जिसे वो सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स कह रहे हैं।
1: जी जी।
0: फिर अगर ये टांगों में जो टांगों के शरियान हैं या वेसल्स हैं उसमें अगर ब्लॉक करा रही हैं या टाइट करा रही हैं, नैरो करा रही हैं, तो ये पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ कहते हैं इसे।
1: अच्छा,
0: तो इसमें ये ऐसी समझ लें कि टांगों के लिए एक किस्म का फॉलेज है जिसमें चलने में तकलीफ होती
1: ठीक,
0: है।
1: ठीक ठीक। और उसमें जो काफ पंप उस तरह से भी वो भी हार्ट की तरह ही
0: एग्जैक्टली
1: तो वो भी इसी में ये आर्टरीज की वजह से
0: ये आर्टरीज की वजह से ही है
1: जी। और पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब के क्या LDL इफेक्ट एओर्टिक लिंकिंग टू आर्टरीज एंड ब्लड वेसल कैरियर्स इज इट
0: तो
1: इज द LDL द मेन रीजन फॉर कार्डियोलॉजी वैस्कुलर डिजीज।
0: LDL जो है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कपल्ड विद ये बाकी जैसे ट्राइग्लिसराइड डायबिटीज इसके रिस्क जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर है या जिसे हम तो जब हम कार्डियोवास्कुलर रिस्क स्कोर करते हैं या किसी बंदे के लिए हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं कि इस बंदे को कितने चांसेस हैं कि इसको फ्यूचर में कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब जैसे आपने डायबिटीज़ का कहा तो नेक्स्ट जो है वो भी इन्होंने पूछा है कि क्या LDL की वजह से डायबिटीज़ जो है वो भी हो सकती है या एक रिस्क फैक्टर है।
0: LDL की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है कि नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम।
1: ठीक है।
0: इटसेल्फ जो LDL है वो डायबिटीज़ के साथ लिंक नहीं है, लेकिन LDL बढ़ रहा है, फैट स्टोरेज बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है बॉडी में, ओबेसिटी अगर हो रही है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो एक साथ आ जाता है, पैकेज आ जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बॉडी में डेवलप हो जाती है और डायबिटीज़ भी आ जाती है, लेकिन LDL इटसेल्फ जो है वो डायबिटीज़ नहीं करा रहा।
1: ठीक है।
0: तो ये एक साथ जब मिलके ये हम एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो उसकी एज जो है वो 40+ है
1: जी,
0: तो उसमें चांसेस हैं कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स बहुत कोई परसेंटेज उनकी हम कैलकुलेट करते हैं, तो बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स वो उसमें LDL मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या फैमिली हिस्ट्री किसी की, या जो है किसी का अगर डायबिटीज़ या प्रीवियस इवेंट्स हो चुके हुए हैं।
1: जी। इसी तरह डॉक्टर साहब जैसे हम बात करते हैं जैसे कोई भी हाई ब्लड प्रेशर की या जो हार्ट डिजीज़ की, तो उसमें जो डायबिटीज़ है अगर है किसी को, तो उनके जो लेवल्स हैं वो जो नॉर्मल लेवल्स हम ले रहे होते हैं उससे भी कम पे, जैसे ब्लड प्रेशर है तो इतना होना चाहिए और कम होना चाहिए, मतलब उसके अलग से फ्लैग्स हैं डायबिटीज़ के साथ।
0: तो जो हमने लेवल्स की बात की थी वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में की थी, ये लेवल्स एक नॉर्मल बंदे के लिए होते हैं कि इतने होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं एट रिस्क पॉपुलेशन या वो जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिसे जैसे कि डायबिटीज़ है
1: जी।
0: अब अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हम कहते हैं कि डिज़ायरेबल उनका LDL लेवल जो है वो लेस देन 70 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, इसे कहते हैं टाइट कंट्रोल।
1: अच्छा, ठीक।
0: तो क्योंकि टुगेदर डायबिटीज़ के साथ ये रिस्क मल्टीप्लाई हो चुका है फॉर एनी हार्ट डिजीज़, सेरेब्रल डिजीज़ या कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के लिए।
1: ठीक है।
0: तो इनके लिए एक स्पेशल नंबर है, वो है 70। अब इसी तरह जो लोग हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है या जिसको हार्ट अटैक हो चुका है उनके लिए हम लेवल कहते हैं कि लेस देन 55 mg पर डेसीलीटर हो, जो कि अराउंड 1.4 मंथ है LDL का।
1: अच्छा।
0: तो LDL हमें चाहिए 55 से भी कम।
1: अच्छा।
0: और ये बहुत टाइट कंट्रोल है, इसको हम जब हमारे पास कोई भी आता है हार्ट अटैक के साथ तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसके LDL रिडक्शन विद इन फर्स्ट 1-3 मंथ्स ये कर दें हम।
1: जी।
0: ठीक
1: ठीक। तो बहुत स्ट्रिक्ट है उसमें, ज़ाहिर है मेडिसन और वो सारा जो है वो पूरा आप करते होंगे, क्योंकि 70 और 55 आपने कहा कि एलडीएल जो है

0: वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जी। तो उसमें फिर जो HDL है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी आप देखते हैं कि उसको फिर ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके लिए स्पेशल कुछ क्या करते हैं
1: आप? HDL बेसिकली लाइफस्टाइल से जो है वो ज़्यादा होता है। HDL एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो लाइफस्टाइल से ज़्यादा होता है। बंदा ख़ुद अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता है, जैसे कि अगर HDL मेनली बढ़ता है एक्सरसाइज से, एटलीस्ट कहते हैं कि मॉडरेट एक्सरसाइज 3 times पर वीक या अराउंड 1.5 जो है हर दूसरे दिन आप एक्सरसाइज करें 30 minutes के लिए, लेकिन मॉडरेट
0: ठीक है।
1: तो ये एक्सरसाइज जो है HDL बढ़ा रही है। इसके अलावा स्मोकिंग जो करते हैं, अगर वो स्मोकिंग छोड़ दें तो HDL बढ़ जाएगा।
0: खादर अब्दुल हादी साहब, उन्होंने बिल्कुल नेक्स्ट ही पूछा कि क्या स्मोकिंग जो है वो भी LDL की एक रीज़न हो सकती है या
1: जी है? बिल्कुल जी। तो स्मोकिंग जो है वो LDL भी बढ़ा रही है
0: जी।
1: स्मोकिंग जो है वो कपल्ड विद LDL वो रिस्क भी बढ़ा रही है सारे कारणों, और स्मोकिंग जो है वो HDL को कम कर रही है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो रहा है। जैसे ये स्मोकिंग छोड़ेंगे तो 2-5% आपको इमीडिएटली जो है HDL लेवल्स में इंक्रीज आएगा।
0: ठीक।
1: इसके अलावा जो है कोई ख़ास जो डाइट है हमारे पास, जैसे कि ओट मील्स, एवोकाडोज और ये जो डाइटरी फाइबर्स, ये जो है LDL कम कर रहे हैं और HDL को बढ़ा रहे हैं।
0: अच्छा, ठीक ठीक ठीक।
1: बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिसिन चाहिए HDL बढ़ाने के लिए, और ये बहुत होता है कि हमें कोई दवाई दो हमारा HDL बढ़ जाए, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है जो HDL को बढ़ा दे।
0: ठीक।
1: बहुत से ट्रायल्स हुए हैं लेकिन कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंट ट्रायल नहीं है कि जो मेडिसिन है वो HDL को बढ़ाए। इसके लिए लाइफ चेंजेस हैं
0: वो ज़रूरी है
1: जी, वो ज़रूरी
0: है। जैसे डॉक्टर ने जैसे बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल हैं, जैसे एक हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, मगर उसमें 4 types के कोलेस्ट्रॉल, वो डॉक्टर साहब ने बताए हैं।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: जैसे आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के हाई जो ज़्यादा हो जाता है तो क्या क्या जो हेल्थ इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, और ये कि टाइप्स क्या हैं, उनमें से जो कोलेस्ट्रॉल है अच्छा भी है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल से हमारे जिस्म के बहुत सारे जो काम हैं वो हो रहे होते हैं और ज़रूरी भी है एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे विटामिन डी है, लीवर जो है वो भी हार्मोन्स और इस तरह से जो भी चीज़ें बनाता है तो उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, मगर उसमें ये देखना बहुत अहम है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसके लिए ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहब, आप जैसे बात कर रहे हैं कि उसमें लेवल्स की आपने बात की, मगर ये कुछ इश्यूज आपने हमें बताए भी, मगर फिर भी पूछना चाहूँगी, पता फिर हमें कैसे चलेगा कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई है, उसके लिए टेस्ट ही कराना पड़ेगा या कोई सिम्टम्स, कोई अलामतें भी होती हैं कि हाँ हमें पता चले कि हो सकता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है?
1: ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया,
0: बहुत शुक्रिया जी।
1: तो बहुत से लोग यही समझते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है
0: जी जी।
1: अब मसला कोलेस्ट्रॉल के साथ ये है कि ये बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल इसके कोई सिम्टम्स नहीं है।
0: अच्छा।
1: और सिम्टम्स तभी आ रहे हैं जब कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जैसे हार्ट अटैक आ रहा है या स्ट्रोक हो रहा है या
0: जी
1: और की बीमारी हो रही है। इटसेल्फ ये इसको साइलेंट किलर कहा गया है क्योंकि इसके अपना कोई सिम्टम नहीं है।
0: अच्छा, ठीक।
1: और ऐसा हो भी सकता है कि पूरी लाइफ बंदे को कुछ महसूस ही ना हो और एकदम से हार्ट अटैक आए और पता चले कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्काई रॉकेट हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें जो है जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 20 साल की उम्र के बाद
0: जी
1: हर बंदे को 4-6 साल में लिपिड पैनल जो है वो कराना चाहिए, जो टेस्ट है, और वो टेस्ट कराने के बाद फॉलोअप हर 4 साल बाद आप उसको फॉलोअप कर सकते हैं। अगर तो वो हाई आ गया है डॉक्टर आपका देखेगा और वो ईयरली कर देगा।
0: ठीक है।
1: तो जिसके नॉर्मल हैं वो हर साल करेंगे और जिसके नॉर्मल हैं वो हर 4 साल पे करना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन है, हर कोई करता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार 20 साल के बाद 4-6 साल में ये कर लेना चाहिए। और अगर क्योंकि इसमें अब ऐसा है कि हम एक

0: रिसर्च कर रहे थे
1: जी,
0: क्योंकि सिर्फ इसकी एक वजह जो है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, वो ये भी है कि फैमिली में ये जेनेटिक्स में ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है,
1: ठीक है,
0: और हर 250 में से एक बंदे को ये प्रॉब्लम है होती है,
1: मौरूसी हेरिडिटी हम कह सकते हैं जेनेटिक
0: बीमारी होती है। तो अब इसमें से जब स्क्रीन किए जाते हैं तो तकरीबन 25% जो हैं अगर वो स्क्रीन होते हैं
1: जी,
0: और उसमें से 10% लोगों को अपना पता होता है कि हमें है ये प्रॉब्लम।
1: अच्छा,
0: तो बहुत से ज़्यादा हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, जिसमें जेनेटिकली उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और इतना डेंजरस लेवल पे है कि कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है
1: जी।
0: तो इसलिए बेटर है कि 20 ईयर्स के बाद ये टेस्ट हुआ जाए।
1: ठीक,
0: तो अगर
1: नॉर्मली भी जैसे कि ठीक,
0: तो रूटीन ब्लड टेस्ट, जैसे कि लास्ट टाइम हमने ब्लड प्रेशर पे बात की
1: जी जी,
0: तो ये कहा था कि ब्लड प्रेशर मतलब चेक करा लेना चाहिए, मतलब अगर डेली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे नहीं, अगर रूटीन में हेल्दी बंदा है तो एटलीस्ट उसे अपना ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम चेक करवाना चाहिए।
1: ठीक।
0: तो इसी तरह ये
1: इसका जो ब्लड प्रेशर वो भी साइलेंट किलर है
0: जी,
1: उसका भी बिल्कुल पता नहीं चलता,
0: उसका भी
1: अगर आम कॉन्सेप्ट यही है, अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो कहते हैं शायद इसका ब्लड प्रेशर हाई है, मगर मेरा ख्याल है आपने जब प्रोग्राम किया था तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या इस तरह, तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो
0: जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये स्क्रीन किया जाए, और आजकल जो है वो तो बहुत ईजीली अवेलेबल भी है, और नोट भी किया है कि हेल्थ ये जो है चेकअप्स होते हैं जो जॉब्स के लिए, स्कूल के लिए, तो उसमें ये चेक हो जाता है। तो हमने कतर में ऑलरेडी टाइम टू टाइम सर्वेज होते हैं और जो है वो डाटा कलेक्शन होती है। सबसे पहले इन्होंने 2012 में सर्वे किया था, जिसमें इन्हें आइडिया हुआ कि अबाउट 19-25% जो है वो लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है।
1: ठीक है,
0: इसी तरह अभी रिसेंट जो हुआ है उसमें ये है कि नोट किया कि 48% जो है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कतर में।
1: अच्छा,
0: तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नंबर है, 48 मतलब ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन जो है वो उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है।
1: और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि उसमें भी 40% तक वो एडल्ट पॉपुलेशन में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई देखा गया कतर में।
0: तो उसमें 40-60 एज के जो लोग हैं उनमें तकरीबन 28-35% जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं। तो ये एक बहुत कंसर्निंग बात है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड हर कंट्री में अबाउट 25% होता है, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट उस टारगेट से ऊपर है
1: जी,
0: और डेंजरस लेवल्स पे है। उसके अलावा बच्चों में देखा जाए तो 31% बच्चों का स्कूल में जब सर्वे हुआ था तो वो ओबेसिटी की रेंज में आ रहे हैं, और उसमें तकरीबन 9% बच्चों का LDL या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है
1: जी। ठीक,
0: तो
1: इसकी ज़ाहिर है आप बता रहे हैं, मगर इसकी वजह क्या है, जैसे अगर रिसर्च है तो उसमें ये भी देखा गया होगा कि मतलब इसकी क्या वजह है, स्पेशली बच्चों की, आपने जैसे कहा बहुत हाई है उसका, तो क्या कोई डाइट के लिए है या कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल या क्या उसकी क्या वजह है?
0: इसकी वजह जो सर्वे के मुताबिक जो उन्होंने नोट किया था कि सबसे पहले तो है ट्रेंड जो है वो फास्ट फूड की तरफ जा रहा है।
1: ठीक,
0: तो एक प्रोसेस्ड फूड्स, रेडी टू ईट फूड्स जो होते हैं, तो सब रेडी टू ईट फूड्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर रहे हैं, फास्ट फूड्स। दूसरा ये जो क्विकली जो लोग मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वो एक ट्रेंड है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल
1: जी,
0: एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं।
1: ठीक,
0: इवन के स्कूल में
1: बच्चे भी, मतलब स्कूल में फिर भी शायद थोड़ा सा है, मगर घर में डिवाइसेस हैं, बाहर बिल्कुल नहीं निकलते, और एक तो खैर मौसम भी, मौसम की बात तो हम करेंगे, मगर उसके भी तो कुछ ना कुछ हल है कि हम एक्टिव रहें, स्पेशली बच्चों को जो है वो किस तरह से एक्टिव रखें और क्या।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो फैट फैट जो एक ज़माना होता था कि लिवर के इर्द गिर्द फैट जमा होता था, जैसे हम फैटी लिवर कहते थे, वो अक्सर 30 प्लस 40

0: प्लस लोगों में, ओबीस लोगों में पाया जाता है। अब बच्चों में हमें वो जब हम चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं बच्चों के लिवर का, तो उनके फैट जमा होता है।
1: अच्छा, ये तो बहुत डेंजरस बात है कि बच्चों में अगर फैटी लिवर है तो।
0: जी, तो अब ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है बच्चों में, जिसका मतलब है कि उनके बहुत ज़्यादा लोग ओबीस हैं और विद हाई कोलेस्ट्रॉल। कंसर्निंग बात है, इसलिए लोगों को आइडिया होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल क्या है, खाने पीने की चीज़ें क्या है, कैसे मैनेज करना है, कैसे लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा बनाना है, कैसे एक्सरसाइज लेके आनी है
1: जी।
0: तो इसी तरह डायबिटीज़ भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अब बच्चों में डायबिटीज़ जो है वो स्टार्ट होना लग गई है
1: जी। बिल्कुल,
0: बहुत से लोग वेप कर रहे हैं, जो शीशा वेप स्मोकिंग जो इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, कम कर रहा है जो गुड कोलेस्ट्रॉल को।
1: ठीक है, तो इसमें डॉक्टर साहब कुछ जैसे फिर भी कोई अलामतें होती हैं कि अगर कोई जैसे कंप्लेंट करते हैं कि सुन हो गया है, आमतौर पर ये देखा गया है या कुछ, फिर भी क्या कोई अलामत हो सकती है कि अगर पता भी नहीं है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो? आमतौर पर तो आपने कहा नहीं पता ही नहीं चलता
0: जी,
1: इसकी रूटीन में चेकअप या टेस्ट करवाना ज़रूरी है, मगर आप ज़ाहिर है आपकी ये फील्ड है तो इसलिए मैंने पूछा कि आप अगर कोई पेशेंट आपके पास आता ही और क्या कंप्लेन करे तो आप डायरेक्ट, मतलब आपका जहन उतर ही जाता है कि हो सकता है इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ही हाई हो।
0: इसमें ऐसा है कि लोग जब आते हैं तो ऐसे कहते हैं कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा सांस फूलता है या मुझे सीने में दर्द होती है।
1: अच्छा, ठीक है।
0: इसको एंजाइना कहते हैं मोस्टली। अब क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तब तक शो नहीं होता जब तक वो एक बार वेसल्स को या दिल के या जिस्म की नालियों को नैरो ना कर दे या टाइट ना कर दे। जब एक बार वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं तो जब भी बॉडी को ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है जैसे एक्सरसाइज के दौरान, तो उस टाइम पे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं जैसे कि सांस की तकलीफ, जैसे सीने में दर्द। तो ज़्यादातर हमें तब पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं जब कोई आके ये कहता है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं जल्दी थक जाता हूँ या मेरे
1: सांस
0: फूल जाती है या मेरा ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है।
1: अच्छा,
0: तो ये सब इससे आइडिया हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल है और अब इससे बीमारी शुरू हो गई है। एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ कहते हैं इसे हम, कि जो है कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया वेसल्स में।
1: ठीक है।
0: दूसरी ये होती है कि कुछ लोगों में चलने से जल्दी टांगों में जो काफ मसल्स होते हैं वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं।
1: ठीक है।
0: तो उनको दिल के या दिल का ऐसा नहीं होती तकलीफ, लेकिन टांगों में होती है। तो उनकी जब हम चेक करते हैं टांगों के वेसल्स तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और वो भी पार्ट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज होता है।
1: अच्छा,
0: तो वो भी एक सिम्टम आ जाता है। तो जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो रही, कोलेस्ट्रॉल के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इस तरह हमें आइडिया होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
1: ठीक ठीक जी। तो ये जी, ये हमारे साथ हैं अहमद, और डॉक्टर साहब आपको सलाम कह रहे हैं।
0: वालेकुम सलाम।
1: कह रहे हैं कि उनका जो उन्हें डायबिटीज़ है, मगर ये कि उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो बिल्कुल ठीक है और अब ठीक है, तो मगर ये कि आप ये भी बता, तो पूछ ही रहे हैं कि अब क्या मैं वो जो मेडिसिन पहले वो खा रहे थे वो खाते रहें या क्या करें? इसका मतलब ये कि उस मेडिसिन के साथ जो हैं आप दोबारा हमें मेंशन कर दीजिए कि आप जो है डायबिटीज़ की या शुगर की जो मेडिसिन है वो ले रहे हैं, तो उसके साथ ही वो मेडिसिन ले रहे थे या इसके अलावा भी कोई और कंप्लेन थी जी?
0: अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है डायबिटिक पेशेंट्स का।
1: जी जी।
0: कि वो कहते हैं हम शुगर की गोली तो ले ही रहे हैं, उसके साथ हमें एक्स्ट्रा गोलियाँ भी देने लग गए हैं, और पर गोली एक जब भी गोली बढ़ती है ना तो बहुत तकलीफ होती है।
1: जी, तो ये बिल्कुल सही आपने कहा, मगर ये भी सोचना है कि वो उनकी मतलब जो बेनिफिट मतलब उनके फ़ायदे के लिए है।
0: जी जी। तो हर बंदे का डायबिटिक पेशेंट जो मेरे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि मुझे कोलेस्ट्रॉल की गोली क्यों दे रहे, कोलेस्ट्रॉल तो मेरा ठीक है, 200 से कम है।
1: जी,
0: कोलेस्ट्रॉल तो 200 से कम है जैसे कि होता है नॉर्मली।
1: ठीक है।
0: तो अब इसमें हम बात करेंगे कि जब हम गोली स्टार्ट करते हैं या मैनेजमेंट

0: स्टार्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल की
1: जी,
0: तो इसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं कि कब हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन शुरू करनी है,
1: या रिस्क फैक्टर्स
0: जी, जी
1: ठीक
0: तो
1: है।
0: इसमें बहुत से लोगों का अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक भी है फिर भी उन्हें हमें जो है वो मेडिसिन देनी पड़ती है। इसकी वजह क्या है कि जैसे कि हमारे पास अगर समझ लें 20 साल से कम है कोई और उसका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 160 से ऊपर एलडीएल जो है वो जंप कर गया या 190 से ऊपर जंप कर गया, अब हम इसको हमें कम करना ही करना है क्योंकि वो रिस्क पे है
1: जी।
0: सिमिलरली अगर हमारे पास 20 साल से ऊपर कोई बंदा है और उसका एलडीएल जो है 160 से ऊपर है और उसके ऑलरेडी जो भाई बहन या फैमिली में कोई है ऐसा जिसकी यंग एज में कोई हार्ट अटैक या कोई स्ट्रोक या ऐसा हुआ है तो चांसेस हैं कि उसमें भी हो सकता है, तो इसको भी हमें ट्रीट करना पड़ता है। जब डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास हैं उनके लिए हमारे पास है कि 40 साल में अगर किसी का शुगर है तो और उसके वो शुगर की मैनेजमेंट पे है तो उसको हमें स्टैटिन देना पड़ता है या गोली देनी पड़ती है। तो जब हम ये गोली देते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हमारा जो एलडीएल लेवल है ना वो रहे 70 से कम,
1: 70
0: मिलीग्राम पर डेसीलीटर के, तो ये हमारे लिए ये कोलेस्ट्रॉल ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट कहता है मेरा कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है तो उसके लिए तो वो 200 से कम टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा है, लेकिन हमारा टारगेट इस बंदे में एलडीएल है लेस देन 70 और जितना कम उतना बेहतर।
1: ठीक, बिल्कुल।
0: अब इसको मेंटेन कर सकते हैं और करना चाहिए मेडिसिन पे, अनलेस के डॉक्टर के पास जाके अगर तो बहुत ही कम रहता है, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं मेडिसिन के, फिर उस केस में रिस्क वर्सेस बेनिफिट हम डिस्कस करते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि लिसनर्स आप सुन रहे हैं कि एलडीएल जो है उसे कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन है वो बहुत जरूरी है।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: इंसेंस आप सुन रहे हैं प्रोग्राम और आज हम बात कर रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की, कि उसकी क्या क्या जो हैं, अभी तो डॉक्टर साहब जो पूछेंगे उन्हें बताया बड़ी डिटेल में कि है क्या और कौन सी जो टाइप है वो डेंजरस है, उसे कम करना बहुत जो है वो अहम है, जिसे एलडीएल जो है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो मगर ये कि उसमें ये कि फिर अगर डायबिटीज़ है आपको या कोई और जो इशू है तो उसमें हम देखते हैं कि जो उसका लेवल जो है नॉर्मल लेवल जो होता है उससे भी कम हमें करना है। और हम लिसनर्स आपकी तरफ चलेंगे और सुनते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, प्रोग्राम हेल्थ गाइड जी, आपको बात
6: मैं जुलकरनैन बात कर रहा हूँ।
1: जी जुलकरनैन साहब, क्या पूछेंगे डॉक्टर
6: जी? हाँ, आज जैसे कोलेस्ट्रॉल का सब्जेक्ट चल रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है
1: जी,
6: और मेरा अक्सर एलडीएल ट्राइग्लिसराइड कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आता है, हालांकि मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करता हूँ और खाने पीने में भी काफ़ी एहतियात है। अच्छा, इसमें ये जो ऑयलों का रोल है, ऑयल का, हाइड्रोजनेटेड घी और फैट्स जो नेचुरल फैट्स हैं विद कहते हैं बीफ और मटन, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें कि इस कॉम्बिनेशन को क्या करें। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो कॉर्न ऑयल या सनफ्लावर ऑयल हैं ये बहुत ज़्यादा इसको कॉज करते हैं। मेरी एज 55 है
1: जी जी,
6: और वैसे तो फॉर एग्जांपल मेरे फादर को भी थी या ग्रैंडफादर को भी थी, बट आफ्टर सर्टन एज, लेकिन मेरा लाइफस्टाइल उस तरह का नहीं है। आई एम ट्राइंग, यानी 4 से 5 दिन मैं जिम जाता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, वेट भी मेरा बैलेंस है, यानी आई हैव 67। इवन डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा सा ना आपका वेट बढ़ना चाहिए मसल्स का। हाँ, मसल्स ग्रो या जिम या इन एक्टिविटीज़ का इसके ऊपर किस तरह अफेक्ट पड़ सकता है? ये जो दवाई है कुछ अरसे के लिए मैंने ली थी, लेकिन उसके मुझे साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे एलर्जीज हैं ना, तो उसके लिए फिर मैंने जिम को और एक्टिविटीज़ को किया, लेकिन ये कांस्टेंट रहता है, ये बड़ा एक ज़िद्दी किस्म का है, नीचे इसको करना बड़ा मुसीबत है। नट्स वगैरह मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे एलर्जी का इशू है। हाँ, ये जो एलडीएल है ना, इससे मैं बहुत तंग हूँ।

0: सॉरी मैं असिस्ट रही हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि काम करना बहुत ही मुश्किल चीज है। डॉक्टर से पूछेंगे, LDL की आप बात कर रहे हैं ना?
1: LDL यानी मेरा बॉडी वेट और पेट भी नहीं है, हर चीज को कंट्रोल करता हूँ। अब आपका टाइम खत्म होने वाला है और मेरा हल बताना है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा जी डॉक्टर साहब।
2: इस एक क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट
0: जवाब
2: पूछे हैं उन्होंने। सबसे पहले कि लोग समझते हैं कि मोटापे के साथ कोलेस्ट्रॉल है, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसी भी बंदे में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मोटा हो या पतला। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स किसी भी बंदे में बढ़ सकते हैं और उसकी डिफरेंट वजूहत जैसे कि जेनेटिक्स या खाना पीना या लिवर बना रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, और कुछ लोग कुछ थोड़ा खाते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो अब डाइट भी करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन बहुत
0: जी।
2: अब इसमें क्या है कि बिल्कुल आपने कहा कॉर्न ऑयल, ये जो प्रोसेस्ड ऑयल्स और डिफरेंट ऑयल्स यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: अच्छा।
2: और यूजली जिनका ये स्टबन,
0: वो क्लेम तो ये करते हैं कि अगर आप ये ऑयल जो है यूज़ कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होगा, कि जो ऑयल्स हैं वो कम करते हैं, मतलब आम क्लेम ये किया जाता है।
2: इसमें जो बेस्ट है वो है ओलिव ऑयल, जिसमें बहुत कम होता है कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट। हम जो है ऐसे लोगों के लिए जिनको जिनका जो कहते हैं हमारा ज़िद्दी कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए मेडिटेरियन डाइट प्रेफर करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है अगर ओलिव ऑयल नहीं तो कैनोला ऑयल होता है वो यूज़ करते हैं।
0: ठीक है।
2: इसमें अवॉइड करते हैं कौन से प्रोसेस्ड ऑयल्स या दूसरे ऑयल या घी और ये सारी चीज़ें जिसमें हाई कंटेंट और
0: बटर भी
2: ये सब। तो इसमें हमें ज़्यादा क्या करना है, लोग प्रेफर कर रहे हैं आजकल स्पेन और ये जो मेडिटेरियन एरियाज में एवोकाडो ऑयल।
0: अच्छा।
2: ये बेहतरीन है एलडीएल को कम करने में, क्योंकि ये खून में से एलडीएल बाहर करता है और ये जो है एचडीएल को बढ़ाता है। इसमें बहुत हाई कंटेंट होता है मोनोसैचुरेटेड फैट्स का, ये बहुत अच्छा होता है। और ये जो है वो क्योंकि हमारा हम तो बहुत ज़्यादा पका के खाने वाले हैं, अब ओलिव ऑयल में आप बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं पका सकते एक्स्ट्रा वर्जन में। ये जो है ना एवोकाडो ऑयल, इसमें आप पका सकते हैं खाने।
0: अच्छा।
2: तो ये फ़ायदा है
0: कि वो प्राइस वाइज भी तो होगा,
2: प्राइस वाइज ये ओलिव की तरह ही है।
0: अच्छा ठीक ठीक।
2: और आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हैं तो प्राइस एवरेज हो जाती है। कैनोला ऑयल भी जिसमें लिखा होता है लो सैचुरेटेड फैट है, मतलब सैचुरेट फैट्स हैं पर लो क्वांटिटी में, उसमें ओमेगा 3 भी होता है।
0: अच्छा,
2: तो ये भी कुकिंग के लिए बेस्ट है।
0: ठीक।
2: तो ये वाले ऑयल्स हो गए। अब जो कॉर्न ऑयल सनफ्लावर ऑयल है, इसमें ना एक सर्टेन टाइप ये होते हैं ज़्यादा जो है ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें कि अब हमारे पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है, कॉर्न ऑयल चाहिए या हमें सनफ्लावर ऑयल चाहिए, तो इसमें सनफ्लावर ऑयल ये बेहतर है।
0: ठीक।
2: इसमें जो है एलडीएल ये रिड्यूस करने की थोड़ी सी कैपेबिलिटी है, और ये अगर आप मतलब ये आपको प्रोसेस्ड फॉर्म्स में मिलता है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप हाईली प्रोसेस्ड फॉर्म ना लें और थोड़ा सा ओमेगा 6 जिसमें ज़्यादा है या जिसमें एलडीएल लोअरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है या जिसमें लो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये अगर लें तो सनफ्लावर ऑयल इज़ मच बेटर, वे बेटर देन कॉर्न ऑयल। फिर बाकी मैंने बता दिया कि ओलिव और एवोकाडो ऑयल जो है ये बहुत ज़बरदस्त है।
0: ठीक।
2: जो प्रॉब्लम करते हैं वो पाम ऑयल है, ये तो बहुत बुरा है। कोकोनट ऑयल जो अक्सर लोग यूज़ कर रहे हैं, बटर कोकोनट ऑयल तो बहुत जल्दी एलडीएल बढ़ाता है।
0: अच्छा ठीक।
2: कोकोनट ऑयल जिसको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो उसको अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मल बंदों के लिए तो चलता है, वो एवरेज कर सकते हैं। और वो जो ट्रांस फैट्स हैं जिसमें या हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं या मार्जिनिन जो अक्सर बाहर के लोग ले रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: अच्छा ठीक।
2: अब क्या है कि खाने में वो पूछ रहे हैं मीट्स में क्या है, तो मीट में अब इस एज में 57 में वो कह रहे हैं कि मैं तो पतला हूँ और मसल्स का, इसमें क्या इशू होता है कि विद एज आपके जो मसल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, अराउंड 1-2% 30-40 एज के बाद ऐसे कम होने लग जाते हैं, स्पेशली 40 ईयर्स के बाद। तो इसके लिए हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, हाई प्रोटीन या मॉडरेट प्रोटीन, या प्रोटीन आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा।

0: होना चाहिए। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो होती है फिश। फिश मींस जो पोटेंशियल सोर्स है, जैसे सालमन हो गई, जो जिसमें ओमेगा थ्री ज़्यादा हैं, और चिकन स्किन के बगैर,
1: अच्छा
0: इसको आप ग्रिल कर सकते हैं। टर्की, अब जो रेड मीट है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है
1: जी,
0: तो आपने फैट फ्री, जो अक्सर आप कहते हैं ना लो फैट, मतलब हमें मेरा फैट हटा के, तो वो जो है मटन बीफ कट्स ले सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट प्रोटीन्स आपको मिलेंगे वो किधर मिलेंगे? प्लांट प्रोटीन्स में, जैसे कि बीन्स, चिक पीज, ये जो चने हैं, दालें हैं, इनमें मिलेंगे, और एग्स में। एग्स भी बहुत ज़्यादा लोगों ने कंट्रोवर्शियल बनाए हुए हैं, लेकिन ये सिंपल है कि आपने एग्स खाने हैं, एग्स आर गुड फॉर हेल्थ। बस इसमें कोशिश क्या करनी है कि एग योक आपने मॉडरेट रेंज में लेने, मतलब कि दिन का एक से दो एग योक ले लें, और ये डिफरेंट डिफरेंट एज के लिए, लेकिन एग वाइट्स एज मच एज पॉसिबल लें।
1: ठीक है,
0: ठीक है। तो इनमें जो चिकन है, एग, फिश, ये मैक्सिमम आपके लीन प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटीन के कंटेंट्स भी बराबर कर रहे हैं, ये नेचुरली आपका एलडीएल कम कर रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड कम कर रहे हैं।
1: ठीक है,
0: फिर इस पे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 5 डेज जैसे कि वो बता रहे हैं, तो इसमें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो है वो कोलेस्ट्रॉल जल्दी कम करती है
1: जी।
0: उसमें अगर हाई इंटेंसिटी नहीं कर सकते तो वेट लिफ्टिंग वर्सेस जो है आपकी ज़्यादा कार्डियो
1: जी,
0: इसमें फुल बॉडी कार्डियो या हाई इंटेंसिटी जो है ये ज़्यादा बेनिफिट करेगी।
1: ठीक,
0: वेट लिफ्टिंग विद हाई प्रोटीन डाइट हेल्प करेगी फॉर बेटर शुगर कंट्रोल और मसल बिल्डिंग में।
1: ठीक,
0: और जो हाई इंटेंसिटी है वो एलडीएल को कम करने में जो है वो हेल्प करेगी।
1: ठीक,
0: तो टाइप ऑफ एक्सरसाइज, टाइप ऑफ ऑयल और डाइट, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है।
1: ठीक,
0: अब
1: इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल पूछूंगे, बहुत आम है, जैसे कि हम ट्राइग्लिसराइड की बात करें, अपने गाय की डाइट पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, जैसे कि स्पेशली हमारी जो डाइट है बहुत ज़्यादा ऑयली और इस तरह से बाहर से जो खाना जो है वो लेते हैं या कुछ, तो उसमें देखा गया कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं।
0: ओ जी
1: जी, तो जी ये इस पे थोड़ी तो, सी बात मुझे हमें बताइए थोड़ी डिटेल में कि क्या फिर
0: करें। बहुत डेंजरस चीज़
1: जी।
0: अच्छा, वो उन्होंने पूछा था मटन और बीफ के बारे
1: जी,
0: में
1: मटन
0: तो अब मटन जो है वो उसमें फैट ज़्यादा होता है और बीफ जो है उसमें कम होता है। बीफ में लीन बीफ मिलता है, लीन बीफ कट्स कहते हैं कि जो वो स्मॉल पोर्शंस में खाना चाहिए, तो इससे जो है वो जो लेस सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें। पर मटन जो है इधर हम बनाते हैं मटन वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, स्पेशली उसमें लैम में भी, अगर हम वो लैम ले रहे हैं ना तो उसमें भी, तो अगर उसमें खाना है तो मॉडरेट, मतलब स्मॉल पोर्शंस, नहीं तो जो लीन बीफ है वो खा सकते हैं।
1: ठीक, चिकन और फिश जो है ना वो प्रेफर आप करें
0: जी, अगर चिकन भी स्किन के बगैर, कुछ लोग स्किन के साथ प्रेफर करते हैं, स्किन में बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है।
1: ठीक है,
0: अब बात करते हैं ये जो फास्ट फूड या बाहर से आप कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो लोग को पता होना चाहिए कि वो जो आजकल रेडी टू ईट
1: फूड है जी,
0: ये प्रोसेस्ड फूड, हर तरह का प्रोसेस्ड फूड, ये खास किस्म के इसमें फैट्स होते हैं, उसे कहते हैं ट्रांस फैट्स
1: जी,
0: ये जो है ये डायरेक्ट एलडीएल का सोर्स है जो इंक्रीज करते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, रेडी टू ईट फूड्स हैं या फास्ट फूड्स हैं, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल हैं।
1: ठीक,
0: और ना सिर्फ ये मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी ये बॉडी को हार्म कर रहे हैं,
1: प्रिजर्वेटिव्स भी उसमें डाले होते हैं उन्होंने, और वो बहुत डेंजरस,
0: सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, जितनी भी अच्छा। ये चीज़ें हैं इसमें, शुगर जो आर्टिफिशियल शुगर है, जो शुगर कंटेंट्स इसमें डाले हैं, प्रिजर्वेटिवस डाले हैं, या ये सब जो हैं ये प्रोसेस्ड चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं।
1: ठीक,
0: अब मेरे साथ एक लड़का मेरे पास आया था, वो बहुत पतला है, मतलब लाइक वो बिल्कुल अंडरवेट है, लेकिन वो रहा ही पूरा टाइम वो कोक पीता है पानी की जगह, और वो खाने में हमेशा बाहर से खा रहा है, तो उसको था मुझे क्या बीमारी होनी है। लेकिन जब उसका कोलेस्ट्रॉल हमने चेक किया तो उसका कोलेस्ट्रॉल डेंजरस लेवल पे था।
1: अच्छा, बज़ाहिर भी फिजिकली भी नहीं वो ऐसे
0: एग्जैक्टली वो पूरा टाइम बैठ के गेम खेलना और
1: कोक पीना और जो ये, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वेट बहुत ज़्यादा हो जाए
0: जी।
1: आपके दूसरी तरफ जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात की तो वो भी जो बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है
0: जी।
2: आप सुन रहे हैं
1: जी लिसनर्स, आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो आप जुमे को सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम दोबारा पेश किया जाता है, तो आप उस पर सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये है मगर टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और क्या मैसेज देंगे आप इस हवाले से हमारे लिसनर्स को?
0: मैसेज यही है कि वॉच व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट।
1: ठीक है,
0: तो कोशिश करें कि शुगरी ड्रिंक्स ना पिएं, डिज़र्ट्स कम करें, लेट नाइट स्नैक्स सबसे बड़ा रीज़न है हर बीमारी का।
1: ठीक,
0: और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक्टिव रहें और एक्सरसाइज करें।
1: ठीक जी,
0: सो हेल्थ इज़ वेल्थ
1: जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से हमें इजाज़त दीजिए। डॉक्टर ज़ुबैर शाहिद जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं हार्ट हॉस्पिटल HMC में, फौजिया शफीक और हमारे साथ रहे असली भंडारा, हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक्टिव जो हैं वो ज़रूर रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल बोर्ड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा ओनली ऑन एफएम 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और जबरदस्त एपिसोड कतर इनोवेट्स का, जहां हम बात करते हैं उन आइडियाज की जो सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शेप कर रहे हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कतर फ्री जोन्स, यानी इनोवेशन मीट्स ग्लोबल बिजनेस की। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं, जहां आइडियाज सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि रियलिटी बन जाते हैं, जहां कंपनीज को सिर्फ स्पेस नहीं बल्कि ग्रोथ का कंप्लीट इकोसिस्टम मिलता है। ये है कतर के फ्री जोन्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन सवाल ये है कि ये फ्री जोन्स होते क्या हैं आखिर? ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं भाई? इसके बारे में हर कोई क्यों बोलता है? देखिए, सिंपल अल्फाज में फ्री जोन्स ऐसी स्पेशली डिजाइन एरियाज होते हैं जहां बिजनेसेस को खास फैसिलिटीज दी जाती हैं। जैसे कि अगर आपको समझाने के लिए बोलूं तो जैसे टैक्स फ्री बेनिफिट्स, हाँ, इजी सेटअप प्रोसेसेस और हाँ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं तो आपको यहाँ एक स्मूथ और फास्ट एनवायरनमेंट मिलता है भाई अपना काम शुरू करने और उसे एक्सपेंड करने के लिए। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। अब यहाँ से आपने ध्यान से सुनना है। देखिए, कतर ने अपनी फ्री जोन्स को सिर्फ बिजनेस हब्स नहीं बनाया बल्कि इनोवेशन के सेंटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये सिर्फ ट्रेडिंग या ऑफिसेस तक लिमिटेड नहीं है, नो, बल्कि यहाँ फोकस है टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टेक्नोलॉजी की, क्योंकि वो तो हमारी फेवरेट चीज है ना। देखिए, आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी हर चीज की बैकबोन बन गई है, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्मार्ट सिटीज हो या फिनटेक सॉल्यूशंस, कतर फ्री जोन्स में टेक कंपनीज को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जहां कटिंग एज रिसर्च कर सकते हैं भाई, नए सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट्स तक आसानी से रीच कर सकते हैं। यहां इनोवेशन सिर्फ बजवर्ड नहीं है बल्कि डेली रियलिटी है। अब आते हैं थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स की साइड पर, ठीक है। देखिए, सोचिए अगर एक प्रोडक्ट एशिया से यूरोप तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, आप ऑनलाइन मंगवाते हैं सामान, आपको अंदाजा होगा वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट चीजें डिलीवर होती हैं, या आप यूं कह लें कि अफ्रीका से मिडल ईस्ट, ठीक है, तो भाई बीच में एक ऐसा हब हो जो इस पूरी सप्लाई चेन को फास्ट, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बना दे, क्या तो बात होगी ना, मजा आ जाएगा फिर तो। तो भाई कतर के फ्री जोन्स स्पेशली उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे मुमकिन बनाता है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के करीब होने की वजह से ये जोन्स ग्लोबल ट्रेड के लिए पावरफुल गेटवे बन चुके हैं। अच्छा, और फिर एक और चीज जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। भाई ये वो फील्ड है जहां आप कह लें कि ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज की जगह स्मार्ट फैक्ट्रीज ने ले ली है, जहां रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और प्रिसिजन इंजीनियरिंग यूज होती है साथियों। देखें कतर के फ्री जोन्स में कंपनीज को ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं जहां वो हाईटेक प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों या सस्टेनेबल मटेरियल्स हों। इससे ना सिर्फ प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाती है बल्कि क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही रहती है। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है, इसका फायदा पूरी सोसाइटी को होता है। भाई जब कतर कोई चीज सोचता है ना, तो वो सिर्फ एक कंट्री के लिहाज से नहीं सोचता, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचता है। आप कहेंगे कैसे भाई? तो भाई सफा आपको बताती है कैसे। जब नए बिजनेसेस आते हैं ना, तो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। जब टेक्नोलॉजी ग्रो करती है तो स्किल्स डेवलप होते हैं। जब लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग होता है तो इकोनॉमी स्टेबल होती है, और जब मैन्युफैक्चरिंग एडवांस्ड होती है तो मुल्क सेल्फ रिलायंट बन जाता है। यानी के कतर फ्री जोन सिर्फ इकोनॉमिक जोन नहीं बल्कि एक विजन का हिस्सा है। एक ऐसा विजन जहां कतर अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ऑयल और गैस से बहुत आगे बढ़कर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर जा रहा है, और इस सफर में इनोवेशन सबसे बड़ा ड्राइवर है। भाई देखें, आज का हमारा ये जो शो है, हमारा जो आज का एपिसोड है, इसकी जर्नी इसी बारे में कि कैसे कतर फ्री जोन्स दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे ये इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और कैसे ये ग्लोबल बिजनेसेस लैंडस्केप में अपनी एक यूनिक सी पहचान बना रहे हैं। तो भाई अगर आप भी बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी या फ्यूचर ट्रेंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो भाई ये एपिसोड आपके लिए होने वाला है। ये एपिसोड आपके लिए बहुत बहुत बहुत खास होने वाला है। और हाँ, अगर आप अपनी राय या कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो जरूर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-222-107 पर, या चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं @FM107Qatar। तो भाई चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां आइडियाज मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज से, और इनोवेशन मिलती है ग्लोबल बिजनेसेस से। कहां? यहां कतर इनोवेट्स पर, जो कि मौजूद है FM 107 पर सफा के साथ।
2: कतर इनोवेट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: भाई साथियों, जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज का एपिसोड एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के गिर्द घूम रहा है, जो कि है कतर फ्री जोन्स, यानी इनोवेशन मीट्स ग्लोबल बिजनेसेस। लेकिन साथियों जरा एक लम्हा लीजिए और एक लम्हे के लिए सोचिए कि दुनिया का बिजनेस लैंडस्केप किस तरह चेंज हो रहा है। आज कंपनी सिर्फ एक मुल्क तक लिमिटेड नहीं है, हर स्टार्टअप, हर एंटरप्रेन्योर और हर मल्टीनेशनल कंपनी ये चाहती है कि वो ग्लोबल हो, यानी कि फास्ट हो, एफिशिएंट हो और कंपिटेटिव हो। ठीक है भाई, देखिए इसी जरूरत को समझते हुए कतर ने एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस किया जो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है, जिन्हें हम कहते हैं फ्री जोन्स। देखिए भाई, फ्री जोन्स असल में सिर्फ बिजनेस एरियाज नहीं बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहां इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं। कतर ने इस जोन को स्पेशली डिजाइन किया है ताकि भाई दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने बिजनेसेस आसानी से एस्टेब्लिश कर सकें, यानी कि आप कह लें कि टैक्स बेनिफिट्स के साथ, 100% फॉरेन ओनरशिप के साथ और एक स्मूथ रेगुलेटरी सिस्टम के साथ। तो भाई ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये आप कह लें कि एक विजन है। कतर का एम है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, ऑयल और गैस से आगे बढ़कर नॉलेज बेस्ड और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाना, और फ्री जोन्स इस मिशन को, आप कह लें कि इस मिशन का फ्री जोन्स जो है ना वो सेंट्रल प्लेयर, हाँ सेंट्रल प्लेयर बोलना ने बिल्कुल सही होगा। अब सवाल ये है कि ये जोन्स इतने स्पेशल क्यों हैं आखिर, व्हाई, आखिर क्यों? इसका जवाब छुपा है उनकी लोकेशंस और डिजाइन में। देखिए कतर को दो मेन जोन्स यानी कि रास बूफंतास और अलहूल, इन दो जोन्स में ये बटे हुए। स्ट्रेटेजिकली एयरपोर्ट और सी पोर्ट के करीब इन्हें बनाया गया है। एक जोन एयर कनेक्टिविटी का फायदा उठाता है जबकि दूसरा सी ट्रेड का, यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में जाना होता है तो ये जोन्स उस सफर को फास्ट, स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव बना देते हैं। और भाई अगर मैं कहूँ तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, यहाँ फोकस है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, रोबोटिक्स, IoT, यानी कि वो टेक्नोलॉजीज जो फ्यूचर डिफाइन कर रही हैं। अच्छा भाई, इसके साथ साथ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को भी यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोमेशन और हाईटेक प्रोडक्शन सिस्टम्स यूज होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जोन्स सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी हैं, क्योंकि जब कंपनीज आती हैं तो जॉब्स क्रिएट होती हैं, जाहिर बात है। जब टेक्नोलॉजी आती है तो स्किल्स डेवलप होती हैं, और जब इनोवेशन होती है तो पूरी सोसाइटी ग्रो करती है। तो भाई आज कतर फ्री जोन में तकरीबन आप कह लें 800 से ज्यादा कंपनीज काम कर रही हैं, जो हजारों जॉब्स क्रिएट कर चुकी हैं और बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रही हैं। तो साथियों, आज का ये एपिसोड सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जहां आइडियाज रियलिटी बनते हैं, जहां स्टार्टअप्स ग्लोबल बनते हैं और जहां एक मुल्क अपने फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जहां हम ये जानेंगे कि ये आइडियाज ग्राउंड रियलिटी में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट। साथियों, हर बड़ी इनोवेशन के पीछे एक कहानी होती है, ठीक है। एक आइडिया होता है जो छोटा सा होकर शुरू होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ एक मूवमेंट बन जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप बीज बोते हैं और फिर एक दिन आता है कि वो बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाता है। कतर फ्री जोन्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जरा सोचिए,

0: एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहां स्टार्टअप्स और एसएमईज वो सब मिलकर ना यहां ग्लोबल लेवल तक अपना काम लेकर जा सकते हैं, चाहे वो एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इन्वेस्टर्स सपोर्ट सिस्टम हो। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ आपको। इसका एक रियल एग्जांपल है ग्लोबल कंपनीज का यहाँ आना और यहाँ पे सेटल होना। जैसे आपके लिए इन्वेंटर्स पावर, जो एडवांस बैटरी सिस्टम बनाती हैं, उन्होंने कतर फ्री जोन्स में अपना मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च हब स्टैब्लिश किया, जिससे उन्हें ग्लोबल एक्सपेंशन में मदद मिली। यानी एक आइडिया जो कहीं और स्टार्ट हुआ, कतर आकर ग्लोबल स्केल तक पहुंच गया। अच्छा भाई, अब बात करते हैं नेशनल इनोवेशन इनिशिएटिव की। देखिए, कतर सिर्फ कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि एक पूरा इनोवेशन इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। बात समझने की ये है कि कतर फ्री जोन अथॉरिटीज ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डाटा सेंटर्स पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ गूगल क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म्स के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, जहां लोकल टैलेंट को ट्रेन किया जा रहा है और बिजनेसेस को नेक्स्ट जनरेशन टूल मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि इनोवेशन सिर्फ इंपोर्ट नहीं हो रहा, बल्कि लोकल लेवल पर डिवेलप भी हो रहा है। चलिए भाई, अब आते हैं ब्रेक थ्रू रिसर्च प्रोजेक्ट पर। ठीक है, देखें, दुनिया रैपिडली हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है। कतर ने इस ट्रेंड को समझकर फ्री जोन्स में बायो फार्मास्यूटिकल रिसर्च को भी प्रमोट किया है। जी हाँ, एक रीसेंट कोलैबोरेशन में कतर फ्री जोन्स ने ग्लोबल कंपनी जो कि बायोलॉजिस्टिक्स के साथ पार्टनर्स में है, जहां मिडल ईस्ट का पहला इंटीग्रेटेड बायोलॉजिक्स रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एस्टैब्लिश हो रहा है, इनके साथ कोलैब किया है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ब्रेक थ्रू है, जहां एडवांस्ड मेडिसिन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। और अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, जो कि टेक्नोलॉजी सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है एफिशिएंसी, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, एनर्जी हो या प्रोडक्शन हो। कतर फ्री जोन्स ने इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। अच्छा, अगर हम बात करें ना उमल हुल जैसे जोन्स को वर्ल्ड क्लास पोर्ट के करीब बनाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जहाँ से मिलियंस ऑफ कंटेनर्स हैंडल किए जा सकते हैं, इससे ग्लोबल ट्रेड फास्ट होता है, डिले कम होते हैं और सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अच्छा, अगर एनर्जी सेक्टर में भी इनोवेशन के बारे में बात की जाए ना, तो एनर्जी सेक्टर में भी इनोवेशन हो रही है, जहाँ रिलायबल और कॉस्ट फ्रेंडली एनर्जी सप्लाई दी जा रही है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत क्रिटिकल है। रिसेंटली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नए सबस्टेशंस लॉन्च किए गए हैं, जो इंडस्ट्रीज को अनइंटरप्टेड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी हर लेवल पर आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। तो साथियों, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जहां कतर अपने आप को सिर्फ एक एनर्जी रिच कंट्री नहीं, बल्कि एक इनोवेशन हब के तौर पर एस्टैब्लिश कर रहा है, जहां स्टार्टअप्स को विंग्स मिलते हैं, हम कहते हैं ना उड़ने के लिए पर चाहिए, कतर वो पर प्रोवाइड कर रहा है, जहां रिसर्च को डायरेक्शन मिलती है और जहां टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये जर्नी अभी शुरू हुई है साथियों। तो भाई साथियों, आप क्या सोचते हैं? क्या फ्री जोन्स फ्यूचर ऑफ बिजनेस हैं या नहीं? क्या इनोवेशन ही सक्सेस की है? हमें जरूर बताएं मैसेज करके 666-22-107 पर, या हमें फॉलो करें FM107 कतर के हैंडल पर। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं कतर इनोवेट्स ऑन FM107। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स देनी है भाई, और ढेर सारी बातें इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि कैसे कतर ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्यूचर को।
1: कतर इनोवेट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM107 पर, दिल से देसी। देसी।
0: तो साथियों, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM107 और मैं हूँ सफा, और शो का नाम है कतर इनोवेट्स। और आज हम अपने सफर के उस हिस्से में एंटर हो चुके हैं जहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उसका

कहानी को समझते भी हैं, यानी ये अंडरस्टैंडिंग द इनोवेशन। साथियों, अक्सर हम इनोवेशन का लफ्ज सुनते हैं, ठीक है, यहाँ इनोवेशन वहाँ इनोवेशन, लेकिन असल में ये होता क्या है, कभी आपने सोचा है? क्या ये सिर्फ नए गैजेट्स का नाम है, या सिर्फ टेक्नोलॉजी का, या फिर इससे कुछ ज्यादा गहरी बात जुड़ी हुई है? देखिए, आज हम कतर फ्री जोन्स के जरिए इस इनोवेशन को बिल्कुल सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ये इनोवेशन आखिर होती क्या है इसके बारे में। देखिए, कतर फ्री जोन्स असल में एक ऐसा सिस्टम है जहां बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कंपनीज आसानी से ग्रो कर सकती हैं। यहां इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई मशीन्स या सॉफ्टवेयर्स नहीं है, बल्कि एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां आइडियाज को डेवलप होने का मौका मिले। सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट हो, टूल्स हो, टीचर्स का सपोर्ट हो, तो आपका प्रोजेक्ट तो ऑटोमेटिकली जहाज बन जाएगा भाई, सुपर से भी ऊपर। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ना हो इनमें से, तो आपका आइडिया स्ट्रांग होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बैक ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह फ्री जोन्स कंपनीज को वो सारी की सारी फैसिलिटीज देते हैं, यानी कि फास्ट इंटरनेट, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इजी रूल्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी, जिससे उनका काम तेज और एफिशिएंट हो जाता है। कतर ने अपने फ्री जोन्स में हाई स्पीड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G नेटवर्क्स और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, जो मॉडर्न टेक कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। यानी इनोवेशन यहाँ एक सिस्टम है जहाँ हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, ये इनोवेशन इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों भाई, आखिर क्यों, वाय? तो साथियों, दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। पहले बिजनेसेस सिर्फ लोकल होते थे, यानी कि एक शहर या आप कह लें कि एक मुल्क तक लिमिटेड, ठीक है। आज हर कंपनी ग्लोबल बनना चाहती है, लेकिन ग्लोबल बनने के लिए क्या चाहिए होता है भाई? चाहिए होती है स्पीड, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई आज के जमाने में। देखें, यहाँ कतर फ्री जोन्स का रोल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कतर दुनिया के बीच में आप कह लें कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, यानी कि जहाँ से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक आसानी से एक्सेस मिलता है। फ्री जोन्स को स्पेशली एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स के करीब बनाया गया ताकि ट्रेड फास्ट हो और सप्लाई चेन स्मूथ रहे। अब भाई सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट चाइना से आता है और यूरोप जाना है उसने, ठीक है, और बीच में डिलेज हो जाए, यानी कि बिजनेस का क्या होगा फिर? अगर डिलेज हो जाते हैं तो बिजनेस लॉस होता है ना। लेकिन अगर एक ऐसा हब हो जहां से प्रोडक्ट स्मूथली ट्रांसफर हो जाए, तो भाई टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। इसीलिए लॉजिस्टिक इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एक की रोल प्ले करती है साथियों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, ये सब चीजें बिजनेस को स्मार्टर बनाती हैं। कतर फ्री जोन्स में इन सब टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया जा रहा है ताकि कंपनीज अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा बेटर बना सके ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये इनोवेशन कतर के लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी मुल्क सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करे। अब तीसरा पॉइंट आता है, मैं कहूंगी ये पॉइंट शायद मेरी नजर में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इस इनोवेशन का फायदा कतर और सोसाइटी को कैसे होता है। हर किसी का अपना एक मोटिव होता है ना, और हमें पता होना चाहिए कि भाई सोसाइटी को क्या फायदा है इससे। तो साथियों, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि सिर्फ कंपनीज के लिए होता है, लेकिन असल में इसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को होता है। सबसे पहले जॉब्स क्रिएट होती हैं। जब ग्लोबल कंपनीज कतर फ्री जोन में आती हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, लॉजिस्टिक मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, यानी हर फील्ड के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। दूसरा क्या होता है, स्किल डेवलप होती हैं। जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, तो आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती चली जाती हैं। कतर अपनी नॉलेज इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एजुकेशन और रिसर्च पर भी फोकस कर रहा है, ताकि लोकल टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सके। अच्छा भाई, इसी के साथ साथ फिर हम आ जाते हैं तीसरी बात।

0: पर जो कि है इकोनॉमी स्ट्रांग होती है इससे. देखें जब इन्वेस्टमेंट आती है ना बिजनेस ग्रो करता है और ट्रेड इंक्रीज होता है तो मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल होती है. फ्री जोन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंड करते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और भाई इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपनी चौथी ऐसी चीज पर जो कि मुझे इंपॉर्टेंट नजर आती है, वो है सेल्फ रेजिलियंस बढ़ती है. समझने की कोशिश करें कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कतर अपनी प्रोडक्ट्स खुद बना सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हो गए, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स हो गए और मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए. इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाती है और मुल्क ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है. और भाई पांचवा हमारे पास चीज ये आ जाती है, पांचवी के सोसाइटी का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाता है. हाँ जी बिल्कुल, जब टेक्नोलॉजी आती है तो डेली लाइफ भी आसान हो जाती है ना. बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, फास्टर सर्विसेज, स्मार्ट सॉल्यूशंस, ये सब इनडायरेक्टली फ्री जोन्स जैसे सिस्टम का एक रिजल्ट होते हैं. तो भाई अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, लास्ट चीज पर, और वो है इस इनोवेशन को सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझे. देखिए चलिए एक छोटी सी आपको कहानी से समझाने की कोशिश करती हूँ. सोचिए एक शहर है जहाँ सब लोग अपना काम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई शॉप चला रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, लेकिन सब डिसकनेक्टेड हैं. ना प्रॉपर रोड्स हैं, ना इंटरनेट फास्ट है, ना सपोर्ट सिस्टम है. अब जरा सोचिए उसी शहर को रीडिजाइन कर दिया जाए, ठीक है, अलाइन करते हैं इन्हें, कुछ वाइड रोड्स बना दिए जाते हैं, फास्टर इंटरनेट दे दिया जाता है, बिल्डिंग्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स, इजी रूल्स और हर जगह सपोर्ट सिस्टम. अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली अपग्रेड हो रहा है तो अपग्रेडेशन ही होगा. लोग ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, नए आइडियाज डेवलप होंगे और शहर ओवरऑल सक्सेसफुल हो जाएगा. यही काम कतर फ्री जोन्स कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही काम. लेकिन सिर्फ कतर में नहीं, एक ग्लोबल लेवल पर. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के लोग और कंपनीज एक साथ मिलकर काम करते हैं, जहां इनोवेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि डेली लाइफ प्रैक्टिस बन जाता है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ आज के लिए नहीं बना बल्कि फ्यूचर के लिए भी डिजाइन किया गया है. एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी और बिजनेसेस एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, जहां कंट्रीज सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं बल्कि आइडिया से पावरफुल बनती हैं, और जहां इनोवेशन ही सक्सेस की सबसे बड़ी की होता है. साथियों कतर फ्री जोन्स हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप सही एनवायरमेंट क्रिएट कर देना तो आइडिया खुद ब खुद ग्रो करते हैं, और शायद ये ही सबसे बड़ी इनोवेशन है. एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर किसी को ग्रो करने का इक्वल चांस मिले. तो आप क्या सोचते हैं, क्या इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी है या एक माइंडसेट है? हमें जरूर बताएं मैसेज करके 666-22107 पर, और चाहे तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जो कि है @FM107 कतर. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं कतर इनोवेट्स ओनली ऑन FM107.
1: कतर इनोवेट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM107 पर. दिल से देसी, देसी.
0: साथियों हर बड़ी इनोवेशन के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती बल्कि लोग होते हैं. ऐसे लोग जो ख्वाब देखते हैं, रिस्क लेते हैं और फिर उन ख्वाबों को रियलिटी में तब्दील कर देते हैं. कतर फ्री जोन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक सिस्टम जो आज ग्लोबल बिजनेसेस का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके पीछे काउंटलेस फाउंडर्स, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और प्रोग्राम लीडर्स की मेहनत छुपी हुई है. भाई देखिए सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर्स की. ये वो लोग होते हैं जो एक आइडिया के साथ जर्नी को स्टार्ट करते हैं. कतर फ्री जोन्स के अंदर आने वाली कई कंपनीज के फाउंडर्स ने अपने स्टार्टअप्स को जीरो से बिल्ड किया. कुछ लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, कुछ ने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट की और कुछ ने मल्टीपल फेलियर्स फेस किए सिर्फ इसीलिए कि उनका आइडिया एक दिन सक्सेसफुल हो सके. इन फाउंडर्स का माइंडसेट सिंपल होता है साथियों, प्रॉब्लम देखो और उसका सॉल्यूशन बनाओ. किसी ने लॉजिस्टिक्स को फास्ट बनाने का आइडिया दिया, किसी ने एनर्जी को एफिशिएंट बनाने का और किसी ने हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का. लेकिन ये मैं कहूंगी कि ये सफर आसान नहीं होता. उन्हें सबसे पहले चैलेंजेस फेस करने होते हैं, अनसर्टेनिटीज फेस करनी होती हैं, और उनमें से अनसर्टेनिटी ये होती है कि क्या उनका आइडिया चलेगा या नहीं, क्या इन्वेस्टर्स उन पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, क्या मार्केट उनकी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं. फिर आता है फाइनेंशियल प्रेशर. स्टार्टअप के इनिशियल डेज में प्रॉफिट नहीं होता साथियों, ये हम सबको पता है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं भाई, यानी कि ऑफिस स्टाफ, टेक्नोलॉजी, लाइसेंसिंग, और ये सब मैनेज करना हर फाउंडर के लिए बहुत टफ फेज होता है। लेकिन कतर फ्री जोन्स ने इन फाउंडर्स के लिए ये जर्नी थोड़ी सी आसान बना दी। इजी स्टार्टअप्स, सपोर्टिव पॉलिसीज और ग्लोबल एक्सेसेस के जरिए। अब बात करते हैं रिसर्चर्स की। साथियों, अगर फाउंडर्स ख्वाब देखते हैं ना, तो रिसर्चर्स उन ख्वाबों को साइंटिफिक बेस देते हैं। ये वो लोग हैं जो लैब्स में काम करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं और नए सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। भाई देखिए, कतर फ्री जोन के इकोसिस्टम में बायोटेक्नोलॉजी, एआई और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। ये लोग दिन रात एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि बेटर प्रोडक्ट्स बन सके ना, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हों, स्मार्ट सिस्टम्स हों या सस्टेनेबल मटेरियल्स हों। इनके चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है टाइम। टाइम इज मनी। रिसर्च एक स्लो प्रोसेस होता है साथियों, कभी कभी सालों लग जाते हैं एक रिजल्ट तक पहुंचने में। भाई फिर दूसरा चैलेंज आता है फेलियर का। हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, कई दफा तो रिसर्चर्स को अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ जाती है, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है जीरो से, विच इज टू मच हेक्टिक। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट लेसन भी मिलता है, फेलियर एंड नहीं होता बल्कि एक नया डायरेक्शन होता है। देखिए, रिसर्चर्स का मोटिवेशन होता है क्यूरियोसिटी। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे, इन्हीं सवालों पर वो चलते हैं। ये सवाल ही उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। भाई अब आते हैं इनोवेटर्स पर। इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जो एग्जिस्टिंग चीजों को बेटर बनाते हैं। देखिए, हर इनोवेशन बिल्कुल नई नहीं होती, कई दफा एक सिंपल इम्प्रूवमेंट ही गेम चेंजर बन जाती है। कतर फ्री जोन्स में इनोवेटर्स ने लॉजिस्टिक सिस्टम्स को स्मार्ट बनाया, ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस की, ट्रैकिंग सिस्टम इम्प्रूव किए और सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाया। लेकिन टेक्नोलॉजी एक मैं कहूंगी कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनोवेटर्स ने एआई और डाटा को यूज करके बिजनेसेस को स्मार्टर बनाया। आज एक कंपनी अपने कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज कर सकती है, अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकती है, और ये सब इनोवेशन की वजह से ही मुमकिन है। इनोवेटर्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है चेंज रेजिस्टेंस। लोग अक्सर नई चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हिचकिचाते हैं। पुराना सिस्टम ठीक चल रहा है तो नया क्यों, लोगों का अक्सर ये सवाल होता है। ये कॉमन सवाल है, लेकिन इनोवेटर्स का बिलीव ये होता है कि इम्प्रूवमेंट हमेशा जरूरी होती है। उसका लेसन आप कह लें कि उनका लेसन ये होता है कि पेशेंस रखो, सब्र तहम्मुल से लोगों को एजुकेट करो और अपनी वैल्यूज प्रूव करो, एक प्रोसेस है। देखिए, उनका मोटिवेशन होता है इम्पैक्ट, ये देखना कि उनकी इनोवेशन से लोगों की लाइफ आसान हो रही है कि नहीं। और अब बात करते हैं साथियों प्रोग्राम लीडर्स की। देखिए, ये वो लोग हैं जो पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इनोवेशन स्मूथली ग्रो करे। देखिए, कतर फ्री जोन्स अथॉरिटी के लीडर्स ने एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट किया जहां बिजनेसेस को सपोर्ट मिलता है, इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट मिलता है और इनोवेटर्स को प्लेटफॉर्म मिलता है। इनका चैलेंज होता है बैलेंस मेंटेन करना। एक तरफ फास्ट ग्रोथ चाहिए होती है और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी होती है। दूसरा चैलेंज होता है ग्लोबल कंपटीशन। हर कंट्री चाहती है कि वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे, तो कतर को अपने फ्री जोन्स को यूनिक और कंपटीटिव बनाना होता है ना। देखिए, प्रोग्राम लीडर्स का लेसन होता है कि विजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्शन स्ट्रांग हो तो चैलेंजेस ओवरकम किए जा सकते हैं। उनका मोटिवेशन होता है एक बड़ा गोल, मुल्क को फ्यूचर रेडी बनाना। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबको एक साथ देखते हैं, क्योंकि ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं ना। देखिए, फाउंडर्स आइडियाज लेकर आते हैं, रिसर्चर्स उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इनोवेटर्स उन्हें प्रैक्टिकल बनाते हैं और प्रोग्राम लीडर्स उन्हें स्केल करते हैं। ये इनोवेशन एक टीम एफर्ट है और इस जर्नी में सबने चैलेंजेस फेस किए हैं। फियर, फेलियर, फाइनेंशियल प्रेशर, स्लो प्रोग्रेस, रेजिस्टेंस, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने ये सीखा कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, हर फेलियर एक लेसन है और हर छोटा स्टेप एक बड़े गोल की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ी बात जो इन सब लोगों को कनेक्ट करती है वो है बिलीव। अपने आइडिया पर बिलीव, अपने काम पर बिलीव और अपने फ्यूचर पर बिलीव। कतर फ्री जोन्स की सक्सेस सिर्फ बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर

0: वजह से नहीं है बल्कि उन लोगों की वजह से है जो हर दिन कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात लगातार। और शायद ये ही सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती साथियों, इनोवेशन इंसान होते हैं। अगर आपके पास एक आइडिया है, अगर आप कुछ बेटर बनाना चाहते हैं, अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, तो आप भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों आपको क्या लगता है, क्या एक सिंपल आइडिया दुनिया बदल कर रख सकता है? हमें जरूर बताएं, हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, या हमें फॉलो भी कर सकते हैं FM 107 कतर के हैंडल पर। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं कतर इनोवेट्स ऑन FM 107। तो साथियों आज का ये सफर यहीं पर इख्तिताम होता है, लेकिन जो बात हमने आज सीखी है वो सिर्फ एक एपिसोड तक महदूद नहीं है। आज हमने ये जाना कि कैसे कतर फ्री जोन एक सिंपल कॉन्सेप्ट से बढ़कर एक पावरफुल रियलिटी बन चुके हैं, एक ऐसी रियलिटी जहां इनोवेशन और ग्लोबल बिजनेसेस एक दूसरे से मिलकर एक नया फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। हमने ये समझा कि इनोवेशन सिर्फ किसी नई मशीन या सॉफ्टवेयर का नाम नहीं होता बल्कि एक सोच होती है, एक माइंडसेट होता है, एक अप्रोच है जो कहता है कि जो है उसे और बेटर बनाया जा सकता है। तो भाई मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे कतर इनोवेट्स ऑन FM 107। आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिए सोचना बंद मत कीजिए, सीखना बंद मत कीजिए, और सबसे जरूरी इनोवेट करना भी कभी भी बंद मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए आइडिया, एक नई कहानी और एक नई इंस्पिरेशन के साथ। मेरी तरफ से साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज।
1: कतर इनोवेट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए मलहा अशरफुल समान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने इकराम प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान में आप सबका खैर मकदम है। तलहा अशरफ जमान की जानिब से एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद है। कुरान हकीम ने बारहां इस जुमले का जिक्र किया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। मुतअद्दिद मकामात पर इस हकीकत को बयान किया गया है। तो सूरतुल बकरा की एक आयत में हम देखते हैं इरशाद खुदावंदी है, वइذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله, और वो याद करो जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था कि तुम लोग अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करोगे। وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين, और वालिदैन रिश्तेदारों यतीमों और मिस्कीनों से अच्छा बर्ताव करो। सामने किराम वबिल वालिदैन एहसाना, अब वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक व एहसान ये है कि खाने पीने और बूदोबाश में उनके साथ नेकी और भलाई और इज्जत खाकसारी से पेश आना, इसी तरह दुनियावी मामलात में उनकी फर्माबरदारी करना। अब जहाँ तक अहकाम दीन इबादत का ताल्लुक है, वो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन की वजह लाएंगे। सामने किराम अल्लाह ताला के हक के बयान के बाद हम जिस तरह की आयत में देखते हैं, साथ साथ जो है ना वालदेन के हक का जिक्र आया है, जो इस बात की दलील है कि खुदा के बाद सबसे बड़ा हक इंसान पर अगर कोई है तो माँ बाप ही का है और किसी का भी नहीं। लेकिन यह हक सिर्फ एहसान यानी हुस्न सलूक का मुतकाजी है, इबादत का नहीं। यानी ये नहीं कि आप अपने माँ बाप की इबादत का नहीं है, इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। इससे बात साफ निकलती है कि जब अल्लाह ताला ने इबादत में वालिदैन को शरीक करने की इजाज़त नहीं दी जिनका दर्जा खुदा के बाद सबसे ऊँचा है, तो दीगर अशिया की परस्तिश दरअसल ये किसी भी हद तक काबिल कबूल नहीं है। आगे आयत का हिस्सा है, वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, सबने कराम कराबतदारों यतीमों मिसकीनों

गुनाह और अदवान यानी जुल्म और तादी। इस्म की तारीफ हदीस शरीफ में इस तरह आई है, अल इस्मु महाक फी सदरिक व करहत अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास। गुनाह वो है जो चीज तेरे दिल में खलिश पैदा करे और तू उस पर लोगों के मुत्तले होने को नापसंद करे। तो अदवान यानी जुल्म ज्यादती जारहियत, इसी से अदू बना है जिसका माना दुश्मन के है। अब गोया इसम वो गुनाह है जिससे कोई शख्स दिल से गुनाहगार होता है, और अदवान का मतलब दूसरों पर जुल्म व ज्यादती करके मजीद अपने सर गुनाहों का बोझ उठाना है। इस तरह जाहिर व बातिन दोनों तरह से वो गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है। सामने किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अंसार के दो कबीले थे, औस और खजरज। इस्लाम से कबल उनकी आपस में आए दिन जंग रहती थी। इसी तरह यहूदे मदीना के तीन कबीले थे, बनू कैनुका, बनू नजीर और बनू कुरैजा। ये भी आपस में लड़ते रहते थे। बनू कुरैजा औस के हलीफ थे, यानी हलीफ यानी साथी, और बनू कैनुका और बनू नजीर खजरज के साथी और हलीफ थे। जंग में ये अपने अपने हलीफों, साथियों और दोस्तों की मदद करते और अपने ही हम मजहब यहूदियों को कत्ल करते, उनके घरों को लूटते और उन्हें जलावतन कर देते। हालांकि तौरात के मुताबिक ऐसा करना उनके लिए हराम था। फिर इन्हीं यहूदियों को जब वो मगलूब होने की वजह से कैदी बन जाते तो फिदिया देकर छुड़ाते और कहते कि हमें तौरात में यही हुक्म दिया गया है। अब जिन आयात की तिलावत की मैंने, इन आयात में यहूदियों के उसी किरदार को बयान किया गया है कि उन्होंने शरीयत को मोम की नाक बना लिया था। किसी हुक्म पर अमल कर लेते और किसी वक्त शरीयत के हुक्म को कोई अहमियत ही न देते। कत्ल, अखराज और एक दूसरे के खिलाफ मदद करना उनकी शरीयत में हराम था। इन उमूर का तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला इर्तिकाब किया और फिदिया देकर छुड़ा लेने का जो हुक्म था इस पर अमल किया। हालांकि अगर वो पहले तीन उमूर का लिहाज रखते, यानी कत्ल गारत गिरी से बाज रहना, दूसरों को जलावतन न करना, जुल्म सितम से रुक जाना, तो यानी फिदिया देकर छुड़ाने की नौबत ही न आती। तो इस तरह इन आयात करीमा में हमारे लिए यानी काफी सारे पैगाम हैं। सच बात तो ये है कि बनी इसराइल से हम जो है ना इस दौर में कुछ आगे ही बढ़ चुके हैं। यहाँ जैसे कि कहा गया है कि वो अपनी किताब के बाद हिस्सों को मानते थे, बाज़ का इनकार करते थे। अब अगर आप आज के दौर की बात करें तो अब कभी ये भी नजर आता है कि सरे से किताब यानी कुरान हकीम का इनकार ही इनकार है। अंजाम ये है, उलाइक अल्लज़ीन इश्तरौल हयात अद-दुनिया बिल आखिरह فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को खरीदा, लिहाजा उनसे न तो अजाब हल्का किया जाएगा और न उन्हें कोई मदद ही मिल सकेगी। सामने किराम, कुरान हकीम की मुतादद आयात में दुनिया की बेसबाती और आखिरत के तवाम का जिक्र आया है। तो दवाम जो है ना ये बहुत ही एक अहम कुरानी मोती है। इस पर अगर हम हमेशा कायम रहते हैं, अपने दवाम पर, इस्तेदामा पर, तो गया कि हम आखिरत की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो देखें अब अगली आयत में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि ये दुनिया आरजी और नापायदार है जबकि आखिरत दायमी और पायदार है। अब ये इंसान की अपनी सोच है कि वो किसको इख्तियार करता है। ये दुनिया दारुल अमल है जबकि आखिरत दारुल जज़ा है। ये इस तरह की आयात, जैसे कि हमने पहले कहा कि इस हकीकत को कई सारी आयात में जो है ना बयान किया गया है। अब लीजिए सूरह तौबा की आयत, अरदीतुम बिल हयात दुनिया मिन अल आखिरा फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील। तो इस आयत का मतलब है जिहाद ऐसी कीमती नियमत को छोड़कर तुम्हें दुनिया से लगाव हो गया है, क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे। दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबले बहुत ही कम है, इल्ला कलील। इसी तरह एक और आयत है सूरह हूद की,

0: सवाल वही है सामने कराम, अगर यहूद ने अंबिया इकराम के साथ गुस्ताखी करके जिल्लत तो खारी उठाई और अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद किया, तो क्या मुसलमान सैयदुल मुर्सलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सीरत से रोगर्दानी करके सुर्ख रोई हासिल कर सकते हैं? इसी सवाल पर आज का यह हलका अपने अख्तिताम को पहुंचा है। स्टूडियो से तकनीकी माविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा शफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ, योर गाइड फॉर स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा, और ये है आपका अपना फाइनेंशियल गाइड शो जिसका नाम है मनी नेविगेटर। देखिए, आजकल की जिंदगी फास्ट लेन में चल रही है साथियों। सैलरी आती तो है और पता भी नहीं चलता कि कहां चली गई। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी सैलरी को पर लग गए और वो एकदम फुर्र करके उड़ गई। कभी नया मोबाइल चाहिए होता है, कभी ब्रांडेड कपड़े, कभी वीकेंड ब्रंच, और कभी कभी बस दिल कर रहा था वाली शॉपिंग जो हमारी चलती है ना, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा देती है। और फिर महीने के एंड पर हमारे दिमाग में चिड़िया की तरह एक सवाल घूम रहा होता है, पता है क्या होता है? अरे भाई, मैंने महीने तक पैसे तो छापे, मतलब ये कि मेरे अकाउंट में सैलरी तो आई, लेकिन यार ये पैसे गए कहाँ? साथियों, इसी कंफ्यूजन और स्ट्रगल को समझने के लिए हम लेकर आए हैं आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। पता है क्या है? वो है हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अच्छा, जिसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में समझ में नहीं आता कि क्या चीज है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो भाई, क्लास शुरू की जाए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। साथियों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। मतलब पहले अगर सोचा जाए तो 3000 रियाल में हम गुजारा कर लिया करते थे, फिर सैलरी 6000 हुई तो आपका लाइफस्टाइल भी डबल हो गया। अब आपको वही पुरानी चीजें कम लगती हैं, या यूं कह लें कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं भी, मुझे और की जरूरत है। पहले देखिए, सिंपल कॉफी पे हमारा गुजारा हो जाता था, सस्ती सी एक रैली कॉफी पकड़ी, ये जा वो जा। अब मामला ये हो जाता है क्योंकि सैलरी बढ़ गई है तो हमें फैंसी कैफे की कॉफी चाहिए। भाई देखिए, पहले एक अच्छा सा फोन काफी होता था, इतना कि फोन उठाया, फोन किया, बस टच स्क्रीन हो चल जाएगा। अब हर साल अपग्रेड भी तो जरूरी होता है। ये सब आहिस्ता आहिस्ता होता है, सब इतना रैपिडली नहीं होता कि आप इसे सोच समझ के कर सकें। इतना स्लो होता है कि हम खुद भी इसका एहसास करना भूल जाते हैं कि हम अपनी इनकम

के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी इन्फ्लेट कर रहे हैं। अच्छा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सिर्फ हाई अर्नर्स का मसला नहीं होता, ना ना ना ना, ये हर किसी को अफेक्ट करता है भाई, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब स्टार्ट की हो, या फिर कतर में सालों से काम कर रहे हो। जरा सोचिए, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है लेकिन सेविंग्स वहीं की वहीं रहती हैं, तो असल में आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं क्या? आप सिर्फ ज्यादा कमा कर ज्यादा उड़ा रहे हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं, और ये साइकिल आपको कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंचने देता साथियों। इसीलिए मनी नेविगेटर का मिशन है कि हम आपको सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि अपने पैसे को संभालना भी सिखाएं भाई, मैनेज करना सिखाएं, मैनेज करने का और उसे ग्रो करने का तरीका सिखाएं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमारा मनी नेविगेटर का प्रोग्राम जो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर ले जाता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। हम यहाँ बात करते हैं इनकम को कैसे मैनेज करें, स्मार्ट सेविंग्स कैसे करें, डेली लाइफ के खर्चों को कंट्रोल कैसे करें, फ्यूचर प्लानिंग और इमरजेंसी फंड की इम्पोर्टेंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, पैसे को अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। देखिए, इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि सिर्फ थ्योरी नहीं देता, ना ना ना ना, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करता है, खास तौर पर कतर की लाइफस्टाइल के मुताबिक भाई, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ की रेंट, यहाँ की ग्रोसरी, यहाँ की आउटिंग्स और लाइफस्टाइल को मद्देनजर रखते हुए हम आपको प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं भाई यहाँ पर। हमारी कोशिश ये होती है कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंपल बनाया जाए कि हर कोई इसे समझ सके, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, या अपनी फैमिली मैनेज करने वाला कोई शख्स। आप यहाँ ये सीखते हैं भाई कि कैसे छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती हैं, और कैसे आप अपनी इनकम के अंदर रहकर भी एक सिक्योर और स्टेबल फ्यूचर बना सकते हैं। तो साथियों, आज के एपिसोड में हम किसके बारे में बात करेंगे भाई? हाँ, आपको बता देती हूँ कि आज के एपिसोड में डिटेल्स कौन कौन सी हैं। देखिए, आज के एपिसोड में डिटेल्स हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होती कैसे, ये हमें साइलेंटली कैसे अफेक्ट करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे बचने के प्रैक्टिकल तरीके भी तो बताने हैं भाई, इसी के लिए तो शो है। क्योंकि याद रखें, पैसा कमाना एक अलग स्किल है लेकिन उसे संभालना एक अलग ही आर्ट है। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे हैं सफा के साथ ऑन FM 107, द शो इज मनी नेविगेटर। अच्छा हाँ, अगर आप अपने फाइनेंशियल सवाल पूछना चाहते हैं ना, तो आप हमें चाहें तो मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, या चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं @FM107Qatar। सो भाई, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपका पैसा आपका फ्यूचर है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा साथियों, कतर जैसे मुल्क में जहाँ अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं और लाइफस्टाइल भी हाई स्टैंडर्ड का है, वहाँ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक कॉमन चैलेंज बन चुका है। जब किसी की सैलरी बढ़ती है तो नेचुरली उसका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता ही होता है। पहले जो चीज लग्जरी लगती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता नेसेसिटी बन जाती है। आप नोटिस करें तो शायद पहले आप सिंपल ग्रोसरीज पर गुजारा कर लिया करते थे, है ना, सादी सब्जी सब कुछ, लेकिन अब इम्पोर्टेड आइटम्स के बगैर आपका काम नहीं चलता भाई। पहले तो आप घर में मैकरोनी भी बना के खा लिया करते थे, अब आपको पास्ता चाहिए, वो भी व्हाइट सॉस वाला। पहले वीकेंड घर पर गुजारा करते थे, अब हर वीकेंड बाहर डाइनिंग या एक्टिविटीज का प्लान होता है। ये सब छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर एक ऐसा पैटर्न बना देती हैं जहां इनकम बढ़ने के बावजूद सेविंग्स नहीं बढ़ती। लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू पता है क्या है? वो ये है कि ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा, ये भी एक बात है कि इंसान अपनी मेहनत का रिवॉर्ड खुद को देना चाहता है, जो कि बिल्कुल फितरी बात है, लेकिन जब ये रिवॉर्ड आदत बन जाए ना, और हर इनकम इंक्रीज के साथ एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएं, तो फिर ये फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देता है। कतर में रहने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों? तो भाई, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट ही ऐसा है जो आपको अपग्रेड करने की तरफ पुश करता है,
बेहतर हाउसिंग, ब्रांडेड शॉपिंग, इंटरनेट

नेशनल ट्रैवल और सोशल लाइफस्टाइल। इसीलिए मनी नेविगेटर का मकसद ये है कि हम आपको सिर्फ ये ना बताएं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बल्कि ये भी सिखाएं कि उसी पैसे को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये प्रोग्राम एक सफर है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जहां हम बेसिक से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेकर जाते हैं। हम बात करते हैं बजटिंग की, सेविंग हैबिट्स की, एमरजेंसी फंड्स की इम्पोर्टेंस की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भाई। साथ ही हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपके लिए वो पैसा काम करे, ना कि सिर्फ आप पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहे हो। देखिए, इस प्रोग्राम की एक खास बात ये है कि सिर्फ थ्योरी पर मुबनी नहीं है प्रोग्राम, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर करते हैं आपके साथ जो कि कतर के लाइफ स्टाइल से रिलेटेबल होती हैं। तो भाई, आज के एपिसोड में जब हम लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे तो हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है, कौन सी हैबिट्स इसे बढ़ावा देती हैं और सबसे ज़रूरी बात, इससे बचने के तरीके क्या हैं। क्योंकि असल सक्सेस सिर्फ ज़्यादा कमाने में नहीं होती, बल्कि उस कमाई को इंटेलिजेंटली मैनेज करने में होती है। अगर आप हर सैलरी इंक्रीमेंट के बाद अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं तो आप असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई, मनी नेविगेटर आपको ये सिखाता है कि पैसा एक टूल है और टूल को सही तरीके से यूज करना कैसे, इसका भी एक हुनर है ना। टूल तो होते हैं लोगों के पास, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जिनको उनको इस्तेमाल करना आता है। हम आपको एम्पावर करते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद किसी और से नहीं, खुद सोच समझ कर लें बिना किसी कंफ्यूजन के। सिंपल जमान में रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं ताकि आप अपनी डेली लाइफ में उन्हें अप्लाई कर सकें। ठीक है भाई, तो चलिए भाई जल्दी से दौड़ लगाते हैं और सफर शुरू करते हैं अपना, और दौड़ते हुए जाते हैं टुडेज मनी क्वेश्चन की तरफ। यानी कि आज का सवाल थोड़ा सा सिंपल लगता है साथियों, लेकिन जवाब बहुत गहरा है। देखिए, जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर कल आपकी सैलरी डबल हो जाए तो क्या होगा। ओए होए होए होए, मेरे तो दिमाग में आता है मजे, ब्रांडेड शॉपिंग करूंगी ब्रांडेड रेस्टोरेंट में। वाइब आती है ना, वो अच्छे रेस्टोरेंट जाके खाना खाऊंगी, महंगे, वो एस्थेटिक सा थोड़ा माहौल होता है, अच्छा लगता है। तो आप भी यही करेंगे क्या? क्या आपका लाइफस्टाइल डबल होगा या आपकी सेविंग्स डबल होंगी? वैसे हम सबका एक ही जवाब होगा, हमें पता है, क्योंकि साथियों असल बात यह है कि इसी एक सवाल का जवाब आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करता है। बहुत से लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं लेकिन फिर भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी की वैसी रह जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी चुपके से बढ़ जाते हैं और फिर लगता है कि पैसा ज़्यादा आने के बावजूद भी काफ़ी नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर आप आज अपनी करंट सैलरी के साथ मैनेज कर सकते हैं तो कल डबल सैलरी के साथ आप डबल सिक्योर भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपनी आदतों को कंट्रोल करें, वरना सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, बैंक बैलेंस नहीं। और ये है वो पॉइंट जहां से फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल स्ट्रगल के रास्ते दोनों अलग अलग हो जाते हैं। चलिए साथियों, अब थोड़ा सा और गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं जो कि है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। असल में ये होता क्या है? सीधी सी बात है भाई, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर नहीं, बल्कि कंफर्ट, कन्वीनियंस और थोड़ा सा स्टेटस भी तो दिखाना होता है ना अपना। ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में आती हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना रेंट पे किए। आपको लगता है कि आप बस अपनी लाइफ बेटर बनाते जा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी सेविंग्स को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे होते हैं। देखें, जब कोई नया बंदा कतर में आता है ना, तो उसकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होती है। हर रियाल की वैल्यू से समझ में आ रही होती है, एक्सपेंसेस लिखता है अपने, हर चीज़ प्लान करता है, सोच समझ कर अपना पैसा खर्च करता है, घर पर खाना बनाता है, शेयर्ड अकोमोडेशन में रहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेविंग करता है, वो भी एग्रेसिवली। उस वक्त एक क्लियर गोल होता है दिमाग में, पैसा जमा करना है, फ्यूचर सिक्योर बनाना है, होता है ना, सबके दिमाग में होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है, बिल्कुल जैसे फिल्मों में गुजरता है ना वैसे। सैलरी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है और सबसे डेंजरस चीज़ उसी के साथ आती है,

असल चक्कर, यही उसका असल चेहरा है। देखिए अब सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है भाई, कि हम सब के सब बहुत ज्यादा लालची हैं, ग्रीडी हैं? नहीं, ये ग्रीड का मसला नहीं है, साइकोलॉजिकल गेम है। इंसान का दिमाग ऐसा डिजाइन हुआ है कि वो कंफर्ट को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। पहली दफा जब आप बस की जगह टैक्सी लेते हैं ना, तो लग्जरी फील होती है, फिर कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो जाती है, फिर आप सोच भी नहीं सकते कि वापस बस में मैं जाऊं। पहली दफा जब आप फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं ना, तो वो ट्रीट लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रूटीन बन जाती है, और जब रूटीन बन जाए तो फिर वो एक्सपेंस कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। देखिए कतर का एनवायरमेंट भी इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, यहाँ लाइफस्टाइल बहुत विजिबल है, हर तरफ शाइनी कार्स हैं, फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, कैफेज हैं, और सोशल मीडिया पर तो भाई हर कोई अपना बेस्ट लाइफ शो ऑफ कर रहा होता है। आप सबकॉन्शियसली कंपेयर करना अपने आप को शुरू कर देते हैं, और ये सबके साथ होता है। आप सोचते हो कि अगर ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उनमें से कितने लोग डेट में चल रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन का प्रेशर तो आपको भी पुश करता है ना कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें। तो भाई फिर आता है आई डिजर्व दिस सिंड्रोम। अच्छा ये जो है ना बहुत मजे की बात है, और ऑनेस्टली ये बात गलत नहीं है। आप मेहनत करते हो, लॉन्ग आवर्स काम करते हो, स्ट्रेस हैंडल करते हो, तो ऑब्वियसली आप डिजर्व करते हैं भाई। आप डिजर्व करते हो कि अपनी लाइफ आप एंजॉय करो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ये ओकेजनली से रेगुलर बन जाए ना, जब हर दूसरे दिन आप खुद को रिवॉर्ड देने लगो, तो फिर वो रिवॉर्ड नहीं, वो आदत बन जाता है। और फिर सबसे डेंजरस चीज आती है, इजी क्रेडिट। कतर में क्रेडिट कार्ड लेना, लोन लेना बहुत इजी है, आपके पास पैसा हो या ना हो, बस एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और फिर आप खर्च करना शुरू करते हो, उड़ाना शुरू करते हो बाबू। फिर आप खर्च करना शुरू कर देते हो फ्यूचर के पैसों को। आप आज एंजॉय कर लेते हो और कल उसका बिल पे कर रहे होते हो। ये सिस्टम आपको टेम्परेली खुश रखता है, मैं मानती हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियली वीक बना देता है। चलिए अब आपको ना क्या करें, आपको एक रियल लाइफ, आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताती हूँ जो शायद आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आपकी रिलेट करें। देखिए सबसे पहला है फूड डिलीवरी ट्रैप। आप सोचते हैं कि 25 से 30 रियाल का ऑर्डर है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कभी 40 रियाल भी हो गया चलता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप मंथ के एंड पर कैलकुलेट करते हो ना, तो वो अमाउंट पता है कितना बन रहा होता है, 1200-2000। होता है, ये सबके साथ होता है। और फिर आप कहते हो कि पता नहीं पैसा कहाँ गया भाई, मैंने तो कमाया था, अकाउंट में आया तो था, देखा भी था, मेरे पास स्टेटमेंट भी है, लेकिन वो गया कहाँ? ये कन्वीनियंस नहीं है, ये साइलेंट एक्सपेंसेस हैं जो आपकी सेविंग्स को खाते जा रहे हैं बहुत क्वाइटली। फिर आता है कार अपग्रेड ट्रैप। आप सोचते हो कि सैलरी बढ़ गई है भाई, तो ईएमआई भी बढ़ जाए, क्या ही फर्क पड़ेगा, 800 रियाल की जगह आप 1800 रियाल देते हैं, फिर सिंपल सी बात लगती है। लेकिन फिर उसके साथ इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस सब डबल हो जाता है, और आपका मंथली बर्डन सडनली हैवी हो जाता है। और सबसे बड़ा एक्सपेंस पता है कौन सा है? ओ भाई ये तो, इससे तो हर कोई रिलेट करेगा, सबसे बड़ा एक्सपेंस है रेंट का, शेयर्ड रूम से स्टूडियो, स्टूडियो से 1 BHK। हर स्टेप जस्टिफाइड लगता है, हर स्टेप पर आपको ये लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको याद दिलाती चलूँ, रेंट वो एक्सपेंस है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी सेविंग्स पर भाई। और अगर आपने इसे प्लान के बगैर अपग्रेड किया ना, तो भाई आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की बैकबोन डैमेज हो सकती है। साथियों लाइफस्टाइल अपग्रेड करना गलती नहीं है, गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हर किसी को अच्छी लाइफ जीने का हक है भाई। लेकिन बिना प्लानिंग के अपग्रेड करना, ये है ना असली प्रॉब्लम। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़नी चाहिए ना, अगर सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो फिर आप एक लूप में फंस गए जहां आप ज्यादा कमा कर भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये बिल्कुल ऐसा जैसे आप बीच समंदर में फंसे हुए, चारों तरफ से लहरें आ रही हैं और आप मुसलसल चप्पू चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। होगा ये कि आप

0: कहीं नहीं जा रहे, आप उसी जगह पे स्टक खड़े रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है, फाइनेंशियल गोल्स का किलर। यह आपको फौरन प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी को वीकन कर देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसे पहचानें, समझें और कंट्रोल करें, क्योंकि आखिर में बात सिंपल सी रह जाती है। पैसा ज़्यादा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को संभालना। और जो बंदा अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लेता है ना, वो ही असल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करता है। चलिए साथियों, अब थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो मोमेंट है जहां सब कुछ कनेक्ट होता है। यानी कि इन अ नटशेल, आपने अभी तक जो भी सुना, जो भी फील किया, अब उसे एक सिंपल और क्लियर तस्वीर में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक आप आंख खोलें और आपके सामने हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आपकी जिंदगी में आ जाए और बोले, हेलो हाउ आर, मैं आई हूँ तुम्हारी सेविंग्स खाने। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी ड्रामेटिक नहीं होती, ये बहुत ही शरीफ और समझदार तरीके से आती है, दबे पाऊं, बिल्कुल बिल्ली की तरह, आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मेहमान जो पहले चाय पीने आता है हमारे घर में और फिर हमारे अपार्टमेंट में गेस्ट बनकर रह जाता है। कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, अच्छा भाई हम तो सिर्फ घूमने फिरने आए थे, पता चला पूरा पूरा महीना वो रह जाते हैं घर के अंदर। और शायद इसीलिए ये डेंजरस है, क्योंकि जब तक आपको ये पता चलता है ना, तब तक ये आपकी आदत बन चुका होता है। साथ ही जरा इमेजिन करें एक जर्नी, शायद ये आपकी अपनी कहानी हो, क्या पता रिलेट करती हो आपसे या किसी दोस्त से या फिर किसी कुलीग से। लेकिन जब कोई पहली दफ़ा कतर में लैंड करता है ना, तो सब कुछ नया होता है। एयरपोर्ट से निकलते ही एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। नया मुल्क, नई जॉब, नया सिस्टम, पहले कुछ महीने सर्वाइवल मोड में गुजरते हैं। हर चीज़ केयरफुली प्लान होती है, आप ग्रॉसरी लेते वक्त सोचते हैं, टैक्सी बुक करने से पहले दो दफ़ा सोचते हैं और हर छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब रखते हैं। आप मेंटली रियाल को अपनी होम कंट्री के जो करेंसी होती है ना, उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं। यानी कि 10 रियाल का डिसीजन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। उस वक्त आपका लाइफस्टाइल कंफर्ट से नहीं, पर्पस से ड्रिवन होता है। आप घर पर खाना बनाते हैं, अननेसेसरी आउटिंग्स अवॉइड करते हैं और एक क्लियर गोल आपके दिमाग में होता है, मुझे पैसा बचाना है, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, उस फेज में आप फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, चाहे इनकम कम ही क्यों ना हो, लेकिन आप स्ट्रांग होते हैं।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर।
0: अब थोड़ा सा ना पास फॉरवर्ड करते हैं, जिग जिग जिग जिग आगे बढ़ गए, एक साल हो गया या दो साल गुजर गए, ठीक है, आप सेटल हो गए, आपको सिस्टम समझ आ गया है, सैलरी भी थोड़ी सी बढ़ गई है माशाल्लाह से, शायद प्रमोशन मिल गया है आपको या जॉब चेंज हुई है। अब आपको लगता है कि हाँ भाई, अब लाइफस्टाइल थोड़ी सी इजी हो गई है, और नेचुरली आप कहते हैं अपने आप से, यार मैंने इतनी मेहनत की है, अब थोड़ा बेटर लाइफ तो बनती है ना मेरी। और आपकी बिल्कुल सही सोच है, मैं मानती हूँ। फिर आप छोटी छोटी चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन से निकलकर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं, प्राइवेसी मिलती है, सुकून मिलता है। फिर आप ये सोचते हैं कि रोज़ कुकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो चलो कभी फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लूँगा, कभी वीकेंड पे बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं, फ़ोन अपग्रेड कर लेते हैं। ये सब डिसीजन रेकलेस नहीं होते, ये सब अर्नड फील होता है, आपको लगता है कि ये आपका हक है। लेकिन यहाँ ना एक सटल सा शिफ्ट होता है जो आपको उस वक्त नजर नहीं आ रहा होता, जो चीज पहले लग्जरी थी वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल बन जाती है। जो मील आप पहले हफ्ते में एक दफा या पूरे एक महीने में एक दफा ऑर्डर किया करते थे, अब वो तीन दफा हो जाता है। जो कॉफी आप कभी कभी लेते थे ना डर डर के, अब डेली रूटीन बन जाती है। जो टैक्सी आप कभी कन्वीनियंस के लिए लेते थे,

0: अब डिफॉल्ट मोड बन जाता है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, आपको लगता है आप ओवरस्पेंड नहीं कर रहे, हर चीज जस्टिफाइड लगती है. और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक और सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाता है, शायद अच्छी सी प्रमोशन हो जाती है. अब आपकी इनकम काफी स्ट्रांग हो चुकी है, पेपर पर देखें तो लगता है आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं. लेकिन क्या होता है, सेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ती नहीं है, लाइफस्टाइल फिर से एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है. आप सोचते हैं कि अब कार अपग्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस के लोग भी तो अपग्रेड कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं. अब थोड़ा सा बड़ा अपार्टमेंट कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा और कंफर्ट चाहिए. अब ज्यादा ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाती हैं, जिम की, एप्स की, मेंबरशिप्स, सब कुछ बढ़ जाता है. और आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि है आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम का पीछा करना शुरू कर देते हैं. हर दफा इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी उसी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं. और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि आप डबल कमा रहे हैं, लेकिन सेव उतना ही कर रहे हैं जितना पहले किया करते थे, या कभी कभी उससे भी कम. और यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का कोर है. ये रेकलेस स्पेंडिंग जो होती है ना, रेकलेस रैकून्स वाली, ये अनकॉन्शियस अपग्रेडिंग है. अब इसे कतर के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि कतर एक ऐसा मुल्क है जहाँ लाइफस्टाइल बहुत विजिबल है. आप मॉल्स में जाते हैं, हर चीज़ प्रीमियम है, रोड पर देख लें, लग्जरियस कार्स हैं, कैफेज और रेस्टोरेंट्स बहुत एस्थेटिकली परफेक्ट हैं. सोशल मीडिया को खोल लें, हर कोई अपनी बेस्ट लाइफस्टाइल दिखा रहा होता है. और चाहे आप कॉन्शियसली कंपेयर करें या सबकॉन्शियसली, आपका दिमाग ये सब एब्जॉर्ब करता है. आहिस्ता आहिस्ता आप रीडिफाइन करते हैं कि नॉर्मल क्या होता है. एक सर्टन टाइप की कार आपको नॉर्मल लगने लगती है, एक सर्टन टाइप का अपार्टमेंट आपको एक्सपेक्टेड लगने लगता है, एक सर्टन टाइप का लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड बन जाता है. और फिर आपके डिसीजंस नीड पर नहीं, एनवायरनमेंट पर बेस होने लगते हैं. आप शो ऑफ नहीं कर रहे होते, आप बस फिट होने की कोशिश कर रहे होते हैं. लेकिन इसी प्रोसेस में आप अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज से दूर हो जाते हैं. आप थोड़ा इमोशनल एंगल से बात कर लेते हैं, ठीक है. देखिए, एक्सपेक्ट लाइफ इजी नहीं होती, मैं मानती हूँ. आप फैमिली से दूर रहते हैं, प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल होती है ना बेटर फ्यूचर की. नेचुरली आप अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हैं, और वो रिवॉर्ड अक्सर स्पेंडिंग की फॉर्म में आ जाता है. आप कहते हैं कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ, और बिल्कुल करते हैं, आप करते हैं, किसने मना किया. लेकिन प्रॉब्लम रिवॉर्ड में नहीं होता, रिपीटेशन में होता है. जब रिवॉर्ड रूटीन बन जाता है ना, और वो रिवॉर्ड भाई, वो रिवॉर्ड रिवॉर्ड नहीं रहता जब वो रूटीन बन जाता है, वो एक्सपेंस बन जाता है. बात सारी समझने की है. और यहाँ से फाइनेंशियल लीकेज शुरू होती है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर आप अपनी डेली स्पेंडिंग सिर्फ 50 रियाल से इंक्रीज कर देते हो ना, तो शायद आपको फील भी नहीं होता. अच्छा, ये 50 रियाल क्या हो सकता है? ये 50 रियाल हो सकता है एक बेटर मील, एक एक्स्ट्रा कॉफी, एक डिलीवरी चार्ज, या छोटी सी लाइफस्टाइल अपग्रेड. लेकिन जरा हिसाब लगाएं, लेकिन मंथ के एंड पर ये 50 रियाल 1500 रियाल बन जाता है, और साल के एंड पर 18,000 रियाल. सोचिए, अगर ये पैसा आप इन्वेस्ट करते तो आप क्या बिल्ड कर सकते थे. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का असली कॉस्ट ये नहीं है कि आपने क्या खर्च किया, बल्कि ये है कि आपने क्या मिस किया. देखिए, इंसान की एक और हैबिट होती है, एडेप्टेशन. भाई देखें, ये वो चीज है जो शुरू शुरू में तो लग्जरी लगती है, आपसे अपना लें तो ये नेसेसिटी बन जाती है. आप जब पहली दफा बेटर अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी होती है, आप ग्रेटफुल फील करते हैं. लेकिन कुछ महीनों बाद वो नॉर्मल हो जाता है. फिर आप उसमें फ्लॉज देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, होता है. फिर आप सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट अपग्रेड क्या हो सकता है. बोर हो जाता है इंसान, और ये साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है. आप हमेशा अपग्रेड कर रहे होते हो, लेकिन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते. देखिए, यहाँ पर ना एक गोल्डन कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं गैप. जो आप कमाते हैं, जो आप खर्च करते हैं, उनके बीच का गैप ही आपकी वेल्थ बनाता है. अगर ये गैप जीरो है, तो आप कितना भी काम कर लो, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बन पाओगे. लेकिन अगर ये गैप मेंटेन है ना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होते चले जाओगे. अवेयरनेस यहाँ सबसे पावरफुल चीज है साथियों. बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हुए हैं. क्योंकि कोई अलार्म नहीं बजता, कोई वार्निंग साइन नहीं होता इसका, कोई जैसे हमें सिग्नल पे खड़े होकर रेड लाइट मिलती है ना, कोई रेड लाइट नजर नहीं आती, सब कुछ नॉर्मल लगता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे होते। और फिर एक दिन जब कोई बड़ा फाइनेंशियल नीड आता है ना आपके सामने, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, खुदा ना खास्ता जॉब चेंज हो गई या कोई लॉन्ग टर्म गोल, तब आपको रियलाइज होता है भाई ये क्या कर दिया। आपको तब रियलाइज होता है कि इतने सालों की अच्छी इनकम के बावजूद आपके पास स्ट्रॉन्ग सेविंग्स थी नहीं। वो रियलाइजेशन थोड़ा पेनफुल होता है साथियों, थोड़ा नहीं मैं कहूंगी बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अवॉइड किया जा सकता है। जिस मोमेंट आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का पता चल जाए ना, उस मोमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको अपने कंफर्ट सेक्रीफाइस करना जरूरत बन जाता है, बस उसे इंटेंशनल बनाना है। आप अपग्रेड करें लेकिन प्लान के साथ ना, आप एंजॉय करें लेकिन लिमिट के साथ, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमाते हो, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना बचाते हो और फिर उसे कितनी समझदारी से आप यूज करते हो। अगर आप अपनी इनकम को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो आप अपना फ्यूचर कंट्रोल कर लेते हैं, और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं करते तो फिर आपकी लाइफस्टाइल आपको कंट्रोल करने लगती है। तो साथियों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को समझना ही उसे कंट्रोल करने का पहला स्टेप होता है। आज का मैसेज सिंपल है, अपनी लाइफ अपग्रेड करें लेकिन अपने फ्यूचर की प्राइस पर नहीं। पैसा एंजॉय करें लेकिन उसे वेस्ट ना होने दें, क्योंकि असल जीत ये नहीं कि आपने कितनी अच्छी लाइफ जी हो, असल जीत ये है कि आप कल के लिए कितने प्रिपेयर थे। और जब आप ये बैलेंस अचीव कर लेते हैं, तब आप ट्रूली फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मनी मूव्स पर। अब जब हमने प्रॉब्लम को क्लियरली समझ ही लिया है, तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हमारी जो है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। लेकिन ये वो बोरिंग टाइप के सॉल्यूशंस नहीं होंगे जहां आपको बस ये कह दिया जाए कि हाँ भाई कम खर्च करो ज़्यादा बचाओ। रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, और स्पेशली कतर जैसे एनवायरनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती, ये मैं मानती हूँ। यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, और लाइफस्टाइल का प्रेशर तो और भी बहुत ज़्यादा रियल है। इसीलिए आज हम बात करेंगे रियल मनी मूव्स की, जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी हैं, जो आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सच ये है कि प्रॉब्लम समझना ईजी नहीं होता, लेकिन बिहेवियर चेंज करना असली गेम चेंजर होता है। देखिए, सबसे पहला और पावरफुल कॉन्सेप्ट ये है, इनविजिबल इन्वेस्टिंग। देखिए, ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जैसे ही सैलरी इंक्रीज होती है उनका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होती। और ये छोटा सा डिफरेंस ही लॉन्ग टर्म में सब कुछ डिसाइड करता है। आप इमेजिन करें कि आपकी सैलरी 2000 रियाल से बढ़ जाती है, नॉर्मली क्या होता है, आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि ये पैसा कहाँ जाएगा, बस आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। थोड़ा बेटर खाना, थोड़ा ज़्यादा आउटिंग, थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट, और फिर कुछ महीनों बाद आपको ये याद भी नहीं रहता कि ये एक्स्ट्रा पैसा कब आया था। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, अगर आप डिसाइड करें कि जैसे ही सैलरी इंक्रीज हो उसका एक हिस्सा कभी आपके स्पेंडिंग अकाउंट तक पहुंचे ही ना, ये है इनविजिबल इन्वेस्टिंग। मतलब पैसा आया और सीधा इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में चला गया, बिना इसके कि आप उसे देख भी सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 2000 रियाल से इंक्रीज हुई, और तो आप फौरन डिसाइड करें कि 1000 रियाल ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगा भाई। अब साइकोलॉजिकल मैजिक ये होता है कि आपको कभी फील ही नहीं होता कि आपने कुछ लूज किया, क्योंकि आप उस पैसे को स्पेंड करने की आदत बनाई ही नहीं होती आपने। देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को विजिबल पैसा चाहिए होता है, और जब पैसा विजिबल ही नहीं होगा तो वो इन्फ्लेट कैसे होगा। ये हैबिट आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रख सकती है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, डिफाइनिंग योर इनफ। ये ना थोड़ा फिलोसफिकल सा लगता है, लेकिन रियलिटी में बहुत प्रैक्टिकल है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग कभी डिफाइन ही नहीं करते कि उनके लिए कितना इनफ है। कतर जैसे मुल्क में तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर तरफ बेटर ऑप्शंस हैं। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज़्यादा अच्छी कार चला रहा होता है, बेटर अपार्टमेंट्स में रह रहा होता है, और लग्जरी ज़्यादा यहाँ पे जी जा रही होती है। अगर आप अपनी लिमिट डिफाइन नहीं करते, आपको दुनिया कंटिन्यूसली पुश करती चली जा रही होती है अपग्रेड की तरफ, आप इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं। इसलिए एक सिंपल सा सवाल अपने आप से आप जरा पूछिए, मुझे असल में किस टाइप का लाइफस्टाइल चाहिए, मैं किस टाइप की लाइफस्टाइल में खुश रह सकता हूँ, ना कि इम्प्रेस करने के लिए मैं अपना लाइफस्टाइल बनाऊं। क्योंकि आजकल बहुत सी स्पेंडिंग हैप्पीनेस के लिए नहीं, परसेप्शन के लिए होती है। जब आप क्लियर हो जाते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, तो आप हर चीज ब्लाइंडली अपग्रेड नहीं करते, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। शायद आपको ट्रैवल पसंद हो तो आप वहां स्पेंड करते हैं, लेकिन आपको लग्जरी कार का शौक नहीं तो आप वहां से सेव कर लेते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन है और यही फाइनेंशियल कंट्रोल का बेस है। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, लाइफ साइकिल थिंकिंग। ये स्पेशली कतर के एक्सपेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत से लोग एक साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ उनका लाइफस्टाइल हर साल एक्सपेंड होता रहता है, लेकिन उनका यहाँ रहना परमानेंट नहीं होता। जरा सोचिए, आप यहाँ किस लिए आते हैं? शायद सेविंग के लिए, फैमिली सपोर्ट के लिए या बेटर फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल हर साल इतना एक्सपेंड हो जाए कि वो सिर्फ कतर की इनकम पर डिपेंडेंट हो, तो फिर जब आप यहाँ से मूव करेंगे तो क्या होगा? इनकम चेंज हो सकती है लेकिन एक्सपेक्टेशंस वही रहती हैं और ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसीलिए एक स्मार्ट मनी मूव ये है कि आप अपनी लाइफ ऐसी बिल्ड करें जो सस्टेनेबल हो, जो सिर्फ कतर में नहीं बल्कि उसके बाद भी आपके साथ चलती रहे। आप यहाँ एंजॉय करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसी लाइफ ना बिल्ड करें जो सिर्फ यहाँ चल सकती हो ना। देखिए, फाइनेंशियल पीस लोकेशन से नहीं, सिस्टम से आता है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कहीं भी कंफर्टेबल रह सकते हैं। अच्छा, चौथा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है लेकिन बहुत पावरफुल है, मैं आपको बता दूं। यानी कि सेपरेशन ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम इनकम। बहुत से लोग अपनी इनकम को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मतलब अगर आप हाई इनकम के मालिक हैं तो लाइफस्टाइल भी हाई ही होना चाहिए और वो लाइफस्टाइल उनकी सक्सेस का सिंबल बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई एक्सपेंस कम करना पड़े, फिर वो डिसीजन फाइनेंशियल नहीं इमोशनल हो जाता है, क्योंकि डाउनग्रेड करना है ना, स्टेप बैक फील होता है आपको। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा ये रियलाइज करता है कि उसका रेंट बहुत हाई है और वो इजीली थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन वो हेजिटेट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल डाउनग्रेड कर रहा है। ये पैसों का मसला नहीं है, ये ईगो का मसला है। और जब आप इस लिंक को ब्रेक कर देते हैं ना, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर आप डिसीजंस लॉजिक पर लेते हैं, ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, आपका इमेज क्या बनेगा। और यही रियल फाइनेंशियल ग्रोथ का स्टार्ट होता है। अब पांचवे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो पांचवा कॉन्सेप्ट, ट्रिकिंग लाइफस्टाइल क्रीप कॉन्शियसली। मतलब देखिए, ज्यादातर लोग अपनी इनकम ट्रैक करते हैं लेकिन अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस ट्रैक नहीं करते, और यही ब्लाइंड स्पॉट है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इसी अनकॉन्शियस बिहेवियर में ग्रो करती है। तो एक सिंपल हैबिट अडॉप्ट करें, हर 3 से 6 महीने बाद पॉज करें और खुद से पूछें कि मेरी लाइफस्टाइल लास्ट ईयर से कितनी चेंज हुई है। सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं, हैबिट्स देखें। क्या आप ज्यादा बाहर खाना खाने लगे हैं? क्या कन्वीनियंस पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं? क्या आपके फिक्स्ड कॉस्ट्स बढ़ गए हैं? क्या ऐसी सब्सक्रिप्शंस हैं जो आप यूज भी नहीं कर रहे लेकिन आपके पास है? ये अवेयरनेस ही आपको हजारों रियाल से बचा सकती है, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है ना, तो फिर पैसा क्वाइटली लीक होना शुरू हो जाता है। और अब हम बात करते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल की, पे योर सेल्फ बिफोर यू अपग्रेड योर लाइफ। यानी कि ये गोल्डन रूल है। मतलब इनकम आए और सबसे पहले आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स साइड पर कर दें, जो बचे उस पर अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले सब कुछ खर्च कर लेते हैं, फिर जो बच जाता है वो सेव करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ बचता ही नहीं है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत एफिशिएंट होती है, वो हर वो पैसा कंज्यूम कर लेती है जो आप प्रोटेक्ट नहीं करते। इसीलिए सिस्टम चेंज करें, इनकम आए पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स निकालें, फिर लाइफस्टाइल बनाएं। ये छोटी सी शिफ्ट आपकी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन को चेंज कर रख देती है, क्योंकि अब आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, ना कि सिर्फ अपने प्रेजेंट को। साथियों, ये सारे मनी मूव्स फैंसी नहीं लेकिन पावरफुल हैं। ये आपकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते बल्कि कंट्रोल देते हैं आपको। आप फिर भी एंजॉय करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से। आप फिर भी अपग्रेड करते हैं लेकिन प्लानिंग के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। देखिए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कम्प्लीटली अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर आप जितना भी कमा लें आपको कभी भी इनफ फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर आप कम इनकम में भी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और हाई इनकम में पावरफुल। एंड ऑफ द डे पैसा सिर्फ अर्न करने की चीज नहीं होता, मैनेज करना इसको एक स्किल होती है, और जो बंदा अपनी इनकम और लाइफस्टाइल के बीच बैलेंस देता है वही असल में फाइनेंशियल विनर होता है। तो चलिए साथियों, रैप अप से पहले थोड़ा सा पॉज लेते हैं, क्योंकि अब जो बात होने वाली है ये टिप्स कम है और रियलाइजेशन ज्यादा है। ये वो बातें हैं जो शायद आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन आज इन्हें फील करने की जरूरत है, क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर का गेम नहीं होता, ये माइंडसेट का गेम होता है, और जब माइंडसेट शिफ्ट होता है ना तब रियल चेंज आता है। सबसे पहली बात ये कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फौरन नज़र नहीं आता, ये आपको शॉक नहीं देता, ये आपको डराता नहीं है, ये आपको खुश करता है। आपको फील होता है कि लाइफ इम्प्रूव हो रही है, कम्फर्ट बढ़ रहा है और आप डिज़र्व भी करते हैं, ये सब कुछ आपको फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती है ना, वो लॉन्ग टर्म में डेंजरस बन सकती है। ये बिल्कुल स्लो लीकेज की तरह होता है, जो आपको फौरन प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टैंक खाली कर देता है, और जब तक आपको पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी बात ये कि सेविंग्स का इनकम से उतना लेना देना नहीं है जितना आदत से। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब ज़्यादा कमाएंगे तब सेव करेंगे, लेकिन रियलिटी उसका उल्टा है। जो आदमी कम इनकम में भी सेव कर लेता है वो हाई इनकम में वेल्थ क्रिएट करता है, और जो आदमी हाई इनकम में भी सेव नहीं करता वो कभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होता। ये सिर्फ अमाउंट का गेम नहीं है, डिसिप्लिन का गेम है। और एक बहुत पावरफुल लाइन जो है ना वो याद रखें अपने दिमाग में, वेल्थ हमेशा क्वाइट होती है और लाइफस्टाइल हमेशा लाउड होता है। जो बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको दिखाई दे, लेकिन जो बंदा सिर्फ लाइफस्टाइल शो ऑफ कर रहा होता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। इसीलिए हमेशा लाउड चीज़ों से इम्प्रेस मत हो, साइलेंट ग्रोथ पर फोकस करें। तो भाई साथियों, याद रखें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपका दुश्मन नहीं है, जब तक आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं तब तक तो नहीं, लेकिन अगर आपने उसे इग्नोर किया तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। इसलिए अर्न मोर लेकिन सेव स्मार्टर, स्पेंड करें लेकिन सोच समझ कर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करें, अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग भी अपग्रेड करें, क्योंकि जब सोच बदलती है ना तो ज़िंदगी बदलती है। अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसे इतना पावरफुल मत बना दें कि वो आपके फ्यूचर को क्वाइटली चोरी कर ले। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, ये एक टूल है जो आपको फ्रीडम देता है, और अगर आपने इस टूल को समझ लिया ना तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो साथियों, मैं हूं आरजे सफा और आप सुन रहे थे मनी नेविगेटर ऑन एफएम 107। अगर आप अपने सवाल शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, या हमें फॉलो कर सकते हैं एट सोशल मीडिया हैंडल @FM107Qatar। अपना ख्याल रखें, स्मार्ट डिसीजन लें, और याद रखें आज का एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन कल की एक टेंशन फ्री लाइफ बनता है। अल्लाह हाफिज, और फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम फिर से आपको गाइड करेंगे एक स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें, और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.

107 पर वेक अप। आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107।

0: दोस्तों, डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
1: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, हर संडे दोपहर 3 to 4 PM सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी नोटिस किया है जब तक हेल्थ ठीक होती है ना हम उसे काफी लाइटली लेते हैं जैसे वो हमेशा साथ रहेगी और जैसे ही बॉडी या माइंड थोड़ा सिग्नल देता है तब अचानक याद आता है ओ सेहत भी एक चीज होती है सच तो ये है कि आपकी हेल्थ सही में काफी ज्यादा मैटर करती है जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लेकिन इसको प्रायोरिटी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जब सब कुछ ऑलरेडी बिगड़ चुका होता है तब हम इसे प्रायोरिटी पे लाते हैं जैसे पहले शायद हम भी अच्छा खाना नहीं खाएंगे जंक फूड की तरफ आकर्षित रहेंगे बट जैसे ही हमारी हेल्थ डिटोरिएट होने लगती है वैसे ही हम स्विच करते हैं टू डाइटिंग हेल्दी ईटिंग जो एक्चुअली एक लाइफस्टाइल होना चाहिए हम काम के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं डेडलाइन

0: मीट कर लेते हैं पर जब बात खुद पे आती है तब हम कहते हैं ये पार्क की वॉक ना कल से स्टार्ट करूंगा, जिम अगले महीने से पक्का करता हूँ, हेल्थ बाद में। पर ये हेल्थ बाद में वाला टॉपिक नहीं है, सेहत वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी जिंदगी खड़ी होती है। आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर रात को चैन की नींद आपको नहीं आ रही है, गड़बड़ लग रही है, पेट में दिल की धड़कने बढ़ रही है, दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे हैं, आप भले कितने ही स्ट्रांग क्यों ना दिखो, लाइफ में कितने ही ज्यादा सक्सेसफुल क्यों ना रहो, सक्सेस हमेशा अधूरी लगेगी अगर आपका बॉडी आपके साथ नहीं है तो। और हेल्थ सिर्फ बीमारी का नाम नहीं होना नहीं होता है, वो एक एहसास होता है जब सुबह उठकर आपको लगता है कि आज का दिन बढ़िया अच्छा जाने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हेल्थ वो इत्मीनान है जब दिल और दिमाग दोनों थोड़ा सा साथ दे रहे हो, रिसर्च ये भी कहती है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, पुअर स्लीप और सेल्फ निग्लेक्ट बॉडी को खामोशी से अफेक्ट करते हैं। कोई लाउड अलार्म नहीं बजता, बस धीरे धीरे एनर्जी कम होते जाती है, पेशेंस घटते जाता है, आप ज्यादा चिड़चिड़ा जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो काफी नॉर्मल है, सभी तो ऐसे जीते हैं। पर सच तो ये है कि ये एक नॉर्मल लाइफ नहीं, ये एक एग्जॉस्टेड लाइफ है। अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, डेडिकेशन ना होना, तो थोड़ी मेहरबानी खुद पे कीजिए और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए। और जब आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो ना, तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हो, आपका पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स हो, इनफैक्ट प्रोफेशनली भी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं टू बी अ बेटर ह्यूमन। इसलिए याद रखिए, हेल्थ कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, हेल्थ वो बेस है जिसके बिना बाकी सब शेकी हो जाता है। तो आज सिर्फ इतना याद रखिए, काम इम्पोर्टेंट है, लोग इम्पोर्टेंट है, सपने इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी सेहत उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप ठीक होते हो तभी जिंदगी ठीक लगती है। और हाँ, योर हेल्थ ट्रूली मैटर।
1: Your health matter. Your health matter. Only on FM 107, Dil Se Desi. Your health matters. Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: करदा है ये निया मेनिया गल्ला ते तू लड़दा है।

होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस उभरते हुए फास्ट बॉलर के बारे में, नसीम शाह। जी हाँ दोस्तों, नसीम शाह पाकिस्तान के एक यंग रॉ टैलेंट है जो अपनी पेस और स्विंग के लिए मशहूर हो चुके हैं और इनका जो पार्टनरशिप है बॉलिंग अटैक में विद शाहीन शाह अफरीदी, दैट क्रिएट्स अ टेरर इन द ओपोनेंट टीम। और ये हमने देखा है, कई बार देखा है कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जब भी बॉल करने आते हैं, ओपनिंग बैट्समैन जो होते हैं ओपोनेंट टीम में, वो काफ़ी लड़खड़ा जाते हैं। बहुत कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री लेने वाले नसीम ने जल्द ही दुनिया को अपनी टैलेंट से इम्प्रेस किया। उनकी बॉलिंग में एग्रेशन के साथ कंट्रोल भी नज़र आता है जो उन्हें फ्यूचर स्टार बनाता है। इज़ क्वाइट यंग, 23 साल का नौजवान फास्ट बॉलर। और देखिए, पाकिस्तान इज़ नोन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रॉ फास्ट बॉलर्स, सो नसीम शाह को देखकर ये लगता है कि पाकिस्तान बॉलिंग का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट है। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो 20 मैचेस में उन्होंने 41 रन स्कोर किए हैं, लेकिन अगर बॉलिंग की अगर मैं यहां पे फोकस करूं तो 60 विकेट्स ले चुके हैं जिसमें एवरेज है 35.13। ओडीआई में 34 मैचेस खेल चुके हैं एंड उसमें टॉप स्कोर भी उन्होंने किया, 51 रन स्कोर किया। एंड साथ साथ अगर बॉलिंग की बात करूँ तो 60 विकेट्स 25.91 के एवरेज के साथ 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स 2 मरतबा ले चुके हैं ओडीआई में और टेस्ट में सिर्फ 1 मरतबा। T20 37 मैचेस में 62 रन स्कोर किए हैं एंड 16 उनका टॉप स्कोर रहा है। अगर बॉलिंग, ऑब्वियसली नसीम शाह जो है वो बॉलर हैं और बॉलर के रूप में अगर हम देखें तो ही इज क्वाइट डेंजरस। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उन्होंने 32 विकेट्स हासिल किए हैं और जिसमें एवरेज अगर बताऊं तो 33.03। बेसिकली क्या है कि नसीम शाह जो है एक टैलेंटेड है, यंग है और अभी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपना आगाज किया है, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की ज़िंदगी जो है, फास्ट बॉलर्स की जो करियर है वो बहुत हद तक इट्स नॉट एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ द इंजरी प्रोन्स। अगर आप देखेंगे कि फास्ट बॉलर्स हमेशा जो है इंजरी प्रोन होते हैं, स्पेशली यहाँ पर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये दोनों ही इंजरी प्रोन रहे हैं, कभी हैमस्ट्रिंग पुल या कभी कभार एंकल की इंजरी में ये टीम से हमेशा बाहर रहे हैं। सो फास्ट बॉलर्स के करियर, जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग और कभी कभार किसी बॉलर को पहले से ही रिटायर्ड होने का फैसला लेना पड़ता है। दोस्तों, नसीम शाह सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक का फ्यूचर है जहां उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सर्वर के साथ सुनिए जूनियर शेफ हर जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

0: श्रीनवा,
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: आराम से आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और बाजू में एक पॉपअप आता है, लिखा है उसमें ऑनलाइन आईफोन 17 प्रो मैक्स सिर्फ 4000 रियाल में, लिमिटेड स्टॉक, लास्ट 10 मिनट्स। और इसमें आप क्लिक करते हैं और कर बैठते हैं अपनी जिंदगी की एक और गलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस। इस तरह की किसी भी वेबसाइट में पेमेंट तो आप कर देते हैं, लेकिन डिलीवरी, सेलर और वेबसाइट थोड़े दिनों के बाद सब कुछ गायब हो जाता है। फेक वेबसाइट्स, फेक इंस्टाग्राम पेजेस, फेक फेसबुक सेलर्स सब एक ही चीज करते हैं, पैसे लो और गायब हो जाओ। आपकी पेमेंट हुई और ये लोग छूमंतर हो जाते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग प्रोडक्ट के इंतजार में रह जाते हैं और अपने पैसे गवा बैठते हैं। कई दफा इस तरह के ईमेल्स भी आते हैं आपको, लिमिटेड पीरियड ऑफर, कोई लुभावनी या ट्रेंडिंग चीज का प्राइस बहुत कम करके दिखाया जाता है और आप उस पे क्लिक करते हैं एंड उस क्लिक के साथ ही आप काफी सारी मालूमात शेयर कर देते हैं। सो अवॉइड, तो ऐसी वेबसाइट्स को क्लिक करने से बचे। तो आखिरकार हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? नंबर वन, सिर्फ ट्रस्टेड एप्स और वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी करें, जिससे सामान जब आएगा तभी आपको पैसे देना है, सामान नहीं आया नो पैसे। अगर कहीं पे बहुत ही ज्यादा अच्छी डील दिख रही है तो एक बार ब्रेक लगाओ, सोचो समझो, ध्यान से देखो क्या ये सही वेबसाइट है, क्योंकि ऐसी चीजों में आदमी लालच में पड़ जाता है और बड़े बुजुर्गों ने कहा है लालच बुरी बला है। रैंडम इंस्टा व्हाट्सएप सेलर से थोड़ा बच के रहो, तो कभी कभी जो सस्ता है वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करो लेकिन दिमाग के साथ।
2: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं एफएम 107।
4: एफएम 107
1: दिल से देसी।
5: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुराने करीम। आइए पलहा अशरफ उज़मान के साथ और आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। रोजाना 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर।
6: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
7: आर यू रेडी? फ्राइडे शाम 8 बजे लेकर आ रहे हैं आरजे फजील वो शो जिसका इंतजार होता है सबको, टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: FM 107, दिल से देसी।
3: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, शायद इसका ताल्लुक आपसे भी है। आज हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा माना जाता है कि लिसनिंग जो है वो स्पीकिंग से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के दौर में हर कोई जो है वो बोलना चाहता है, मगर बड़े कम लोग हैं ऐसे जो आराम से, इत्मीनान से, पूरी तवज्जो के साथ सुनना पसंद करते हैं। वैसे तो इसमें हम सबका जो है ना वो पेशेंस टेस्ट भी है। क्या हम लगातार एक मिनट तक किसी को सुन सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? आई मीन टू से, बात कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, शायद आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की भी ना हो, लेकिन आपसे कहा जाए कि एटलीस्ट एक मिनट तक आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तवज्जो के साथ पूरी बात को ध्यान से सुने, तो शायद हम सबके लिए एक टास्क बन जाएगा। मतलब हाँ, हमें ऐसा लगेगा कि बाकायदा हमें इस टास्क को कंप्लीट करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक्टिव लिसनिंग।

बात हो रही है। इसे हमारा ब्रेन जो है ना वो ट्रेन्ड है पैसिव लिसनिंग के लिए। हम आराम से इत्मीनान से सुनते रहते हैं और भी काम करते रहते हैं और हमें अच्छा भी लगता है कि बस हमें खुद अपने जहन पे जोर नहीं डालना है और ऐसे ही यूं ही सुनते रहना है। लेकिन सवाल ये है कि सुनना कितना पसंद करते हैं? कोई बात आपकी हुई, जरा से आपकी मर्जी के खिलाफ हुई, आप सारे काम छोड़ छाड़ के एकदम एक्टिव स्पीकर बन जाते हैं। वैसे आज का दौर भी ऐसा है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, वो अपना ओपिनियन देना चाहता है, वो चाहता है कि उसको सुना जाए। और हमारा सोशल मीडिया, अरे भैया ये जो हमारे जो भाई है ना सोशल मीडिया के, उन्होंने तो इस चीज को और आसान कर दिया है। मीटिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह बोलने की रेस लगी हुई है। जैसे मानो ना एक ट्रेंड सा बन गया है, द मोर यू स्पीक द मोर यू साउंड। अरे नहीं जी, ऐसा नहीं है। लेकिन असल सवाल जो है वो ये है कि क्या बोलना ज्यादा जरूरी है या लाइफ में ठहर के रुक के सुनना? मैं कहूंगी लिसनिंग, सुनना बोलने से बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से सुनना सीख जाते हैं शायद तभी हम अच्छे स्पीकर भी बन पाते हैं, तभी हम बेहतर समझ, बेहतर सोच और बेहतर फैसले कर पाते हैं।

तैयार कर लेते हैं और जल्दी से वो जवाब बोल भी देते हैं, मतलब किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। ये आदत लिसनिंग को कमजोर बनाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पूरी तवज्जो देना। मैं जब कहती हूँ पूरी तवज्जो देना का मतलब मोबाइल को साइड पे रख दो, टीवी है बंद कर दो, आंखों में आंखें डालकर छोटी या बड़ी कोई भी बात हो, छोटा या बड़ा कोई भी कर रहा हो, ध्यान से अहमियत के साथ सुनना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरों को जज करना छोड़ दो। जब हम जज करते हैं तो हम सुनना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ वही समझ रहे होते हैं जो हमने अपने दिमाग में सेट कर रखा है। इसीलिए आप जज करना लोगों को छोड़िए, ये जजमेंटल अप्रोच जो है ना इसको साइड पे रखिए। वही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी, वो ये कि जब बात ख़त्म हो जाए सवाल ज़रूर पूछिए। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि एक तो एक्टिव लिसनिंग भी आपकी हुई, फिर आपको स्पीकिंग का भी चांस मिल रहा है और सामने वाले को लगता है कि आप वाकई इंटरेस्टेड थे, आपने उनकी बात गहराई से सुनी और समझी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो है, खामोशी से मत डरिए। हर वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं होता दोस्तों, कभी कभी आपकी जो खामोशी है वो आपका सबसे प्यारा जवाब होती है। कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहां आप अपनी खामोशी से किसी को लाजवाब कर देते हैं। तो बस आखिर में यही कहूंगी लिसनर्स, आप सभी से जो आप मुझे सुन रहे हैं, कि लिसनिंग एक स्किल भी है और एक अखलाकी खूबी भी। बोलना जरूरी है लेकिन सुनना कीमती है। जो शख्स सुनना जानता है वो दिल जीत लेता है। आज के शोर भरे दौर में अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ बोलने वाले इंसान नहीं बल्कि समझदार इंसान बनते हैं, और ये वो खूबी है जो आपके रिश्तों को, आपके करियर को और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। चलिए दोस्तों, अब बस मुझे आपसे यहाँ पे इजाजत लेनी है। इंशाल्लाह नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। नाज़ी और शकीब अहमद, हम दोनों की इजाजत दीजिए। सुन रही है FM 107, दिल से।

0: FM 107 Qatar, दिल से देसी।
1: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।